ओम शांति। हम सभी सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हैं, हम पूज्य भी हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें सभी आत्माओं की पालना करनी है। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों की पालना करती है, हमारे प्योर वाइब्रेशंस दूसरों को निष्पाप करते हैं, हमारी योगयुक्त स्थिति दूसरों को बल देती है, चाहे वो किसी भी धर्म का को मानने वाला क्यों ना हो। हम उन सब के पूर्वज हैं। और भगवान वाच याद रखें, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका फल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। एक और महावाक्य याद करें, यदि तुम अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहोगे तो तुमसे स्वतः ही सबकी पालना होती रहेगी। तो हमें एक बहुत बड़ा कार्य बाबा ने दिया है, सबकी पालना करने का, और हम इस कार्य की स्मृति रखें। हम साधारण नहीं हैं, हमें सबकी पालना करनी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अपनी जिम्मेदारी को ख्याल में रखते हुए हमें हमेशा सोचना है कि हम व्यर्थ से मुक्त रहें। कितना बड़ा काम और कितने छोटे व्यर्थ, विचार करेंगे। जिन्हें बड़े काम करने हो वो छोटी बातों में उलझते नहीं है, उनका दृष्टिकोण छोटा छोटा रहता नहीं है। अगर हम ये याद रखेंगे कि हमें तो सबकी पालना करनी है, सबको शांति का दान देना है, सबको शक्तियों के वाइब्रेशंस देने हैं, सबको प्योर बनाना है, हमारे मन में किसी के लिए भी घृणा भाव नहीं हो सकेगा, हम किसी के भी उतार चढ़ाव में नहीं जाएंगे, हमें तो गिरते हुओं को उठाना होगा और सभी आत्माओं के लिए आत्मिक भाव धारण करना होगा, तो सभी बहुत अच्छी तरह अपनी इस गुड फीलिंग में आ जाएं। मैं पूर्वज हूं और मुझे सबकी पालना करनी है। ये बहुत बड़ा काम बाबा ने हम सबको दिया है, और जो इस तरह पालना करेंगे वो पालन करता श्री विष्णु के समान बन जाएंगे। ये पूज्य स्वरूप होगा हमारा। हम अपने किसी भी पूज्य स्वरूप को स्मृति में अवश्य लाएं, चाहे मैं इष्ट देवी हूँ, विघ्न विनाशक गणेश हूँ या पालन करता विष्णु हूँ, अगर हम अपने इस पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो हमसे सुंदर वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे और हमारी भावनाएं भी संसार के लिए बदलती जाएंगी। मैं इष्ट देवी हूँ तो मुझे तो सबको देना है, मैं इष्ट देवी हूँ तो मुझे तो संपूर्ण पवित्र रहना है, मैं इष्ट देवी हूँ तो मुझे तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, मैं इष्ट देवी हूँ जो जिस भावना से मेरे द्वार पर आएगा मुझे तो उसको पूर्ण करना ही है। ये हमारा चिंतन हो जाएगा और इस चिंतन से हमारी स्थिति बहुत महान हो जाएगी। तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की स्मृति हमें भी महान बनाने वाली है और दूसरों को भी, दूसरों की भी सेवा कराने वाली है। यह ऐसी सूक्ष्म सेवा है जिससे अनेक आत्माओं को चैन मिलता है। ज्ञान दे देना, संदेश दे देना, ये तो कोई भी कर सकता, आज का टेलीविजन भी करेगा और कर रहा है, लेकिन पूर्वज और पूज्य की स्मृति द्वारा वाइब्रेशंस देना ये कुछ महान आत्माएं ही कर सकती हैं। तो आज सारा दिन इन दोनों स्वरूपों को याद करते हुए, उसमें रहते हुए हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। हम बाबा से कंबाइंड हैं, क्योंकि पूज्य स्वरूप हमारा अकेला नहीं है, हम पूज्य हैं ही तब जब बाबा हमारे साथ है। तो बाबा हमारे से कंबाइंड है, वो छत्र छाया बनकर निरंतर हमारे सिर के ऊपर स्थित है। ये अभ्यास हम लगातार करेंगे, बार बार अपने ऊपर देखेंगे,
तो सर्वशक्तिवान अपनी किरणें मुझ में भर रहा है और वो मुझे याद दिला रहा है, तुम तो पूर्वज हो, पूजनीय हो। ओम।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, सुस्वागतम। दोस्तों, सुबह के इस सुंदर समय पर मन को प्रसन्न करने के लिए जरूरत होती है सुविचारों की। अमृत धारा जैसे सुंदर प्रोग्राम में हम सुविचार से ही शुरुआत करते हैं, और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत ही प्रसन्नता से इसकी राह देखते हैं। तो आज का सुविचार भी इसी तरह है। किसी ने बहुत खूब कहा है, यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। कितनी सुंदर बात, कितनी आसान बात कि मैं खुद भी प्रसन्न रहूं और जहां भी मैं जाऊं, जिससे भी मैं मिलूं, उसकी भी प्रसन्नता को बढ़ाओ। लेकिन दोस्तों, कई बार इस प्रकार से छोटी छोटी बातें भी हम उस समय भूल जाते हैं, और इसीलिए हमारे एक दूसरे के साथ के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं बनते। प्रसन्नता एक सचमुच ही सुंदर गहना है कहो, या एक सद्गुण है कहो, जिससे हम औरों को भी खुश रख सकते हैं और अपनी प्रसन्नता के कारण खुद को भी हमेशा तंदुरुस्त रख सकते हैं। देखिए ना दोस्तों, सुबह सुबह लोग मंदिर में जाते हैं, क्यों? क्योंकि भले वो जड़ मूर्ति होती है, लेकिन उनका प्रसन्न चेहरा, उनका प्रसन्न मुख देखते ही एक मन को शक्ति मिलती है। और यही मन की शक्ति अगर हम चैतन्य मूर्तियां भी सबको दे दे, तो मुझे लगता है कि सचमुच ही ये जग एक प्रसन्नता से भरा हुआ माहौल हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम हमेशा की तरह अमृत धारा प्रोग्राम में ज्ञानेश्वर जी का भी स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आपने आज जो सुविचार सुनाया उससे मन तो बहुत प्रसन्न हो गया और मेरा भी मन प्रसन्न हो गया, और हमारे श्रोतागण जो है उनका मन भी प्रसन्न हो गया होगा। ये प्रसन्नता के ऊपर जब बात चल रही थी तब मुझे वो चीज याद आई। ऐसे कहते हैं, प्रसन्न वदनम ध्यायेत शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्यों उसको नमन करते हैं? क्योंकि उसका वदन जो है वो हमेशा प्रसन्न होता है, इसलिए वो खुशी देता है। पुराने जमाने में, आजकल तो ईमेल है, व्हाट्सएप है, मैसेज है, लेकिन पहले जमाने में हम खत लिखते थे और उसके ऊपर हम लिखते थे कि श्री गणेश प्रसन्न, श्री लक्ष्मी प्रसन्न, श्री सरस्वती प्रसन्न, माता काली प्रसन्न, वगैरह वगैरह। उसका मतलब यह था कि देवता जो है वो प्रसन्न है, लेकिन क्या मैं प्रसन्न हूं इसके ऊपर कभी सोचते नहीं थे। हम प्रसन्न रहने का ठेका जो है, काम जो है, वो हम देवताओं को देते थे और ये भूल जाते थे कि मुझे प्रसन्न होना है। प्रसन्न चेहरा जो होता है वो खुद को भी प्रसन्न रखता है और दूसरों को भी प्रसन्न करता है। इसलिए मुझे लगता है ये जो कहा है कि खुद तो प्रसन्न रहना ही है, लेकिन दूसरों को प्रसन्न करना ये सर्वोत्तम है, और हम हर कोई ये प्रयास करे कि हम सर्वोत्तम बने। हम भी कोशिश करते हैं अमृत धारा के द्वारा जो कुछ अपने पास विचार है, ज्ञान है, उसको बांटने का, खुद प्रसन्न रहने का और दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास इस अमृत धारा कार्यक्रम के द्वारा हम भी करते हैं।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह सुबह प्रसन्नता बढ़ाने के लिए अमृत धारा सचमुच एक टॉनिक सिद्ध होता है। दोस्तों, सुविचार के साथ एक के ऊपर एक फ्री इस प्रकार से

का दबाव डाला जो उचित ही था। कई लोग ताने भी मारने लगे कि दोनों तो बड़े निठल्ले हैं, एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लिया और दोनों मित्र भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों के साथ अपनी मंजिल की ओर चलने के लिए उमंग था, उत्साह था। दोनों एक साथ जा रहे थे, रास्ता तो बड़ा लंबा था, तो उन्होंने क्या किया, एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे, इतने में क्या हुआ, इतने में एक साधु वहां भागता हुआ आ गया। वो साधु जो था वो तेजी से हाफ रहा था, लगता था कि ये बहुत डर गया है। तो मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तो तुम दोनों यहीं से ही वापस लौट जाओ। देखिए दोस्तों, दोनों निकले हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अपनी होशियारी साबित करने के लिए, और ऐसे ही समय पर उनको साधु के द्वारा ये इस प्रकार का उपदेश मिला। देखते हैं वो दोनों क्या करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दोनों मित्र अपनी होशियारी, अपनी क्षमता, अपनी पात्रता दिखाने के लिए चल पड़े हैं शहर की ओर, और इतने में साधु आकर उनको वापस जाने के लिए कहता है। अब हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों को आगे जाने से डर तो लग रहा था। दोनों के मन में घर लौटने का विचार भी आया, लेकिन उनको लगा कि सारे लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि आगे बढ़कर सचमुच क्या है वो देख ले। तो उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था। वे दोनों बहुत डरे हुए भी थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला दिखाई। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोलकर देखते तो क्या, उनकी खुशी का तो पारावार ही नहीं रहा। दोस्तों, उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी तो आसानी से पूरे ऐशो आराम से कट सकती थी। दोनों तो खुशी में झूम रहे थे। उनको लग रहा था कि कितना अच्छा फैसला किया हमने आगे बढ़ने का। दोनों को अपने फैसले पर बड़ा गर्व हो रहा था। इतना ही नहीं, वे उस साधु का मजाक भी उड़ा रहे थे। सचमुच कितना मूर्ख है वो साधु, अनजाने में हमको आकर मिला भी और आगे जाने से रोक भी रहा था। अब दोनों दोस्तों ने अपने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास से किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सकता है। मोती ने भी उसकी बात मान ली और पानी लेने के लिए चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके ही हो जाए तो फिर तो वो उसका परिवार नहीं, उसकी कुछ पीढ़ियां भी राजा बनकर जी सकती है। जैसे कि मोती के मन में लालच आ चुकी थी, वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसको कुएं के पास एक धारदार हथियार भी मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया। मोती मन ही मन अपनी योजना पर बड़ा खुश हो रहा था। पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से उसने वार कर दिया। दोस्तों, देखते देखते उसका जिगरी दोस्त हीरा वही के वही ढेर हो गया। अब मोती अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ घंटे चला, एक जगह पर रुका क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, बड़ी जोर की भूख लग रही थी। उसने अपनी पोटली खोली और जो भी खाने का कुछ सामान बचा था खाने लगा। लेकिन ये क्या, पूरा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वो तड़पने लगा। उसको ऐसा एहसास हुआ कि जब वह पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और थैला यानी डायन जैसी की तैसी पड़ी हुए थे। सचमुच उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है, वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए जैसे कि डायन साबित हुआ। ना वो डायन रुपए थैला वहां होता, ना उनके मन में लालच आता और ना ही वो एक दूसरे की जान लेते। सचमुच दोस्तों, यही है जीवन का सच। कभी कभी माया अर्थात धन दौलत संपदा, जिसको लोग कभी कभी माया भी कहते हैं, ये सारी बातें एकत्रित करने में हम सब इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नाते तक भूल देते हैं। आज हर एक के मन में ये डायन बैठी हुई है और सचमुच ही एक अच्छा मानव इसके कारण दानव बन बैठता है। इसलिए दोस्तों, यही कह सकते हैं कि न माया न राम। अगर माया हमारे मन में आ गई तो माया भी नहीं मिलती है और न मिलता है राम। राम अर्थात भगवान, राम अर्थात परमेश्वर, राम अर्थात मन को आराम। ज्ञानेश्वर जी, आपको क्या लगता है?
2: बहुत ही छोटी, सुंदर लेकिन प्रेरणादायी कथा है, हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। एक स्वार्थ जो है, स्वार्थ की भावना, वो क्या कर दिखाती है, यही इस कथा में दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि जो हमने सुविचार सुना और कथा सुनी, उसको अगर हम जोड़ दें तो अगर हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं या प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, तो ये मन में जो कुविचार आते हैं वो निकल जाते हैं। हमारे मन में हमेशा युद्ध होता है सुविचार और कुविचार का। दूसरों का कल्याण करना ये सुविचार है और खुद का स्वार्थ साधना ये कुविचार है। और जब ये कुविचार हावी हो जाता है, उसे ही हम माया कह सकते हैं। माया धन को भी कहते हैं और ये ऐसे गलत विचार जो मन में आते हैं उसे भी माया कहते हैं। और इस माया के ऊपर अगर विजय प्राप्त करनी है तो हम परम शक्तिमान भगवान की सहायता से हमारे मन में अच्छे विचार पैदा कर सकते हैं और खुद प्रसन्न रखने के बाद दूसरों को भी प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। खुद प्रसन्न होने के साथ साथ दूसरों को भी प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात, अगर संतुष्टता मन में नहीं है, लालच पैदा होती है, तो किस हद तक मानव पहुंचता है। और इसीलिए ही आज के मानव को दानव कहा गया है। दोस्तों, हम मानव से देवता बनना चाहते हैं, न कि मानव से दानव। और देवता हमेशा ही प्रसन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, इसी एक सुंदर निश्चय के साथ हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, दशम स्कंद का 14वां अध्याय बहुत ही सुंदर वर्णन भागवतकार करते हैं, और वो वर्णन जैसे कि शुकदेव जी जब राजा परीक्षित को बताते हैं तो हमारे सामने भी बहुत सुंदर चित्र तैयार हो जाता है। यहाँ शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और उनकी स्तुति करने के बाद उन्हें 3 बार परिक्रमा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और वे अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ज्ञानेश्वर जी, कई बार हम अपने लोक है इसकी भी चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं यहाँ 3 लोक है, कोई कहते हैं यहाँ 7 लोक है, इसके बारे में भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का स्थान जो है, ब्रह्मा जी का रहने का स्थान जो है, वो सत्यलोक है। ये यहाँ तो बहुत अच्छी तरह हमें समझता है। वैसे देखा जाए तो कई बार लोग कहते हैं, अगर कोई जिद्दी है तो लोग कहते हैं ये इतना जिद्दी है कि स्वयं ब्रह्मदेव भी नीचे आ गए तो भी ये नहीं सुधरेगा। अगर वो बहुत

0: ज्यादा ही जिद्दी है तो कहते हैं ब्रह्मदेव का बाप भी आ गया तो भी नहीं सुधरेगा। अब ब्रह्मदेव का यहाँ भूलोक पर आना और उनका निवास स्थान सत्यलोक में होना, इसमें कौन सी बात छिपी हुई है?
1: बिल्कुल भक्ति जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर कोई जिद्दी है तो ब्रह्मदेव भी नीचे आ गया, इसका मतलब कभी ना कभी ब्रह्मदेव नीचे आता है ये मान्यता है। और दूसरी बात, ब्रह्मदेव का बाप भी नीचे आ गया, वो भी मान्यता है कि ब्रह्मदेव का बाप भी नीचे आता है। अभी यहां देखिए, भगवान विष्णु भागवत कथा में जो वर्णन है, भगवान के रूप में भगवान विष्णु का दर्शन होता है और उनके नाभि से ब्रह्मा जी का निर्माण हो गया, इसका मतलब ब्रह्मा जी जो है वो पुत्र है भगवान के, विष्णु जी के पुत्र है, और इसलिए पिता और पुत्र और दोनों भी यहां आते हैं। अभी कैसे भगवान आएंगे? भगवान भागवत कथा में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी के रूप में भगवान आए और ब्रह्मा जी ऊपर थे, लेकिन खेलपाल करने के लिए, अपना कुछ माया दिखाने के लिए उन्हें नीचे आना पड़ा। तो ये सब चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि ब्रह्मज्ञान जो बोलते हैं, हम कहते हैं कि दूसरों को ब्रह्मज्ञान भले सुनाते हैं लेकिन खुद तो पत्थर के पत्थर ही रहते हैं, तो ब्रह्मज्ञान आया कहाँ से? ये ब्रह्मज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को बताया, ये भागवत कथा में भी वर्णन है, और ये ब्रह्मज्ञान भगवान ब्रह्मा के द्वारा हमें भी बताते हैं, चाहे रूप व्यास जी का हो चाहे रूप सुखदेव जी का हो, लेकिन ओरिजिन जो है वो तो ब्रह्मा ही है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल। और ज्ञानेश्वर जी, आगे बहुत सुंदर वर्णन है कि ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पर पहुंचा दिया था और श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और फिर वे यमुना जी के पुलीन पर आए, जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। अभी सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि जगत के सभी जीव माया से मोहित होते हैं और शास्त्र तथा आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने को आत्मा निरंतर भूल जाते हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते। तो ये आत्मज्ञान हम बहुत ऊंचा समझते हैं। अगर कोई ऐसी बातें करने लगा तो कहते हैं, भाई आप क्या इतने आत्मज्ञानी हो गए हो? तो ज्ञानेश्वर जी, यहाँ इतना सुंदर बताया गया है कि आचार्यों के, शास्त्रों के बार बार समझाने पर भी मनुष्य आत्मा को भूले हुए है और यही माया है।
1: बिल्कुल। देखिए, हम खुद आत्मा है, हर किसी को पता है। हम कहते हैं मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई, मेरी आत्मा दुखी हो गई, आत्मा भटकती है। आत्मा शब्द का प्रयोग हम रोज बोलचाल के जिंदगी में करते हैं, लेकिन हम आत्मा है ये भावना, ये विश्वास, ये कभी कभी हम भूल जाते हैं या बहुत बार भूल जाते हैं। कभी कभी याद आता है कि हम आत्मा हैं, लेकिन ज्यादातर याद आता है कि हम देह हैं। और इसलिए शास्त्रकार भागवतकार बताते हैं कि जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं, तो क्या होगा, हम देह से अलग है। नैनम चिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः, ये भगवत गीता में भी वर्णन है। तो हर कोई कहता है, शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप आत्मा हो, आप देह नहीं हो। लेकिन जब देह समझने लगते हैं तब सब विकार आते हैं और फिर क्या होता है, दुख भी आता है। लेकिन जब हम आत्मा समझते हैं, क्योंकि आत्मा को दुख क्षति नहीं कर सकता, और इसलिए जब हम आत्मा समझते हैं तो हम दुख से परे होते हैं, ये भाव उसमें है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बहुत सुंदर बात ज्ञानेश्वर जी आपने बताई। हम आत्मा है यह विश्वास जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्मृति हम भूल जाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है, इतना ही नहीं, कई प्रकार का जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें भी अध्यात्म शब्द में भी आत्मा के शब्द छिपा हुआ है। लेकिन देह को देखने की आदत कहो, देह को देखने का आकर्षण कहो, और उसके कारण ही हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। और आत्मा का भी बहुत ही सुंदर वर्णन भागवतकारों ने यहाँ किया है। दोस्तों, आत्मा शब्द कहने से केवल काम नहीं होगा, लेकिन उस स्मृति में कुछ समय तक जब हम मन को स्थिर करते हैं, तभी हमें वो सारी बातें जो है, वो सारी प्रसन्नता जो है, जो भी यहाँ शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया है, क्योंकि ये सारा भागवत भी इसके ही कारण बना, ताकि राजा परीक्षित को आत्मज्ञान हो, और उसके लिए ही ये सारी बातें हुई। लेकिन हमें ये लगता है कि केवल राजा परीक्षित को आखिर आत्मज्ञान हो गया। हम सब भी तो परीक्षित है, हमें भी तो आत्मज्ञान होना जरूरी है, केवल एक माध्यम के द्वारा, राजा परीक्षित के द्वारा भागवतकारों ने ये बात बताई है। ऐसा ही है ना ज्ञानेश्वर जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो राजा परीक्षित को मृत्यु का भय था, श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद वो मर जाएंगे। अभी जैसे मृत्यु का भय है, और मृत्यु का भय दूर करने के लिए मुख्य रूप से भागवत कथा सुनाई गई है, ऐसे सब मानते हैं और लिखा भी है। तो मृत्यु का भय कैसे चला जाएगा? जब आत्मभान आएगा, देहभान निकल जाएगा, तब मृत्यु का भय निकल जाएगा। क्योंकि पता है कि ये देह जो है नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो स्थित है। आत्मा हमेशा रहती है और देह बदलती रहती है। तो ये जब भावना मन में आती है, तब क्या होगा? जो भय है वो निकल जाएगा। और सबसे बड़ा भय हम मानते हैं, किसी को भी अगर सबसे बड़ा भय है, वो है मृत्यु का। और जब मृत्यु का भय निकल जाता है, तब हम निर्भय हो जाते हैं। और निर्भय होने के लिए, दूसरों को करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण हो गया है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ये तो बड़ी ऊंची बात है, हमारी रोज की जिंदगी में उसको इतना सब गहन चर्चा करने की क्या जरूरत है। लेकिन सब कुछ जो दुख होता है या प्रसन्नता होती है, सारा मन का खेल है। और मन में अगर ये विश्वास है, स्मृति है कि हम आत्मा है, तो इन सब दुखों से हम परे हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जरूर मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। ज्ञानेश्वर जी, अभी हमने जो कथा देखी उसमें हमने संपत्ति को माया कह दिया, और अभी यहाँ जो भागवतकार बात बता रहे हैं वो माया तो जीव और माया का किस प्रकार से संबंध है वो कह रहे हैं। मुझे लगता है कि संपत्ति या साधनों को माया कहना तो फिर ये हो जाएगा कि उस माया से तो छुटकारा पाना बड़ा आसान है, क्योंकि साधु संत बहुत सारे विद्वान लोगों ने भी उससे तो विजय जरूर प्राप्त की है। लेकिन ये जो माया है, अर्थात जो नहीं है उसको है इस प्रकार से आभास होना, इस माया पर जीत पाना इतना आसान नहीं है। और इसीलिए ही आत्मा का ज्ञान राजा परीक्षित को शुकदेव जी दे रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि सबसे बड़ा और सबसे अहम जो भय होता है हर एक जीव आत्मा को, वो है मरने का डर, मृत्यु का डर। और इसीलिए उस पर जीत पाना अर्थात मृत्यु का भय न होना, मृत्यु एक ऐसी क्रिया है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो शरीर का त्याग होना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यही भागवतकार बताना चाहते हैं।
3: बिल्कुल।
2: फिर आगे शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, और पुत्र से, धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तुएं अपने आत्मा को प्रिय लगती है। इसलिए कारण यह है कि सभी प्राणियों का अपने आत्मा के प्रति जैसा प्रेम होता है, वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन, गृह आदि में नहीं होता। अब यहाँ भी ज्ञानेश्वर जी, एक आम आदमी की तरफ से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि वैसे देखा जाए तो आत्मा को तो कुछ जरूरत ही नहीं है, देह को सब जरूरत है, वस्तुएं देह को चाहिए, साधन देह को चाहिए, संपत्ति देह को चाहिए, आत्मा को तो बस परमात्मा की याद चाहिए। और ऐसा होते हुए भी यहाँ बताया है कि पुत्र, धन, गृह आदि में तो नहीं प्रेम होता, लेकिन उनकी जो अभिलाषा होती है वो इस प्रकार की होती है। इसका मतलब क्या ले सकते हैं हम?
3: भक्ति जी, मुख्य रूप से जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, जिसे हम कहते हैं कि जन्म हो गया, अभी आत्मा हर प्रकार से प्रयत्न करती है, प्रयास करती है कि उसे सुख मिले। वो सुख मिलने का साधन जो है वो देह है। अगर अच्छी चीजें खाने को मिले तो वो एक सुख है, अच्छी चीजें देखने को मिले वो एक सुख है, अच्छी चीजें सुनने को मिले वो एक सुख है, अच्छे स्पर्श मिले वो भी एक सुख है। तो ये जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जो है उनके द्वारा आत्मा सुख लेने का प्रयास करती है, और फिर क्या होता है, वो इतनी फंसी रहती है कि वो सुख के बजाय दुख ही अनुभव करती है। और इसलिए शास्त्रों ने कहा कि करती तो प्रयास देह के द्वारा सुख लेने का, लेकिन सुख मिलता नहीं, उसे दुख ही मिलता है। लेकिन अगर वो आत्म स्वरूप में स्थित होती है, देह को भूल जाती है, तो उसे सुख है, और इसलिए कहते हैं आत्म सुख मिला, आत्म साक्षात्कार हुआ। आत्मा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, तो शुरुआत होती है देह के द्वारा सुख प्राप्त करने की। उसमें जब वो असफल होती है तब क्या होता है, वो आत्म स्थिति में स्थित होके सुख पाने का प्रयास करती है। और शास्त्रों में उसका ही आधार बना के कहा है कि आत्मा सर्वश्रेष्ठ है। जब आत्मिक भान में हम रहते हैं, देहभान को भूल जाते हैं, तब हमें सच्चा सुख मिलता है। और संत महंत जो हमारे हैं, साधु हुए, सन्यासी है, वो भी यही कहते हैं कि देहभान को छूटने के बाद परमात्म भान में आत्म भान में जब हम स्थित होते हैं तब उसे सुख मिलता है और हर कोई सुख मिलने का ही प्रयास करता है।
2: बिल्कुल, ज्ञानेश्वर जी आपने बहुत ठीक कहा। मुझे लगता है इसका यही मतलब है कि आत्मा प्रकृति के अधीन हो जाती है, देह अर्थात प्रकृति। प्रकृति जो है वो आत्मा को अधीन करती है, और जैसे कि प्रकृति के लिए ही सब कुछ चाहिए, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो वैभव हो, साधन हो, संपत्ति हो, और इसीलिए ये फर्क जो है आत्मा और प्रकृति के बारे में मन में वो स्मृति होना, वो स्मृति विस्मृति में बदल जाती है। मुझे लगता है इसके कारण ही हम सब राजा परीक्षित जैसे बन जाते।
3: बिल्कुल, क्योंकि आत्मा जो है उसे व्यक्त होने के लिए शरीर का आधार लेना जरूरी है। अगर एक दूसरे से रिश्ते निभाने हैं तो भी आत्मा शरीर में प्रवेश करना जरूरी है, और इसलिए शरीर के बिना आत्मा असमर्थ है कुछ व्यक्त करने के लिए। आपने जैसे कहा कि प्रकृति और पुरुष, और प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंगी है और पुरुष जो है वो पुल्लिंगी है, और इसलिए शायद हमारे पूर्वज परंपरा जो थी उसमें पुरुष सत्ताक पद्धति थी, पुरुष सत्ताक पद्धति थी और स्त्रियों को बहुत कम दर्जा दिया जाता था। उसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य मुझे ये लगता है कि जब आत्मा पुरुष, पुरुष का नाम भी आत्मा है, या आत्मा को पुरुष नाम से भी जाना जाता है, और प्रकृति जो है वो स्त्री के रूप में गाई जाती है, तो प्रकृति अगर पुरुष के ऊपर हावी हो जाती है तो आत्मा दुखी होता है, पुरुष दुखी होता है, और पुरुष जब प्रकृति के ऊपर हावी होता है तब वो पुरुष सुखी होता है। और यही ख्याल, यही विचार मेरे ख्याल से शास्त्रों ने हमें दिया है।
2: बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात। दोस्तों देखिए ना, हम कितने सेकंड में ये बात कह देते हैं कि पुरुष सत्ताक है, पुरुषों का है, लेकिन अगर हम कीनली देखें, अगर हम अच्छी तरह से सूक्ष्म भाव से देखें, तो कहने का, शास्त्रों का कहो या विद्वान संत महंतों का कहो, यही भाव है कि हम आत्माएं देह के अधीन न हो, हम अधिकारी बनकर काम करें। दोस्तों लगता है कि बहुत ही हेवी डोज है, लेकिन इसका एक शॉर्ट अगर हम हमेशा के लिए ध्यान में रखें तो यही है कि हम खुद आत्मा है, ये भाव विस्मृत न हो, बस फिर तो हमारी जिंदगी सदा ही प्रसन्न रहेगी। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर से मिलेंगे अमृतधारा में, रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। हम जानते हैं कि आप बहुत बेसब्री से हमारा इंतजार करते हैं। विश्वास कीजिए, हम भी बहुत बेसब्र रहते हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए प्राण वायु का कार्य करता है। आप यूं ही प्राण वायु हमें प्रदान करते रहिएगा ताकि हमारी अर्थात समाधान की आयु बहुत लंबी हो। हमें दिल से आपसे मिलने की हमेशा इच्छा रहती है, कामना रहती है, ताकि हम मिल करके आपस में समस्याओं का समाधान निकाल सकें। आइए इस समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आदरणीय भ्राता जी के स्वागत के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: भ्राता जी। बहुत सारे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेल्स, पत्र आदि आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आज शुरुआत ही की कि आपका प्यार हमारे लिए प्राणवायु है। आप यूं ही प्यार बरसाते रहिए ताकि समाधान के कार्यक्रम को हम लगातार आगे बढ़ाते रहें। और बहुत खुशी होती है भ्राता जी जब लोगों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, जब वो सुनाते हैं कि हमने ये प्रयोग किया और हमें इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त हुआ, तो बहुत दिल से खुशी होती है।
1: बिल्कुल, आज ही मेरे पास दो ऐसे फोन कॉल आए
0: जी,
1: जिन्होंने केवल धन्यवाद देने के लिए फोन किया था। मैंने उन्हें कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, उसको दो जिसने तुम्हारी समस्याएं हल की हैं। एक को नौकरी नहीं मिल रही थी, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई। अब उन्होंने पूछा था कि मन चाही जगह में जाना चाहती हूँ तो कैसे हूँ। एक की ऐसी बीमारी का केस था, डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमें भी बहुत दिल से प्रसन्नता होती है ये देखकर कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहे हैं लोग
0: जी,
1: और
0: जी।
1: जो हमारे ईश्वरीय शक्ति और स्वमान के प्रयोग हैं, उनमें सचमुच एक जादुई शक्ति है और लोग उसका प्रयोग करके अनेक समस्याओं से मुक्त हो रहे हैं।
0: प्रताप जी, विशेष करके ये एक जो एस्पेक्ट है जिसके ऊपर शायद लोगों का ध्यान ही नहीं था कि अध्यात्म भी एक तरीका हो सकता है अपनी समस्याओं को दूर करने का, या मेडिटेशन एक सुंदर साधन हो सकता है, या परमात्मा का सानिध्य भी एक साधन हो सकता है। शायद इस ओर किसी ने ध्यान दिया ही नहीं था।
1: हाँ, इसका कारण ये था कि मनुष्य को आज तक मन की शक्ति का बड़ा अल्प ज्ञान रहा है, और अब हमें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ये मालूम हो गया कि वास्तव में हमसे निकले हुए कमजोर वाइब्रेशंस, नेगेटिव वाइब्रेशंस समस्याओं में वृद्धि कर देते हैं। समस्याएं बहुत कारणों से आती हैं, कभी कभी ऐसे कारण भी होते हैं जिनको मनुष्य जान भी नहीं पाता है, लेकिन अगर हम अपने मन की शक्तियों को बढ़ा देते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस पावरफुल हो जाते हैं और उनसे समस्याओं का फोर्स ढीला हो जाता है। सच तो यही है कि जैसे दो पहलवान आपस में कुश्ती कर रहे हों, एक की शक्ति बहुत बढ़ जाए तो दूसरा आप डाउन फील करने लगता है। तो जब हम अपनी शक्तियों को बढ़ा देते हैं तो समस्याओं की शक्ति, उनका फोर्स बहुत कम हो जाता है। इसलिए समस्याओं के समाधान के लिए हर मनुष्य को जानना चाहिए कि हम अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाएं, और मन की शक्तियां तब बढ़ती हैं जब हम अपने मन को अपने परम पिता सर्वशक्तिवान से जोड़ देते हैं। मन की शक्तियां तब बढ़ती हैं जब हम व्यर्थ और निगेटिव थिंकिंग से मुक्त हो जाते हैं। मन की शक्तियां तब बढ़ती हैं जब बहुत सुंदर चिंतन हमारे मन में चलता है, हम बहुत अच्छा रेगुलरली मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, दूसरों के लिए अपने चित्त में शुभ भावनाएं रखते हैं। इसको स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, अध्यात्मवाद कहा जाता है, रूहानियत कहा जाता है। तो यही शक्ति वास्तव में सर्वोपरि है और इससे हर चीज का समाधान होते हम देख रहे हैं।
0: मैं पहले मेल की ओर आपको ले चलता हूँ। ये नीलेश जी लिख रहे हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है, मैं कैसे अपने कॉन्फिडेंस को फिर से हासिल कर सकता हूं?
1: देखिए, ये ऐसी समस्या है कि बहुत विद्यार्थियों में, युवा वर्ग में ये समस्या बढ़ती जा रही है
0: जी।
1: मेरे पास भी कई फोन कॉल आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत कहते हैं कि हमारा मनोबल कम हो रहा है, हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत रहता है, हमें अपने कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये हो पाएगा भी या नहीं। एक का तो ऐसा था, देखिए उसने ये हमारे प्रयोग किए बहुत अच्छे अच्छे और उसका अपॉइंटमेंट हो गया। वो बहुत खुश थी कि मैं तो सोचा भी नहीं था, मैं तो सबसे पीछे थी, लेकिन सब जो कैंडिडेट थे वो पीछे रह गए, मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ। लेकिन अब उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, हालांकि कल ही मंडे है, कल अपॉइंट वो उसको ज्वाइन करना है, तो उसको हो रहा था कहीं कोई और न ले ले जगह। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो चुका है, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, अब तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट काइंडली अब सोमवार कल फोन किया था, मैंने कहा सोमवार को वहां जाना और निश्चिंत होकर एंजॉय योर लाइफ। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होने की बातें बहुत सामने आ रही हैं। इसका कारण यही है कि मनुष्य अपने को नहीं पहचानता, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा रहता है, इसलिए अपनी शक्तियों का ज्ञान उसे बहुत कम है, यानी उसको अविद्या होती जा रही है उसकी, और इसलिए वो छोटी बातों में कहीं निराश होता है, कहीं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता कि ये काम हम ऐसे कर पाएंगे, ये चीज ऐसे होगी। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ रेस्पेक्ट,

0: को पहचानते नहीं और छोटी मोटी बात में टेंस हो जाते हैं। हम इतने शक्तिशाली हैं कि छोटी मोटी बातें तो हमारे लिए खेल हैं, परंतु अपनी शक्तियों को भूलने से छोटी बातें बहुत ज्यादा तनावग्रस्त कर देती हैं मनुष्य को। तो मेन रूप से सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रैक्टिस की जाए कि हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी। ऐसी अपने को फीलिंग दी जाए, आई एम पावरफुल, आई एम मास्टर ऑलमाइटी। दूसरी चीज, हम भगवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। तो हमारे अंदर की छुपी हुई ग्रेटनेस छुपी हुई है। हर मनुष्य के अंदर बहुत महान चरित्र, प्योरिटी, नैतिक मूल्य सब मनुष्य के अंदर ही हैं। सब यदि अपने को झांक कर देखें तो पाएंगे, आंख बंद करके हर मनुष्य को 2 मिनट 3 मिनट अपने अंदर में झांक कर चेक करना चाहिए, तो पता चलेगा हमारे पास सत्यता है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास बहुत अच्छा प्रेम है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा शुद्धि है, हमारे अंदर महान विचार हैं, हमारे अंदर दूसरों को सुख देने की भावनाएं हैं, हमारे अंदर क्षमा भाव है, हमारा मनोबल भी बहुत बड़ा चढ़ा है। जस्ट अपने को ऑब्जर्व करें साइलेंटली, बिल्कुल चाहे आंख बंद कर ले, अपने पे एक दृष्टि डालें और रियलाइज करें कि भगवान की संतान होने के कारण हमारे अंदर भगवान के सब गुण हैं।
1: दादा जी, ऐसा लगता है कि हम दूसरों की ओर देखते हैं, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं, दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स को तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, और साथ ही शायद जैसे आप कह रहे हैं कि अपने गुणों को देखने के बजाय हम अपने अवगुणों को ज्यादा देखते हैं, इसी कारण शायद लो कॉन्फिडेंस।
0: दोनों बातें हो रही है, मनुष्य का ध्यान दूसरों की ओर ज्यादा है, अपनी ओर तो जैसे है ही नहीं, और अगर है भी तो उसे अपनी कहीं ना कहीं बुराई दिखाई देती है। तो राजयोग मेडिटेशन जो है, जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो हमें अपने अंदर छुपे हुए देवत्व का, मॉरल वैल्यूज का, शक्तियों का क्लियर आभास होने लगता है और तब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। तो मैं सभी से कहूंगा, विशेषकर युवा वर्ग जिसमें इस चीज की बहुत कमी देखी जाती है आजकल, सब में नहीं, कोई बहुत कॉन्फिडेंट भी मिलते हैं, कहीं कहीं बड़ों में भी, मान लो किसी को कोई बीमारी है और बीमारी चलती जा रही, इलाज हो रहा है लेकिन कोई उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मनुष्य अपना कॉन्फिडेंस खो देता है कि भाई अब तो शायद बाजी हाथ से निकलती जा रही है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट विल ब्रिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसलिए जिनको भी ये कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना है वो सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन का ये भी एक हिस्सा है और हमारे यहाँ ये एजुकेशन बहुत अच्छी तरह से दी जाती है अपने को ऑब्जर्व करने की, इससे बहुत सुखद फीलिंग रहेगी। मनुष्य क्या है कि अपनी शक्तियों को सारा दिन यूज तो कर रहा है, लेकिन वो अपने को थोड़ा भी समय रोज नहीं दे रहा है जिससे वो एनर्जी को फिर से कलेक्ट कर सके, उसे गेन कर सके। अभी जैसे हम सारा दिन काम करें लेकिन हम भोजन भी ना खाएं, हम चाय भी ना पिएं, जो चाय पीते हैं हम मान लो सोए भी नहीं और हम काम ही करते रहें 2-4 दिन, तो 2-4 दिन में हमारा हाल तो बुरा होना ही है। तो हमें एनर्जी रीगेन करने की हर फील्ड में जरूरत होती है
1: जी।
0: तो हम मेडिटेशन के द्वारा, पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा, सेल्फ रेस्पेक्ट के द्वारा एनर्जी गेन करते हैं और इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल दादा जी, इसी प्रकार का एक फोन कॉल हमारे पास आया था, ये है जगेश्वरी जी कोरबा से, और ये कहती हैं कि मैं बीएड की स्टूडेंट हूँ और मुझे बोलते समय बहुत ही हकलाहट होती है, मैं झिझकती भी हूँ जब मेरे टीचर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जब मैं जवाब देने के लिए खड़ी होती हूँ तो बहुत झिझक के कारण मैं आंसर नहीं दे पाती और इसके कारण साथियों में मैं मजाक का पात्र बन जाती हूँ, मैं कैसे अपने इस झिझक को, अपने इस लो कॉन्फिडेंस को, अपने इस कमी को दूर करूँ?
0: देखिए, जहाँ हकलाहट की बात है, बच्चों में तो हंसने बहलने का, चाहे उसे जोकिंग कहें या
1: ये बीएड कर रही हैं,
0: एंटरटेनमेंट का साधन होता है, कोई उन्हें ऐसा स्टूडेंट मिलना चाहिए जो इस तरह का करे तो उनका एंटरटेनमेंट हो, बच्चों में ये तो नेचुरल प्रवृत्ति होती है। पर जहाँ तक हकलाने की बात है, देखिए ये एक मेडिकल एस्पेक्ट है और इसका इलाज तो मेडिकली होना चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल वाले इसके बारे में कुछ समाधान दे नहीं पाते हैं। तो मैंने 2-3 केसेज में जो प्रयोग शुरू कराए हैं वो मैं इनके सामने भी रख देता हूँ, वो बहुत अच्छे प्रयोग हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि इनके अंदर जो एक झिझक पैदा होती है
1: जी।
0: इसके लिए इन्हें थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए।

0: इनका होता यह है कि क्लास में जैसे ही खड़े हुए और नर्वस हो गए, इनको फिर जो भी याद था वो भी भूल जाता
1: होगा।
0: तो थोड़ा बाहर जाकर, कहीं भी जाकर, एकांत में जाकर थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और हमारे स्पिरिचुअली तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा था। प्रारंभ में भाषण करने सीखे, बहुत लोगों ने सीखे थे। किसी को ऐसे ही झिझक होती थी तो फिर जैसे जैसे बोलने की प्रैक्टिस शुरू की तो झिझक निकलती है। और उसमें दो चीजें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हम ये सीखते हैं और सिखाते हैं कि मैं तो हूँ एक महान आत्मा। देखिए ये हमारा स्वमान है, और सामने जो हमारे बैठे हैं, या इनको सोचना चाहिए हमारे आसपास जो स्टूडेंट्स बैठे हैं या जो हमारे शिक्षक लेक्चरार हैं, वो आत्माएं हैं। वो बैठे बैठे ये प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरा, मैं जो उत्तर दूंगी वो परफेक्ट होगा, और अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ऐसा अपने को थोड़ा ओपन करें। इसकी थोड़ी मेंटेलिटी इनको बनानी पड़ेगी। एक तो जो मैं उत्तर दूंगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, और सब बच्चे हंसेंगे, बहुत अच्छा, मैं इनको खुशी दे रही हूँ, मैं इनका एंजॉयमेंट कर रही हूँ, इसलिए आई हैव आल्सो टू एंजॉय एवरीथिंग। तो खुद भी मुस्कुरा दें, मुस्कुराने की आदत डालें, और बच्चों को हंसता देखकर परेशान न हो, बहुत अच्छा हो रहा है, वाह मैं खड़ी हुई तो देखा सब खुश तो हो गए, नहीं तो डरे डरे बैठे थे। ऐसे करके इनको अपनी झिझक निकालनी है। और सेल्फ रेस्पेक्ट, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, सेल्फ रेस्पेक्ट की प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, मनुष्य का भय समाप्त होता है। भय समाप्त होने के लिए एक छोटी सी राय जो मैं सदा देता हूँ, फिर से मैं इनको भी देना चाहता हूँ, कि जैसे ही ये सवेरे उठें, उठते ही पहला संकल्प करें, मैं भगवान की संतान हूँ, वो सर्वशक्तिवान हैं, इसलिए मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और निर्भय हूँ, निर्भय हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर संपूर्ण आत्मविश्वास है। ये सवेरे उठते ही 7 बार संकल्प दिया करें अपने को। तो सवेरे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है, तो वो इन संकल्पों को एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा, और वैसी ही मनोस्थिति तैयार कर देगा। रही बात हकलाने की, देखिए ये ऐसी चीज है कि कईयों को बचपन से होता है। अभी मेडिकल साइंस तो कहेगी भाई इसका कोई उपचार नहीं है, तो बचपन से है, थोड़ी बोलने की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन फिर भी जो हकलाते हो तो हकलाते ही हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो हमें पानी को चार्ज करके पीना है, इसको ये करना है कि कम से कम 5 बार थोड़ा थोड़ा पानी भी ये चार्ज करके पिएंगी। और चार्ज करने का तरीका है कि पानी गिलास में लिया, उस पर नजर डाली, और ये 5-7 बार संकल्प करेंगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, भगवान के बच्चे हैं हम, वो पवित्र है, परम पवित्र है, वो पवित्रता का सागर है, therefore we are also supremely pure souls। तो मैं supremely pure soul हूँ, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, परम पवित्र हूँ। 7 बार संकल्प करें तो पानी में पवित्र वाइब्रेशंस नैनों के द्वारा भर जाएंगे, और ये पानी एक हीलिंग वाटर हो जाता है, ये बहुत बड़ी एनर्जी को अपने में समा लेता है। फिर इसको पिए और संकल्प करें कि इससे मेरा ये जो वॉइस है क्लियर हो जाए। एक ये संकल्प इन्हें करना और पानी पीना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, हाथों को ऐसे मलें और अभ्यास करेंगे 3 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो हाथों से शक्तियाँ निकलने लगेंगी, वाइब्रेशंस निकलेंगे, और ये दोनों यहाँ रख दें, बिल्कुल 1 मिनट रखें, आंखें बंद कर लें, और इससे इसके जो ग्लैंड्स हैं, जो वॉइस को कंट्रोल करने वाली अंदर एक तंत्र शक्ति है, वो ठीक से काम करना शुरू कर दे, खुल जाएगा सब कुछ। 1 मिनट करें, ऐसा 5 बार करें, यानी 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट रात को, अपने इस हिस्से को एनर्जी दिया करें, और संकल्प करें कि मेरा हकलाना इससे बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसे बहुत मदद मिलेगी, और निश्चित रूप से अगर ये मेडिटेशन करके, थोड़ा सा राजयोग का अभ्यास करके ये अभ्यास करेंगी एनर्जी देने का, तो इनका हकलाना बंद हो जाएगा, लोगों को भी चमत्कार लगेगा। क्योंकि मैंने कुछ 2-4 प्रयोग ऐसे कराए हैं, एक माता का तो ऐसा केस था जिसकी आवाज चली ही गई थी, बचपन से नहीं था लेकिन उसकी आवाज चली गई, उसने बहुत पैसा भी खर्च किया और 3-4 साल मेहनत की, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे 3-4 प्रयोग उसको जब कराए गए, तो ये बहुत ही सुखद समाचार था। वो हमारे पास ही यहाँ आके रही थी, गुजरात की एक बहन थी। 10 दिन में उसकी वॉइस फिर से लौट आई। उसमें हमने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कराया। ये प्रयोग इनको मैं बता देना चाहता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग ये है, जैसे ही ये सवेरे उठेंगी, एक तो उठते ही वो हम पर अभ्यास करते ही हैं, लेकिन पहले 10 मिनट में ये एक विजन बनाएं, एक चित्र देखें कि मैं अपनी क्लास में खड़ी हुई हूँ और मैं फ्लुएंटली बोल रही हूँ, बिल्कुल प्रभाव युक्त मैं बोल रही हूँ, जैसे मेरा हकलाना बंद हो गया है। बोलते हुए अपने को देखें, वो जो रुकावट हो जाती है वो नहीं है, बिल्कुल क्लियर वॉइस है मेरी, ये भी देखा करें। 1 मिनट ऐसा करेंगी तो सबकॉन्शियस माइंड भी इस हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा मदद करेगा, इस तरह ये इससे मुक्त हो जाएंगे।
1: बिल्कुल प्रताप जी, मैं आपको अगले मेल की ओर ले चलता हूँ। ये हमारे पास आया है धनबाद से। अलका मेहता जी लिखती है, कहती है, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने शराब की होम्योपैथी दवा के बारे में जिक्र किया था, मेरे पति भी बहुत शराब पीते हैं, कृपया बताएं कि ये दवा मुझे कहां से मिल सकती है। हाँ। और साथ ही आगे भी इन्होंने कुछ पूछा है ब्रता जी, कहती हैं कि मुझे भी कुछ समय से डिप्रेशन है और मैं होम्योपैथी की दवा भी ले रही हूं, लेकिन कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, मुझे रात को नींद भी नहीं आती, तो कृपया इसका भी समाधान बताएं।
0: हाँ, ये दोनों ही समस्याएं हमारे परिवारों में और समाज में एक भयानक रूप लेती जा रही है, क्योंकि दुनिया में टेंशन बढ़ रहा है, तो टेंशन को रिलीज करने का लोग यही साधन समझते हैं कि भाई नींद अच्छी आ जाएगी, कम से कम सुखी सो तो जाए, इसलिए आप पी ली जाए रात को, तो ये प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। यद्यपि इससे क्राइम भी बढ़ रहा है समाज में, लेकिन टेंशन को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग लोग कर रहे हैं, और फिर इसके इतने आदि हो जाते हैं कि चाहते हुए भी इसको नहीं छोड़ पाते हैं। किसी की किडनी खराब होती है, किसी का लीवर खराब होता है, किसी के हार्ट पे बुरा असर आता है, किसी के ब्रेन पर बुरा असर आता है, और जल्दी ही लोग काल के ग्रास में समा जाते हैं। ये भी बहुत सारी घटनाएं रोज रोज सुनने में आती हैं, लेकिन मनुष्य इसके पराधीन हो जाता है। देखिए, बुद्धिमान मनुष्य, एक शक्तिशाली मनुष्य जो सारे संसार पर राज करना चाहता है, जो संसार को अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है, वो शराब के अधीन हो जाता है, शराब की मुट्ठी में आ जाता है। तो मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए। तो हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स ने इसके लिए बहुत दवाइयां निकाली हैं। हमारा ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल भी है माउंट आबू में, वहां पर भी हमारे होम्योपैथी डॉक्टर्स इसका पूरा कॉम्बिनेशन तैयार करके देते हैं, इसकी विधि भी सिखा देते हैं, पूरा एक लिखित का पर्चा दे देते हैं, आप इसको अपने वहां पर तैयार करो और दो। उसमें अलग अलग व्यसन की अलग अलग दवाइयां हैं, शराब छुड़ाने की अलग,
1: तो पूछ रही है कि ये दवा मुझे कहां मिलेगी।
0: तो इन्हें क्या करना चाहिए कि हमारा जो धनबाद से है ना, धनबाद में जो हमारा आश्रम है, वहां ये और वहाँ की बहनों से कांटेक्ट करें, तो वहाँ के लोग यहाँ आते ही रहते हैं, तो यहाँ के डॉक्टर से, होम्योपैथी डॉक्टर से वो शराब छुड़ाने की शीशी ले जाएंगे, और इसको पानी में डाल के भी दिया जा सकता है, इसको सब्जी में डाल के भी दिया जा सकता है, और यदि उनकी इच्छा है छोड़ने की, तो ऐसे परिणाम बहुत सुखद सामने आए हैं कि अगर किसी मनुष्य की इच्छा हो शराब छोड़ने की, तो ये दवाई बहुत जल्दी उसको शराब की इच्छा से मुक्त कर देती है। अब रही बात इनके डिप्रेशन की और नींद ना आने की, सचमुच ये महारोग बनता जा रहा है संसार के लिए, और दिनों दिन ये इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और जो गोलियां हैं डॉक्टर्स के पास वो इसमें बहुत कारगर सिद्ध नहीं हो रही। किसी का थोड़ा सा है तो उसको ठीक कर देती है, लेकिन किसी को बहुत चिंता करने की आदत ही है, तो गोली खाते जा रहे, 2 दिन भी छोड़ दी तो फिर से गहरा डिप्रेशन हो जाता है। तो इसका तरीका स्पिरिचुअली है, क्योंकि ये डिप्रेशन मन में है, ये ब्रेन में नहीं है, ब्रेन पर तो उसका इफेक्ट आया है, तो कुछ ना कुछ चीजें डैमेज हो गई हैं, कुछ डेफिशिएंसी हो गई है, और डॉक्टर्स उसको भरने की दवाई दे देते हैं ताकि ब्रेन थोड़ा फ्रेश रहे, एनर्जेटिक रहे। लेकिन पीछे से जो प्रभाव आ रहा है ना निगेटिव एनर्जी का, अनकॉन्शियस माइंड से लगातार निगेटिव एनर्जी का प्रभाव जा रहा है ब्रेन को, तो वो तो बहुत पावरफुल है, दवाइयां उसके आगे फेल होती नजर आ रही हैं। तो हमें इस नेगेटिव प्रवाह को रोकना है, तो मैं इसके लिए सजेस्ट करता हूँ, इनको चाहिए कि एक तो अपने को बहुत पॉजिटिव करें, थोड़े पुण्य कर्मों को बढ़ाएं अपने, क्योंकि पहले के ही पाप बहुत ज्यादा हैं मनुष्य के, पाप के कारण ही, कुछ गलतियों के कारण ही ये डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं लोग। और सवेरे उठकर ये लिखें, उठते ही लिखेंगी 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे इन्हें बहुत एनर्जेटिक फीलिंग होगी 108 बार ये लिखें, ताकि इनका मन पूरी तरह इस बात में एकाग्र हो जाए। और रात को सोने से पहले 108 बार ये लिखेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। हमारे केंद्र पर जाकर इसका ज्ञान ले लें कि मास्टर सर्वशक्तिवान और महान आत्माएं हम क्यों हैं। हालांकि मैंने बता दिया है, हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे गाय के बच्चे में गाय के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, शेर के बच्चे में शेर के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, वैसे ही हम में भी भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं। उसकी संतान होने के कारण हम बहुत महान आत्माएं भी हैं। तो ये रात को लिखेगी तो 5-7 दिन में इसको नींद अच्छी आने लगेगी। उसके बाद कुछ काम नहीं करना, बस लिखा और लेट जाएं। तो ये धीरे धीरे, मेरे अनुभव तो ये हैं, बहुतों के डिप्रेशन 11 दिन में, बहुतों के 21 दिन में खत्म हो गए, और इनको भी ये भाग्य मिल जाएगा।
1: बहुत सुंदर बात भ्राता जी आपने कही। एक बहुत बड़ी चीज है डिप्रेशन, जो लंबे समय से चला आ रहा है, लोग दवाइयां ले लेके थक गए हैं और इसके बैड इफेक्ट से भी वो परिचित हैं। तो यदि ये सुंदर अभ्यास, जैसे आपने कहा कईयों ने इसको किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं, तो निश्चित रूप से अलका जी भी, जो धनबाद से हैं, इनका अभ्यास करके इससे निजात पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, अलग अलग प्रकार की समस्याएं तो जीवन में है ही। जैसे समस्याओं की चर्चा हम कर रहे थे, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे रात को नींद ना आना है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक अभ्यास यदि कर लिए जाएं तो निश्चित रूप से मन इतना शांत हो जाता है, चित्त में इतनी शांति आ जाती है कि अलग अलग प्रकार के जो हमारे अंदर परेशानियां पैदा करने वाले संकल्प हैं, उनसे हम निजात पा लेते हैं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। और मूल बात तो यही है कि मन से ही सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मन के विचार यदि निगेटिव हैं, व्यर्थ हैं, यदि पास्ट से हम दबे हुए हैं, तो निश्चित रूप से मन कमजोर होता जाएगा और उसका प्रभाव हमारे शरीर में देखने को आता है। इसीलिए हम अपने मन को बिल्कुल ही व्यर्थ से मुक्त करें, मन को बहुत शक्तिशाली और सुंदर विचारों से भरें। और जैसे भ्राता जी हमेशा सिखाते हैं हमें कि हम राजयोग का सुंदर अभ्यास करें, अच्छे विचारों में रहें, तो इन तमाम प्रकार की व्याधियों से, तमाम प्रकार की समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं, समाधान की ओर चल सकते हैं, जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। आज 27 जून 2026 सैटरडे के सुबह सुबह हाजिर आप सभी के साथ बात करने के लिए 7:30 रेडियो मधुबन की घड़ी पर। पंचांग के अनुसार आज 1948 शक संवत ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी शनिवार विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 27 जून 2026। सूर्य उत्तरायण, उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, राहुकाल सुबह 8:55 से सुबह 10:39 तक है। त्रयोदशी तिथि मध्य रात्रि 12:43 तक, उपरांत चतुर्दशी तिथि का आरंभ है। अनुराधा नक्षत्र रात्रि 10:11 तक, उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र का आरंभ है। साध्य योग दोपहर 12:32 तक, उपरांत शुभ योग का आरंभ है। कोलबकरण दोपहर 11:32 तक, उपरांत तोतिलकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात वृश्चिक राशि पर संचार करेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:53 से 4:39 तक था और आज अमृत काल का समय है। सुबह है 10:31 से दोपहर 12:19 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:52 तक रहेगा। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के दिन विशेष के साथ। लेते हैं यहाँ पर एक भजन वाला ब्रेक, मिलते हैं भजन के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: मेरा नाम इंदु है, मैं ढूंढे गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8।

0: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। आज इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448 11 मुहर्रम है, हफ्ता इकलील है आज का दिन। और आज प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष व्रत शिव कृपा प्रदान करने वाला व्रत कहा जाता है। और ये व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है, इसलिए इसे वार के अनुसार पूजन करने का विधान शास्त्र सम्मत माना गया है। और मुहर्रम अर्थात मुहर्रम हिजरी संवत का प्रथम मास है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासी इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मना जाता है। मुहर्रम एक महीना है जिसमें 10 दिन इमाम हुसैन के शोक में मनाया जाता है। इस मोड़ पर एक हमारे रेडियो मित्र हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका। हेलो
1: हेलो,
0: मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? फिल वक्त उनकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पाई, इस बात के लिए खेद है, पुनः आप प्रयास करें। तो हम बात कर रहे थे मुहर्रम के बारे में, प्रदोष व्रत के बारे में, और कुछ बातें करते हैं वेदर रिपोर्ट्स के बारे में, मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ जानकारियां हैं। चलते हैं सबसे पहले राजधानी जयपुर की ओर। यहां पर 29 डिग्री न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक जाएगा राजधानी जयपुर में। इस मोड़ पर एक और रेडियो साथी आए, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, तो उनकी आवाज़ फिर से नहीं आ पाई। राजधानी जयपुर से हम चलते हैं उदयपुर की ओर। 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। बात करें आबू रोड की, 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है। माउंट आबू में 23 डिग्री न्यूनतम, अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है। माउंट आबू में बारिश होने की संभावना है। हेलो,
2: ओम शांति।
0: ओम शांति, गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
0: जी बढ़िया, आप कैसे हैं सुभाष भाई?
2: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं सुभाष भाई महाराष्ट्र जलगांव से बोल रहा हूँ, और हमेशा की तरह आज का भी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सभी श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ कि एक बार ब्रह्मा कुमारी संस्था को, माउंट आबू राजस्थान को जरूर भेज दीजिए, और अपना अंतर्मन कैसा पावरफुल बोलना है, आध्यात्मिक शुद्ध गीता ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में क्यों करना जरूरी है, और पावरफुल संकल्प से अपनी अंतर्मन की शक्ति कैसे बढ़ाना है, परमात्मा से प्यार शक्ति का वाइब्रेशन कैसा लेना है, और जो भी अपने से इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ बुरा कर्म या पाप हुआ होगा जिससे आज जीवन में डिप्रेशन तनाव जो आ रहा है उससे कैसे छुटकारा पाना है, ये हमारा रेडियो मधुबन से जो ज्ञान दिया जा रहा है देवी, वो ज्ञान जरूर प्राप्त कीजिए, और राजयोग से अपने जीवन में सुख शांति लाए। ये प्रोग्राम आपका रेडियो मधुबन नारा।
0: थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे सुभाष भाई फ्रॉम महाराष्ट्र से, और लगातार आप रेडियो मधुबन पर प्रेरणादायी बातें सुनते भी हैं और धारण भी करते हैं और अपनी बातें भी शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आइए आगे चलते हुए पाली जिले की ओर चलते हैं। यहाँ पर 29 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जा सकता है। जोधपुर में 29 डिग्री न्यूनतम अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और सूरत में 35 डिग्री अधिकतम तापमान न्यूनतम 28 डिग्री, मेहसाना में 41 डिग्री तक अधिकतम तापमान न्यूनतम 29 डिग्री, राजकोट में 38 डिग्री तक अधिकतम तापमान न्यूनतम 27 डिग्री, गांधीनगर और अहमदाबाद में 39 डिग्री तक अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक जा सकता है। राजधानी दिल्ली में 40 डिग्री तक अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान 32 डिग्री तक जा सकता है। कोलकाता में 34 डिग्री तक अधिकतम न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बारिश होने की भी संभावना है कोलकाता में। बेंगलुरु की बात करें तो 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकता है और यहाँ पर बादल भी छाए रहेंगे और बारिश जोरदार होने की भी संभावना है। बात करें मुंबई की, 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान न्यूनतम 28 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर 66% लगभग बारिश होने की संभावना है आज के दिन। चेन्नई में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जाने की संभावना है और जिला सिरोही में 37 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान 30 डिग्री तक जा सकता है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे वेदर रिपोर्ट के साथ। लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। गुड मॉर्निंग आबू।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान पुठी जो कहर की नजर उस न...

0: आप हबरे रिया रेडियो मधुबन 107.8 एफएम हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो
1: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए चलते हैं हम आबू रोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियां। और सबसे पहले अभी 8:25 पर जो गाड़ी आने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर, वो है आगरा कैंट से साबरमती तक जाने वाली सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस। अरावली एक्सप्रेस 14702 संख्या वाली गाड़ी 8:30 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और वहीं पर गाड़ी संख्या है 1-2। गाड़ी संख्या है 1-2-4-6-1 वंदे भारत एक्सप्रेस 9:05 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। मैसूर से अजमेर जाने वाली एक्सप्रेस 1-6-2-1-0 9:10 पर पहुंचेगी। जोधपुर बेंगलुरु सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 20693 10:10 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19032 10:50 पर पहुंचेगी। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 22965 11:05 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। गाड़ी संख्या है 19412 दौलतपुर से गांधीनगर तक जाने वाली एक्सप्रेस 11:30 पर पहुंचेगी। साबरमती से चलती हुई जोधपुर तक जाने वाली एक्सप्रेस 14822 11:40 पर पहुंचेगी। गांधीनगर दौलतपुर एक्सप्रेस 19411 12:55 पर पहुंचेगी। और वहीं पर 3:38 देरी से चलती हुई गाड़ी है जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 19224 1:23 पर पहुंचेगी। साबरमती से थवे जाने वाली एक्सप्रेस गोरखपुर तक 19409 1:30 पर पहुंचेगी। पूरी अजमेर सुपरफर्स्ट एक्सप्रेस 20823 1:45 पर पहुंचेगी। और वहीं पर साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस 19223 2:10 पर पहुंचने वाली है आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। योगा एक्सप्रेस 19031 2:03 आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। लेते हैं यहाँ पर अल्पविराम, मिलते हैं गाने के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107 पर ईआरएफएम सुन रहे हैं आप। आइए बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार के बारे में। तो भारतीय शेयर बाजार 25 जून को भारतीय इक्विटी इंडेक्स ने दिन के दौरान हुई ज्यादातर बढ़त गवा दी थी और मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। निफ्टी 24,050 के आसपास रहा। वहीं बात करें भारतीय रुपये की, तो गुरुवार को भारतीय रुपया 94.65 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 25 पैसे बढ़कर के 94.40 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुए थे। सेंसेक्स 109.25 अंक यानी कि 0.14% बढ़कर के 77,100.47 पर और निफ्टी वहीं पर 34.35 अंक यानी कि 0.14% बढ़कर के 24,056.00 पर बंद था। तो निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयरों में इंटर ग्लोब एविएशन और M&M और मैक्स हेल्थ केयर, मारुति सुजुकी और टाटा कंज्यूमर्स शामिल थे, जबकि ONGC, पावर ग्रिड, हिंडाल्को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक महिंद्रा में गिरावट देखने को मिली थी। तो ये कुछ शेयर मार्केट की बातें कर रहे थे हम। सोने और चांदी के ऊपर नजर डालें तो सोना है 24 कैरेट पर, अगर हम ग्राम देखें तो 14,296 रुपये, और 22 कैरेट पर ग्राम 13,106 रुपये, 18 कैरेट पर ग्राम 10,727 रुपये। यानी कि अगर हम बेस वैल्यू देखें तो 1,42,960 रुपये है 24 कैरेट प्योर गोल्ड। चांदी के भाव के ऊपर नजर डालते हैं। चांदी पर किलोग्राम में 2,40,100 रुपये। और पेट्रोल है 102.12 रुपये राजधानी दिल्ली में, और वहीं पर डीजल है 97.83 रुपये। डीजल का रेट हमारे राजस्थान में क्या कुछ है ये जानते हैं। राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान में है डीजल 98.25 रुपये, और वहीं पर गुजरात में 98.15 रुपये।

पेट्रोल 102.04 रुपये गुजरात में और वहीं पर राजस्थान में 113.19 रुपये पेट्रोल प्रति लीटर है। ये कुछ पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर हमने नजर डाला। यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी वर्तमान समय 94.38 रुपये है।

ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे मार्केट के साथ, शेयर बाजार के साथ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। लेते हैं यहाँ पर एक अल्फरा।

0: प्रकार जो बेटी को दे पहचान माता पिता वही।
1: पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। और अभी हमारे मदन भाई और उससे पहले फिरोज भाई ने कॉल किया था और सभी को शुभकामनाएं दी है, सबको याद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आइए चलते हैं, हम कुछ बातें जो जॉब रिलेटेड है वो करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 5 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार देश भर के विभिन्न एम्स संस्थानों और केंद्र सरकार के मेडिकल संस्थानों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1484 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार AIIMS के ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि AIIMSexams.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 30 जून 2026। कैसे करें आवेदन, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर AIIMSexams.ac.in पर जाना है। होम पेज पर रिक्रूटमेंट बटन पर क्लिक करके कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE के नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल्स भरें, रजिस्ट्रेशन करके अन्य डिटेल्स दर्ज करें, फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें, इसका प्रिंटआउट लेकर के रखें। शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन पद के अनुसार 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा या फिर नर्सिंग डिग्री। आयु सीमा है पद के अनुसार अधिकतम 27 से 35 वर्ष। SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, PWBD को 10 साल की छूट है। आवेदन शुल्क है जनरल OBC के लिए ₹3,000 और SC ST EWS के लिए ₹2,400। दिव्यांगों के लिए निःशुल्क है। तो एम्स पटना, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, ऐसे बहुत सारे जगहों पर ये भर्ती निकली है, ये आप वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं। चयन प्रक्रिया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगी। और वहीं पर गुजरात में कंडक्टर और ड्राइवर के लिए 8,917 पदों पर भर्ती निकली है, 12वीं पास का मौका है। लास्ट डेट है 5 जुलाई 2026। गुजरात सड़क परिवहन निगम GSRTC ने कंडक्टर और ड्राइवर के 8,917 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें कंडक्टर के लिए 4,318 और ड्राइवर के लिए 4,599 पद शामिल है। उम्मीदवार GSRTC की ऑफिशियल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सैलरी 22,000 से ₹28,000 प्रति माह है और अन्य अलाउंस भी मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, RTO का वैलिड कंडक्टर लाइसेंस और बैज होना चाहिए। शारीरिक योग्यता पुरुष न्यूनतम हाइट 162 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी के पुरुष 160 सेंटीमीटर, महिला न्यूनतम हाइट 158 सेंटीमीटर। ड्राइवर के लिए न्यूनतम 25 साल है और कंडक्टर के लिए न्यूनतम 18 साल है। सामान्य वर्ग के पुरुष अधिकतम आयु 35 साल और आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। SC ST, SC BC और EWS पुरुष अधिकतम 40 साल, महिलाओं के लिए अधिकतम 45 साल है। आवेदन शुल्क जनरल के लिए 300 प्लस GST, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, SC BC और EWS पूर्व सैनिक, दिव्यांग और सभी वर्गों की महिला के लिए ₹200 प्लस GST है। नया रजिस्ट्रेशन करें, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि भरें, लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, ऑनलाइन फीस जमा करें, फॉर्म सबमिट करें, इसका प्रिंट आउट निकाल कर रखें, चयन प्रक्रिया है रिटर्न एग्जाम, ड्राइविंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। जी हाँ, गुजरात सरकार की ओर से गुजरात में कंडक्टर ड्राइवर के 8,917 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट है 5 जुलाई 2026 और 8 जुलाई लास्ट डेट है। SBI में PO के 15,000 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रेजुएशन पास कर जिन्होंने किया है वो कर सकते हैं आवेदन। इस मोड़ पर एक हमारे श्रोता मित्र हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते, रेडियो मधुबन पर स्वागत है आपका।
2: हेलो दीदी नमस्कार।
1: नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: बहुत ही बढ़िया हूँ, आपका कार्यक्रम सुन करके आनंद ले रहा हूँ सर। एक हनुमान जी का भजन सुना देना जी।
1: जी ओके, धन्यवाद
2: धन्यवाद सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे रिक्रूटमेंट्स के साथ। SBI में PO के 15,000 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएशन पास कर सकते हैं आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविजनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती निकली है और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं sbi.co.in पर, यानी कि sbi.co.in पर। आयु सीमा है न्यूनतम 21 और अधिकतम 30 वर्ष है। और वहीं पर लास्ट डेट 3 जुलाई 2026, BSNL 100 पदों पर भर्ती होगी। इंजीनियरिंग करने वालों को मौका है। वेबसाइट है bsnl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार की टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड ने 100 पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन में करेक्शन के लिए विंडो 4 जुलाई से 11 जुलाई तक खुली रहेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन विषय पर किसी भी एक में इंजीनियरिंग की डिग्री या समकक्ष योग्यता प्राप्त, MSc इलेक्ट्रॉनिक्स और MSc कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। वहीं कुछ विषयों में MTech की डिग्री प्राप्त कर चुके उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 20 साल अधिकतम 30 साल और आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो इसके कैसे करें आवेदन, bsnl.co.in पर जाएं। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आपको इसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके माध्यम से लॉगिन करके आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया है लिखित परीक्षा के लिए और उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। और वहीं पर लास्ट डेट 3 अगस्त 2026, UPSSSC ग्रेजुएट और PET 2025 पास करने वाले उम्मीदवारों को ही मौका मिलेगा। लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर भर्ती निकली है। upssc.gov.in पर जाएं, यानी कि SSSC है यूपी के बाद। तो होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें और PET 2025 रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करें। आवेदन फॉर्म में जरूरी जानकारी भरें और मांगे गए डिटेल्स दर्ज करें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फीस का भुगतान करें, फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट आउट लेकर के रखें। तो ये लास्ट डेट है 3 अगस्त 2026। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी जॉब्स के बारे में। आइए यहाँ पर लेते हैं एक अल्पविराम और फिर मिलते हैं इस अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो माधुबन 107.8 FM। आइए मदनलाल जी के फरमाइश के अनुसार एक ये राधा और कृष्ण के भजन सुनते हैं।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे आसपास के घटनाक्रमों के साथ, सूचनाओं के साथ, उसके ऊपर नजर डालते हैं। बात करें जनता की आवाज दैनिक भास्कर के जरिए, तो सिरोही में धमसरा ग्राम पंचायत के खादरा फली बेगरी में पेयजल का एकमात्र स्रोत हैंडपंप करीब एक साल से खराब पड़ा है। लोगों को पानी के लिए दूर दराज भटकना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से हैंडपंप ठीक कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया जा रही है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुनील खादराफली बेगरी से ग्राम पंचायत धामसरा से दैनिक भास्कर को उन्होंने ये रिपोर्टिंग की है। वहीं पर सिरोही में माउंट आबू के कुम्हारवाड़ा राजीव कॉलोनी के नाले में लगा लाइट का बिजली पोल कई सालों से बंद पड़ी है और जर्जर अवस्था में पोल के टूटने की तैयारी है। और कई बार नगर पालिका बिजली विभाग को सूचना दी, लेकिन पोल बदलने को तैयार नहीं है। अधिकारी आते हैं और देखकर चले जाते हैं। लाइट बंद होने पर रात को जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। सुरेश थिंगर, कुम्हारवाड़ा, माउंट आबू। और कुछ बातें जो हमारे आबू रोड और सिरोही जिले के साथ जुड़ी हुई है जानते हैं। आबू रोड में आपातकाल के सेनानियों का किया गया सम्मान। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने आपातकाल काला दिवस पर डाक बंगला में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। और वहीं पर सिरोही में कलेक्टर रोहिताश्व तोमर सिंह जी के निर्देशन में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड के एसई एवं समिति के सदस्य सचिव आर सी बाराड जी ने की है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अवैध खनन आदि को बंद करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए NHAI और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

वहीं पर बात करें अबू रोड की, तो 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन के रख रखाव को लेकर के उसके मेंटेनेंस कार्य के चलते 28 जून को पूरे आबू रोड में सुबह 5 घंटे बिजली बंद रहेगी। सहायक अभियंता जयेंद्र जिरोता जी के अनुसार 132 केवी एवं 33 केवी मेन बस के रख रखाव कार्य के कारण रविवार को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक बिजली बंद रहेगी। और वहीं पर 29 जून को 4 भामाशाहों को राज्य और 6 को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। 3 करोड़ रुपए खर्च कर भामाशाहों ने सवारे स्कूल, अब राज्य स्तर पर सम्मान। सरकारी स्कूलों में पिछले एक वर्ष के दौरान भामाशाहों ने 3,16,82,734 रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। शिक्षा विभाग ने 29 जून को इन भामाशाहों को सम्मान करेगा और इनमें से 4 भामाशाहों को राज्य स्तर पर तथा 6 भामाशाहों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं पर जिले भर में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम ने करवट ली है। पोसालिया, शिवगंज और जवाल समेत कुछ जगहों पर रिमझिम बारिश हुई है। एमएसएमई आज दिवस है और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन और मुद्रा योजना से आगे आ रही महिलाएं। प्रदेश में 11 लाख महिला उद्यमी, 5 साल में लगभग 4.7 गुना बढ़ोतरी हुई है। 11 लाख से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। उद्यम चला रही महिलाओं की यूनिट में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी रोजगार मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में जहां राजस्थान के इन एमएसएमई उद्योगों के माध्यम से केवल 2 लाख के करीब महिलाओं को रोजगार मिला हुआ था, वहीं महज 5 साल के भीतर 2025-26 तक ये संख्या लगभग 388% की बढ़त के साथ 11 लाख हो चुकी है। ये जानकारी हम आप तक दैनिक भास्कर के जरिए पहुंचा रहे हैं। और वहीं पर जवाल कस्बे में श्री नीलकंठ महादेव मंदिर के 15वें और श्री सचिया माता मंदिर के 21वें त्रिदिवसीय वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को शोभा यात्रा और जल यात्रा निकाली गई। आयोजन के चलते बाजार बंद रहे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं पर रेवदर में करोटी गांव में समाज सेवी भवानी दान चारण और अमरा राम मेघवाल ग्लोबल नेत्र हॉस्पिटल आबू रोड तलहेटी के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा शेखावत ने मरीजों की जांच की। कुल 85 मरीजों ने जांच कराई। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। जांच में मोतियाबिंद के 13 मरीज चिन्हित हुए। इसमें से 8 मरीजों को सफल ऑपरेशन के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड भेजा गया। शिविर में कैंप भामाशाह भवानी दानचारण और अमरा राम मेघवाल गांव के दीप दानचारण और हर्षन देवासी आदि मौजूद रहे। पर श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट अंबाजी ने 51 शक्तिपीठ परिक्रमा मार्ग पर गबर स्थित कामाख्या शक्तिपीठ में अंबुवाची वार्षिक महोत्सव पर परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना कराई। 22 से 25 जून तक 4 दिन मंदिर बंद रखा गया। शुक्रवार को शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार किया गया। कामाख्या शक्तिपीठ में अंबुवाची महोत्सव 4 दिन बाद खुले द्वार। और वहीं पर आध्यात्म संगीत कला से जीवन में ऊर्जा, समाज में भरोसा बढ़ता। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्ञान सरोवर में कला एवं संस्कृति प्रभाग का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। उद्घाटन सत्र में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष फूल सिंह मीणा जी ने कहा कि आध्यात्म संगीत कला जीवन में नई ऊर्जा भरते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। पर कालंद्री में ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान के नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर IRCA में एक दिवसीय विचार गोष्ठी हुई। नशा छोड़ने के लिए अपील की गई।

और वहीं पर सिरोही में मुस्लिम समाज की ओर से इमाम हुसैन की याद में मातमी पर्व मुहर्रम पर शुक्रवार को जिला मुख्यालय समेत जिले भर में अलग अलग जगहों पर मातमी धुनों के बीच ताजिए निकाले गए। जिला मुख्यालय पर गुरुवार रात कत्ल की रात मनाई गई और शहर के मुख्य मार्गों से होकर ताजिए निकाले गए। इस बीच देर रात तक अखाड़े भी खेले गए और वहीं पर शुक्रवार को सवेरे फिर ताजिए का जुलूस निकाला गया। पिंडवाड़ा में नगर में मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया जुलूस अकीदत के साथ निकाला गया। अनादरा में भी मुहर्रम पर उमड़ा अकीदत का सैलाब, मंडार में निकला मातमी जुलूस। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ, सिरोही आबू रोड की बातें हमने आप सभी के साथ शेयर किया दैनिक भास्कर के जरिए। लेते हैं यहाँ पर एक क्विक सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात।

0: तो भूरीलाल जी के फरमाइश के अनुसार हनुमान जी को समर्पित ये भजन हम सुन रहे थे। अभी वक्त हो चला है आप सभी से विदाई लेने का। अब कुछ पलों के बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मधुबन 107.8 FM पर गुड मॉर्निंग आबू ये कार्यक्रम सुनने के लिए। अगला कार्यक्रम है आशियाना उषा जी के साथ, खेलेंगे आप सभी अंताक्षरी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारा फोन नंबर है 94-14-15-14-15 9-4-1-4-1-5-1-4-1-5 पर आप कॉल कर सकते हैं और गा सकते हैं अपने मन पसंदीदा गाना। इसके साथ साथ उषा जी जो थीम बताएंगे उस अनुसार आपको पड़ेगा गाना। नमस्ते।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
3: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
4: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
5: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
6: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
7: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
8: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
9: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
10: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
11: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे AI आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है। 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

0: ओए रुको रुको रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? तो तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई? हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। आज का सुंदर सा विचार है, जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सर्वलौकिक मोह को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। कैसे? तो आइए आज के विचार का विश्लेषण एक कहानी के साथ करना चाहूँगी स्पष्ट। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय था, प्रजा वत्सल और धार्मिक स्वभाव का था वह राजा। वह रोज अपने ठाकुर जी की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ और उनको याद करता था। एक दिन ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और कहा, राजन मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा है? प्रजा को चाहने वाला राजा बोला,

वन, मेरे पास आपका दिया सब कुछ तो है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार की सुख शांति है। फिर भी मेरी एक ही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया, वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी कृपा करके दर्शन दीजिए। ये तो संभव नहीं है, ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया। परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना और मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा, ठीक है। ये सुनकर राजा तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचे, वहां भगवान आप सभी को दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर के पहाड़ी की ओर चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में से कुछ एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क किया कि कोई उस ओर ध्यान न देवे, किंतु क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो, इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच में वशीभूत प्रजा के कुछ एक लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर ही भाग गए और सिक्कों की गठरी बना करके अपने घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोच रहे थे, पहले ये सिक्कों को समेट ले, भगवान से तो फिर कभी भी मिलेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर भी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्कों की गठरियां लाद लाद कर अपने घर की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए थे। राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज है। सही बात है, रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगी आभा बिखरता हीरो का पहाड़ है। अब तो रानी से भी नहीं रहा गया, हीरो के आकर्षण से वह भी दौड़ पड़ी और हीरो की गठरी बनाने लगी। फिर भी उनका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरो की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ही ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते गए। वहां सचमुच भगवान खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरारी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सर झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं, उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से भी वंचित रह जाते हैं। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, जो जीव अपनी मन बुद्धि और आत्मा से भगवान की शरण में जाते हैं और जो सर्व लौकिक मोह को छोड़ के प्रभु को ही अपना मानते हैं, वो ही भगवान की सेवा प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से बहुत ही सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ना मैं तेरी गुजरिया ना तू मेरा दीवाना।
1: नमस्कार, मैं हूँ पार्श्व गायिका श्रद्धा पंडित। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुरा।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आशा कार्यक्रम के सभी प्यारे श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत है फिर से। अगर नई चप्पल या जूते पहनने से एड़ी या पैर की उंगलियों में घाव या छाले पड़ जाते हैं तो घबराइए नहीं, बहुत ही सुंदर आपको घरेलू उपाय देने वाली हूँ। अभी कुछ लोगों का दो तीन जनों का फोन आया था दो तीन दिनों में मिला करके कि नए चप्पल पहने मिलना हो गया अचानक, तो पैरों की हालत देख के मैंने कहा ये क्या हो गया, बोले ये तो नई चप्पल पहनी ना तो घाव हो गया। अरे भाई नई चप्पल पहनी है अच्छी बात है, घाव हो गए तो भला कैसे सहन करेंगे, उसका इलाज तो करना पड़ेगा। तो बोले आप ही बता दीजिए इसके उपाय। तो मैंने सोचा कि एक को क्यों सभी को बता देते हैं, तो अगर इस तरह नई चप्पल जूते पहनने से घाव हो जाते हैं तो बहुत ही सुंदर आपको उपाय बताने जा रही हूँ। घाव वाली जगह पर ताज़ा एलोवेरा जेल लगाइएगा, इससे ठंडक मिलेगी और घाव जल्दी भरने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो घाव जहाँ भी पड़ा है उस स्थान पर ताज़ा एलोवेरा जेल लगाइएगा, ठंडक मिलेगी और घाव जल्दी भरने में भी मदद मिलेगी। फिर देखिए दूसरा उपाय बहुत ही सुंदर है, दिन में 2-3 बार नारियल का तेल लगाइएगा, त्वचा को नमी मिलती रहेगी और जलन कम हो जाएगी। दिन में 2-3 बार नारियल का तेल लगाइएगा रुई के फोहे से, इससे क्या होगा त्वचा को नमी मिलती रहेगी और जलन कम होगी। और भी सुंदर उपाय जानेंगे आप, गुनगुने नमक वाले पानी से आप सफाई करिए, यदि छाला फूट गया हो तो गुनगुने नमक वाले पानी से हल्के हाथों से साफ करें और बाद में सूखा करके रखें, फिर आप ये जेल लगाइए भले नारियल तेल लगाइएगा। ठीक है, और भी सुंदर उपाय, बैंडेज या ब्लिस्टर पैड कैसे लगाएंगे, देखिए घाव पर साफ बैंडेज लगाइए, इससे चप्पल की रगड़ कम होगी और घाव सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो घाव पर साफ बैंडेज लगाने से चप्पल की रगड़ कम होगी और घाव सुरक्षित रहेगा। नई चप्पल को शुरुआत में 15-20 मिनट ही पहने, जहाँ रगड़ लगती हो वह पहले से ही टेप या बैंडेज लगा लीजिए। तो ये भी आप युक्ति कर सकते हैं कि नई चप्पल को शुरुआत में इस तरह तकलीफ दे रही है तो 15-20 मिनट पहनिए। ठीक है, और पहननी भी पड़े 15-20 मिनट वहाँ पर भी जहाँ रगड़ लगती हो वहाँ पहले से आप टेप या बैंडेज लगा लीजिए फिर पहनिएगा, ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना, अगर घाव में बहुत दर्द सूजन पस या बुखार हो या आपको मधुमेह है तो घरेलू उपचार के बजाय डॉक्टर से जरूर संपर्क करिएगा। ठीक है भाई, डायबिटीज के पेशेंट है, घाव में बहुत ही दर्द है, सूजन है, पस है, बुखार भी हो गया है, तो ऐसी स्थिति में फिर घरेलू नुस्खे की राह ना देखें। ठीक है, उस समय आप डॉक्टर को बताइएगा। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, नई चप्पल की खुशी तभी अच्छी लगती है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, जब कदम आराम से चले, इसलिए पैरों का भी उतना ही ध्यान रखें जितना अपने सफर का। चलिए श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं, हेलो,
1: नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते अस्मत भाई, केम छो?
1: ये मजा में आवे बेन, चोमासु आवन तियारे से जैसे तो थोड़ा मित्रों ने हूँ नानी नानी बेतंग स्टीप देवा मागू छू।
0: हाँ बोलो।
1: ये आपका ढाबा माथे बेन अगाची माथे टायर ने ट्यूब ने बधु पेगु होय ने खाली माटला ने वाचन तो आपका एने साफ सुथरो करी राखवाना, कारण के चोमासा नु पाणी भराय छे, जमा थाय तो एमा मच्छर थवानी संभावना वधी जाय, तो आप साफ सुथरो राखशु तो आप समस्या रीशु और निरोगी रीशु।
0: ઓકે,
1: અને બેન આપણે ના વરસાદ નો કેવો વાતાવરણ થઈ ગયું છે, વરસાદ તેજ નથી ના કરે ગાઉ ઠાબુ માં?
0: હમ
1: વરસાદ છે, બારિશ હોઈ નહીં હોઈ?
0: એક બે વખત થઈ વચ્ચે।
1: બરાબર, તો ક્યારે ગુજરાત માં આવે ત્યારે આવજો, આ બાજુ પાસે ફૂલા પંજો।
0: હો હો, ચોક્કસ તમે આવજો યા મધુબન માં।
1: એ હારું લે બેન,
0: અંતાક્ષરી માં જોડાવ જો ટાઈમ મળે તો।
1: એ હા બોલો, અને બેન અમે ખેતી વાગે નું કામ કરીએ છીએ અને મધુબન રેડિયો સાંભળે છે, અમારા જીવન માં ખુબ જાણકારી મળી રહે છે રોજબરોજ ના જીવન માં,
0: તો બહુ સરસ તમે જોડાવો ને, ક્યારેક ક્યારેક વચ્ચે જોડાતા હોય તો।
1: હા ખુબ મજા આવે તમને, જીવન જીવવાની ખરેખર જીવન કેવી રીતે જીવવું પડે એની માહિતી અમને ડગલન પગલે મળતી રહે છે, અને અમે મધુબેન જડિયા ના ખુબ આભારી છીએ भाग्य साहे गया कि हमने मधुबन गाड़िया ना साथ लेवा से
0: थैंक यू हाँ जी हाँ जी आभार तमारु पण तो ये हुए घरेलू नुस्खे और असमत भाई ने भी टिप्स दी है उसका भी ध्यान रखें और आइए आज के प्रश्न की तरफ आज का प्रश्न यही है कि अभी गुरुवार को आपको जो पहेली सुनाई वो कौन सी पहेली थी वो सुनानी है आपको देखते हैं कितना याद है आपको ठीक है तो गुरुवार को कौन सी पहेली आपको सुनाई गई उस पहेली को आपको सुनाना है ये आज का प्रश्न है ठीक है और आइए एक ब्रेक के बाद अंताक्षरी कार्यक्रम आरंभ करेंगे अंताक्षरी में आज की थीम रहेगी विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत गए शनिवार रखी वो ही थीम आज भी है क्योंकि शादी ब्याह अभी चल रहे हैं रात्रि जागरण भी चल रहे हैं अभी जेठ महीने का एंड चल रहा है ठीक है तो बस ये लास्ट जो पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण हो जाएगा उसके बाद फिर चातुर्मास फिर रात्रि जागरण नहीं होंगे चार महीना कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा जैसे शादी ब्याह है और घर की ओपनिंग है ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि कहते हैं ना देव पोड़ जाते हैं तो फिर आपको विवाह के गीत सुनाना इसलिए शादी ब्याह के रखे क्योंकि बस ये भड़ली नवमी आ रही है तब तक शादी ब्याह है उसके बाद चार महीने का गैप है तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ करके आज के अंताक्षरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा और आइए सुना देते एक गीत तो सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
2: क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब अंताक्षरी कार्यक्रम आरंभ करेंगे। जो भी जुड़ना चाहते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। भाई अंताक्षरी कार्यक्रम जिसकी थीम है आज विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत, तो दोनों ही गीत है और यहाँ पर मैं कोई आपको शब्द नहीं दे रही हूँ, कोई अक्षर नहीं दे रही हूँ। आराम से जुड़िएगा और जुड़ करके अंताक्षरी में भाग लीजिएगा। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। क्या बात है, सभी शादी ब्याह में व्यस्त हो गए क्या? खैर शादी ब्याह भी बहुत चल रहे, 3 तारीख के है, अभी आज का है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। 3 तारीख को तो हम भी जाएंगे शादी ब्याह में। भाई अब सभी श्रोता बंधुओं को लेकर के हम चाहते हैं कि आज आप सभी शादी ब्याह की धूम रेडियो मधुबन में मचाओ। तो कभी तो रेडियो मधुबन में भी होना ही चाहिए ना ये इस तरह का माहौल। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। चले हम ही शुरुआत कर देते हैं। शनि रवि सोम बनाए करू फोन मारी बनी वड़वा।

0: तो हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा में आप जिसमें भी सुनाना चाहते हैं सुना सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। और देखिए अब ज्येष्ठ महीना भी पूरा होने को आया है, मौसम बारिश का चल रहा है लेकिन अभी बरसात नहीं हो रही है, लेकिन घबराइए नहीं, सभी पॉजिटिव रहिए, बरसात जरूर होगी। और कहते हैं ना कि भाई बरसात का मौसम भी जब असर करता है जब हम ऐसी गर्मी से नहीं गुजरते, बरसात का भी वैल्यू उस समय ही रहेगी जब इस तपन से हम बाहर निकलेंगे। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, सुरेश भाई बोलते हैं जटाना से।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं, जा रहे हैं सफर में, फिर भी चलो मैं किसी जोर से जाऊँ।
0: अच्छा, निकल गए सफर के लिए?
1: हाँ निकल गए हैं, बस में बैठे हैं और सुन रहा था कार्यक्रम, तो मैंने सोचा अभी 10 मिनट की देरी है मेरा, तो मैं एक साथ जाना दो दे दू आपको दे दू।
0: अच्छा ठीक है जी,
1: बस शादी के ही गाने
0: हाँ जी,
1: शादी के ही गाने सुना दीजिए, शादी का गाना
0: हाँ जी सुना दीजिए।

0: नमस्ते, अभी आस पास गुप्ता ही सारे लोग
1: नहीं नहीं फिर भी आप जुड़ रहे हैं, मैं तो आपको ग्रेट कहूंगी कि मैं आपके लिए ढेर सारी तालियां बजाना चाहूंगी, क्योंकि सफर में सभी लोगों के बीच जुड़ना और गीत गुनगुनाना बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। आप सभी जानते होंगे कि सफर में अगर इस तरह गुनगुनाते हैं तो साफ पता चल जाता है, तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य होता है कि अरे भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे भले पता चलता है कि अच्छा ये रेडियो सुन रहे हैं, लेकिन शुरुआत तो कहते हैं ना एक कदम आपका फिर तो हिम्मत आ ही जाएगी। तो जुड़ने वाले ऐसे भी हमारे श्रोता बंधु है जो रेडियो से इतना टू मच प्रेम करते हैं, और बाकी हम बार बार बोलते रहते हैं जू तक नहीं रेंगती, फिर जुड़ते हैं तो कहते हैं हम भी रेडियो से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रेम करते हैं तो जुड़िएगा, नंबर हम बार बार गुनगुनाते रहते हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर और सरल थीम है विवाह के गीत और रात्रि जागरण के, और ये हमारे सभी श्रोता बंधुओं को आता है विवाह के गीत। तो चलिए यहाँ पर हम एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, आप ऑफ एयर भी जुड़ सकते हैं, ऑन एयर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ माया खालसी और आप सुन रही है रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुरेश भाई पिंडवाड़ा से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुरेश भाई।
2: जय माता जी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि।
2: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज हमारे दोस्त मित्र को, दोस्त को, भाई को ठाकुर भगत जी की सालगिरह मुबारक हो। उनको उनकी सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। 700 जन्मों तक ये जोड़ी ईश्वर सलामत रखे, और जब तक बस ये खुशी
1: खुशी
2: इनका जीवन
1: जी, बिल्कुल।
2: और इनके लिए थोड़ा खेम से हट गए है, तो वो मैं सालगिरह के उनको मुबारक देना चाहूंगा जाने के जरिए।
1: जी
2: मुबारक हो तुमको ये

0: सदा खुश रहो ये दुआए हमारी।
1: जी बहुत सुंदर। हाँ जी, तो सुरेश भाई अब आप थीम पर आ जाइए, विवाह के गीत या रात्रि जागरण के गीत सुना सकते हैं आप।
0: हाँ तो सुनाता हूँ, ठीक है।
1: ठीक है,
0: गजानंद जी को बुला दिया?
1: नहीं बुलाए, आप बुला लीजिए,
0: उनके बिना तो सिद्ध काम कोई नहीं होगा।
1: जी।
0: घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, ये सीख ले आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो।
1: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। साथ ही साथ आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। गुरुवार को जो आपको पहेली सुनाई गई, वो पहेली आपको बोल के सुनानी है और उसका जवाब भी। कौन सी पहेली सुनाई थी, किनको याद है जो देखते हैं। और बाकी बहुत ही अच्छी थीम है, शादी ब्याह की थीम है, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िएगा और अंताक्षरी में भाग लीजिएगा। क्या सोच रहे हैं भाई, इतनी सरल थीम में अगर आप सोचेंगे तो मुश्किल थीम दे देंगे तो क्या होगा। मुश्किल तो अभी हम कुछ दे ही नहीं रहे, कोई हम आपको अक्षर नहीं दे रहे हैं और कोई भी शब्द नहीं। आप अपनी पसंद का गीत सुनाइएगा, तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और कौन अंताक्षर में भाग लेते हैं। बन छजे छजे डोले पर बनी नहीं बोले, बन छजे

0: कंद डोले बना छजे छजे डोले पर बनी नहीं बोले। मैं तो बार बार कहूँ पर श्रोता नहीं सुने। हाँ चलिए सुन ली सुन ली। हेलो
1: हाँ जी नमस्कार मदन भाई।
0: हाँ जी नमस्ते मदन भाई, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ। और मैं लगा रहा था फोन मगर घर में वो पोता कर रहा था तब।
0: अच्छा
1: तो एक दो सोचा लोग फोन करे तो मैं भी लगाऊं, मगर मैं पोता था वरना कर ही देता था पहले। और सूरज जी का शुक्रिया जो उन्होंने किया, बहुत अच्छा है। और सभी का सब करेंगे फोन, तो कुछ काम में लगे हैं तो ये आएंगे जरूर करेंगे फोन।
0: जी जी
1: तो उनको इंतजार होता है
0: जी।
1: तो गाय लेते हैं आपको। हाँ नमस्कार करते हैं रेडियो मधुबन को। हाँ जी।
0: थैंक यू।
1: और हमारे सभी दोस्तों को। और बस जाते हैं अंताक्षरी।
0: हाँ जी।
1: बनारे बाजा मजूला गालिया, बनारे मजूला गालिया, मारी बनी रे मारी बनी ने जूले जो मारा तेल भवर था। अरे बनारे सोज सीते जाइ जो, बनारे सोज सीते जाइ जो, मारी बनी रे में दी जाइ जो मारा तेल भवर था। नमस्कार
0: जी। जी बहुत सुंदर। और मदन भाई आज के प्रश्न भी है कि गुरुवार को कौन सी पहेली पूछी गई?
1: गुरुवार को शायद मैंने फोन नहीं किया होगा और किसी वजह से गया, सुना था जरूर मगर वही सोच रहा हूँ कौन सी पहेली थी। शायद पहेली नहीं थी, कोई प्रश्न था ऐसा कुछ है और पहले की है सकती है, मगर जरा सोच के कहते हैं पड़े है ना काम के।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, फिर भी अंताक्षरी में जुड़ते रहिए।
1: जरूर जरूर, अभी मैं घर पे ही हूँ आज।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से, और ठाकुर भूपत सिंह जी का आज एनिवर्सरी है तो उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर आपके जोड़ी बनाए रखे और लक्ष्मी नारायण के समान आपका जीवन बीते। तो अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है। आज के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर थीम है, शादी ब्याह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
0: हूँ,
2: ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: बस एकदम मस्ते है। और एक गीत बोलता हूँ मैं
0: जी,
2: विवाह का बहन जी।
0: हाँ जी विवाह के थे।
2: हाँ हाँ हाँ हा।

0: बनेला फिरोज भाई घड़ियाल बादे अबण जरी नव टाइम पूछे।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर, थैंक यू। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर आपने हंसी मजाक का शादी ब्याह में जो खेल के तौर पर गाया जाता है वो सुनाया है गीत आपने, और खुद आपने अपना और अपने युगल का ही नाम लिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर थीम है विवाह के गीत, और क्या रात्रि जागरण के गीत। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर कोई शब्द या अक्षर नहीं दे रही हूँ तो अंताक्षरी और भी सरल है। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं, और साथ ही साथ देखिए बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, सावधानी बरते, आप कहीं भी जा रहे हो छाता अपने पास रखे, जूते चप्पल जो भी आप पहन के जाते हैं बरसाती पहन के जाइए ताकि स्लिप होने का डर कम रहे, ठीक है। और आइए यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा आशियाना कार्यक्रम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: तारा। तो ये गीत जो आपने सुना है रात्रि जागरण का गीत है और पूर्वजों के आह्वान का गीत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है जिसकी थीम है विवाह और रात्रि जागरण के गीत। हेलो, हाँ जी, आपका फोन कट गया तो हमने सोचा कि फिर से आप लगाएंगे लेकिन आपने लगाया ही नहीं। चलिए अब लग गया है। हाँ जी हाँ जी,
1: क्या प्रोग्राम है?
0: अंताक्षरी कार्यक्रम है, शादी ब्याह के गीत है, रात्रि जागरण के गीत है। आप सुना सकते हैं अपने पसंद के गीत?
1: तो शादी ब्याह के सुनाने करने?
0: हाँ जी जरूर।
1: सुनाओ क्या?
0: सुना दीजिए।
1: ओ ना तुम जोड़ियो ने मोतीरो सुझड़ियो, ओ ना रो बजोड़ियो ने मोतीरो सुझड़ी, रामा बाईने लगने पर ना वो उलाड़े लरासन बजोड़े देवारो, बजोड़े देवारे ने समर डूला वो सुखे सुखे लगने पर ना वो उलाड़े लरासन बजोड़े देवार।
0: जी बहुत सुंदर।
1: हेलो,
0: हाँ बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया है मारवाड़ी भाषा में, बहुत बहुत आभार भूराराम जी। हाँ जी, तो ये थे भूराराम जी ओर से, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। आज की थीम बड़ी सुंदर है, शादी ब्याह के, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। दरवाजे पर ठाड़ो बनो कर गोड़ी तैयार, होले रे होले आई बनी ले फूलों का हार, जरा सो होय जरा सो होय जरा सो नीचे झुक जा, बना बनी माला डालेगी। दादा सारो प्यारो बनो अक्कड़ बहुत दिखाए, दादा सा क प्यार बनो अक्कड़ बहुत दिखाए, दादी सारी प्यारी बनी बहुत बहुत शर्माई, जरा सो होए जरा सो होए जरा सो नीचे झुक जा, बना बनी माला डालेगी। हेलो, जय श्री हरि, नमस्ते।
1: एक शायरी मैंने शादी पे लिखी है अभी अभी
0: जी,
1: अर्ज करूँ? आप बोला था।
0: हाँ जी जरूर।
1: शादी है आज मेरे यार की, देने निकले हम सब बधाई, शादी है आज मेरे यार की, देने निकले हम सब बधाई, ढोल नगाड़ा और जोरों से गुंजे सहनाई, ढोल नगाड़ा और जोरों से गुंजे सहनाई, मेवा मिठाई नहीं लड्डू पेड़ा और खूब खाए मिठाई, लड्डू पेड़ा और खूब खाई मिठाई।
0: बहुत
1: ठीक है, अब सुनाओ गाना।
0: हाँ जी,
1: यही चलेगा?
0: नहीं सुना दीजिए और।
1: हाँ सुना देता हूँ, ठीक है
0: जी।
1: हरियाला बनारे सागान बनारे, मैं छूते बादल में बनी ने क्यों जगाड़ी रे, मैं सुखी बादल मेल बनी ने क्यों जगाड़ी।

0: खड़े उड़ मेरी चतुराई जमीन में लहरी लायो रे, खड़े उड़ मेरी चतुराई जमीन में लहरी लायो रे, हरियाला बना रे मैदान बना रे। थैंक यू बना
1: जी, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। तो हमारे श्रोता बंधु लगता है बहुत ही व्यस्त है शादी ब्याह में। चलिए अच्छी बात है, और जो शादी ब्याह में जाने वाले हैं प्रैक्टिस यहीं से कर लीजिएगा, क्योंकि रेडियो से प्रैक्टिस करेंगे आगे बोलने में काम आएगा। हेलो
2: जी, नमस्कार मदन भाई बोल।
1: हाँ जी नमस्कार मदन भाई।
2: जी जी, सुना देते हैं गाने
1: जरूर।
2: अरे बेदू चो देख तुम बालटके रे सारी पाल तुम बालटके रे, अरे बेदू चो देख तुम बालटके रे सारी पाल तुम बालटके रे, अरे बेदू चो देख सर्व लटके रे, अरे बिली मिलते देख तरवा लटके रे सारी पाल तुम्बा लटके रे। नमस्कार
1: जी, नमस्कार, बहुत अच्छा। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। आज की थीम बड़ी अच्छी है, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। कंकुड़ा चंट

0: माँ आप साथ दे सकते हैं। हेलो नमस्ते।
1: हाय।
0: हाँ जी।

0: कौन सा गीत सुनाना चाहे देखे सुनाइए।
1: अच्छा
0: बोलिए।
1: डर रे डर रे डर रे देवा माता पिता वारी कर रे सारी जरनी तोरे तन जायो गणो पारणिये लरायो माए की मिटती ने मुदर रे देवा माता पिता वारी कर रे। ये तो लंबा भजन है सुनाया आपको।
0: अच्छा लेकिन शादी ब्याह के गीत है।
1: शादी का सुनाओ क्या?
0: हाँ जी सुनाइए।
1: वारी वारी बाजार में खरबूजारू मो वारी वारी बाजार में खरबूजारू मो मारे खरबूजारू मो मारे विवायो रो मो मारे खरबूजारू मो मारे विवायो रू मो। मतलब ये
0: शादी में चलता है ये तो गाना। जी चलिए बहुत अच्छा
1: सुनाया आपने।
0: जी बहुत बहुत आभार। तो ये थे भूरा राम जी ओर से। बहुत ही सुंदर आपने भी गीत सुनाया है शादी ब्याह में देखे वेवाई पर जो संबंधी के ऊपर मीठी गाली गाई जाती है तो इस तरह का गीत था। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और साथ ही साथ आज का प्रश्न है गुरुवार के दिन पहली पूछी गई कौन सी वाली वो आपको सुनाना है और उसका जवाब भी। तो हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। हेलो
2: नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी नमस्कार मदन भाई।
2: अरे बिल्कुल मैं तो
0: अरे जोशी जी थर पगलिया पूजू जद देखो परणी जीरो बाबलिया ने यू समझा दे घर ढूंढू समधर जीरो बिंद बणूला ओए होए होए बिंद बणूला गोड़ी चढ़ूला जद निर खूला सासरियो सगला साथी परण्या में तो रहो कुआरो टाबरियो। जी बहुत बहुत आभार मदन भाई।
2: नमस्कार।
0: जी नमस्कार। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। आज की थीम बड़ी अच्छी है विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। तो बहुत ही सुंदर सुंदर गीत है। चलिए रात्रि जागरण के दो लाइन गीत हम सुना देते हैं।

की। बहुत ही सुंदर गीत है ये और हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। चलिए जो भी जुड़े हैं फिर से फोन कॉल्स कर सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं काल्फीराम, उसके बाद पुनः आपसे रूबरू होते हैं। आप ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़ सकते हैं अंताक्षरी कार्यक्रम में। तो आइए सुनते एक बहुत ही सुंदर गीत, उसके बाद फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना।
1: बनेगी दुल्हनिया मैया राजा बजाएगा बाजा, मैया राजा बजाएगा बाजा। ओम शांति दीदी, ओम शांति
0: जी, ओम शांति। बहुत बहुत आभार आपका सुभाष भाई। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही सुंदर आज की थीम है विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। देखिए समय तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है, आपके पास समय बहुत कम बचा है और इसमें भी अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो फिर रह जाएंगे रेडियो का इंतजार करते रह जाएंगे। हेलो
2: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: मैंने यही दो गाने सोचे थे कि मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, मगर मेरी आवाज से महाराष्ट्र तक पहुंच गई और
0: अच्छा
2: यही गा लिया।
0: जी जी जी।
2: और अभी एक गाना आपने गा दिया, चलो एक गाना हम गा देते।
0: नहीं मैंने नहीं गाया, मैंने नहीं गाया, हमने तो बना करके भाई अंताक्षरी से रह जाएंगे रेडियो मधुबन से रह जाएंगे। जी
2: समझते हैं ना, वो ऐसी लाइन आ गई, चलो गा लेते हैं।
0: हाँ जी।
2: अरे धीर अरे माधरियो मत राई ने मेरे बाग का तेरी नजर लाग, अरे धीर अरे आती के ने मती के तोरणिये मती जाए का तेरी नजर लाग। अरे धीर अरे माधरियो मत राई ने मेरे बाग
0: नमस्कार। जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। आज की थीम है विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। बहुत ही सुंदर थीम है और शादी ब्याह चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु शादी ब्याह में अभी गए हुए हैं इसलिए पूरी तरह भाग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को वो भी जुड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं, बहुत सारे श्रोता बंधुओं की शिकायत रहती है क्या करें दीदी, हम तो फ़ोन के बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं लगता, और हम तो रोज़ सुनते हैं। अगर रोज़ सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आज इतने फ़ोन कॉल्स नहीं लग रहे, बहुत सारा गैप मिल रहा है बीच में। हेलो
3: भूरा राम बोल रहे
0: हो? हाँ जी, राम राम भूरा राम जी।
3: अच्छा
0: सुना दीजिए।
3: अरे बालक बनी बना कुन को हरे बालक बनी मेल माया वाज मारे अंतर भरिया खिड़की बना कौन बोले। ये गाना है, ये भी शादी में गाते हैं।
0: हाँ बहुत ही सुंदर। हाँ जी हाँ जी, बहुत सुंदर गीत है। हाँ जी आभार आपका। तो ये थे भूरा राम जी ओर से, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। अगर किसी का फोन कट जाता है तो तुरंत ही ट्राई करिएगा, क्योंकि देखिए ये तो साइंस के साधन है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। ठीक है तो जुड़ सकते हैं, अपना फ़ोन है वो भी, कितनी बार हम करते हैं तो कट जाता है ना, तो ऐसे ही होता है। ठीक है हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार मदन भाई।
0: हाँ जी नमस्ते मदन भाई।
2: हाँ उन्होंने अच्छा गाना गाया कड़ला मलाऊं।
0: हाँ जी
2: पहले के जमाने में कल्ले पहनते थे, अभी तो कोई कल्ला नहीं पहनते.
0: जी जी जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल
2: कम हो गया है. सही हाँ, उन्होंने सुनाया पहले कल्ला ही मांगते थे.
0: हाँ.
2: और बहुत अच्छा सुनाया, बहुत जीना गीत है और बढ़िया है
0: जी.
2: और हम भी गाते हैं.
0: हाँ जी.
2: दुल्हा दुल्हन की जोड़ी सलामत रहे हो, बोले कुर्बान तेरे गला की मत रहे. दुल्हा दुल्हन जोड़ी सलामत रहे, दुल्हा दुल्हन की जोड़ी सलामत रहे.
0: क्या बात है, बहुत सुंदर जी. बहुत बहुत आभार आपका. तो ये थे मदन भाई मेहसाना से, बहुत ही सुंदर गीत सुनाया है. अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं. वही फिल्मी गीत भी बहुत सारे हैं शादी ब्याह के, तो अगर आप चाहे तो जुड़ सकते हैं. और ठान लिया कि नहीं जुड़ना है तो फिर कितना भी आते हो नहीं जुड़ेंगे, कोई बात नहीं. हमने स्टार्ट कर दिया तो सबकी छुट्टी कर देंगे, लेकिन हम चाहते कि आप जुड़िए और आप अंताक्षरी में भाग लीजिए. हम तो बोलते रहते हैं, है ना. तो हम अपने आप को पीछे रख करके आपको आगे करते हैं. हेलो
4: हेलो नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से आपको सभी दोस्तों को नमस्कार, ओम शांति.
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
4: जी दीदी बहुत अच्छे हैं और सुन तो रहे हैं, लेकिन दोस्तों और आप और दोस्त इतना अच्छे अच्छे गीत गा रहे हैं ना, तो बस हम सुनने में मजा ले रहे हैं.
0: नहीं नहीं कभी सुना के भी मजा लीजिए.
4: सही सही बात. तो चलो मैं एक देसी लग्न गीत हमारे यहाँ का मैं गाता हूँ.
0: हाँ जी.
4: के हाथ गेणा नी वेळाय वे ओण वेवाय हम ताके, वेवाय हम ताके गुखी सा महात नाके, खीसा महात नाके खीसा खाली लागे. ये हाथ गेणा नी वेळाय वे ओण वेवाय हम ताके.
0: बहुत सुंदर. और आज के प्रश्न का जवाब देंगे. चलिए रख दिया है, कोई बात नहीं. आज का प्रश्न है, गुरुवार को जो पहेली पूछी गई, कौन सी पहेली वो आपको बताना है. ठीक है, जो भी जवाब देना चाहे दे सकते हैं. और देखिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अंताक्षरी कार्यक्रम. और थीम आज की बड़ी सुंदर है, विवाह के गीत और रात्रि जागरण के गीत. और हमारे श्रोता बंधु बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं. हेलो
5: जय माता दी,
0: जय श्री हरि.
5: एक मेहंदी का सुना दो.
0: हाँ सुना दीजिए.
5: मेहंदी हाँ हाँ मेहंदी, मेहंदी हाँ हाँ मेहंदी,

0: तो मेहंदी है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी रंग लाती है, मेहंदी आहा मेहंदी। थैंक यू बहन
1: जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। तो मेहंदी का गीत सुनाया है सुरेश भाई ने, इससे मुझे भी एक गीत याद आ गया है।

0: श्रोता बंधुरा हाथ मेहंदी राचनी ले रहा मंड ग्यारा आरजे रे हाथ मेहंदी राचनी। ये रात्रि जागरण का गीत है जो रात्रि जगा के बाद लास्ट में जब देव आकर के भी चले जाते हैं उसके बाद इन गीतों को गाया जाता है इस तरह के। और शादी ब्याह में भी रात्रि जागरण किया जाता है राजस्थान में, तो उनके ऊपर भी पूर्वजों का इस तरह गीत गाया जाता है। तो बहुत सारी विधियां है शादी ब्याह रात्रि जागरण सब में, और हर विधि का अलग अलग गीत है। हेलो, हाँ जी
1: मदन भाई बोल रहा
0: हूँ। हाँ जी मदन भाई नमस्ते।
1: जी जी, ओ उन्होंने गाना गाया मेहंदी का तो मुझे भी याद आ गया।
0: अच्छा हाँ, तो, सुना दीजिए आप भी।
1: जी ओ पिक्चर का गाना है ना, डोली सजा के रखना मेहंदी सजा के रखना सुनना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना ये गाना
0: मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना आएंगे तुझको गोरी, फिर इस तरह का कुछ लाइनें हैं जो आप सुना रहे हैं। तो जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार मदन भाई। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। तो देखिए वो तो कोई गीत सुनाएंगे उसमें से जो भी याद आ जाए आप भी नहीं बोल सकते हैं। जैसे मेहंदी का हमने भी सुना दिया, मदन भाई ने भी सुना दिया। तो इस तरह बहुत सारे गीत है विधि विधान के। जैसे पूर्वजों को बिठाया जाता है, ठीक है, पहले उनके जो पुतली बनाई जाती है वो लेने जाते हैं। किसके यहाँ पर? सोनी के यहाँ पर। हेलो
2: माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी जय श्री हरि।
2: छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं भैया भैया।
0: जी बहुत बहुत आभार। तो रात्रि जागरण में मैं आपको विधि बता रही थी कि जब पुतली लेने जाते हैं तब मैंने आपको सुनाया था इस तरह का गीत गुनगुनाया जाता है, पूर्वज आया हमारे अड़िया उगलिया, ये मैंने सुना दिया, ठीक है। फिर वहाँ पर जब सोनी पुतली को देता है उस समय ऐसे बोलते हैं,

0: तूरी, इस तरह के गीत गाए जाते हैं। हेलो।
1: नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी नमस्कार मदन भाई।
1: तेरो माया बाबू को ले।

0: नमस्कार दीदी जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है। और जैसे कि मैं रात्रि जागरण के विधि विधान के गीत आपको सुना रही हूँ, फिर जब पुतली लेकर के आते हैं घर पर, फिर

महिलाओं के लिए वो जो दरी बिछाई जाती है जिसको राजस्थान में झाजम कहते हैं, तब ऐसे गीत गुनगुनाया जाता है। जब झाजम बिछा करके सबको बिठाया जाता है तो उस समय का गीत आपको सुना रही हूँ।

0: वेश, इस तरह का गीत, क्योंकि महिलाओं के लिए जो गीत गाने वाली उनके लिए दरी बिछाई जाती है, देवताओं के लिए भी बिछाई जाती है जहाँ पर पूर्वज आते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी, सुरेश भाई।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई
1: जी। एक और देसी लोकल गीत है।
0: हाँ जी, जरूर।
1: जमाई और सासू के, जीमो जीमो रे जमाई जी, वार वाट लो तमारा सासुरी जमा वर वाटलो, एवा होशे थी बनावेलो वर वाटलो, जीमो जीमो रे जमाई जी वर वाटलो।
0: जी,
1: और आज का प्रश्न का जवाब तो जो सूर्य नमस्कार।
0: अच्छा, और पहली सुनाएंगे? कोशिश करिएगा कि आप जो पहली पूछी वो आप सुना सको, ठीक है? तो चलिए, ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और आइए यहाँ पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में फिरोज भाई पालनपुर से जुड़ चुके हैं। नमस्ते फिरोज भाई।
1: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी ओम शांति।
1: सभी रेडियो मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आज हमारे घर पे वो मुहर्रम था, तो उसी वजह से सात दान का वो बनाया है।
0: अच्छा जी जी जी।
1: तो खिचड़ी की नियत करके हम लोग क्या आजू बाजू में एक बच्चे लोग को कोई फकीर है, कोई मांगने वाला है, उसको पहले बिठाते
0: जी। बहुत बढ़िया।
1: बाद में हम लोग खाते हैं सब करते हैं, और आज टिफिन में मैं वो भी खिचड़ा ही लाया हूँ।
0: अच्छा बढ़िया बढ़िया।
1: और एक गीत बोलता हूँ।
0: हाँ जी जरूर।
1: ओ राज रे, ओ राज पानी क्या मन केर का तो आ गयो, मन केर का तो आ गयो।

0: મન ઝુમક ઝુમક થાય છે, ચમકારે જીવ મારો જાય છે, મન કેર કાંટો વાગ્યો. જી
1: જી, બહુ સુંદર, બહુત બહુત શુક્રિયા ફિરોજભાઈ.
0: હા બેન જી,
1: હા જી. तो ये थे फिरोजभाई पालनपुर से. अब कार्यक्रम अंतिम चरण पर है. जो भी जुड़ना चाहते हैं आप सभी का वेलकम है. जो नहीं जुड़ पाए अभी तक वो भी कोशिश करिएगा, फ़ोन कॉल्स जरूर लगेगा और अंताक्षरी में भाग जरूर लीजिएगा. आपके पास 6 मिनट है, ठीक है? तो देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं. एक बार आओ जी जमाई जी पावणा, एक बार आओ जी जमाई जी पावना. ओ थाने ओ थाने ओ थाने सासू जी बुलावे, घर आए जमाई ला रखला.
2: एक बार
1: सासू जी ने मालूम होवे मारे घर काम छे, सासू जी ने मालूम होवे मारे घर काम छे. हो मारे हो मारे हो मारे घरे मोकड़ो काम, सासू जी माने माफ करो.
2: थैंक यू, बहुत बढ़िया गीत गाया है. हमारे राजस्थान का, हमारे पूरे राजस्थान का है और बिल्कुल अच्छा लगा. और गाते हैं.
1: हाँ जी.
2: मुबारक हो सबको समय सुहाना, मैं कुछ हूँ मेरे साथियों के.

0: करुणा माया दिलाना देख सुन मेरे आप ना जाना मैं तो दीवाना दीवाना। नमस्कार
1: जी, बहुत सुंदर मदन भाई, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। कार्यक्रम अंतिम चरण पर है, जो भी जुड़ना चाहते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास 3 मिनट है, 3 मिनट में देखते हैं कौन जुड़ते और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। क्या बात है, जाते जाते को भी बाजी मार सकते हैं भाई। एक फोन कॉल्स का सवाल है, एक कॉल आया और जीते आप। देखते हैं इस बार के विनर कौन रहते हैं। थीम भी बड़ी सुंदर है, शादी ब्याह के गीत और रात्रि जागरण के गीत। हेलो
0: जी नमस्कार। अब लग रहे नहीं कोई फोन, तो मैं क्या करूं।
1: ठीक है, आप ही सुना दीजिए।
0: जी जी जी जी जी। अरे ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया, ले जाएंगे हाँ ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया, ले जाएंगे हाँ रह जाएंगे
1: पैसे वाले देखते रह जाएंगे,
0: हाँ ले जाएंगे इस वाली दुनिया, ले जाएंगे।
1: क्या बात है जी, बहुत सुंदर। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। देखिए जुड़ने वाले लगातार जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ने वाले सुन रहे हैं और नहीं सुनने वाले खाली इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा अंताक्षरी कार्यक्रम, कब आएगा, जबकि आ करके भी चला गया। 2 मिनट है आपके पास, फिर भी आप जाते जाते एंट्री कर सकते हैं अंताक्षरी कार्यक्रम में। और बहुत ही सुंदर थीम आज की रात्रि जागरण के। मैं आपको अलग अलग स्टेप बता रही थी कि किस तरह रात्रि जागरण की विधियाँ होती है। फिर तो बाबू जी आते हैं, तब तो ढोल ढमाके, पहले तो ढोल बजाया जाता है बहुत ज़बरदस्त वाला। हेलो
0: जी नमस्कार, मदन भाई।
1: मदन भाई आप किसी को जुड़ने दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, सुना दीजिए, जुड़े हैं सुना दीजिए। हाँ जी,
0: मैया में तो नाचूंगी, मेरी दोनों से आई बारात, मैया में तो नाचूंगी, बलमो खेल कभी लो, मन मोह गयो, बलमो खेल कभी लो, मन मोह गयो, मैं तुम्हारी जाऊं, मैं तुम्हारी जाऊं, मैं तुम पड़ा दे तू दर्पण।

0: निकाल दीजिए
1: जी। चलिए बहुत बहुत आभार। तो ये थे मदन भाई मेहसाना से। अब आपके पास एक मिनट है, जो भी एक मिनट में जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो बता रही थी कि फिर ढोल वाले को बोलते हैं कि भाई थोड़ा जोर से ढोल बजा ताकि हमारे जो पूर्वज आने वाले हैं वो आ जाए।

0: तरह को इस तरह के गीत गाया जाता है और ढोली अच्छी तरह जम के ढोल बजाता है और आखिर पूर्वज आ जाते हैं। आते समय तो गीत बंद होते हैं, अब जिसको जो पूछना हो पूछते वगैरह वगैरह। उसके बाद जाने के बाद वो मेहंदी का गीत आपको सुनाया था, उसमें पूर्वज चले जाते उसके बाद ही बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। सारस के गीत गाए जाते हैं, मेहंदी गाई जाती है, कवरास गाया जाता है और उसके बाद रात्रि जागरण समाप्त। फिर दूसरे दिन पांच गोरनिया मतलब पांच महिलाओं को भोजन कराया जाता है, बाकी बड़ी रात जगाते हैं। तो बहुत ही बड़ा समारोह रखते हैं, बहुत ही बड़ा प्रतिभोज रखते हैं, उसमें 400-500 लोगों का जो भी अपने अपने रिश्तेदार है अपने सामर्थ्य के अनुसार इस तरह करते हैं। तो इस तरह रात्रि जागरण का कार्यक्रम राजस्थान में रखा जाता है। तो अब बस ये लास्ट कॉल। हेलो,
1: जय माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि।
1: सुनो।
0: हाँ जी, सुना दीजिए।
1: अच्छा, लास्ट है।
0: हाँ जी,
1: ठीक है, मैं सुनाता हूँ। ठीक है
0: जी।
1: आज हमारी दिल में अजब सी उलझन है, गाने बैठे गाना सामने शमदन है।
0: चलिए, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया है। अब कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे, अब कोई नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, आज के कार्यक्रम सुने हैं आपने, बहुत अच्छे रहे। सुंदर सा जो विचार दिया है, जरूर ध्यान दीजिएगा कि कैसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। भौतिकता में हम डूब करके अगर ईश्वर के दर्शन करना चाहे तो कभी नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा डिटेच होकर के मन को स्वच्छ रख करके ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और नुस्खे बहुत ही अच्छे दिए हैं, नए शूज नई चप्पलें अगर आप पहनते हैं और उसे घाव पड़ जाता है तो कैसे आप केयर करेंगे। और फिर अंताक्षरी कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, शुरू में थोड़ा स्लो चला लेकिन बाद में हमारे श्रोता बंधु अच्छी तरह जुड़े और बढ़ चढ़ करके हमारे श्रोता बंधुओं ने भाग लिया है, तो सभी को बहुत बहुत आभार। नाम सुनाना चाहूँगी, असमत भाई जुड़े हैं गुजरात से, एक गीत आपने सुनाया है। फिर सुरेश भाई जोटाना से आप दो बार जुड़े हैं, भूरा राम जी और से जुड़े हैं चार बार, सुभाष भाई महाराष्ट्र से जुड़े हैं एक बार, फिरोज भाई पालनपुर से जुड़े हैं तीन बार, सुरेश भाई धानेराव से जुड़े हैं दो बार और आज के विनर है मदन भाई और सुरेश भाई पिंडवाड़ा से 10-10 बार जुड़े हैं। आपके लिए ढेर सारी तालियां। और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत ही अच्छे मतलब विनर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गीतों की प्रस्तुतियां दी इसके लिए। और आप सभी के लिए भी ढेर सारी तालियां जो आपने उमंग उत्साह से भाग लिया अंताक्षरी कार्यक्रम में और सहयोग दिया इसके लिए। और आज का प्रश्न था, गुरुवार को जो पहेली पूछी गई उसका जवाब आपको देना था और पहेली सुनानी थी, लेकिन पहेली किसी ने सुनाई नहीं। जवाब दो जनों ने सही दिया है, एक तो सुरेश भाई जोटाना से, आपका जवाब सही है, सूर्य नमस्कार। बाकी तो किसी ने जवाब सही नहीं दिया है, तो सुरेश भाई के लिए पहले तो आधा जवाब सही दिया पर ढेर सारी तालियां। आज की पहली सुनाना चाहूंगी, सुबह सुबह सूरज को नमन करता, 12 चरणों में शरीर चलाता, लचीलापन और ऊर्जा बढ़ाता, हर दिन स्वास्थ्य का उपहार दिलाता, बताओ मैं कौन। तो ये सूर्य नमस्कार है और ये पहली है। ठीक है, सुभाष भाई जी ने बहुत अच्छी कोशिश की लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। और आज का मीठा मोती है, जीवन एक खुशी की दुकान है जिसमें खुशी देने वाले अनेक सामान है, पर बुद्धिमान वह है जो उनमें से खुशी देने वाले सामान चुनता है, मतलब सामान चुनता है। ठीक है, और अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।

0: अरे ओ छोटू, अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, देख ग्राहकों को खाना कम न पड़ जाए।
1: जी काका जी।
2: अरे काका जरा मेरी थाली लगवा दो, मुझे जरा जल्दी है।
3: ओए जल्दी कर भाई, ओ मेरी चाय का की हुआ।
0: हाँ हाँ लगवाते हैं। लगता है नागपुर से आ रहे हो, हैं? ये संतरों की टोकरी लेकर आए हो। अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा?
2: जी तुकाराम। जी जी वो बहन के यहाँ जा रहा हूँ।
0: हाँ तुकाराम, नागपुर संतरों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है बल्कि एक और बात है जिसने नागपुर को आजादी के आंदोलन में खास बना दिया।
4: गजबी काका, लगता है आप शायद छोटा नागपुर की चर्चा करने वाले हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ट्रक लेकर रांची गया था। अगस्त का महीना था, वहाँ आजादी का उत्सव मनाने जुलूस निकला था। वहाँ कोई गणपत राय को लोग फूल माला चढ़ा कर सम्मान दे रहे थे।
0: तुकाराम, गणपत राय छोटा नागपुर के शासक, साहसी और बहादुर स्वाधीनता सेनानी थे। उनका जन्म रांची जिले के कोकड़ा परगना के पैठिया गांव में राय साहब के यहाँ हुआ था। राय साहब बड़े मिलनसार और जाने पहचाने व्यक्ति थे।
5: राय साहब को गोविंद का प्रणाम।
6: ओ अरे आओ आओ गोविंद, आओ बैठो, कहो कैसे हो?
5: चांगला राय साहब चांगला, आपका बेटा गणपत तो बहुत होशियार और कुशाग्र बुद्धि का है। राय साहब कोई काम उसके लिए सोचा है?
6: हाँ गोविंदा, छोटा नागपुर के महाराज जगन्नाथ शाह को एक बुद्धिमान दीवान की जरूरत है। सोच रहा हूँ क्यों ना गणपत को ही दीवान की जिम्मेदारी दिलवा दी जाए।
5: अरे तो फिर देर किस बात की राय साहब?
6: मैं गणपत को कल ही छोटा नागपुर के महाराज के दरबार में भेज दूंगा। वहाँ गणपत की दीवान के रूप में नियुक्ति हो जाएगी। मेरी उनसे बात हो गई है, गणपत के लिए ये एक बेहतरीन मौका होगा।
0: तुकाराम, गणपत राय छोटा नागपुर के दीवान तो बन गए लेकिन महाराज जगन्नाथ शाह की विलास प्रीता, आलसपन और नाकाबिलियत के कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। ऐसे हालात में

0: गणपत सरकार, गणपत सरकार, अरे आप यहाँ खेत में क्या कर रहे हैं?
1: क्या हुआ गोपीनाथ?
0: सरकार, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, जगदीशपुर और तो और दानापुर में भी जबरदस्त क्रांति हुई है।
1: अच्छा।
0: और कई लोग फिरंगियों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं।
1: अच्छा।
0: आज ही दानापुर के एक जमींदार ने फिरंगियों को अपनी जमींदारी देने से साफ इनकार कर दिया और तो और दो फिरंगियों को उसने धक्के मार कर बाहर का रास्ता दिखा दिया।
2: लगता है क्रांति की आग अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लगी है। गोपीनाथ, अब वक्त आ गया है जब मुझे भी भारत माता के लिए क्रांति की मशाल थामनी चाहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मैं गणपत राय भारत माता के प्रति समर्पित होता हूं और देश की आजादी के लिए जीऊंगा, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दूंगा।
3: और तुकाराम, इसी बीच 1 अगस्त 1857 को डोरंडा छावनी में 200 सैनिकों की टुकड़ी ने जमादार माधव सिंह और नादिर अली खां की अगुवाई में स्वाधीनता का बिगुल फूंक दिया। और फिर 2 अगस्त को वो दिन जब विद्रोही सैनिकों ने रांची नगर पर कब्जा कर लिया।

0: नादिर अली, सेना ने कमिश्नर हाल्टन का दफ्तर जलाकर खाक कर दिया है और अपर बाजार की जेल को तोड़कर 300 कैदियों को रिहा कर दिया गया है।
1: हाँ माधव सिंह, हमारे आदमियों ने कलेक्टर कैप्टन डेविस का घर भी लूट लिया है। वाकई ये क्रांति की राह में एक बड़ी कामयाबी है।
0: नादिर भाई, ये वक्त तो जश्न मनाने का है।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, छावनी के रास्ते हम इस कामयाबी का जश्न भी मनाते चलेंगे। अब चलो डोरंडा छावनी वापस चलें।

0: विद्रोह का बिगुल बज चुका था। डोरंडा छावनी के विद्रोही नेताओं माधव सिंह, नादर अली खां और जय मंगल पांडे ने 1853 से ही अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की तैयारी कर रहे बड़कागढ़ रियासत के राजा विश्वनाथ शाहदेव को छोटा नागपुर की स्वतंत्र सरकार का गवर्नर बना दिया। दूसरी तरफ गणपत राय को भी पूरी खबरें मिलती रहीं। उन्होंने खत के जरिए सभी बागी नेताओं को धन्यवाद और बधाई संदेश भेजा। इसके बाद खुद मिलने के लिए निकल पड़े।
1: जयराम जी की माधव भाई, जयराम जी की पांडे जी,
2: जयराम जी की, जयराम,
1: जयराम जी की गणपत भाई, आइए आइए, आपका खत मिला था, काफी अच्छा लगा, कहिए।
3: बस आप लोगों के कारनामे सुने तो मुझसे रहा नहीं गया, सोचा आप तो मिल ही लूं आप लोगों से। आप लोगों ने बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित कर बहुत अच्छा किया है। उत्तर भारत के कई इलाकों को स्वतंत्र कराना भी एक अच्छा कदम था आपका।
2: गणपत राय जी, अगर आप जैसे देशभक्त हमारे साथ हो गए तो कई इलाके क्या पूरे भारत में आजादी का झोंका आ जाएगा।
3: पांडे जी, मेरा ख्याल है कि हम लोगों को बहादुर शाह जफर की मदद करनी चाहिए।
2: लेकिन गणपत राय जी, ये अभी क्यों?
3: माधव सिंह जी, ताकि सारा देश स्वाधीन कराया जा सके, नहीं तो छोटा नागपुर की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। हमें पहले रोहतासगढ़ के कुंवर सिंह से मिलना चाहिए, ताकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर से मिलकर स्वतंत्र नागपुर की सनद मिल जाए।
2: बिल्कुल ठीक, इससे नागपुर की आजाद सरकार को कानूनी मान्यता भी मिल जाएगी।
3: हाँ माधव सिंह जी, इतना ही नहीं, महाराजा जगन्नाथ शाह को प्रशासन का कोई ज्ञान नहीं है।

0: वो तो अपने महल में चैन की नींद में डूबे रहते हैं। इसलिए अब बहादुर शाह जफर की मदद कर हम महाराज को गद्दी से हटाकर अपनी आजादी पक्की कर सकते हैं।
1: लेकिन इसके बाद छोटा नागपुर का शासन चलाएगा कौन, क्योंकि इतनी काबिलियत तो अभी किसी में भी नहीं है।
0: हाँ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आजाद छोटा नागपुर का प्रशासन अच्छी तरह चलाने के काबिल हूँ। अगर ऐसा होता है तो रोहतासगढ़ और दिल्ली अभियान के लिए पूरे दल बल का इंतजाम भी करूंगा और सैनिकों को वेतन भी दिया जाएगा। क्या कहते हैं माधव सिंह जी आप?
1: बात तो ठीक है। आज से आप डोरेंडा सेना के कमांडर इन चीफ हुए गणपत राय जी।
2: ओए छोटू, हम चारों का खाना लगा दे।
3: ले आ, ले आ, जल्दी ले आ।
4: गणपत राय का फैसला कुछ लोगों को रास नहीं आया। गवर्नर, बड़कागढ़ के राजा और बागियों के प्रमुख नेता विश्वनाथ शाहदेव ने इतने लंबे दिल्ली अभियान को अव्यवहारिक बताकर उसका विरोध किया। लेकिन जब उनकी बातें नहीं मानी गई तो शाह ने अभियान में बाधा पहुंचाई। उन्होंने कचहरी आना बंद कर दिया। जयमंगल पांडे ने बीच बचाव करते हुए परेड ग्राउंड में एकता सम्मेलन बुलाया।
5: भारत माता की
6: जय।
5: भारत माता की
6: जय।
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
5: देश के कोने कोने से आए मेरे भाइयों, आज हम यहां पर क्यों एकत्रित हुए हैं ये सभी जानते हैं। आज हमें क्षेत्रवाद छोड़कर पूरे देश के बारे में सोचने की जरूरत है, ताकि पूरे देश को फिरंगियों से आजादी मिल सके। भारत माता की
6: जय।
5: भारत माता की
6: जय।
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
5: और इसके लिए जरूरी है कि दिल्ली अभियान के लिए सभी का साथ मिले। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि सारे मतभेद भुलाकर अभियान में मदद करें।
6: वंदे
5: भारत माता की
6: जय।
5: भारत माता की
6: जय।
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
5: कुंवर सिंह जिस सम्मेलन में नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने खत के जरिए डोरंडा की सेना को रोहतास गढ़ में मिलने का न्योता दिया है।
1: क्या बात है बड़कागढ़ राजा विश्वनाथ शाहदेव जी, आप अचानक चोट खड़े हुए और काफी गुस्से में दिख रहे हैं, आखिर बात क्या है?
7: ये पत्र नकली है, कुछ भी हो जाए लेकिन दिल्ली जाने के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ।
1: सुनिए सुनिए, मैं माधव सिंह आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो सहमत हैं वो बैठ जाएं। तो फिर सभी की सहमति से दिल्ली अभियान शुरू करने की घोषणा की जाती है।
6: भारत माता की जय।
8: भारत माता की
6: जय।
8: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
8: इंकलाब
6: जिंदाबाद।
0: क्या बताऊं माधव सिंह जी और पांडे जी, मैंने छोटा नागपुर के महाराजा और चारों ओर के जमींदारों को मदद के लिए संदेश भेजे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आई। अब मैं क्या जवाब दूं?
1: अब हो भी कह सकता है गणपत भाई, लेकिन अभियान बंद तो नहीं होगा।
5: मैं जय मंगल पांडे अपने विद्रोही सैनिकों से कहना चाहता हूँ, भाइयों, भीख मांगने से मदद नहीं मिलेगी। उठो और विश्वनाथ शाहदेव, खुदा शाह, गोविंद शाह और गणपत राय को पकड़कर डोरंडा ले जाओ, फिर मदद अपने आप आ जाएगी।
6: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
6: इंकलाब
8: जिंदाबाद।
5: भारत माता की
6: जय।
5: भारत माता की
6: जय।

0: अरे सैनिक तो लगातार गलतियों पर गलती किए जा रहे हैं, हमें मजबूरन तो उत्तर की ओर जाना होगा।
1: गणपत राय जी आप नहीं जा सकते, आपको यही रुकना पड़ेगा।
0: लेकिन प्रभु सिंह ये सही नहीं हो रहा है।
1: सही और गलत का फैसला तो पंडित जी ही करेंगे, आपको उन्हीं के सामने चलना होगा।
0: ठीक है, हम पांडे जी के सामने जाने को तैयार हैं।
1: पंडित जी, गणपत राय जी सेना को धोखा देकर उत्तर की ओर जा रहे थे, लेकिन मैंने देख लिया और आपके पास ले आया।
2: नहीं प्रभु सिंह, गणपत राय जी को छोड़ दो, अब वो आजाद हैं। उन्हें खुद फैसला करने दो कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि चतरा की इस लड़ाई में हम पराजित हो गए हैं और दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया है।
0: पांडे जी, हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारी रगों में देशभक्ति का जो लहू दौड़ रहा है वो हथियार डालने को तैयार नहीं है। अब दिल्ली जाने का कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन ये लड़ाई हमें जारी रखनी होगी।
2: गणपत राय जी, ये जानते हुए भी कि हमने आपको कितना अपमानित प्रताड़ित किया है, फिर भी आप इस लड़ाई में हमारे साथ हैं।
0: पांडे जी, ये लड़ाई आपकी या मेरी नहीं है, ये लड़ाई अपना खोया हुआ स्वाभिमान वापस पाने की है, ये लड़ाई आजाद भारत में सांस लेने के लिए है।
2: बहुत खूब गणपत राय जी, आपके इस देशभक्ति की भावना पर हमारा नमन। आप जैसे देशभक्तों की बुनियाद पर ही हम आंदोलन की वो दीवार खड़ी करेंगे जिसे भेदना अंग्रेजों की बस की बात नहीं। भारत माता की
3: जय।
2: भारत माता की
3: जय।
2: इनकलाब
3: जिंदाबाद।
2: इनकलाब
3: जिंदाबाद।
0: देखिए माधव सिंह जी, रांची पर भी अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया है और पूरी ताकत हमारे दुश्मनों की तरफ ही हो गई है। ऐसे में ये जरूरी है कि हम कुछ दिनों बाद नए सिरे से दोगुनी ताकत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला करने की तैयारी करें।
2: आप वाजिब फरमाते हैं गणपत राय जी, क्योंकि ऐसी हालत में हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन याद रहे, इस दौरान अपने शत्रुओं से सावधान रहें। जय हिंद।

0: Oh, welcome, Mr. Jagannath Shah.
1: Captain Sahab, agar aap chahe, to hum aapki madad karne ko tayyar hai.
0: Oh, well, kaise, Mr. Jagannath? Hamara madad aap kaise kar sakta hai?
1: कैप्टन साहब, मैं गणपत राय और उसके साथियों को पकड़वाने में आपकी मदद कर सकता हूँ. मेरे पास पक्की खबर है कि वो सभी कहाँ छुपे हैं.
0: ओह, बट रिमेम्बर, आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट होना मांगते हैं, क्योंकि हमको खाली हाथ लौटने का आदत नहीं है.
1: अरे नहीं नहीं नहीं, आप निश्चित रहें कैप्टन साहब. सुनिए कैप्टन साहब, गणपत राय और बड़का का महाराजा विश्वनाथ शाहदेव नावागढ़ क्षेत्र के कसरार नाम की जगह में छुपे हुए हैं. अगर वहां पर पुलिस भेजी जाए तो वो पकड़ में आ सकते हैं.
0: ऑलराइट, हम अपना फोर्स भेज कर गणपत राय को अरेस्ट करवाएगा. अगर खबर पक्का निकले तो छोटा नागपुर आपका ही रहेगा.
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कैप्टन साहब.
2: सिपाही आओ, मेरा बात ध्यान से सुनो. सिपाही धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जैसे ही गणपत राय ठीक तो है उसे फौरन अरेस्ट कर लिया जाए. अंडरस्टैंड?
0: हमारा सिपाही होने आखिर तुमको गिरफ्तार कर लिया है गणपत राय. हिलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि तुम दोनों को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है. कैप्टन, तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो, हमारी आत्मा को नहीं. आत्मा में तो आजाद भारत का सपना बसा है और एक दिन साकार भी होगा. व्हाट नॉनसेंस, अब जेल में ये सपना देखना. अंग्रेजी सेना से बगावत करने का जो मैं हम दोनों को अरेस्ट करता है.
2: चलान धड़को, जेल में बंद कर दो और कोर्ट में पेश करो.
0: महाराज विश्वनाथ जी, लगता है किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, तभी पुलिस हम तक पहुंच पाई.
3: ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का कार्यवाही शुरू किया जाए. सरकारी वकील भाई शुरू करें.
4: मिलार्ड, आज का केस गणपत राय और महाराजा विश्वनाथ शाहदेव के खिलाफ है. दोनों ने विद्रोही सेना के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से बगावत की है. मिलार्ड, यह है वो पत्र जिससे गणपत राय पर लगाया गया राजद्रोह का आरोप साबित होता है.
5: जज साहब, आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, हम वतन पर मर मिटने को तैयार है.
3: ऑर्डर ऑर्डर, पेश किए गए गवाहों और सबूतों के मद्देनजर विश्वनाथ शाहदेव को उम्र कैद का सजा दी जाती है और गणपत राय को सजाए मौत सुनाई जाती है. 21 अक्टूबर 1858 को गणपत राय को फांसी पर चढ़ाया जाएगा. टू बी हैंग टिल डेथ.
5: एक गणपत राय नहीं रहेगा तो क्या, लगा दो मुझे फांसी, लेकिन याद रखना तुम्हें भारत छोड़कर जाना ही होगा. आज नहीं तो कल भारत आजाद होकर ही रहेगा. भारत माता की
6: जय.
5: भारत माता की
6: जय.
5: भारत माता की
6: जय.
7: अरे भैया सुनो, आज गणपत राय को कदम के पेड़ पर लटका कर फांसी दी जाने वाली है.
8: अरे गणपत भैया ने देश को आजाद कराने का सपना देखा.
7: हाँ.
8: वो सपना हम सब मिलकर पूरा करेंगे.
7: अरे हम मिलकर पूरा जरूर करेंगे.
8: अरे वो देखो, पुलिस जंजीरों में जकड़े गणपत राय को फांसी के लिए ला रही है.
5: भाइयों, मैं गणपत राय आंदोलन की अलख जगाकर अब आपके हवाले कर रहा हूँ. ख्याल रहे ये अलख बुझने न पाए.
9: चुप रहो गणपत, जल्दी करो, इसे जल्दी फांसी पर लटकाओ.
5: भारत माता की
6: जय.
5: भारत माता की
6: जय.
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद.
5: इंकलाब
6: जिंदाबाद.
10: तुकाराम। और इस तरह 21 अक्टूबर 1958 को स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी, कुशल राजनीतिक और छापामार जन योद्धा, क्रांति वीर गणपत राय आजादी की बलिवेदी पर शहीद हो गए।
11: सचमुच काका जी, ऐसे ऐसे वीरों की शहादत के बाद हमें ये आजादी मिली है। देश में कितने ही ऐसे वीर हुए जिन्हें हम जानते तक नहीं, और जब उनके बारे में सुनते हैं तो उनके सम्मान में सिर झुक जाता है।
12: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा। निर्देशन सुभाष सक्सेना, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग। क्रांति कथाओं को सुनकर आपको भेजना है एक प्रेरक स्लोगन। इसी समय फिर सुनिए हिंदुस्तान।

0: वो कुछ 70 और 75 के आसपास होंगी, लेकिन जीवन से भरपूर थी। मैं उन्हें आजी कहती थी। उनके चांदी जैसे चमकते बाल, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, उनकी गुनगुनाती खुशियां बिखेरती हंसी मैं कभी भूल ही नहीं पाई। जब भी मैं उनसे मिलती उन्हें गुनगुनाते पाती।
1: सोने जैसा रंग है मेरा, चांदी जैसे बाल।
0: और उनका ये उल्टा गाना सुनकर मैं मुस्कुरा देती तो वे कहती, क्या हुआ जो मेरा रंग गेहुआ और बाल सफेद हैं तो। अरे देख, चांद पर भी तो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे हैं। फिर अपने पोपले मुंह से हंसते हुए मुझे ही चढ़ाने लगती। उनकी उस हंसी में कुछ तो था जो मुझे उनकी ओर खींचता था। मैं धीरे धीरे उनके करीब होती चली गई। मैं जितना जितना उनसे मिलती उतने ही उनके जीवन के पन्ने मेरे सामने खुल जाते। उनके जीवन का हर पन्ना एक अलग रंग लिए हुए था। उन रंगों में रंगी मैं आज फिर उनके पास जा बैठी। उनके बारे में सब कुछ जानने का निश्चय कर मैंने धीरे से पूछा, आजी आपकी आंख को क्या हुआ है? क्योंकि उनकी एक आंख हमेशा बंद रहती थी। मेरे पूछे प्रश्न पर उन्होंने अपनी दूसरी आंख सहलाते हुए कहा,
1: कुछ खास नहीं रे, जब मैं बच्ची थी तभी ब्याह दी गई। मेरी सास को मेरी आंखें बहुत पसंद थीं। एक दिन उन्होंने अपने हाथ से बनाया काजल मेरी आंख में डाला और मेरे आगे अंधेरा छा गया। मैं वहीं गिर पड़ी। जब होश आया तो एक झरोखा बंद हो चुका था।
0: मैं उन्हें देखती रही। इतनी बड़ी बात कोई हंसकर कैसे बता सकता है? परंतु उन्होंने बताया था, लेकिन कदाचित अपने जीवन के इस पन्ने में छुपा सच वे बहुत खूबसूरती से अपनी हंसी के पीछे ढक चुकी थी। मैंने फिर पूछा, और आपका ये हाथ? उनका बायां हाथ पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। वो फिर मुस्कुराई, बोली,
1: अरे कुछ नहीं, एक दिन मैं खाने में नमक डालना भूल गई। जब मेरे पति खाना खाने बैठे तब मुझे ध्यान आया। मैं भागती हुई गई और उनकी थाली में नमक रखा, लेकिन जल्दबाजी में डिब्बे का ढक्कन ढीला लग गया और सारा नमक थाली में गिर पड़ा।
0: मैंने पूछा, फिर?
1: अरे फिर क्या, पति ने मेरा हाथ मरोड़ दिया।
0: तो आप किसी डॉक्टर के पास?
1: अरे नहीं रे, मुझ मुई को कौन ले जाता डॉक्टर के पास।
0: मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत न थी। मैंने उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछा तो बोली,
1: है ना, इसी बगीचे में खेलते सारे मेरे ही तो हैं।
0: और आपके पति?
1: वे तो भगवान के पास खुशी से रह रहे हैं। अब मेरे जैसी एक आंख और एक हाथ वाली के साथ रहने से तो अच्छा ही है। है कि नहीं?
0: कितने दिन हुए आपके पति को गुजरे? मैंने सहानुभूति से पूछा।
1: हुए होंगे यही कुछ 15-16 साल।
0: तो तब से आप अकेली रहती हैं?
1: अकेली? अरे अकेली कैसे, तुम सब तो हो मेरे साथ। अब वैसे भी जिंदगी तो इम्तिहान लेती ही रहती है, तो क्या हमें जीना छोड़ देना चाहिए?
0: फिर थोड़ा गंभीर होते हुए बोली,
1: तुमने चींटियों को गौर से देखा है कभी? वो अपने भार से 50 गुना ज्यादा वजन उठाकर भी नहीं दबती। हम तो फिर भी इंसान हैं, क्यों दुख दर्द के नीचे दबे रहे?
0: इतना कहकर वे अपने जीवन की किताब को समेटते हुए उठ खड़ी हुई। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। कहीं पढ़ी कुछ पंक्तियां याद हो आईं कि कुछ लोग रंगोली की तरह होते हैं, जहां भी जाते हैं अपने रंग छोड़ जाते हैं।
1: आज उन आजी ने भी मेरे मन में अपने अमिट रंग छोड़ दिए थे। दोस्तों, ये बेहद खूबसूरत लघु कथा आप सुन रहे थे जिसका शीर्षक था जीना इसी का नाम है, जिसे लिखा है अनघा जोग लेकर जीने। सच है, जीना इसी का नाम है। आजी उम्र में, शारीरिक उम्र में एक्चुअली, हमसे बड़ी होती हुई हमको बहुत बड़ा सबक देती हैं। हम कम उम्र वाले होते हुए, अपरिपक्व होते हुए भी थक जाते हैं, हार जाते हैं परिस्थितियों से, मगर आजी का जो चरित्र अनघा जोग लेकर जिन्हें गढ़ा अपनी लघु कथा के माध्यम से, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मुझे लगता है कि अनघा जोगलेकर जी की कलम को वरदान प्राप्त है कि वो जो भी लिखेंगी वो सिद्ध हो जाएगा। चाहे वो संरक्षक हो, तेरी मेरी कहानी हो, या आज की जो लघु कथा मैंने पढ़ी जीना इसी का नाम है। कमाल की रही तीनों कथाएं। आपको जानकर खुशी होगी कि अनघा जोगलेकर जी ने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। बाकी कैसी लगी आपको जीना इसी का नाम है, आप जरूर अपने फीडबैक, कमेंट शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे साथ, और शेयर जरूर करें इन लघु कथाओं को, ताकि इनमें छिपे छोटे बड़े संदेश जो हैं वो मानवता के काम आते रहें और संवेदनाओं का प्रवाह बना रहे। मैं अमित वाधवा इस वादे के साथ आपसे इजाजत लेता हूं कि अगले पड़ाव पर एक नई कहानी, लघु कथा लेकर फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आरव, आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: आटा साटा।
1: राम राम भाई, राम राम।
0: राम राम कंचन, राम राम। और भाई तबीयत ठीक है?
1: तबीयत पानी तो सब ठीक है, पर मारे तो काई है भाई। मन में पंख लाग गया जब मैं सुने कि राजस्थान हाई कोर्ट रोक लगा देनी है आटा साटा पे। तो
0: हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई थू।
1: हाँ,
0: आटा साटा उम्र
1: उम्र
0: भर
1: भर
0: का
1: का
0: घाटा,
1: घाटा।
0: यह प्रथा है गणी ही बुरी। तो बिल्कुल यह बुरी प्रथा है और बहुत अच्छो की दो। तो पहले तो घावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधुओं स्वागत करा। हाँ, आप सुन रहे रेडियो मधुबन,
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो।
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो अने कार्यक्रम में श्रोता बंधुओं ने आज आपा यो ही केवा छावा आज आटा साटा री बात करा है, क्योंकि आटा साटा पे आपा देख रहे हैं राजस्थान रा महीने घणो टाइम हो गयो, या रस्म चालिया ने या परंपरा चालिया ने।
1: हाँ, आटा साटा एक प्रकार से राजस्थान के अंदर एक परंपरा ही मान लो,
0: हाँ, जिन्हें आपा
1: है
0: कुप्रथा भी कह
1: वो
0: सका।
1: प्रथा है, परंपरा
0: हाँ
1: का ही। परंपरा तो अच्छी होया करे, पर
0: हाँ
1: है ना, कहिए कुप्रथा है। और
0: बिल्कुल।
1: आटा साटा में एक ही परिवार बर्बाद नहीं हुआ, एक साथ एक की कमी ने दो परिवार ने भोगनो पड़े।
0: वो सही बात है। देखो आपा राजस्थान की बात करा, अभी मैं विशेष करण गांवरी बाता की बात करा आपा, ठीक है? तो गांवारा महीने ज्यादा प्रथा है, या शहरा में तो फिर भी अत्रो कोई ध्यान नहीं देवे, आटा साटा बहुत कम होवे, लेकिन गांवरा महीने तो बस यो ही है कि आटा साटा में ही ब्याह करनो, भले तो बड़ा भाई की छोरी का एवजे काका की करानी, या अगर सगा भाई बहन वे तो भाई बहन की।
1: बिल्कुल सही बात है। मतलब ज्ञान मान ले कि कई बार तो संबंध ही हुआ है आटा साटा के बिना,
0: हाँ, कतरा का छोरा कुआं जावे। हाँ,
1: कुंवारा रह जावे, क्योंकि भाई बैठे का ही है, भी परिवार में लड़की नहीं है मान ले, है और तो कही है उड़ो ही है यार।
0: सही बात है।
1: और कई बार या को बहुत यान मान ले दुखद स्थिति सो
0: अरे
1: परिवार ने
0: दुखद
1: गुजरना
0: स्थिति
1: पड़े।
0: घना परिवार में वेवे, और कटे कटे देखो लोग अच्छा भी होवे, कोई डिमांड कोनी होवे,
1: हाँ
0: कोई डिमांड कोनी हो। मैं अपना आबूरा पास में एक गांव में गया हा, तो
1: हाँ
0: बटे बात की दी महिलाओं, तो वे क्यों बेन जी हमारा गांव में भले लाख बुराई देखो, पर माँ के दहेज री प्रथा अटे कोनी। माँ के जो देवे खुशी खुशी ले लेवे, कोई कई डिमांड कोनी करे कि भाई यो नहीं दीदो वो नहीं दीदो, माँ को मान नहीं राख्यो, माँ को सम्मान नहीं राख्यो, वो कई बात कोनी। तो मैं बहुत बढ़िया, देखो ईगो बढ़कर और कई छावे, जो पूरा गांव री लेडीज बात कर रही कि माँ का अटे दहेज कोनी मांगे।
1: अच्छा, आपने आबू रोड की माई
0: हाँ, आबू रोड
1: नहीं।
0: का माई नहीं, अपने एक गांव है, नाम नहीं बतावा पर पास में ही है। तो मने अच्छो लाग्यो कि देखो यह भी एक अच्छी बात है, पूरा गांव खाली एक
1: बहुत
0: समाज
1: अच्छी।
0: नहीं, हर समाज की
1: हाँ
0: महिला कह रही कि माँ के अटे कहीं भी नहीं, माँ परण आया माने कहीं भी नहीं दी दो।
1: ओ
0: हाँ ठीक है, 5 जोड़ी कपड़ा दीदा जो लेना
1: हाँ,
0: गया।
1: जो माता पिता की एक मन
0: हाँ
1: से इच्छा हुआ बस,
0: हाँ
1: खाली
0: मनसु जो
1: मात्र।
0: इच्छा ही दे दी दो, पर अटिनो यूनी क्यों योनी लाइन वो नहीं लाई। मैं क्यों बहुत बढ़िया, और शिक्षित है, यूं नहीं है
1: हाँ
0: कि हाँ अनपढ़ गांव है, शिक्षित है। तो यह बात देखो हर गांव की विशेषता तो कहीं कहीं होया ही करे।
1: वो बिल्कुल सही बात है कि देख जियान मन खासुई तो गांव बने,
0: हाँ बिल्कुल।
1: है मन
0: हाँ
1: खासी गांव बने, जान हर मनक की अलग अलग विशेषता हुए, यानी हर गांव की भी अलग महक हुए, खुशबू हुए, विशेषता हुए।
0: बिल्कुल, पर वही गांव रही विशेषता यह है कि हर जोड़ा आटा साटा में।
1: ओ
0: अच्छा ही है तो बुरा ही भी है।
1: हाँ,
0: और
1: देखो भाई, अठे मान ले मारो छोरो है तो बठे सो मैं लाऊं तो मने देणो भी पड़सी,
0: देनो भी
1: ये
0: पड़सी
1: वास्ते ना लेणो
0: ना
1: ना
0: देनो।
1: देणो, यानी दहेज प्रथा के मामले में तो आटा साटा को और रोल है।
0: हाँ यो रोल है, तो ठीक है, खुशी खुशी कर रहे हैं जदी तो कोई तकलीफ नहीं, पर
1: बस
0: यू है कि कटे मान लो नी बनी बटे
1: हाँ
0: घनी मुश्किल हो जावे। वणी घावरे में बात बताऊं, वणी घावरी बेटी सामने वाला के दे रखी और सामने वाला की बेटी अटे राख रखी, ठीक है? गांव में सामने वाला की बेटी ने हाथा में रखे, तीन टावर भी हो गया, हाथा में रखे अच्छी रखे, कोई
1: अच्छा
0: शिकायत
1: अच्छा
0: नहीं, कोई सब आप आपका हिसाब उरे वह। पर यहाँ की बेटी जाने सामने वाला के दीदी वे गणी में न हैरान करे, सारो तो काम करावे, काम करे बावजूद भी पति मारपीट करे
1: ओ
0: और सास गाली गलौज करे,
1: बताओ तो कौन रहे।
0: हाँ तो वाह कहवे की अबे मारे नी रहनो और घनी बार मार काढ़ियो कहीं पति दारू पीवे।
1: ओहो
0: और शराब भी तो एक बहुत खराब आदत है ना।
1: खराब आदत है और वाह में तो कोई विवेक तो रहे नहीं।
0: विवेक शक्ति खत्म हो जावे।
1: खत्म हो जावे
0: और बड़ी टाइम पे वो कतरो मार रहे हो भी नहीं ठाको नहीं होवे।
1: बड़ी बात तो आ है।
0: तो एक बार तो फ्रैक्चर कर दी दो हाथ की हड्डी तोड़ दी थी। तो बेचारा माँ बाप लेन आया क्योंकि अब कर ही कौन काम।
1: कौन काम करी
0: तो बाचा रानी गांव में लेन आया बिना हाउ की दी 2-3 महीना राखी मैं जॉइंट भी सब की दो। पाचा वो जमाई तो आयो ही है कि भाई मारी गलती होगी और अबे मैं शराब नहीं पीऊ अबे भेज दो। माँ बाप देखियो चलो सुधरवा को एक मौको देवो। ले गया बाची भेजी तीनी टाबर पढ़ाई बिगड़ी वाकी क्योंकि तीनी टाबर ने भी सास क्यों मेरे को नहीं राखू। तो 2-3 महीना अटे रहा पाचा टाबर वटे गया ठीक है वटे 15 एक दिन तो हौरिया और पाचो वो तो शराब पीवा की आदत तो कदी छूटे गई
1: छूटके
0: और पाची मार पीट के दी और अतरी मार पीट के दी वहा हाथ की जो हड्डी पहली फ्रैक्चर भी वहा पाची वेगी।
1: ओहो
0: पाचे माँ बाप के अबे को नहीं भेजा
1: सही बात
0: और वहां भी क्यों अबे मैं हावरा में
1: अबे मैं नहीं जाऊं।
0: तो सासू माँ के वह थू नहीं रहे तो थारे तीन छोरा छोरी ने ले जा। तो तीन छोरा छोरी ने लेन पियर आएगी ठीक है अबे वाकी बेटी अणी गांव में कोई तकलीफ को नहीं और वाभी कतरो ही समझाइयो कि भाई हौ राखो था के कई तकलीफ है
1: कई तकलीफ है
0: फिर भी नहीं समझा। और अबे वे कहवे के मारो घर टूटियो तो चल थू आ जा पाची बेटी ने कहवे थू आ
1: यानी सोचक भी वो परेशान हुए।
0: हाँ अरे भाई था तो मार रहे पर इन्हें तो आराम हो खाता में राख
1: रहा था मैं राख रहा मतलब जबरदस्ती अपनी बेटी को भी घर बिगाड़े।
0: हाँ या कहवे मैं नहीं आऊ मैंने कई भी तकलीफ को नहीं अटे
1: बोलो
0: मैं नहीं आऊ मारो घर को नहीं तोड़ू। तो माँ बाप आन बेटी का लारे अटे मार पीट के दे पिताजी और उन्हें खींचन ले गया कथा ना आनो ही पड़ी तन शर्म नहीं आई रही तारी भाभी अटे आ गई तो तू अटे क्यों बेटी सके। अरे मन का के देखो विवेक शक्ति खत्म हो जावे जो देखो था तो पराई बेटी ने दुख दे रहा और यह जो ताकि बेटी यानी घर में है बिना हाथा में राख रहा तो वो थाने फर्क नजर नहीं आ रही हो
1: यानी एक घर बर्बाद हुआ कि लारे लारे जबरदस्ती दूसरो घर भी बर्बाद कर।
0: हाँ तो वे जबरदस्ती लेन गया अब लेन चाहे तो टाबर की पास में रहे टाबर ने भी लेन गए अब वहां के बेंची मारे रेणो को नहीं मारे तो मारा हावरा में रेणो क्योंकि मारे तो आदमी भी समझदार है और मारा हाउजी भी माँ की न्यान रखे मारो घर में क्यों तोड़ू
1: पर तो माँ बाप की बुरी।
0: हाँ
1: माँ बाप और भाइया की बुरी।
0: हाँ भाइया की बुरी तो वो भाई के भाई थू परीगी तो थारा ही हाथ पग तोड़ दे थारा हराम परीगे तो
1: बोलो।
0: अरे भाई तू दारू पीन थार लुगाई ने मार रहे है बेन का उपरे दादागिरी बता दो ही घर तोड़ रहे आप तो जाता रहे वहां घावरा महीने आज भी कई वाको तोड़ने
1: फैसला नहीं हुआ।
0: हाँ फैसलो कोई हुआ और वाह वाका घर है और वाह वाका घर है और वह बेचारी रो रहे हमारे हार रहे जानो हमारे छोरा छोरी की जिंदगी बगड़ जाए और वाह तो मजदूरी कर रही वाह तो भाई हो चली दो जाने को नहीं दो बार हड्डियां तोड़ दी थी कौन जावे।
1: सही बात है
0: सुधरे को नहीं
1: और पढ़ी लिखी है नहीं कि कापनो बाप आप ही फैसलो ले ले वे।
0: देख कंचन एक दौर एड़ो हो कि बेटा नहीं पढ़ाता भी कम हा और पढ़ती नहीं पढ़ती शादी करा देता कि भाई मांडो करो और भेजो बेटी ना हावरे तो अबे वे बेटिया मंज धार में आ जावे जदी एड़ी स्थिति खड़ी हो
1: बस बस
0: ना अटी ने जा सके ना अटी ने जा सके
1: सोच सका।
0: अगर साल दो साल में एड़ो हादसो हो जावे तो चलो पाछे दूसरी जगह पे ही ब्याह को हो जाए। अबे तीन टावर ने लेन एक माँ की इच्छा नहीं होवे एक वाकटी जावे
1: बेचारी पहले तो समझौतो करती रही हुई।
0: हाँ हाँ पहली खूब समझौतो क्यों अभी सुधरी अभी सुधरी

0: तो घिकोक तो प्रेम छावी है। अब
1: वो है ही
0: वही दूध कारण चीज ही नहीं देवे घर में, कई बनाओ कई खाओ।
1: सही बात है
0: तो
1: बिल्कुल
0: अबे
1: से।
0: मजदूरी का काम कर रही, मजदूरी कारण तीन ही टाबर ने पाल रही और मस्त है। बाकी बहन जी मुँह मेहनत तो नहीं घबराऊ, मेहनत ही की थी ठेठ हुई लोग आके खेता में काम करूं, और जो मतलब मजदूरी मिले वेको मारे टाबर को मैं चलाऊं थोड़ो के, माँ और भाई भी पूरा करे क्योंकि भाई को भी घर टूट गयो।
1: हाँ
0: तो माँ और भाई भी थोड़ा पूरा करे कि भाई हमारी बहन है टाबर है तो कहीं नहीं, याने कटे भेजा।
1: हाँ नहीं यार इनकी विकट स्थिति हो जावे यानी आटा साटा
0: हाँ
1: में
0: आटा साटा में टूटे बटे जबरदस्त टूटे,
1: जबरदस्त
0: और
1: टूटे।
0: जटे समझदारी चल रहे बटे समझदारी भी चल
1: हाँ
0: रहे।
1: कि भी मैं परेशान करूं तो देखो मारी बहन ने भी परेशान कर सी।
0: हाँ यो समझ जावे जदी तो बात ही खत्म हो जावे, पर नशो एडी चीज है कि सब विवेक शक्ति खत्म कर
1: खत्म
0: देवे।
1: हो जावेगा।
0: चल भाई कंचन एक आचो गीत सुना दा, वेका बाद पाचा आप लोट नावा। हाँ न्यारी जो कार्यक्रम गावरी बाता में सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन।
1: 107.8 FM।

0: वाह भाई, बहुत चोखो गीत लाग्यो है।
1: हाँ बहुत बढ़िया गीत है यो, यहाँ पर सुनावा।
0: वही मैं सोच रही भाई, कतरो गंभीर विषय हुआ गयो। आटा साटा में काई काई यूज हुआ है, आटा साटा का कतरे हानि समाज
1: अरे
0: में
1: गणी
0: बोली
1: हानि होवे
0: है
1: अपना श्रोता बंधुरो पाछो स्वागत करा, नहीं तो कई दो सहीला बाता करे माने भूल जावे। तो गावरी बाता कार्यक्रम में आप सगला जनारो खूब खूब स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो।
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन आपा बात कर रहे हैं कि देखो वो घर टूट्यो है, और कटे कटे समझदार लोग भी है, कटे कटे समझदार है। एक जगह पे मैं देखो वनीस गांव में घना एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको गांव ही अड़ो आटा साटा में ही है।
0: देख
1: हाँ
0: भाई, कही है कि पूरे गांव में जनरली एक ही समाज के लोग रहा करें,
1: हाँ
0: और एक ही समाज विशेष के अंदर ज्ञान की प्रथा हुए।
1: हाँ
0: ज्ञान राजस्थान के अंदर देखो, मैं देखी हूं कि भी पुरोहित लोगा में ज्ञान की प्रथा है, यानी कुम्हार लोगा में। तो मान लो पूरे सगड़ो गांव ही ये समाज पे है, केंद्रित है, तो भी पूरे गांव में ही ज्ञान की प्रथा है।
1: बिल्कुल। और कटे कटे तो देख ले केड़ा केड़ा समाज में तो आटा साटा वगैरह मांडो ही नहीं होवे, ब्याह भी नहीं होवे।
0: ब्याह भी नहीं हुआ।
1: बात चाली विका पहले आपके है छोरी है देवाने, यही
0: हाँ,
1: बात चाली।
0: यानी लेन और देन
1: हाँ
0: दोनों चीजा।
1: हाँ भले आप बेन की छोरी दो, भले भाई की छोरी दो,
0: अच्छा,
1: आप की भी साटा में दो,
0: ओहो
1: हाँ पर अगर छोरी लानी में हामे वाला की तो आपके पास दे।
0: भाई, यहां तो एक महिला ने वस्तु मान लिया भी
1: हाँ वस्तु ही मान ली दे और
0: है,
1: कई। हाँ कतरी
0: बोलो।
1: बार तो अच्छी आपने जो योग्यता वाली छोरिया में ना जो ही गलत जगह पे पड़ी जावे,
0: बहुत गलत बात भाई।
1: अबे आटा साटा में देख लागी भाई मारे तो घर में बहू आनी चाहिए जाए, मारी छोरी ने मुंह सामने दे दू और हमें वाला की छोरी लियो, तो कतरी बार लड़को योग्य नहीं वे वे
0: योग्य नहीं हो
1: सामने,
0: पछे
1: और
0: भी।
1: छोरी तो भी अपने बहू छारी यानी वास्ते अपनी छोरी ने खड्डा में दे दीता।
0: हाँ,
1: अब आनू किस बात सुनो थे कंचन, बहुत ताजा ताजा बात ही है। एक समाज है, नाम नहीं ले वहां पर एक समाज में देखियो पहली बेटा के शादी कराई, ठीक है तो वह छोरी पियर गी, भाई पियर तो भेजे ही शादी के
0: हाँ
1: बाद मान
0: हाँ
1: लांगवा, पियर
0: सही है।
1: गी विका बाद आई को नहीं कि मैं तो नहीं आऊ, कई कारण है अबे था को नहीं, कोई कहे वह छोरी के कई लारे चालू है जो भी है,
0: हाँ के
1: पर वह
0: वो
1: नहीं आई। ठीक है
0: हाँ
1: अबे माँ बाप देखियो कि अबे आपने एक बार को तो भाई वो एक दाग तो लाग गयो ना तो छोरो पनियोडो है, अबे आपने
0: पढ़ने
1: छोरी कौन दी, तो बाकी एक छोरा छोटी छोरी है तो वे अबे करनी तो आटा साटा में ही करनी था कि आपने बिंदनी आ जावे, ठीक है तो आटा साटा में देख ली। तो अब आटा साटा में वाके छोरी बढ़िया हारी, पड्योड़ी होशियार समझदार, और ये जो टे दे रहा वो टे छोरो प्राइवेट नौकरी करे 15,000 एक दुकान पे बैठे, और छोरी या के एडी होशियार पड्योड़ी रूपाली और मतलब हर चीज
0: हर
1: होशियार,
0: चीज में योग्य
1: फिर भी वाके बिंदनी छारी यानी वास्ते वे सामने कहीं नहीं देख रहा, नहीं तो
0: बताओ।
1: घर है नहीं वर है। भाई देखो के तो वर देखा
0: सही
1: आजकल
0: बात
1: है
0: है,
1: तो कई छोरो ही देखे।
0: छोरा ही देखा है वो जमाने ते गया कि आपा घर
1: हाँ
0: और वर की दोनों की एक
1: हाँ
0: बात देख लेता,
1: नहीं
0: चला
1: देखा
0: लेता।
1: वो तो कई के वर माती घर था गुजराती में कहावत है, तो छोरो होशियार भी तो तुझे घर कर दी,
0: दूसरा घर बनाया।
1: पर न तो छोरो होशियार है न घर दमदार है, पर माँ के स्वार्थ है कि माँ के बिंदनी छावे, अबे माँ के ठपको लाग्यो तो माने छोरी कौन दी
0: छोरी कुण दी।
1: स्वतंत्र कह रहा तो, और अबे वा को बणो जुलाई में ब्याह है, तो माने समझाया कि देखो था कि छोरी एडी होशियार है तो मल जाए, और था भी थोड़ा कहीं गरीब घर की ले जाओ
0: हाँ,
1: छोरी
0: सो तो
1: मिल
0: है
1: जाए।
0: ही
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: पर क्या नहीं नहीं भली गरीब की पर माने कौन दी, वणी समाज में थोड़े छोरिया की कमी भी गणी है, तो अच्छा अच्छा छोरा ही वणी समाज में कुंवारा बैठा तो वे के
0: अच्छा,
1: माने कौन दे, देखो
0: कौन
1: फलानो
0: दे।
1: कुमारो ढिकड़ो कुमारो माने कौन दे, माँ के तो ठपको लाग गयो, पर मैं क्यों था का स्वार्थ की वजह छोरी को थोड़ो तो बचो।
0: सही बात, आपने पेट जाई छोरी।
1: हाँ अणी वजह भी लोग बाग आटा साटा करवा लाग गया,
0: हाँ
1: आपा
0: देखो तो
1: सोचा
0: भाई।
1: आटा साटो बंद हो गयो, गवर्नमेंट भी बंद कर रही है, हाँ वहां की डिमांड कई कोनी, क्योंकि डिमांड कई करे जाकी छोरी मतलब बिननी भागी और वहां आटा साटा में कर रहा, अच्छी पार्टी है अच्छो पैसो है, सामने परिस्थिति अतरी नहीं है।
0: और एक ही परिवार को उदाहरण थोड़ी ना है, ज्ञान का
1: हाँ
0: कतरा परिवार है, ज्ञान की समस्या से जूझ रहा है, जो आटा साटा में गलती एक जना की हुआ है और कई परिवार ने खराब करते हुए।
1: बिल्कुल
0: मान ले वो
1: या
0: लड़की
1: की
0: दूसरे
1: कोई
0: तीसरे परिवार की लाता, मान लो भैया अपनी नणंद की या की भी बेटी के ब्याह पढ़ना तो एक नहीं दो नहीं बल्कि और भी कई परिवार खराब
1: हाँ
0: होता।
1: वो तो है, पर आटा साटा में ऐसा नहीं है
0: हाँ
1: कि आटा साटा में यूं नहीं होचे कि भली बेन की छोरी काले बनियो नहीं बनियो, तो काले बेन को भी जिंदगी भर को वो भी उलानो रही ना।
0: उड़ानो रह गयो।
1: हाँ कि भाई तू मारी छोरी ने फसाई, पर कई पतो फिर भी अत्रु मोह वे आटा साटा में तैयार हो जावे। ठीक है करो, लेकिन आमने सामने देखो तो खरी कि अपनी छोरी के अनुसार योग्य छोरो है कि नहीं है।
0: और वो बात कही है थोड़ी शिथिल होनी चाहिए कि भाई अगर इच्छा है तो वो खो और किन्हें बाध्य नहीं कर सका पा।
1: बाध्य नहीं कर सका। और देखो छोरिया में सहन शक्ति की ताकत देखो, कतर के माँ बाप के सामने कदी नहीं बोले कि भाई मारे आटो साटो नहीं करनो। आज जबकि आज का युग में तो छोरिया खुद पसंद करवा लागी।
0: खुद पसंद करवा लागी। लेकिन देख भाई अठा मैं थोड़ी सी एक बात यान भी कहूं कि ये जो प्रथा है वो भी समाज में आटा साटा की जट है। नारी शक्ति अति जागरूक होनी चुपचाप से हर बात ने एक्सेप्ट कर ले
1: नहीं
0: स्वीकार कर
1: पर
0: ले।
1: जटे आटो साटो बटे तो आटा साटा का है ही नहीं, प्रथा ही नहीं है, फिर भी अबे वेवा लागी क्योंकि छोरिया की कमी हो, छोरिया मिल नहीं रही। हाँ छोरिया नहीं मिल रही अनि वास्ते आटो साटा कर रहा के पहली तीजो तगड़े की कोशिश की थी, पर तीजा तगड़ा में सेट नहीं भयो। तीजा तगड़ा में यू है तीन पार्टी खड़ी में वे, ठीक है मारी छोरी थारा अटे, थारी छोरी दूसरा काटे और बाकी छोरी मारा अटे
0: ओ
1: तीजो तगड़ो है जान। अब तीजा तगड़े में वाके सेट नहीं भयो तो बच्चे आटा साटा मिस कर रहा, आटा साटा में कर रहा, पर लड़की को त्याग देखो। कभी कभी माँ बाप को घर मांडवा का वास्ते, भाई का मांडवा का वास्ते खुद त्याग कर काढ़ो, के सामने वाले कैस नहीं देखियो। बाकी छोरिया भाई जो होशियार है, एक्टिव है, पढ़ोड़ी है और काम कर रही, पार्लर को कोर्स की दो सको है तो पार्लर को काम कर रही, फिर भी नखरा नहीं किता। एड़ा छोरा के लारे में क्या पड़ो,
0: मैं क्या जाऊं।
1: क्योंकि कलारे सेट ही नहीं वे, घना ही अड़ोस पड़ोस घना ही कहरा करे ये कई किदो है, कई छोरो ही नहीं देखो खुदो छोरी का लिए, फिर भी देखो छोरी को त्याग देखो।
0: नारी तो देखो हर जगह त्याग ही करे।
1: त्याग ही करे बिल्कुल बेटे। तो ये तो आज का समय री बात है, आज बहुत कम हो रहा है, पर बाकी जनी समाज में आटा साटा कोई रिवाज है वे में तो त्याग ही त्याग है।
0: मैं तो त्याग ही त्याग है। खैर तू और मैं सरकार को हाई कोर्ट को ज्ञान के निर्णय में बहुत खुश हैं
1: हाँ
0: कि
1: आपा
0: भी
1: तो खुश है ना भाई, का अच्छा है
0: हाँ
1: बहुत बढ़िया है। अरे मैं तो कहूँ छोरा ने एडो शिक्षा और संस्कार दो, एडो होशियार करो कि आपके हमें चालन सगाई आवे,
0: सही बात है।
1: काबिल बढ़ाओ ना।
0: हाँ आटा साटा ज्ञान की बात ही नहीं हुए।
1: हाँ
0: वो तो कही है वास्तव में महिला को एक दमन है
1: दमन ही है।
0: शोषण है
1: हाँ
0: कि भी
1: शोषण ही है।
0: बिना तो इच्छा हो वीक खूंटे पे बांध देवा
1: हाँ
0: है।
1: अरे कंचन पहले यूं कहता, अरे छोरिया तो घाई है, गाय ने जटे बांधे वटी बंदी रही,
0: गठे
1: खूटा पे
0: बंदी
1: बांधो वटी बंदी
0: सही
1: रही।
0: बात है। गाय को नाम दे दो ताकि चुपचाप है वो
1: हाँ
0: स्वीकार कर ले कि मैंने गाय बताई मैं सीधी
1: बिल्कुल।
0: हूं।
1: हाँ तो सरकार को बहुत अच्छा
0: निर्णय है।
1: निर्णय है कि यह प्रथा खत्म हो रही है, तो बहुत बढ़िया। आपा
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: अणि निर्णय राजिया। और चलो भाई कंचन टाइम भी हो गया जावा को तो आवजे भाई, राम राम।
0: राम राम।
1: लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत

तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए।

लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे

0: बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है, आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग ने कल सुना था कि सफलता की चाहत क्यों है, तो इस विषय पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और आशा करूंगा आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद हम लोग आज जो विषय है हमारा वो है कि मैं ही सफलता हूँ। ये एक थोड़ा सा यूनिक विषय है जो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो आशा करूंगा आपको कल और उसके पहले वाले एपिसोड्स भी अच्छे लग रहे हैं। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषय को लेकर बातें कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ फिर से राजेश जी उपस्थित हैं और वो मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ध्यान से सुने और आप अगर चिंतन करते हैं, मनन करना चाहते हैं, आप अगर टेंशन फ्री होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप शांति प्रेम के साथ जीना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये जो एपिसोड है ये बहुत ही काम का होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। राजेश जी हैं, राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, मजे में। जी, जी।
0: और मैं चाहूंगा कि आज जो आपने विषय चुना है मैं ही सफलता हूँ, ये विषय क्यों चुना और इसके पीछे का रीजन क्या है बताइए।
1: मैं ही सफलता हूँ
0: जी,
1: लोग तो सफल होना चाहते हैं लेकिन ये विषय मैं ही सफलता हूँ, इसको थोड़ा स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी,
1: मैं ही सफलता हूँ मतलब कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो सफल है।
0: हाँ।
1: और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, मैं ही सफलता हूँ माना बिना किसी शर्त के, बिना किसी आधार के मैं जीवन में सफल हूँ। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सफलता जो है मेरा वो बर्थ राइट है। लेकिन इसको हम कैसे समझें, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की,
0: बिल्कुल,
1: कि एक व्यक्ति जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है और अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाता तो उदास हो जाता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या जो भी उसने प्रोफेशन चूज किया है उसी प्रोफेशन में अगर वो नहीं जाता तो सारी उम्र उसके मन में हमेशा ये रहता था, मैं तो ये बनना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो ये कर नहीं पाया। और बहुत सालों तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई बार कहते हैं कि टाइम इज़ द ग्रेट हीलर, लेकिन जब तक वो टाइम उनको हील करता है वो उनके जीवन के वो क्षण, वो महत्वपूर्ण क्षण वो अपने खो देते हैं। क्योंकि उनको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अपने प्रोफेशन में आनंद नहीं आता, क्योंकि अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर जो उनका ड्रीम था दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं। तो हमने जाना पिछले प्रोफेशंस में कि एक्चुअली अगर वो इंजीनियर या अपने प्रोफेशन में चला जाता तो उसको क्या मिलता। अल्टीमेट उसको चाहिए खुशी, आनंद, प्यार, शांति, लेकिन ये दूसरे प्रोफेशंस में जाकर भी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें ये था कि ये प्रोफेशन मिलेगा तो ही हमें ये गुण मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। ये ऐसा क्यों नहीं है इसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि मुझे याद है जब मैं विदेश में यूएस में पढ़ा रहा था, तो एक मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहती हो। तो उसका एक बहुत अच्छा उत्तर था कि मैं जिंदगी में जो भी बनूँ, वॉट एवर आई बिकम इन माई लाइफ, चाहे मैं फोटोग्राफर बनूं, चाहे मैं मॉल में मैनेजर बनूं, या मैं मॉल में काम करूं, या मैं कारपेंटर बनूं, जो भी मैं जिंदगी में बनूं, लेकिन मैं हमेशा जीवन में खुश रहना चाहती हूं। तो अल्टीमेट एम हमारा ये है, हम प्रोफेशन के पीछे ना दौड़ें, उसके कारण अपने जीवन को खराब ना करें, दुखी ना हो जाएं, सुसाइड की तरफ ना जाएं, दूसरों को देख कर उदास ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि आपने जो एग्जांपल स्कूल स्टूडेंट का बताया आपने कि मैं अपने जीवन में कुछ भी बनूं लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि स्वाभिमान है, एक आस्था है जहां पर हमें इस लक्ष्य को लेकर चलना है। क्योंकि हम लोग अगर किसी स्टेटस को लेकर चलते हैं तो वो तो टेम्प्रेरी रहता है और उसके आगे पीछे इर्द गिर्द जो है बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है हर बार मुश्किल मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा है कि कुछ भी बनूं मैं, लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूँ, ये बहुत ही अच्छा जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस जिसको कह सकते हैं, स्वाभिमान की बात कह सकते हैं, ये आपके लिए स्वभाव कह सकते हैं, इस तरह का स्वभाव जो है आपको खुश रखेगा हमेशा। तो आइए आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आज हम लोग मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, राजेश जी भी हमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके बताया। और इंडिया में फिलोसफिकली ये सारी बातें जो है, बच्चों को माता पिता हो या अपने दोस्त हो, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करे, तो बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बन जाती है हमारे साथ में। माता पिता सोचते हैं कि हाँ मेरा लड़का डॉक्टर ही बनना चाहिए, है ना, और दोस्त भी कहते हैं अरे तू स्पेशलाइजेशन कर लेना डॉक्टर के साथ साथ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जिसके वजह से, और फिर वो अचानक अगर वो कहीं सेट नहीं हो पाए तो उसको लगता है कि मैं अब मेरा जी के जीवन जीवन जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी जो गलत धारणाओं की वजह से भी, गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से भी चीज़ें जो है हमसे मुश्किल कर देती हैं हमारा जीना। तो आइए, मैं चाहूँगा कि इंडियन फिलॉसफी में और जो हमारे भारत के विद्यार्थी हैं, तो उनको कैसे आप बताएंगे कि जीवन में सफलता मैं ही हूँ।
1: इसका अपोजिट देखें, हमें खुशी ही चाहिए, आनंद ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, शांति ही चाहिए। हम जब कॉलेजेस में गए, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट्स को गेम खिलाई एक, उनको बोला कि आप ये पेन पास करो अपने दोस्त को, पहले बोला खुशी से पास करो, फिर बोला गुस्से से पास करो। ऐसे चार स्टूडेंट्स को एक एक करके बोला पास करो
0: जी, जी,
1: फिर बोला अभी शांति से पास करो, फिर बोला ईर्ष्या से पास करो।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: फिर उनसे सवाल पूछा कि आपको वैल्यूज अच्छी लगती हैं या एंटी वैल्यूज अच्छी लगती है, तो उन्होंने बोला हमें वैल्यूज अच्छी लगती हैं। तो उनको पूछा गया आपको ईर्ष्या, दुख, अशांति, क्रोध अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा लगता। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपको खुशी, शांति, आनंद, प्रेम ही क्यों अच्छा लगता है, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, अशांति, उदासी क्यों नहीं अच्छी लगती। तो उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। तो इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर ये है क्योंकि ये हमारे मानवीय मूल्य हैं और हम इन मानवीय मूल्यों के साथ ही पैदा हुए हैं। मानव मानव कहलाता है क्योंकि मानवीय मूल्यों के साथ उसका जन्म हुआ है, ये हमारा बर्थ राइट है। हमें कोई प्यार करना सिखाता नहीं, एक माँ नेचुरली अपने बच्चे को प्यार करती है। हमें ये चीजें नेचुरली अच्छी लगती हैं बिकॉज वी आर बॉर्न विद दीज वैल्यूज, हम इन मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। उदाहरण के साथ समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर, साइंटिस्ट ने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक सेल से बना होता है जिनको हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो पता लगता है कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स का बना होता है। कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे मसल सेल है, नर्व सेल है, कई तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं। लेकिन इन सेल्स को भी कौन बनाता है? इन सेल्स को कहते हैं एक विशेष तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे मिलकर के हमारे शरीर के सेलों को बनाते हैं। और हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन भोजन में भी हम क्या खाते हैं? आप गेहूँ लेते हो, आप फल लेते हो ना, आप सब्जियां खाते हो, उनमें भी क्या होता? उनमें भी वही कंपोनेंट्स हैं जो आपके शरीर में हैं। और हर एक सेल में जितना प्रोटीन है उतना ही आपके भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, हर एक सेल में जितना कार्बोहाइड्रेट है उतना ही आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो सारे दिन में जो हम भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं तो 70% जो है वो वाटर होना चाहिए। तो जो हम बाहर से लेते हैं उसी का हमारा शरीर बना हुआ होता है, बचपन से ही हमारा शरीर उसी का बना है, इसीलिए बाहर से हमें वो चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, हम बाहर से मांगते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोफेशन के थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों के व्यवहार से एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम इन्हीं गुणों के साथ ही पैदा हुए हैं, ये मेरे निज गुण हैं, इनको हम कहते हैं हमारे अनादि अविनाशी गुण। दीज आर द इनेट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन वैल्यूज के बिना हम मानव नहीं कहला सकते और मानव जिंदा नहीं रह सकता। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर, माँ अपने बच्चे को रोज भोजन कराती है और बड़े प्यार से खिलाती। मान लीजिए किस दिन बच्चा स्कूल में लेट हो गया और लड़की लेट हो गई और माँ को शक हो गया इसने कुछ गलत काम किया होगा, तो बेटी तो रुक गई थी स्कूल में टीचर से बात करने, क्योंकि कल उसका एग्जाम था और टीचर से वो डिस्कस कर रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनसे समझना है, लेकिन वो लेट होगी। लेकिन माँ ने जाते ही गुस्सा कर दिया, खाना तो खिलाया, भोजन तो वही खिलाया, लेकिन आज गुस्से में खिलाया तो पेट तो आपका भर गया लेकिन मन नहीं भरा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त भले हमें कुछ ना दें लेकिन प्यार तो दें, कम से कम प्यार से बात तो करें। जैसे कई बार हम अपने किसी दोस्त से धन मांगने जाते हैं तो कहते हैं भले वो धन नहीं देता लेकिन मेरी रिस्पेक्ट तो करता, इज्जत तो करता, मेरे से प्यार से बात तो करता। इसीलिए जब कोई गलती करता है तो कहते भले मेरे को समझाते लेकिन मेरे को प्यार से बताते ताकि मैं उसको परिवर्तन कर पाता। तो इन मानवीय मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम उसको समझें कैसे, उसको अनुभव कैसे करें, रियलाइज कैसे करें, क्योंकि सफलता मेरा आधार है, क्योंकि सफलता माना ही प्यार, शांति, आनंद, प्रेम। लेकिन वो हमें अनुभव क्यों नहीं होता, हमें वो रियलाइज क्यों नहीं होता? उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें उसकी टेक्निक नहीं पता, विधि नहीं पता, तरीका नहीं पता है। लेकिन इसके बारे में हम अगले सेशन में, एपिसोड में आपसे जरूर बात करेंगे।
0: चलिए राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या तरीका है, कैसे हम उस चीज को समझ पाएंगे। आगे हम लोग जरूर बात करेंगे। आपके मन में एक छोटा सा सवाल जरूर होगा कि कैसे ये संभव है। बिल्कुल संभव है, बस उसके लिए जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने डिस्कशन किया, सफलता मैं ही हूं, इस पर थोड़ा सा आप चिंतन करके देखिए। जो एग्जांपल राजेश जी ने दिया है उस पर बात करके देखिए, अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो टॉक शो हमारा चलता है, सफलता का आधार मूल्य शिक्षा, जिस प्रोग्राम का नाम ही हमने ऐसा रखा है, ताकि आप जो है सेल्फ एनालाइज करें, सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचें, और जो हमारा मेन मकसद है हमारे जीवन में, खुशी, शांति, प्रेम, वो पाए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मंथन करके आपको बताया जा रहा है, और आपका भी चिंतन मंथन चले, यही हमारी शुभकामना है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे राजेश जी?
1: मैसेज हमारा ये रहेगा कि दुनिया में बहुत तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। एक वो होती हैं जिनको बोलते हैं मोनोटोनस पर्सनैलिटीज। मोनो माना उनको एक ही चीज़ पसंद होती है, एक ही तरह का भोजन रोज खाएंगे, एक ही तरह की दिनचर्या उनकी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, वो टेबल पर रोज उसी सीट पर जा करके बैठेंगे और इधर से उधर कोई भी चीज़ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त परिवर्तन होते रहते हैं, उनको हर दिन कोई ना कोई वैरायटी चाहिए, अलग अलग जगह पे बैठेंगे, वैरायटी काम करेंगे। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं जो बाय बर्थ होती हैं। लेकिन ये जो हमने कहा अनुभव
0: जी,
1: कि मैं ही खुशी हूँ, शांति हूँ, प्यार हूँ, कल हमने कहा था कि मैं खुशी का सितारा हूँ, अपने को देखें। लेकिन कई हमारे जो दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं या हमारे जो चाहने वाले श्रोतागण हैं, शायद उनको कई बार मोनोटोनस लगे कि हर बार हमने क्या यही विचार रखना आता है। तो उनको हम और भी तीन चार विचार दे देते हैं आज, कि जो आपको लगे रोज परिवर्तन कर लीजिए। जैसे रोज आप सब्जी नहीं खाते हैं, फल रोज अलग तरह से खाते हैं, रोज वही नहीं खाते, तो कईयों को तो पसंद होता है, कईयों को नहीं होता। तो उनको हम तीन विचार और देंगे, उसके साथ जोड़ दीजिए कि मैं खुशी का सितारा हूँ, पहले दिन ये ले लीजिए। या एक ही दिन में आप चारों टाइम, सुबह का टाइम, फिर दोपहर का टाइम, फिर शाम का टाइम, फिर रात का टाइम, अलग अलग संकल्प ले सकते हैं। मैं शांति का सितारा हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, मैं एक शक्तिशाली सितारा हूँ। ये आप लगातार चार दिन कर सकते हैं, या जैसे आपको अच्छा लगे सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो जब आप ये लगातार इस पर विचार करेंगे, ये संकल्प अपने आप को देंगे, ये थॉट्स अपने मन में जनरेट करेंगे स्वयं के स्वयं ही, तो आपको अपने अंदर ही इन गुणों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और सफलता मेरा अधिकार है, शायद ये भी आपको समझना धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आज का जो हमारा विषय था, खास मैं ही सफलता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी मित्रों के जहन में ये बात ज़रूर आ गई होंगी कि हमें कुछ भी करें लेकिन मेरे जीवन में खुशी हो, शांति हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। आप भले पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा करें पढ़ाई और अच्छा मार्क्स भी आप ले आए और अच्छे स्टेटस पे भी बने रहें, लेकिन साथ में अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, उस पर ज़रूर आप चिंतन करें कि मुझे जो है अपने जीवन में क्या चाहिए। तो सुख शांति चाहिए, ये मेन आपका लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हो?
1: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें खुशी है बच्चों का साथ सार भी आज बच्चे बन के याददाश्त दिला दी। हम बचपन में भी इसे खेलते थे, इस खेल का बारे में बताए तो इस कार्यक्रम को सजाने के हमारे साथ आ रहे स्टूडेंट है। हेलो, नाम बताइए।
2: मेरा नाम विनय सिंह है, मैं चूरू से।
1: चूरू के बारे में कुछ बताए, क्या विशेषता चूरू का?
2: चूरू में गर्मी एक तो बहुत ज्यादा है इस टाइम,
1: विशेषता है। और दूसरा
2: कहते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत गर्मी में करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें यहाँ माउंट आबू में आने का मौका मिला। हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे यहाँ पर इंडिया लेवल के कोच हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
1: खेल तो नाम सुनते हैं तो क्या मानसिकता में आता है
2: खेल? हमारे मतलब कि पहले हमने ये खेल चालू किया

0: इंडिविजुअल में खुद का खुद करना पड़ता है, ग्रुप में टीम मेंबर के साथ लेके चलना पड़ता है।
1: सबका संस्कार भी मिलाना पड़ता है ना,
0: हाँ सबका
1: कोई उठता
0: कॉम्बिनेशन होना चाहिए।
1: कोई सो जाता भाई उनको जगाना पड़ता है, क्योंकि उठने से तुम्हारा तर्क मेरा भी नींद आ जाएगा, इसलिए भाई जगो जगो ऐसे ना, तो मुंह करते ना, तो समूह में रहने से सबका संस्कार मिलकर चलना पड़ता है। हम एक लग जैसे हम 10 बजे सो जाते, कोई बोला हम 12 बजे सोते हैं तो डिस्टर्ब होगा ना, लाइट लगाएगा, तो उसमें दोनों को मिलकर चलना पड़ता है ना, साथ देना पड़ता है। घर में तो अलग, यहाँ पर तो बराबर चलना पड़ेगा। और यहाँ क्या सीख लेकर जाएंगे?
0: यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, हम गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ रहे तो हमारे को अलग अलग जगह के लड़के मिले, उनसे हम अच्छी उनसे अच्छी यादें लेके जाएंगे यहाँ से।
1: चलिए आप बताइए आपका अपना परिचय दीजिए।
2: मेरा नाम ओम प्रकाश है, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। चित्तौड़गढ़ भारत का गौरव है। और मैं छोटा था, मतलब 5-7 साल हो गए गेम स्टार्ट किए। पहले बिल्कुल स्फूर्ति नहीं थी, धीरे धीरे मेहनत की तो अभी स्फूर्ति आई है, और इसीलिए अब क्या मौका मिला है।
1: एक पॉइंट बताओ, स्पोर्ट्स खेलने से कौन सा विकास हुआ आपका?
2: स्फूर्ति,
1: फुर्ती है,
2: स्फूर्ति आई है,
1: पूरा
2: पूरी बॉडी एनर्जी आ गई है। मतलब पहले इतना
1: आलस नहीं आ रहा,
2: आलस नहीं है,
1: पूरा फुर्ती है। ये मतलब खेल खेलने से फुर्ती मिलता है। फुर्ती से क्या फायदा होता है?
2: फुर्ती से अपना शरीर काम अच्छा करता है, अपना कोई किसी भी काम में अच्छा मन लगता है। लाइक स्पोर्ट्स भी है तो अच्छे से खेल पाते हैं अपन।
1: तो आगे के लिए क्या लक्ष्य रखा है? मैंने
2: इंडिया टीम के लिए खेलना है,
1: खेलना है हैंडबॉल।
2: हैंडबॉल,
1: हैंडबॉल में खासकर क्या ज्यादा से ज्यादा कठिन आपको चैलेंज?
2: चैलेंज मतलब लास्ट अपने पूरी टीम एक जैसी है दोनों, और लास्ट मतलब 10 सेकंड है या 5 सेकंड है, स्कोर लेवल है उस टाइम अपना पूरा 100% लगा के जीतना, फुल मायने रखना है
1: ये चैलेंज। मनोरंजन और संगठन, संगठन में बॉल होना चाहिए, संगठन में विशेषता होना चाहिए। सब संगठन रूप में करते ना, संगठन टीम वर्क, टीम वर्क, टीम वर्क के लिए क्या करना चाहिए? टीम वर्क में क्या होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए?
3: टीम वर्क जैसे कि हम सभी हैंडबॉल खेलते हैं तो वैसे हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, बॉडी का माइंड का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, और ये हमारे आगे भी फ्यूचर में बहुत काम आता है।
1: जैसे
3: जैसे कि आगे कई लोग जिसके होते हैं, मतलब जिनके मतलब 50-60 की उम्र होती है, वो मतलब उनके घुटनों में चलने में दिक्कत होती है और कमर में दर्द होने लग जाता है। जैसे मतलब कोई खिलाड़ी होता है वो मतलब शुरू से मतलब अपने फिटनेस पे वर्क करता है तो उसके ऑल ओवर बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जैसे वो 50-60 साल का भी होता है तो लगता है हाँ भाई 30 साल का यंग है, तो ये डेवलपमेंट होता है।
1: आपका कितना साल है?
3: मैं भी 17 साल का हूँ।
1: टाइम है और कुछ करने के लिए, नहीं अभी छोटा बच्चा है लेकिन फिर भी उमंग होता है। घर में कोई प्लेयर है खेल कूद?
3: घर में नहीं, मैं इकलौता ही हूँ। मतलब जो
1: आगे आपका दादा परदा के वंशज में कोई खेल में नाम रोशन नहीं किया?
3: नहीं, अभी तो मैं ही हूँ।
1: आप भी करेंगे, ताली बजा भाई उनके लिए, भाई ये करेगा नाम परिवार का, ऐसे होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं लेकिन छोटे कमाल करके दिखाएगा।
3: और हाँ, जैसे मेरे को एक और विकास हुआ मतलब खेल में, जिसकी मेरे घर वाले हैं मम्मी पापा, उनकी हाइट बहुत कम थी। जैसे मैं जैसे ही आया मतलब 2-3 साल खेला तो मेरी हाइट बड़ी और अच्छा वो लोग।
1: तो श्रोता मित्र सुन रहे बच्चों का जो आवाज है उनका दिल का बात, हाइट छोटा था लेकिन जो खेल कूद करने वाले उसका जो ग्रोथ है वो हाइट बढ़ा, और क्या फायदा हुई?
3: और
1: शारीरिक में फुटला, जैसे एक भाई बताया फुर्ती मिलता है, एनर्जी मिलता है, कुछ करने के लिए इच्छा होती है ना, और लचीलापन होता है शरीर का, शरीर थोड़ा टाइट नहीं होता है, टाइट होता है?
3: टाइट तो नहीं होता, मतलब लचीला हो जाता है कि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो मतलब पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद,
3: थैंक यू।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट नाम बताए और कहाँ से, क्योंकि हमारा श्रोता सुन रहा है तो गुलदस्ता बन रहा है, राजस्थान का गुलदस्ता, कोई चूरू से है, कोई जयपुर से है, कोई अबरूड से भी आए हैं कुछ।
4: मेरा नाम नितेश सही है और मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ।
1: क्या कहना चाहेंगे हमारा श्रोता में जो प्लेयर को जो खेल कूद में रुचि रखते हैं उनके लिए क्या मैसेज?
4: नहीं, बढ़िया मेहनत करो,
1: बढ़िया मेहनत करो, बस मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत का बिना कुछ तो मिलता नहीं। मेहनत मेहनत मेहनत, जब तक गोल नहीं पहुंचेगा, जब तक अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तब तक मेहनत करना है ना। और क्या कहना चाहेंगे?
4: खुद पे फोकस करो, मेहनत करो, बढ़िया
1: बढ़िया बड़ी बना खेल कूद जो कहेगा तो उसको स्पोर्ट्समैन पता चल जाता है ना, उनका बॉडी पूरा फिट रहता है। चलिए
5: जी, मेरा नाम दुष्यंत वेरवा है, मैं भिलवाड़ा से हूँ।
1: ओह वेरी गुड।
5: मैं यहाँ पर मतलब कैंप लगा रहा हूँ, मेरे को 3रा साल है कंटिन्यू।
1: क्या बात,
5: थर्ड ईयर है यहाँ पर, और सेम वही मतलब हर बार रहता है वैसा वैसे ही टेम्परेचर, वातावरण वैसी, ट्रेनिंग हर साल वैसी।
1: उसमें कुछ आपको फेवर करता है यहाँ पर, जो 3 साल 4-3 बार किए हैं यहाँ पर, तो क्या सीख लेकर जाते हैं हर साल, क्यों आते हैं?
5: हर साल इसी नई उमंग से आते हैं कि नए दोस्त मिलेंगे, कोच साहब नए ड्रिल्स कराएंगे, नए वर्कआउट कराएंगे।
1: इसका मतलब ये ट्रेनिंग जैसे ना प्रशिक्षण जैसे ये चल रहा है, जो प्रशिक्षण जैसा।

0: अच्छा, जब मौका मिलेगा तो वहाँ पर जाकर कभी गए हैं? पूरा स्पोर्ट्स लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो चाहे ब्लॉक लेवल पे हो चाहे जिला लेवल पे कभी गए?
1: हाँ, मैं नेशनल लेवल पर गया हूँ 4 times और
0: हैंडबॉल को लेकर
1: हाँ हैंडबॉल को
0: विजेता,
1: 3 silver है और 1 gold है।
0: ताली बजा भाई, इतना मेहनत की है। फिर आप एक बार नाम बताइए।
1: दुष्यंत बेरवा, भिलवाड़ा से।
0: भिलवाड़ा हमारा राजस्थान के गौरव है। तो ऐसे हमारा आबू रोड का बच्चे भी करते हैं, जैसे तीरंदाजी में हम उनको लिया है इंटरव्यू में। तो सभी जगह से आए तो हमें खुशी है इस तरह कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। खासकर स्पोर्ट्स स्पेशल में आज स्पोर्ट्स मैन से हम बात कर रहे हैं।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हेलो, आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम अजय सराधना, मैं जयपुर से हूँ।
3: सब जयपुर का तो दोस्त मिलकर सब जयपुर का तो आज बहुत गुलदस्ता मिल गया ना, फूल बहुत सारा फूल आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज का? सभी का सुन रहे थे, आप क्या कहना चाहिए? जो बच्चे कोई नहीं बोल पाए आप वो बात बताइए, जो बच्चे सभी बोले अपना अपना, किसको फुर्ती मिला है, किसका पूरा शरीर का जो किसका हाइट बढ़ा है और किसका मम्मी पापा है उनको बहुत प्रेरणा देता, आप इस स्पोर्ट्स से क्या फायदा गेन किए वो बताए। स्पोर्ट्स से आपको क्या मिला, संगठन में आपको क्या फायदा हुआ? संगठन में एक दूसरे का परिचय हुआ ना, पहले परिचय था सभी का, नाम सबका नाम अभी पता है? नाम सबका पता नहीं होगा,
4: आप पता है?
3: बताओ देखी, वन
4: नितेश,
3: नितेश हाथ उठा, वेरी गुड नितेश।
4: सौरभ,
3: सौरभ वेरी गुड।
4: विक्रम,
3: विक्रम हाँ।
4: मोहित,
3: मोहित।
4: ओम प्रकाश,
3: ओम प्रकाश।
4: अभिमन्यु,
3: अभिमन्यु। वाह,
4: नितिन,
3: नितिन जी।
4: एबू
3: भाई, नाम बताओ?
4: दुसंत विशाल।
3: देखा, मैंने 15 दिन में 15 डेज में बहुत कुछ दोस्त मिल गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव से। ऐसे दोस्त संगठन में एकता होता है, यूनिटी, यूनिट होता है कि नहीं? तो यूनिटी, जहाँ भी यूनिट होगा ना वहाँ पर सक्सेस। यूनिट मीन्स सक्सेस, यूनिट मतलब सक्सेस। जो एक काम नहीं करेंगे सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, तो उसी को लेकर यूनिट संगठन। सबसे दिव्य गुण संगठन में एकता, ये गुण है। एकता में रहना सब चीज संभव। हेलो, आप एकता का नाम सुन रहे थे, एकता का ऊपर में ऐसे एकता जैसे ता आया, एकता, ता, विशेषता, नम्रता, ये सब गुण जब रहेगा ना खेल में हम आगे जाएंगे, है ना, विशेषता होना चाहिए। तो आप अपना परिचय देंगे भाई जी?
4: मेरा नाम मोहित गुजर है, मैं जयपुर से हूँ।
3: मेरे को जयपुर का तो अब जिस नाम रोशन हो रहा है, होना भी चाहिए, जयपुर ऐसे पिंक सिटी। और क्या क्या जयपुर में?
4: जयपुर में वैसे तो घूमने के लिए बहुत जगह है, जैसे हवा महल, जल महल, आमेर का किला है।
3: ये तो राजस्थान जो सुन रहे, राजस्थान सुन, लेकिन जो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, वो लोग भी सुने, तो कभी मौका मिले तो जयपुर आएंगे पिंक सिटी को देखने के लिए। बहुत सारा राजा का माहौल भी है। तो क्या कहना चाहेंगे? स्पोर्ट्स, जब खेल नाम सुनते हैं, खेल से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक, सामाजिक सब डेवलप होता है कि नहीं, और एक मनोरंजन भी हो जाता है दोस्त यारी से। तो क्या कहना चाहेंगे?
4: जैसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स से शारीरिक, मानसिक और जैसे आपने बताया सारा विकास होता है, और मेरा हुआ भी है शरीर के अंदर सारा डेवलपमेंट और
3: हुआ है। बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे की मैसेज?
4: टीम गेम है, सभी के लिए खेलना चाहिए,
3: सभी के लिए। एक एकता में शक्ति, देखिए हमारे भाई जी बोल रहे, एकता में शक्ति है ना, शक्ति मतलब पावर। एक मान लीजिए जैसे माला होता है, एक दाना निकल जाएगा तो सब पूरा क्या होगा, खत्म। उसका माला का नाम नहीं, माला बोलेंगे नहीं, माला कब होता है? सभी जैसे सभी अपने माला में जुड़े हैं, सबका आवाज संगठन में, तो एक मोती जैसे काम किए। तो हम हमेशा टीम वर्क लेकर करना है। अभी खेल में तो टीम वर्क होता है, कोई कोई गेम है सिंगल भी खेलते हैं, ऐसे कौन सा गेम जो सिंगल खेलते
4: हैं?
3: बॉक्सिंग हो गया, आर्चरी, ये सब सिंगल होता है। आपका संगठन एक मतलब ग्रुप में, इतना इंडोर गेम है और आउटडोर गेम है, तो आप लोग सब आउटडोर गेम में भाई जो खेलते हैं,
5: इंडोर आउटडोर
3: दोनों, इंडोर भी खेलते हैं
6: बाहर देश में, इसको विदेश में से इंडोर खेलते हैं, और ये भारत में इसको आउटडोर खेलते हैं हैंडबॉल।
3: बहुत अच्छा,
5: इंडिया में भी इंडोर खेलते हैं कई जगह
3: पे ज्यादातर। तो जिस हमें भी पता नहीं था लेकिन पता मिल गया, देखो आपसे मिलने से हमको भी सीखने को मिला, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद देते हैं एक बार, सभी का हो गया। अरे हमारे ये भाई छुपा रुस्तम जैसे, बता बता भाई जी।
7: मेरा नाम सौरभ जांगिड़े, मैं भी जयपुर से हूँ।
3: जयपुर से, वेरी गुड। और आपका अच्छा दोस्त इसमें जो 15 दिन से रुके, तो अच्छा दोस्ती किसके साथ हुई? दोस्ती खाने पीने में, घूमने में, बातचीत करने में, रास्ता में, जो भी
7: सबसे हुई दोस्ती।
3: वाह, ताली बजा भाई, सब मेरा अच्छे दोस्त है, सभी अच्छे। देखो एक ही दोस्त इसका नाम नहीं लिया, इसको कहते एकता, टीम, सबका बिना नहीं हो पाएगा ना, ये बल हमेशा लेना। कोई भी काम भी जाएंगे, परिवार भी एकता से काम करना, मम्मी पापा भाई बहन सब मिलकर काम करेंगे तो अच्छा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट, बोले नाम बताइए।
8: मेरा नाम विक्रम गुजर है, मैं टोंक से हूँ और मैं जयपुर प्रैक्टिस करता हूँ।
3: क्या आपका पसंद है, खेल ना नौकरी, क्या पसंद, सर्विस करना ना स्पोर्ट्समैन, क्या बनना चाहेंगे?
8: आर्मी में लगना।
3: आर्मी में बात मतलब नौकरी करना चाहेंगे, वेरी गुड, शाबाश। कोई तो बोला भाई हम करियर बनाएंगे इससे, तो सभी को धन्यवाद, नाम का साथ एक एक नाम लेते हुए सबको धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, वेल्दी हेल्दी करा दिए सभी को, नाम का साथ फिर से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बोलो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
9: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद,
3: थैंक यू थैंक यू थैंक यू
9: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
3: सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। वेरी गुड, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ जानकारी लेंगे बच्चों से, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन, खास कर पोलो ग्राउंड स्थित जो खेल प्रशिक्षण चल रहा था उसमें इनका जो भागीदारी और अनुभव आज आपके पास रखे, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि आज बारी बारी सभी खेल का अनुभव और जो अनुभव उनका पास है वो दे रहे हैं और जो पोलो ग्राउंड में हुई थी उस प्रोग्राम आज उसको आगे बढ़ाते हुए जो हैंडबॉल चल रहा है उसका कवरेज आपके पास हम रख रहे हैं बारी बारी और हमारा कोच को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट किए हैं तो उन सभी को धन्यवाद देते हैं और एक स्टूडेंट जो प्रशिक्षित स्टूडेंट हैं पोलो ग्राउंड में जो जून 4 तारीख से जून 24 तारीख से जो हुई उसका कवरेज आपके पास रख रहे हैं तो एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आपको स्वागत करते हैं, अपना परिचय देंगे प्लीज।
1: मेरा नाम नितिन सैनी है, मैं जयपुर से हूँ, मैं गोल नेशनल प्लेयर हूँ, मैं लिस्ट हूँ नेशनल में।
0: अरे वाह, इस तक पहुँचने के लिए आप क्या क्या मेहनत किए थे?
1: सर हमारे कोचेज बहुत ही अच्छे कोचेज थे, इंटरनेशनल कोचेज थे, हमारे सर प्रवीरदीप सिंह जी और हमारे मनीष राठौड़, दोनों बहुत अच्छे कोच है, उन्होंने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया, जो चीज हमें बाहर सीखने को नहीं मिलती वो यहाँ सीखने को मिली हमारे दोनों कोचेज के द्वारा से।
0: अच्छा, तो खासकर राजस्थान से बहुत सारे बच्चे आए थे, तो आपका जो हैंडबॉल में कौन सा जिला से आए थे आपको कुछ याद है?
1: जी सर,
0: जैसे
1: हमारे चूरू से बच्चे थे, चित्तौड़गढ़ से थे, सीकर से थे, जयपुर से थे, भीलवाड़ा से थे
0: जी,
1: नागौर से थे, ऐसे बीकानेर ऐसे जगह से बच्चे थे,
0: लगभग पूरा राजस्थान का पूरा मैंने प्लेयर आए थे ना, सिलेक्टेड प्लेयर।
1: हाँ सर, पूरे राजस्थान के पूरे प्लेयर थे।
0: और कभी आपको मौका मिलेगा तो फिर राजस्थान को मैंने माउंट आबू जो कि आबूराज को पसंद करेंगे?
1: जी सर बिल्कुल।
0: क्या खासियत है आबूराज की?
1: हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी है, आबूराज में हम रहे तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा ठंड का माहौल देखने को मिला, हमें वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, हमें रनिंग कराते थे, हमें पहाड़ों में रनिंग करने का मौका मिला, अच्छे अच्छे व्यू देखने के मौके मिले।
0: तो जो भी श्रोता हमारा सुन रहे लिसनर्स, तो उनको भी कभी मौका मिलेगा तो इस तरह गेम यहाँ सिलेक्शन करेंगे तो आबूराज को जो माउंट आबू को तो उनको भी फायदा मिलेगा। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पर जो भूमि माने देवभूमि है, तो ये भी एक कहीं ना कहीं सपोर्टिंग करता है। और जो रनिंग मैंने सुबह सुबह देख रहा था, सभी बच्चे रनिंग में पूरा मैंने पहाड़ी इलाके में कैसे रनिंग करते वो भी सीखने को मिलता है ना?
1: जी सर, हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला वहाँ रनिंग करने में भी, बहुत अच्छी अच्छी जगह रनिंग कराई हमें, जैसे गौमुख में गए तो हमें बहुत मजा आया, गौमुख में मजा आया,
0: गौमुख तक पहुँच गए थे। अरे
1: हम गौमुख पे रनिंग करते हुए लेके गए थे हमें पोलो ग्राउंड से, और हम सचिन पॉइंट मून पॉइंट अर्बुदा माता सभी जगह पे हमें रनिंग करते हुए लेके गए और हमें बहुत अच्छा मजा भी आया वहाँ पे रनिंग करने में।
0: तो खासकर जो हैंडबॉल है तो इसमें कितने बच्चे रहते हैं दोनों साइड में?
1: दोनों साइड में 14 प्लेयर रहते हैं सर,
0: सात सात ऐसे सेवन सेवन
1: सेवन सेवन प्लेयर रहते हैं।
0: अच्छा, कोई बैकअप भी रहता कुछ, मान लीजिए किसको थोड़ा चोट आया कि कोई मैंने बैकअप में रहते हैं कोई
1: सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, टोटल प्लेयर 16 रहते हैं वन टीम में और सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं 8 प्लेयर।
0: ओके ओके, और उसके लिए खास क्या ध्यान देना पड़ता है एक प्लेयर को?
1: प्लेयर को सर सबसे ज्यादा तो अपनी इंजरी का ध्यान देना पड़ता है, डाइट का ध्यान देना पड़ता है कि अपने को कैसे अच्छा है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, अपना बेस्ट देता है, इंजरी ना हो जाए, डाइट अच्छी लेता है, कोच की बात में जैसे कोच बताते हैं वैसा करता है, डिसिप्लिन में रहता है,
0: इंस्ट्रक्शन जो आता है उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। एक अनुशासन में चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे क्योंकि कोच तो हमारा कप्तान है, तो कोच का जो दिशा निर्देश मिलता है उस तरह फॉलो करता है, डाइट हो चाहे हेल्थ हो चाहे एनवायरनमेंट को भी साफ सफाई रखना और खुद भी साफ सफाई रखना और मन और बुद्धि को मेडिटेट करके एकाग्र फोकस करके।
1: हमारे कोच प्रवीरदीप सिंह हमें इस चीज के लिए अलग से क्लास दिए थे हमें,
0: अच्छा
1: क्या बात है, वो कैसे कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे क्या रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, बड़ों का आदर करना है, ये चीज हमें अलग से क्लास दी थी। फिर
0: उससे क्या है ना, शक्ति मिलता है और कुछ कमाना अच्छा जब करते हैं करने के लिए सोचते तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग जो सकारात्मक सोच हमें टीम को बल देता है, सबका प्रति सुभावना रहता है, शुद्ध भावना रहता है और कल्याणकारी भावना जब रहता है टीम के लिए तो जरूर टीम मैंने एक इंडिविजुअल नहीं, ये गेम तो जो हैंडबॉल है तो एक मैंने समूह रूप में करना पड़ता है, मैंने जो गेम है सिंगल नहीं है, एक टीम है, तो टीम के लिए सुभावना और उनका कल्याणकारी भावना रखेंगे तो जरूर टीम को आगे बॉल मिलेगा और टीम जरूर सक्सेस होगा, इस तरह आपको कोच से मिलता है। और खासकर आपका जो गांव है, कौन सा गांव? प्रॉपर
1: सर मैं जयपुर से हूँ।
0: जयपुर शहर से है?
1: हाँ जी सर,
0: अच्छा, जयपुर को तो सभी जानते हैं, है ना, सबका
1: जी
0: जय
1: सर,
0: होने वाला है और पिंक सिटी से प्रसिद्ध है जयपुर में। ऐसे
1: जी
0: खास कोई विजिटिंग करने के लिए जाएंगे, क्या क्या प्लेस है
1: क्या सर।
0: जयपुर में पर्यटन स्थल? हाँ,
1: जयपुर में घूमने की जगह,
0: जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा?
1: जयपुर में सर आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिलेंगी। हवा महल हमारे, जल महल है हमारे, जंतर मंतर है हमारे, आमेर के किले हैं हमारे,
0: अरे वाह,
1: और हमारे जैसे हमारे बहुत खूबसूरत स्टेडियम भी है जयपुर का स्टेडियम, जहाँ
0: ओ
1: हम लोग
0: स्टेडियम भी,
1: प्रैक्टिस
0: क्या
1: करते हैं,
0: बात है।
1: जहाँ जहाँ इंटरनेशनल मैचेज भी होते थे पहले। यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह भी है यहाँ पे, जैसे हमारे एक लेक भी है सांबर लेक, जयपुर
0: जी, तो
1: में पड़ती है लेक
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसलिए सभी
1: के
0: पर्यटक
1: पास में।
0: को इस माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे जरूर एक बार जयपुर जाकर अपना जो विजिटिंग प्लेस है, जो साइट सीन है, तो जरूर देखें। और ऐसे तो पिंक सिटी का नाम से प्रसिद्ध है और जयपुर बहुत अच्छा प्लेस है, जो राजस्थान का मैंने हार्ट है। और हमारा जो भाई
1: जी
0: जी अपना बात को रख रही है, भी कम बात नहीं, और अचानक भी आए, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, फिर भी अपना बात को रख पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम में। ऐसे उमंग उत्साह मिलता रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। और खासकर आपका जो जीवन में लक्ष्य रखा है, क्या लक्ष्य रखा, बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
1: सर, मुझे इंडिया की तरफ से मेडल लाना है। थैंक
0: क्या बात, बहुत अच्छा, आपको इन एडवांस बधाई हो। और इंडिया, भारत माता के लिए कुछ करने के लिए चाहते हो, मेडल लेकर आना है। और बास्केटबॉल ही आपका फेवरेट है ना, इस गेम को ही ज्यादा पसंद करते हैं,
1: हैंडबॉल,
0: हैंडबॉल को, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल को नहीं, सिर्फ हैंडबॉल, क्यों?
1: गेम तो सब सारे गेम अच्छे हैं सर, पर
0: जी,
1: सर खुद का गेम हमारा हैंडबॉल है।
0: हैंडबॉल है। तो इसका प्रेरणा स्रोत कहाँ से आप लिए हैंडबॉल को, मैंने कौन आपको प्रभावित किया बा आकर्षण करने के लिए, बा इस गेम को आने के लिए कौन प्रेरणा दिया बा आपको सजेस्ट किया?
1: सर मेरे चाचा रविंद्र सैनी है, जो ऐसा ही है हैंडबॉल इंडियन प्लेयर है, वो भी
0: ओके
1: उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और वो भी हमारे कोच प्रियदीप सिंह के अंडर खेले हुए हैं।
0: ओके, वेरी गुड, उनको भी धन्यवाद देते हैं इसको आगे रखने के लिए, आपको भी प्रेरणा दी। क्योंकि देखो, जब घर के कोई भी सदस्य रहता है तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है और कुछ गाइडलाइन भी मिल जाता है, मैंने सपोर्टिंग जिसको कहते हैं, है ना। तो परिवार हो चाहे कोई भी आपका दोस्त इस तरह फील्ड में है, का आपको सहयोग मिल जाता है, जिसका चलते आप भी आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसे। और रेडियो मधुबन में आज अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है?
1: मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे हमने माँ को सीखा है वो आपको मैं पूरे विस्तार से नहीं बता सकता, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें बहुत ही अच्छी लेवल की कोचिंग दी गई है वहाँ पे माउंट आबू में, हमारे दोनों ही कोच बहुत ही अच्छा हौसला देते रहे हमें, बहुत टाइम टाइम पे बताते रहे, अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हमें, इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग मिली माउंट आबू में, आबू
0: आज
1: राज में।
0: आप तो कोचिंग, कोचर से कोचिंग ले रहे, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप कोच बन सकते हैं ना, बच्चों को भी सिखा सकते हैं ना?
1: नहीं सर, जैसे हम उनके लेवल जितने किसी को नहीं सिखा पाएंगे, किसी को जितना उन लोगों ने हमें सिखाया होता हम किसी को नहीं बता पाएंगे।
0: अच्छा, ऐसे उनके पास खास, उनके पास बहुत अनुभव है, मैंने एक्सपीरियंस।
1: हाँ बहुत एक्सपीरियंस है सर उनके पास, वो खुद
0: ओके
1: हमारे हैंडबॉल, जैसे हमारे प्रियदीप सर हैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, बहुत बार इंटरनेशनल खेला है उन्होंने, और वो बहुत इंटरनेशनल कोचेज भी हैं, दोनों हमारे कोच हैं जो इंटरनेशनल कोचेज है।
0: इससे पता चलता है बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं, और जैसे जितना भी हो तो उनका हम पद का धूली जैसे है उनसे बराबर नहीं कर पाएंगे, बड़ों को सम्मान देते हैं। और हमारा कोच तो कोच होते हैं तो उनका बराबरी नहीं है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो हम भी, कभी भी माने चांस मिलेगा तो बड़े होने के बाद तो आप भी कोचर बन सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उससे आगे हो जा सकते हैं नहीं तो पीछे जा सकते हैं, उनका बराबर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लक्ष्य रखेंगे तो कोच तो बन सकते हैं। और वो प्लेयर अच्छा अपना भारत के लिए नाम रोशन करने के लिए, कुछ मेडल लेकर आने के लिए जो लक्ष्य रखा है, जरूर आप कामयाब होंगे। और एक टीम वर्क जो होता है, तो आप ऐसे सिंगल सभी का सहयोग से खेल होता है, तो जो हैंडबॉल में खासकर क्या विशेष ध्यान देना पड़ता है?
1: सर जैसे हमारे तो पहले तो ये है कि सारी टीम को एक साथ लेके चलना पड़ता है, जैसे हमारे जो खेलता है उसको अच्छे से टीम टीम चला के चलना पड़ता है, हमें बोल के खेलना पड़ता है, हम करेंगे हम करेंगे हम जीतेंगे। एकता मिल सकती है, हम ये सोच के चलते एकता मिल सकती है, हमारी टीम को कोई नहीं छोड़ सकता।
0: जी बहुत अच्छा। और अभी कौन सा क्लास में पढ़ाई चल रहा है?
1: जी सर, अभी मैं 12th क्लास में हूँ
0: ट्वेल्थ। तो आफ्टर ट्वेल्थ क्या करेंगे?
1: सर। अभी तो जैसे मैं अभी हैंडबॉल को कंटिन्यू करते हुए 12th क्लास को कर रहा हूँ अभी।
0: हाँ उस तरफ भी कॉलेज भी करेंगे, नहीं तो कोई भी अच्छा यदि कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऐसे
1: जी सर,
0: जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन जाते हैं ना, पढ़ाई का साथ साथ ये तो खेल तो साइड है, कोई कोई पूरा खेल में ही पूरा जीवन दे देते हैं और कोई कोई साइड बाय साइड रखते हैं। अगर ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई करेंगे तो खेल को साथ तो रखना ही है।
1: जी सर, खेल साथ में रखेंगे।
0: बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा आपका जो व्यू, और इसका श्रेय किसको देना चाहिए, धन्यवाद किसको देना चाहते हैं आप जो इतना तक पहुंचे?
1: ये सर मैं धन्यवाद हम मेरे चाचा रविंद्र सैनी को और मेरे कोच दिलीप सिंह दोनों को देना चाहता हूँ।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर में कार्यक्रम को सजाया, और आपका जो बड़े प्रेरणा का स्रोत, दोनों को आप धन्यवाद देना चाहते हैं, और उनका बदलता आज यहाँ तक पहुँचे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका बदल आशीर्वाद से और गाइडेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत तो अच्छा लगा। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर।

0: नमस्कार साथियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और आज है आपके होस्ट आपके साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मैं मन की आंखों में से आज है एक शानदार आवाज जो अपने गिटार के माध्यम से आपके बीच लाती है जिंदगी की मुस्कुराहट और एक जिंदगी की सुंदर आवाज जो भर देती है हमारे जीवन में मधुर संगीत। लेकिन कहते हैं ना कि मन की आंखों से में हम हर बार टटोलने की कोशिश करते हैं मन की आंखों को, कि मन की आंखें कैसे जीवन को आगे ले जाती हैं, चाहे आपकी जिंदगी में अंधेरा हो या प्रकाश। और रियली में आज हमारे साथ हैं प्रकाश। प्रकाश डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम जयपुर, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान एंड पैलेस ऑफ इंडिया। सो वेलकम प्रकाश इन अवर शो मन की आंखों से विद दिस
1: हेलो
0: ऑन
1: शरद।
0: फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। वेलकम प्रकाश।
1: हेलो फ्रेंड्स और हेलो शरद, कैसे हैं आप? और थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी।
0: मैं अच्छा हूं प्रकाश, और आपकी आवाज सुन के और अच्छा हो गया हूं। श्रोताओं जो भी माउंट आबू से हमें सुन रहे हैं हमारे रेडियो वेव पे 107.8 FM पे, वो हमारे सुन सकते हैं हमारे ऐप पर भी, रेडियो मधुबन पर। डाउनलोड करें अपने फोन में और सुनते रहें जीवन की आवाज, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी प्रकाश,
1: हेलो
0: प्रकाश
1: सर।
0: हम लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी बचपन की यादों के बारे में। उस पर तो आएंगे ही, और रंगों की इस दुनिया में प्रोमिनेंट कलर ब्लैक के बारे में भी। तो हालांकि मैं ब्लैक की बात कर रहा हूँ, एक फिल्म भी थी ब्लैक,
1: इट्स
0: लेकिन
1: माय फेवरेट कलर मैन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कलर है वो। यूनिवर्स का कलर ही ब्लैक है।
0: यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स ट्रू। तो आप प्रकाश जो है एक बिजली चैलेंज साथी हैं और FCI में अफसर हैं, इसके साथ साथ एक म्यूजिक के लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, और रॉक स्कूल से गिटार में भी एक अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ अपने संगीत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपकी शुरुआत की स्कूलिंग के बारे में जानना चाहूंगा प्रकाश।
1: स्कूलिंग एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि डैड आर्मी में थे तो हर 3 साल मेरा चेंज होता था। जैसे मेरा होम टाउन जयपुर है, बट मेरा मेरा बॉर्न गुवाहाटी में हुआ,
0: जी
1: तो 2 साल बाद फिर मैं उत्तराखंड चला गया। तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई उत्तराखंड रानीखेत में, बहुत खूबसूरत जगह है वो।
0: जी जी
1: वो इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे वन एट अ टाइम 7 रेनबो एक साथ दिखते थे, बहुत खूबसूरत जगह है वो।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: तो
0: बहुत
1: वो उसकी यादें अभी भी ब्रेन में है, बर्फ पड़ना, वो कलर दिखना, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जाना। तो वो 3 साल मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत थे। सीढ़ी नुमा खेत देखना, तो रानीखेत बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम जयपुर, फिर इंदौर, फिर बॉम्बे, फिर लास्ट में जयपुर। ऐसे मतलब सारी डिफरेंट जगह देखने का मौका मिला था बचपन में, थैंक्स टू मॉम एंड डैड।
0: अपने पेरेंट्स के साथ आपने पूरे देश की यात्रा की, और इस हमारे देश के एक वृहद इलाके को आपने देखा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की यादें हों या चाहे हमारे नॉर्थ के एक्सट्रीम हिमालय के पहाड़ हों
1: और सबसे
0: या
1: खूबसूरत तो केदारनाथ था। जब मैं 4 साल का था तो मैं केदारनाथ गया था, मुझे अभी याद है, इतना खूबसूरत था। पर और उसमें मेरे को अभी भी याद है, मैं खाई में गिरते गिरते बचा था। घोड़ा जब उतर रहा था तो ऑलमोस्ट ही कॉलैप्स, बट बच गया।
0: हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी जो है वो कांची है, कुछ पल में भी रह सकती है।

0: और जा भी सकती है
1: हाँ,
0: ना।
1: उस दिन रियलाइज हुआ था कि हाँ भगवान होते हैं, भोलेनाथ हैं, जब
0: क्या
1: बचा, क्यों मुसीबत में ही तो पता चलता है भगवान का।
0: बहुत बढ़िया। तो स्कूलिंग करने के बाद आपने इंजीनियरिंग किया, दैट इज कंप्यूटर साइंस,
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: कंप्यूटर साइंस की ब्रांच का सिलेक्शन कैसे किया आपने?
1: एक्चुअली वो मेरे को बचपन से सॉफ्टवेयर पसंद है, और मेरे बड़े भैया हैं, ही इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मुझे बचपन से कंप्यूटर गेम्स खेलना, कंप्यूटर पे काम करना बहुत पसंद था, तो सॉफ्टवेयर बहुत पसंद थे। मेरे भैया ने भी किया, तो वही जो होता है ना कि पसंद भैया मेरी एक जैसी थी, तो वही मेरे को भी प्रोग्रामिंग करना पसंद था कि कंप्यूटर के गेम्स बनाऊँ और इंटरेक्ट करूँ, कंप्यूटर को और एक्सप्लोर करूँ। तो इसके लिए मैंने फिर, मुझे यही ब्रांच अच्छी लगी कि जिससे मैं, जो मेरे सवाल हैं, जवाब हैं, वो मिले मुझे, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस करी थी कि
0: क्या
1: प्रोग्रामिंग कर
0: बात
1: सकूं,
0: क्या बात है,
1: गेम बना सकूं। मुझे गेम बनाने का बहुत शौक था कि खुद का गेम हो।
0: बिल्कुल अपने खुद के एप्लीकेशन हो, अपनी दुनिया हो ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: लेकिन इन इस कंप्यूटर साइंस की दुनिया नहीं, जो आपको ने चुनाव तो किसी और कारण से किया था आपकी जिंदगी में, तो आप गेम बनाना चाहते थे, लेकिन जिंदगी के इस खेल में आपको एक गोल किस्मत ने किया,
1: हाँ सही
0: और
1: कह रहे हैं आप।
0: वो गोल ऐसा था जिसने आपको सामने वाली जिंदगी के खेल में डी में जाके खेलने के लिए मजबूर किया, और बताने का चैलेंज दिया आपको, डेयर दिया कि जी ले तेरी जिंदगी। तो फिर कैसे ये घटना हुई और आप कैसे मैदान में पहुंच गए इस खेल के?
1: वो एक्चुअली जो जिस सिचुएशन में है वो कभी पता था नहीं, स्कूल टाइम से था, गेम्स खेलना है, गेम्स में खेलता था, एक्सप्लोर, ट्रैवल करना मुझे पसंद था, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस करी। यही चलता रहा, जब इंजीनियरिंग खत्म हो गई तब भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अच्छी जॉब लग गई मल्टीनेशनल कंपनी में, और तब भी कुछ नहीं पता था हो रहा क्या है, तब भी ये सोचता था कि जो प्लान कर रहा हूँ वही लाइफ में चल रहा है। और एक होता है ना, आप अपना स्केल बना देते हैं कि मेरे को ये करना है, ये करना है, तो जो जो मैं सोच रहा था वही हो रहा था। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, और फिर दुबई की एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे को जाने था, बट तभी सडनली पता चला कि आई हैड अ ब्रेन ट्यूमर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन ट्यूमर आई हैव लॉस्ट माय आईसाइट। तो फिर इतना आगे जाने के बाद लाइफ वापस जीरो से स्टार्ट करनी पड़ी, तो फिर जब जीरो से करी तो लाइफ चेंज, तो उसके हिसाब से फिर नई लाइफ बनाई है, अभी भी चली रही है।
0: और उस लाइफ में लगा कि जो जो डगर को आपने चुना था, जो ब्रांच आपने इंजीनियरिंग की चुनी थी, कभी नहीं सोचा होगा कि ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए फेवरेबल ब्रांच है, और
1: है,
0: ये ऐसी
1: बिल्कुल सही
0: ब्रांच
1: कह रहे
0: है,
1: हैं आप।
0: और ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में एक विजुअली चैलेंज सामान्य व्यक्ति को भी कॉम्पीट कर सकता है, बराबरी के साथ खेल सकता है।
1: श्योर, बिल्कुल सही है सर, कोई इशू ही नहीं है, ये मैं फील कर रहा हूँ ना सर, मैंने तो दोनों लाइफ जी है, तो थैंक गॉड मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच करी, तो वो मुझे फिर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं जब, अब अगर मैं कंपेयर करूँ कि अगर मेरी ये ना होता तो मैं अपनी इंजीनियरिंग को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता जितना अब मैं कर पा रहा हूँ उसको, जो अपनी क्वालिफिकेशन को, क्योंकि उसकी, वो जो मैंने क्वालिफिकेशन ली वो अब मैं ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैं ये कर पाया, वरना एहसास मुझे कभी नहीं होता कि मैंने ये क्यों किया, वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एजुकेशन।
0: साथियों, श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जयपुर से प्रकाश चौधरी को। प्रकाश फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आईटी डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स, पोर्टल्स या व्हाट्स एवर, हम जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में कार्यरत हैं। तो वो भूमिका क्या है प्रकाश, जो आपको FCI के लिए उपयोगी बनाती है दिव्यांग होने के बावजूद?
1: एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखो ऑनेस्टली, अब जैसे पहले मेरी आईसेट है तभी मैं आईफोन यूज करता था, बट मुझे वो पता नहीं था उसके अंदर वॉइस ओवर नाम की कोई चीज है जिससे लाइफ इतनी अच्छी चीज है, बट जब मेरी ये हुआ और जब मेरे को पता चला, डॉक्टर ने बताया कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर होता है, तो तब पता चला कि मैं कितना चीजें यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता, सिर्फ अब मैंने जैसे टेक्स्ट टू स्पीच का है तो हम इंडिपेंडेंटली मोबाइल लैपटॉप ये सब यूज कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। बाकी जो नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं हम भी कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ एडवांस नहीं हो पा रहा, कोई इशू नहीं आ रहा।
0: जी, ये बात तो है कि आप किसी तरह की बाधा महसूस नहीं कर रहे हैं अपने काम में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस या वो क्या कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा दखल उतना ही महत्वपूर्ण और इतना ही शानदार है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति का, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इसकी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स। इसकी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स ने, टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बदला है, और
1: बिल्कुल सर,
0: आप जैसे डेवलपर्स दुनिया की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि यह जो घटना आपके साथ हुई, ये कॉलेज के दौरान हुई, लेकिन वो झटका कितना बड़ा झटका था, कैसे आपने इसका ओवरकम किया, क्या मानसिक प्रभाव आपकी मानस पटल पर रहे?
1: वैसे सर वो तो रहता ही है कि आपकी इंजीनियरिंग हो गई, आप बस अपनी ड्रीम जॉब के पास जा रहे हो, सब कुछ होने वाला है और एकदम से पता चला कि अब आप कर ही नहीं सकते। आप जितना आपने किया वापस जीरो पे आ गए, तो ऑब्वियसली सर उस वक्त लगता है, बट एक वो होता है सर जीने की चाह और थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है, तो इसलिए सर फिर उसके
0: जी
1: बाद धीरे धीरे किया। लगा तो था सर, बट अब सोचता हूँ कि हाँ लगा था, बट थैंक्स टू गॉड मैं आगे मैंने कोशिश करी तो आगे मैं चल पाया और अभी सीख रहे हैं सर। शौक तो लगा था सर, बट
0: ये
1: दैट्स
0: कुछ वैसा
1: लाइफ।
0: ही शौक है, यह कुछ वैसा ही शौक है जो आपको संगीत के शौक की तरफ ले गया। इस शौक ने आपको संगीत का शौक दे दिया। तो ये
1: श्योर
0: संगीत का
1: सर।
0: शौक कैसे मिला आपको?
1: एक्चुअली क्या म्यूजिक मुझे बचपन से बहुत पसंद था सर, बट वो ही ना हम लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, जैसे मुझे गिटार बचपन से सीखना था बट वही पढ़ाई एजुकेशन आपके और हॉबीज की वजह से कभी मौका नहीं मिल पाता था। तो जब ये हुआ तब लाइफ में वापस सोचने का मौका मिला कि अब मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, कि तो लाइफ ने मौका दिया तो मैंने सोचा कि जो मुझे पसंद है मुझे वो भी करना चाहिए। तो फ्री टाइम मिला, वापस से जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिला तो मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया। और ऑनेस्टली मैं स्टार्टिंग में मेरा बस यही सीन था कि ऑब्वियसली बहुत सी चीजें आप नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, यू कांट ट्रेवल, यू कांट राइड अ बाइक, तो वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कहाँ मैं डाइवर्ट करूँ,
0: जी
1: तब तो वो फ्री स्पेस में मैं क्या करूँ, क्योंकि एक होती है ना सर कि जब आप पहले थे तो आप डे टू डे लाइफ में इतना अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करते थे, तो एकदम से आप स्टॉप हो जाए तो यू फील ना कि आपकी वो एनर्जी एग्जॉस्ट कहाँ करें, कि वही जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ करने का वो मैं कहाँ से लूँ। तो फिर तो मैंने सोचा कि गिटार सीखते हैं, बट मगर फर्स्ट टाइम उस दिन मेरे को शॉक लगा कि स्टेट ऑफ माइंड लोगों का क्या होता है। जो मेरा पहला टीचर आया उसने, जब मैं उसके सामने बैठा और उसको जैसे ही पता चला आई एम अ VI, अगले दिन गायब। फिर उस दिन
0: जी
1: एहसास हुआ कि देखो आई एम नॉट ब्लेमिंग द कंट्री, बट उस वक्त पता चला कि डिफिकल्टी क्या होती है। मतलब उस वक्त महसूस हुआ कि परसेप्शन कई कुछ लोगों का कितना आसानी से बदल जाता है। वो ना ऑनेस्टली मेरा उस टाइम में ये नहीं था, बस मेरा ये था कि कुछ गाने कर लूँ, फिंगर कर लूँ, टाइम पास हो जाए। फिर जब उन्होंने वो ऐसा किया, फिर एक और टीचर ढूंढा, उनका भी यही बिहेवियर, तब मेरा था कि अब प्ले करूंगा तो एक प्रो लेवल का ही मतलब प्ले करूंगा तो एक प्रोफेशनल लेवल की डिग्री करके ही रहूंगा। बस ये मैंने एक मन में था करने का, कि मैंने
0: जी
1: गॉड से कहा था कि यार गॉड इतना हो रहा है, इतना मेरे को तो बस सीखना है, फिर भी ऐसा परसेप्शन मिला है तो कुछ करके ही दिखाना है। और फिर मैं वही थैंक्स टू गॉड मेरे पापा की मेहनत से, और जो मेरे बाद में मुझे टीचर मिले, लकीली मेरे पापा ने ढूंढा और लकीली वो टीचर मिले। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कुछ किया, मैं उन्होंने एफर्ट
0: जी
1: डाला जो मुझे, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं, बट वो जो स्टार्टिंग के दो जो मिले उनका जो मैंने परसेप्शन देखा तो थोड़ा फील हुआ, बट थर्ड अटेम्प्ट में मुझे फिर जो टीचर मिले उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, ही हेल्प मी, मतलब उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उन्होंने कहा कि तुम अच्छा करना चाहते हो तो प्रो लेवल की डिग्री लो, जैसे आपने, उस वक्त कुछ नहीं पता था, बस ये था कि अच्छा करना है, बस चाह थी, पता नहीं था कैसे करना है। वो मौका मेरे पेरेंट्स और गॉड ने दिया मुझे, तो मेरे टीचर ने बताया कि देखिए वीआईबी के गिटार की डिग्री ले सकता है, और मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था, तो पता चला कि जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं उसके सेमेस्टर होते हैं, तो म्यूजिक की भी

0: गॉड थैंक्स टू माय पेरेंट्स, कि अब मैं कह सकता हूँ यार थैंक गॉड मैं कम से कम एक डिग्री तो कर पाया गिटार की और मैं सीख पाया।
1: जी कितने साल का समय लगा आपको 8वें ग्रेड का सेमेस्टर का?
0: एक्चुअली सर ये साल में 2 बार एग्जाम होते हैं तो हर सेमेस्टर का होता है वन बाय वन, तो मेरे को 4 साल लगे सर 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने में। मैंने 2016 से स्टार्ट किया था सर, तो 2020 में मेरा कंप्लीट हो गया। और किस्मत देखिए, जैसी मेरा जिस ईयर 2020 में मेरा ये डिग्री कंप्लीट हो गई उसी साल मेरी ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया मेरी FCI के लिए। तो मतलब एक जैसी कंप्लीट हुई एक नई जर्नी वापस स्टार्ट हो गई प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो कोइंसिडेंस इतना अच्छा था सर।
1: बहुत बढ़िया। तो जर्नी स्टार्ट हुई तो पहले तो आपकी जिंदगी कुछ मेटालिक सी हुई और फिर बाद में एकदम से रॉक आ गया
0: हाँ सर वो तो
1: कुछ।
0: चल, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ऐसा ही रहा है। और एक्चुअली मेरे को जैनर भी ये पसंद है, मेटल रॉक सूफी जो मैंने वहाँ पे रॉक एंड पॉप में सीखा भी है, तो अलग अलग जैनर के मेरे को सीखने का मौका मिला।
1: तो आप, मुझे मालूम है कि आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करते समय आपका, आप क्या जिंदगी ब्लूज में ले जाते हैं?
0: नहीं सर उस टाइम आपको मेटल चाहिए सर, यू हैव टू फील ना पम्प्ड अप, तो उस वक्त
1: अच्छा
0: में मेटल, उसमें आप ब्लूज में सुकून में नहीं जा सकते। अगर आप सुकून में जाएंगे तो यू कांट लिफ्ट ना,
1: राइट
0: तो उस टाइम यू हैव टू लिसन रॉक म्यूजिक में हैवी मेटल जो रश ऑफ ब्लड हो, तब आपको
1: जी
0: एनर्जेटिक फील हो।
1: जी तो कुछ मेटल सुना दें आप हमारे श्रोताओं को।
0: श्योर सर, जैसे मेरे ग्रेड 8 के जो एग्जाम के थे पीसेस वो मैंने किए थे, जैसे मेरा ये मेटल सॉन्ग है मीट डार्क ईयर, ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव मेटल है, आप सुनेंगे तो यू फील ना रश ऑफ ब्लड, ये
1: जी
0: ई माइनर स्केल का है। और प्रोग्रेसिव मेटल जैसे मेटल के बहुत डिफरेंट होते हैं, डेफ मेटल हैवी मेटल, तो ये प्रोग्रेसिव मेटल है अल्टरनेट पिकिंग का, तो अभी आप ये
1: जी
0: सुन रहे होंगे। और इनमें एक सबसे खासियत क्या है, अभी इसमें एग्जाम में खुद की कंपोजिशन भी आप करते हैं, गिटार सोलो होता है तो इसमें मैंने खुद की कंपोजिशन भी ऐड करी है, जो गिटार सोलो होता है आप इम्प्रोवाइज करते हैं म्यूजिक के साथ।
1: जी बहुत बढ़िया। श्रोताओं, तो मैं श्रोताओं को पेश करता हूं हमारे आज के प्रकाश, मन की आंखों के प्रकाश का यह मेटल म्यूजिक।

0: जी प्रकाश, श्रोताओं मजा आ गया ना कि प्रकाश की आवाज में ही नहीं उंगलियां भी मेटल के हैं,
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: इस मेटल के साथ इस डायमंड के पास क्या है और जानते हैं ये। प्रकाश, आपकी जिंदगी में एक अंधेरा है जो शायद कलर्स से आपका रास्ता
1: ऐसा
0: मालूम नहीं
1: कुछ,
0: कैसे कैसे होता है।
1: अरे
0: आपकी मन
1: ना
0: की
1: ऐसे
0: आंखें क्या
1: देखिए,
0: देखती हैं, बताइए
1: ये
0: ना।
1: नहीं कह सकते सर। देखिए सर, ब्लैक इज ऑल्सो कलर, तो आप ये हम ये कह सोच ही मैं ये नहीं सोच ही नहीं सकता कि आई डोंट हैव कलर। सर ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, इज ऑल्सो वन कलर, तो मैं ये
0: जी
1: नहीं कह सकता ना कि मेरी बकेट एम्प्टी है,
0: जी
1: तो स्टिल आई हैव वन कलर ब्लैक। एंड और आप देखिए, ये यूनिवर्स का कलर ब्लैक है और ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर। आप ये सोचिए ना सर, हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे पास नहीं। आप ये सोचिए, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, जिस कलर से लोग भागते हैं उस कलर के साथ हम जी रहे हैं, तो हम कितने वो हैं। हमें भगवान ने कितना मौका दिया है कि यू कैन नॉट
0: हम
1: लिव
0: कितने
1: दैट कलर।
0: स्ट्रांग हैं ना।
1: हाँ भगवान, क्योंकि ऊपर वाला मुसीबत उसी को देता है ना, कि उसके वो पहले उसको तैयार करता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा, जैसे बचपन से मुझे भागवत गीता, महाभारत, स्पिरिचुअल चीजें, ये सब सुनने का बहुत शौक था। बट मुझे पता नहीं था कि मैं बचपन से, मुझे मोटिवेशन बातें क्यों अट्रैक्ट करती हैं, वो मुझे पता नहीं। एक होती है ना अपनी पसंद, आप दौड़े जाते हैं उसके पास, तो ये मैं सुनता रहता था, मुझे फील नहीं होता था कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, ये मुझे क्यों पसंद है। बट जब ये हादसा हुआ तब थोड़ा रियलाइज हुआ कि आई थिंक गॉड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस मोमेंट। तो जो मैंने पहले ये स्पिरिचुअल चीजें, मोटिवेशन चीजें सुनी, वो मैं अब उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट यहाँ कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, मैं किसी और को कहूंगा नहीं, मेरी लाइफ का तो यही एक्सपीरियंस है कि जो भी सिचुएशन आती है उससे पहले गॉड हमें प्रिपेयर करता है। तो मे बी मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और ये स्पिरिचुअल चीज है, तो हमें प्रिपेयर किया सर।
0: बेहतरीन। श्रोता हूँ, हमारे साथी प्रकाश का कहना है कि उनके पास एक कलर है, चाहे वो काला ही क्यों नहीं। तो प्रकाश, और भी बहुत
1: स्ट्रॉन्गेस्ट कलर है सर, चाहे नहीं, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर।
0: यस, मैं कह सकता हूं कि आप काले में भी कूल लगते हैं, राइट? तो
1: थैंक यू सर।
0: मैं
1: काले
0: आपसे
1: हुए तो क्या
0: क्या
1: हुआ, दिल वाले हैं।
0: बात है, क्या बात है।
1: जी
0: श्रोताओं, मजा आ गया ना, तो आइए ना इस बात पे हो जाए गीत।
1: हाँ सर, ये सेकंड सॉन्ग है जो मेरा लीड सीट, ये रॉक फ्लेवर का है सर, इसमें रॉक जेनर है। आप इसकी बीट्स फील करेंगे तो इट्स ना, आप वर्कआउट करते हैं यू फील पम्प्ड अप, तो ये रॉक जेनर का है प्रॉपर लीड शीट। आई होप आप लोगों को पसंद आए।

0: श्रोताओं, क्या बात है प्रकाश, आपने तो जिंदगी में अपने संगीत का रंग भर दिया है हमारे श्रोताओं को। मजा आ रहा है ना श्रोताओं बात करने में और साथ साथ के बीट सुनने में। 1 2 3 4
1: जी
0: तो प्रकाश,
1: सर,
0: मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस पूरी बातचीत के बीच आपका क्या रास्ता कुछ और कलर से भी है? कुछ यादें हैं आपकी पुरानी बचपन की, कलरफुल?
1: ऑफिस है सर, कलर तो है सर, बहुत अच्छी यादें हैं सर।
0: और आपका तो मानना है कि कलर्स हमारे दिमाग में होते हैं, आंखों में नहीं, राइट?
1: सर आप जैसे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप बहुत लोग सोचते हैं कि हम देखते हैं, एक्चुअली ये हम देखते नहीं है। साइंस के हिसाब से जैसे बॉडी वर्क करती है, ये आंख आंख इज जस्ट लाइक अ मिरर, जो हमारे ब्रेन में फोटो बनती है ना, वो हमें दिखता है। ये
0: जी
1: एक मिरर है। अब जिसी ने मेरे को अब जैसे पहले मेरा ये मिरर काम कर रहा था, तो मैंने देख लिया, तो ब्रेन में जो फोटो बनती है वो कलर हमें पता
0: जी
1: चलता है। अब जैसे पहले मेरी जो लाइफ थी, वो मेरे को सारे कलर पता है, तो इस समवन से ना दिस इज रेड, तो वो रेड कलर मेरे ब्रेन में दिख जाएगा, एंड आई कैन ना वो एक पता चल जाएगा, हाँ रेड ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मेरा ये हादसा हुआ, तो मैंने पहले एक चीज पढ़ी थी, जैसे चमगादड़ होते हैं, देखा, वो अपनी आंखों का यूज नहीं करते हैं बिकॉज दे कांट, वो फिर भी जब वो उड़ते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट उड़ते हैं। आप पता है वो कैसे उड़ पाते हैं सर?
0: जी
1: वो जब उड़ते हैं तो वो, जब मैं पहले सोचता था कि ये आवाज इतना क्यों करते हैं, बट सर वो आवाज करते हैं अपने, वो एक वेव्स बनाते हैं, और जैसे वेव्स होती हैं, वो वेव्स अगर सामने पहाड़ है, वो आवाज करते करते आगे जाते रहते हैं, फिर वो वेव्स वापस जब पलट के आती है तो कान से सुनते हैं, और कान अपने कान से सुन के ये फोटो बनाते हैं कि सामने है क्या क्या नहीं। तो दे विल गेट, वो देखिए आईसेट ये वो नेविगेशन करने का यूज करते हैं, दे कांट सी, बट वो इतने एक्यूरेट होते हैं।
0: जी
1: ये तो एक बस ये पैरामीटर है कि हमने मिरर के थ्रू ऐसा कर लिया, बाकी हम सुन के और इसके थ्रू भी नेविगेशन आराम से कर सकते हैं सर।
0: हाँ, हमारी जिंदगी ने या हमारी प्रकृति ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं और हर इंद्री अपने आप में विशेष है, और किसी इंद्री में कुछ कमी भी है तो बाकी 4 तो आपको सपोर्ट करने के लिए है ना। तो प्रकाश, अपने थोड़े ठोकरों के ढाबों के बारे में बताइए ना, आपने ठोकरों के ढाबों में भूखे रहे या मस्त होके खाया?
1: क्या किसमें सर?
0: आपकी जिंदगी में कुछ, आपको कुछ ठोकरों के ढाबों से भी मुलाकात हुई होगी
1: अरे
0: आपसे?
1: सर
0: हाँ,
1: वो तो सर, ये तो ठोकर तो सर वो है, बेस्ट फ्रेंड है सर, आज नहीं तो कल आएगी आएगी।
0: तो ऐसे ढाबे जहां पर आपको ठोकरों का खाना मिला है तो बताइए ना, वो कैसी ठोकरें थी? या
1: वो ठोकरी तो सर ऑब्वियस है, ठोकर तो हमें सिखाती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जब जब हमें ठोकर मिलती है, हमें अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है सर। तो जो जो ठोकरें आई, जैसे फर्स्ट टाइम जब कोई, मैंने गिटार का था तो ठोकर आई, तो वो जब वो मुझको ठोकर फील हुई तो मुझे मौका अच्छा सीखने को मिलता। अगर मुझे वो ठोकर नहीं मिलती तो मैं सिर्फ 2 या 3 गाने करके लाइफ में आगे बढ़ जाता।
0: जहां पर आपको आपके विजुअल चैलेंज ने उनको चैलेंज दे दिया और
1: मैं
0: वो डेयर नहीं ले पाए। जी
1: तो वही सर, वही ठोकरें आई हैं, वो उससे हमें सीखने को मिलता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग सर। जिस इंसान को जितनी ठोकर मिलती है ना सर, वो उतना तरक्की करता है, और मैं भी उतना ही कर पाया, यानी मेरी लाइफ में मेरे को कम ठोकर मिली है। अगर मेरे को और ज्यादा मिलती तो शायद मैं और अच्छा कर पाता जीवन।
0: बहुत बढ़िया। हमारे एक शानदार क्रांतिकारी लाला हरदयाल, उन्होंने भी युवाओं के लिए बहुत शानदार किताब लिखी है, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, सेल्फ डेवलपमेंट बाय योर स्ट्रगल एंड सक्सेस। आप सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने यही बताया है कि अपने हम कैसे आप की संघर्षों और सफलताओं से सीख सकते हैं। इसका मतलब संघर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी सफलताओं की सीख। तो खैर, हम श्रोताओं इस मोमेंट पे प्रकाश से कहेंगे कि वो कुछ और भी सुनाए हमारे श्रोताओं को।
1: सर अब सर, ये जो सॉन्ग है इसका नाम है डार्क मैटर, इट्स अ प्रॉपर जैज म्यूजिक। इसमें आपको डिफरेंट बीट्स दिखेंगी, डिफरेंट फ्लेवर दिखेगा, क्योंकि ये जैज है, तो इसको आपको गिटार के साथ साथ बैकिंग ट्रैक में भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, तो इट्स ऑसम सॉन्ग। आई होप आपको ये जैज फ्लेवर मेरा पसंद आएगा।

0: क्या बात है प्रकाश, आप तो छा गए हैं और हमारे माउंट आबू की वादियों में आपकी गिटार की आवाज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गूंज रही है। और इस वादी को आपके संगीत ने और खूबसूरत बना दिया है।
1: थैंक यू सर।
0: प्रकाश, हम हमारे श्रोताओं से बात कर रहे हैं हमारे मन की आंखों से शो में, और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन कि क्या मन की आंखें होती हैं। आपका क्या मानना है प्रकाश जी,
1: बिल्कुल होती हैं सर। सर
0: और ये कैसे काम करती हैं, कहाँ होती हैं
1: ये
0: आप?
1: मन की आंखें, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा इसमें, मन की आंखें सर ब्रेन होता है, लाइफ क्या है, जैसे मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, जैसे आप मेरे लिए लाइफ क्या है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो जो हमारे ब्रेन में चल रहा है वही सब कुछ है सर, वही सच है। तो हमारे ब्रेन में, अगर हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के थॉट्स अच्छे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं तो हमारी लाइफ वैसे ही पॉजिटिव है। अगर हम नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं तो हमारे ब्रेन में फिर वो नेगेटिव ही चलता रहता है सर। तो वही जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे चमगादड़ है, वो नेविगेशन कैसे करता है, वो फोटो अपनी साउंड वेव सुन के सामने फोटो बना लेता है कि ये पहाड़ है क्या है। तो वही है कि हमने एक चीज चली गई तो बाकी की चीजों से कैसे नेविगेशन करके हम अपने ब्रेन में इमेज बना रहे हैं।
0: जी
1: हाँ तो ये सर, बाकी ये सब इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों का काम है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में देना। तो सब कुछ है सर, कुछ चेंज नहीं होता, एक चीज हो जाती है, बट वही है जैसे बाकी जो लोग हैं उनके जो थॉट प्रोसेस है वही हमारा रहता है, बट हमें थोड़ा सा नेविगेशन अलग करना पड़ता है, बाकी खुशी सुकून सब ऐसा ही होता है सर।
0: क्या बात, बिल्कुल खुशी और सुकून बना रहे इसलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और इस रेडियो स्टेशन यानी कि हमारे रेडियो मधुबन पर हम हमेशा ही कहते हैं सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM। और मेरे साथ हैं प्रकाश, वो रियली एक प्रकाश हैं, उनका फेवरेट कलर ब्लैक है और वो रॉक स्कूल से गिटार में, खास तौर पे रॉक एंड पॉप जॉनर में ग्रेजुएट हैं। और हम चाहते हैं कि वे अपने इस फन का फिर से हमारे सामने एक गीत के साथ पेश करें, अपने फन को फिर से एक गीत के साथ हमारे सामने पेश करें।
1: सर अब ये जो मेरा अगला सॉन्ग है, इस सॉन्ग का नाम है क्राइमिया रिवर। इसमें एक प्रॉपर रॉक म्यूजिक है जिसमें थोड़ा आपको पेन, हार्ट ब्रोकन जैसा फील होगा, क्योंकि इसमें सिंगर भी है और इस सॉन्ग में मैंने अपना गिटार सोलो भी ऐड किया है। आई होप आपको ये थोड़ा ना हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग पसंद आएगा।

0: लेकिन आज तो हम बात कर रहे थे दिल से दिल जोड़ने की, लेकिन प्रकाश ने गीत दिया है ब्रेकिंग, बट डेफिनेटली ये ब्रेकिंग तो नहीं था, ये शेकिंग था हमारे लिए। और हमने जैसे प्रकाश के गीत की बात की कि प्रकाश ने किस प्रकार से जिंदगी में अंधेरा आने के बाद गिटार उठाया, और मुझे तो मालूम चला है कि प्रकाश डंबल्स के साथ क्या कभी फंबल भी करते हैं।
1: बिल्कुल सर, वो तो मेरा सबसे पहले उठता हूँ तो यही है
0: बोलो
1: सर, मेरा फ्रेंड।
0: क्यों।
1: मैं तो एक्टिविटी मॉर्निंग में डंबल से ही स्टार्ट होती है सर। आई डू वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग पहले। बट हाँ ये है कि पहले आई कैन गो जिम, बट अब मैंने अपने पूरे जिम का सेटअप घर पे ही कर लिया है, तो मॉर्निंग में उठ के मैं घर पे करता हूँ सर वर्कआउट, और योगा भी करता हूँ सर, अष्टांगा योगा के कुछ। मैंने पहले मुझे योगा जब ये हुआ तो मैंने एक टीचर से सीखा था प्रॉपर योगा, अष्टांगा योगा की प्राइमरी सीरीज, तो उसमें भी सर कुछ पोजेस करता हूँ, जैसे हेड स्टैंड हो गया सर, उत्थिता पद्मोत्तानासन हो गया, ये मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी करता हूँ एंडिंग में, और स्टार्टिंग में मेरा वही प्रॉपर हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, चेस्ट बैक वर्कआउट वो मैं करता हूँ सर।
0: जी, बहुत बढ़िया। और देखिए ना, प्रकाश एक चैलेंज के साथ हैं, पर जिंदगी के सारे कलर्स हैं। मॉर्निंग में योगा से लेकर अपने कार्यालय में अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट को मैनेज करना, हैंडल करना, और लोगों तक या सरकार की खाद्य सुरक्षा के संबंध में या सरकार की फूड मैनेजमेंट के संबंध में सही जानकारी अपने निगम की वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। देखिए ना, कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और पे बैक कर रहे हैं सोसाइटी को, तो क्या ये जज्बा हम में भी नहीं रह सकता? और क्या हम अपने देश को विकसित भारत बनाने की यात्रा में प्रकाश की तरह आगे नहीं बढ़ सकते हैं? प्रकाश पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पर अपने जज्बे के साथ, अपने जज्बातों के साथ देश की जमीन को उर्वरा बना रहे हैं। प्रकाश, हम ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन एक गीत हो जाए ना, और इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि ब्लूज कैसा रहेगा।
1: बिल्कुल सर, ब्लूज। अब ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ये स्पेनिश जॉइंट है, इसमें आपको जैज और ब्लूज दोनों का फ्लेवर आएगा, और इसमें आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल फ्लेवर आएगा जिसमें सूदिंग साउंड होता है ना, जैसे हम सूदिंग साउंड जिसे हम कहते हैं, वो साउंड आपको इसमें मिलेगा सर।

0: निश्चित रूप से इस गीत के बाद तो पूरा माहौल ही खुशनुमा हो चुका है। इस बातचीत का अंदाज ही बदल गया है और मुझे तो लगता है कि आपसे बातें करता रहूं और ऐसे ही एक
1: सेम
0: संगीत
1: ईयर सर,
0: रहे और जिंदगी का जो संगीत है वो ऐसे ही बसता रहे। संगीत देखे ना कितना शानदार माध्यम है कि कितनी भी बड़ी समस्या हमारी जिंदगी में आ जाए हम संगीत के माध्यम से एक शक्ति पाते हैं और संगीत ही वो माध्यम है जो शायद हमें ईश्वर से सीधे जोड़ने की ताकत रखता है और वो फन आपको ईश्वर ने दिया है। प्रकाश
1: यस
0: हम
1: सर।
0: और भी कुछ चीजें जानना चाहेंगे कि जब कैसा कभी ऐसा कभी होता है कि आपको लो फील होता हो या कुछ लोगों के व्यवहार से या लोगों के स्मार्ट प्ले की हरकतों की वजह से कभी ऐसा आपको लगता हो कि ये क्या दुनिया है, हम कहाँ आ गए, हम कौन सी गाड़ी में चढ़ गए।
1: सर वो तो होता है सर, ह्यूमन बीइंग है, हार्ट ब्रेक होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हमारा दिल है हर इमोशन से भरा होता है। मेरे साथ भी होता है सर, बहुत बार होता है। और बट मेरा हार्ट ब्रेक हमेशा तभी होता है जब कोई चीज अटकती है ना, और फिर वो फील होता है कि हाँ थोड़ा ये काम अटका है, तो फील होता है। बट सर हर चीज की खूबसूरत चीज होती है कि हम जिस चीज में अटके हैं, यानी हम उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हुए हैं। जैसे मोबाइल होता है ना सर, मोबाइल क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है? क्योंकि हर टाइम एक नया फर्मवेयर आता है, अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो कोई वायरस आ जाएगा। तो हमें, जी मैं मानता हूँ कि हमें उस चीज में ही दर्द होता है असलियत में, क्योंकि हम उस चीज से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं हो पाए हैं अभी, हमें उसको अपग्रेड करना है। तो जब भी फील होता है तो यही एहसास होता है कि मैं उस चीज के लिए अपग्रेड नहीं हुआ हूँ, मुझे अपग्रेड होना है और उस चीज को डील करना है। यही तो लाइफ है सर, सबके साथ होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है, कईयों को, जो बहुत से लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ज्यादा पेन है, ऐसा नहीं है सर। सबकी लाइफ में वही धूप छांव है, वही पेन है, पेन का पैरामीटर अलग है। मैं ये नहीं कह रहा, अब जैसे कोई और सक्सेसफुल है, कोई भी एक्साइटेड है, जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ में भी सर पेन है, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में पेन नहीं है। सबकी लाइफ में पेन है, बट बॉटम लाइन ये होती है कि मैं अपने, अगर मुझे अपने आप को सुकून पाना है तो मुझे अपने पेन पे ध्यान देना है, एज कंपेयर टू किसी और से मुझे कंपेयर करना। तो ये सर जो मेरे पाती में पेन आया है उसको कैसे डील करना है, उस पर ध्यान दे तो सॉल्यूशन निकलता है सर। बाकी तो सर फील होता ही है।
0: प्रकाश हम कार्यक्रम के लास्ट में आपके पेन को कम करने के लिए क्यों नहीं एक जैज पंख गीत ले आए आपके गिटार से आपकी उंगलियों के माध्यम से। अच्छा
1: सर ये सॉन्ग है स्पेनिश जॉइंट सर, इसमें आपको वो रिदम फील होगी, फील पम्प्ड अप सर।
0: श्रोताओं हमें इसका आभास है कि समय भी गुजर रहा है और बातचीत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बातचीत के इस पड़ाव पर हम प्रकाश के शौक और प्रकाश के जीवन में रहे कुछ हॉबीज के बारे में बात करना चाहेंगे कि वो अपने इस व्यस्त समय में से अपने शेड्यूल में से क्या वो खास चीजें हैं जो करना पसंद करते हैं और अपनी दोस्ती यारी और अपने उस समय के बारे में बताएं जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं।
1: बिफोर या अभी का सर?
0: हाँ हम एक कंपैरिजन तो चाहेंगे ही आपकी जिंदगी में कि पहले कैसा था और अब कैसा है,
1: हाँ,
0: दोस्तों में क्या बदलाव है यार।
1: पहले तो सर इतना रश ऑफ ब्लड होता था कॉलेज टाइम में। हम दोस्त होते थे कि चलो दिल्ली चलते हैं, हम बाइक से दिल्ली चले जाते हैं। मतलब मेरे को ड्राइव करना, बाइक राइड करना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। तो हम जैसे बैठे हैं कॉलेज में, होता है यार दिल्ली चलते हैं, दिल्ली के दोस्त से मिलना है, तो बस बाइक में बैठे और चले जाते थे। हम रोड ट्रिप करना मुझे बहुत पसंद था, जैसे हम लद्दाख गए बाइक से, आई लव रॉयल इनफील्ड जो बाइक थी, तो वो पहले हम बहुत ट्रैवल करते थे। बट अब इसके बाद भी चेंज नहीं आया सर, आई लव, जैसे अभी आप कहेंगे तो आई लव ट्रैवलिंग, पहले मैं खुद चलाता था, अब किसी और को कहता हूँ। जैसे मुझे अभी ट्रैवल करना सर बहुत पसंद है, अभी भी जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गुवाहाटी हुई थी, तो मेरा लाइफ में नॉर्थ ईस्ट मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला था, बट थैंक्स टू माय जॉब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई, तो मैं शिलोंग ये सब अभी ट्रैवल कर पाया। तो आई लव ट्रैवलिंग, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, और सर आई लव शॉपिंग, एक्सप्लोरिंग न्यू फूड, मुझे आई एम अ फूडी पर्सन, तो मुझे फूड एक्सप्लोर करना, और मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है सर।
0: आपके सबसे फेवरेट टेस्ट कौन सा है? आप क्या पसंद करते हैं, थाई, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज?
1: सर मुझे तो प्रॉपर इंडियन फूड, भले ही वो साउथ इंडियन हो, होम मेड होना चाहिए। जैसे साउथ का अगर इडली डोसा अगर किसी ने घर में बनाया तो ऑसम है सर। मैं तो पूरे इंडिया का फूड मुझे बहुत पसंद है सर। जैसे साउथ का अगर घर में होम मेड है इडली डोसा, भले ही साउथ का राइस हो, बिरयानी हो, आई लव। नॉर्थ जोन का पराठा हो, आई लव। बस वो होम मेड हो, बस मुझे वो अच्छा लगता है सर। होम मेड होना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल। तो कहें कि केरल से लेकर कश्मीर तक के सभी टेस्ट आपके करीब हैं।
1: बिल्कुल सर, मुझे कुकिंग करना ही बहुत पसंद है, तो कभी टाइम मिलता तो आई ऑल्सो कुक सर।
0: ग्रेट। तो ये तो बातें हैं, आप एनफील्ड पे तो अभी भी जा सकते हैं, बस बात
1: बिल्कुल
0: ये
1: सर, बिल्कुल
0: आप
1: वही है,
0: अपनी
1: बस
0: रुचि के
1: पैरामीटर
0: लिए।
1: चेंज हुआ। अभी भी जाता हूँ सर, बाइक राइड पे जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो अभी भी सर वो मैं जाता हूँ।
0: क्या बात है। तो आपने अपने रोड्स के प्यार को रॉक पे आप ले आए हैं, तो दिस इज द
1: जरूर
0: जर्नी ऑफ रोड टू द रॉक, राइट?
1: सर,
0: और हमने एक रॉक में एक कहें कि हमने पॉप में भी कुछ नया करने का प्रयास किया है, और डेफिनेटली मुझे लगता है आज आपके इंस्टीट्यूट को भी आप पे गर्व है कि जिस तरीके से आपने अपने आप को संभाला है और एक जिंदगी में कमबैक किया है। और जो बिजली चैलेंज, बचपन से बिजली चैलेंज होते हैं उनको शायद वो समस्या नहीं रहती है, लेकिन आपके साथ एक चैलेंज रहा है, और हम तो यही चाहेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।
1: थैंक यू
0: लेकिन
1: सर।
0: इस पूरी जर्नी में आप क्या ऐसे मकाम हैं या ऐसे कहें कि टारगेट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं?
1: टारगेट तो सर वो ही है सर, एक हम वो मॉरली देखें तो सर एक्चुअली खाली आता है खाली आ जाएंगे, बट मेरा तो हमेशा सर यही रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको मैं कितना काम और कंपोज तरीके से टैकल करूं सर, और एक वैल्यूएबल इंसान बनूं सर, मेरी तो यही चाहत है।
0: जी, बेहतरीन। और इस पूरी बातचीत की जर्नी में आपके कुछ कॉलेज डेज भी रहे, वो भी हमने आपने बीच बीच में बताए हैं,
1: हाँ सर, रोड
0: परंतु
1: ट्रिप हम
0: अपने
1: बहुत
0: कॉलेज
1: करते थे
0: की कोई
1: कॉलेज टाइम
0: ऐसी
1: में सर।
0: बात जो हमारे यूथ लिसनर्स को आप शेयर करना चाहें?
1: और सर कॉलेज ट्रिप का तो सबसे एक ऑसम होता है सर, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो कॉलेज में एकदम से फ्रीडम फील सा होता है, क्योंकि हम इतना एक्सप्लोर नहीं करते। तो ये सर कॉलेज में तो सर वो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, मैं बताऊँ हमारे 25 जनों का ग्रुप था, तो आप इमेजिन करें कि 25 जने अजमेर हाईवे से अजमेर जा रहे हैं, तो कितना ऑसम फील होगा। 25 जने 25 बाइक सर, हम ऐसे इतने एक साथ जाते, तो बहुत मतलब हमने इतना ट्रैवल किया है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था,
0: जी,
1: क्योंकि कॉलेज में सर वही सर रोड ट्रिप्स बहुत पसंद थी मुझे, तो हमारा ग्रुप पहले भी वो था और अभी भी मेरा है सर, ऐसा नहीं है कि दे हैव चेंज्ड, अभी भी मेरे वो सारे फ्रेंड्स हैं। जब रोड ट्रिप होती है, हाँ अब हम थोड़े वो जॉब वॉब ये सब कर रहे हैं, तो बाइक इट्स डजंट शूट अस, तो वही सर हम अपना व्हीकल करके वैसे जाते हैं सर।
0: क्या बात है। तो आप तो रोड्स पे भी रॉक कर चुके हैं और अब तो गिटार पे कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ही कुछ नए मकाम भी करें। आप ये अभी क्या विशेष हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ नए टारगेट्स जो आप सोचते हैं कि मुझे करना बाकी है?
1: अभी जैसे म्यूजिक है, गिटार है, क्योंकि म्यूजिक सर इज जस्ट लाइक अ सर सागर। मैंने देखी सर, मैंने अभी ये कर लिया, इट डजेंट मीन कि आई एम द लेजेंड, तो मेरे को अपने म्यूजिक में और इम्प्रूव करना है, कि जितना मतलब लाइफ ने मुझे टाइम दिया है जीने का, उसमें मैं कितना म्यूजिक ग्रहण कर सकती हूँ, क्योंकि म्यूजिक इज नेवर एंडिंग ना सर, कोई नहीं कह सकता कि यू आर द परफेक्ट। तो अभी एक ये जर्नी है कि म्यूजिक को मैं कितना समझ सकता हूँ, अभी मैंने बस एक समुद्र का एक बूंद को महसूस किया है, मतलब मैं कैपेबल हो पाया कि इस बूंद को समझ पाऊं, तो अभी सर म्यूजिक में मैं कितना समझ सकता हूँ। आई लाइक वर्कआउट, तो बॉडी को हम आई डू मेडिटेशन, तो उसको मैं कितना समझ सकता हूँ, तो यही टारगेट है सर। और अभी जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है टेक्स्ट टू स्पीच में, इट डजेंट मीन सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि स्क्रीन रीडर अच्छा है, बट अभी भी बहुत से वेबसाइट हैं उसमें फिर अपग्रेड नहीं हुए, तो उस चीज पे काम करना है हमें, कि हम चीजों को और कितना एक्सेसिबल बना पाए, क्योंकि एज अ वीआई बंदा इज कैपेबल इनफ सर, कमी उसमें नहीं है। बंदा अटकता तब है जब स्क्रीन रीडर अटक गया है, अटक जाता है। इट मीन्स कि जो जो प्रेजेंट हो रही है वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं हुई है स्क्रीन रीडर के लिए। तो बस, तो सर अब मेरी तो बस यही चाहत है कि जितनी भी हमारे एप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे सब में प्रोग्रामिंग हो स्क्रीन रीडर के लिए, ताकि हमारा काम अटके ना सर। बस यही चाहत है कि इसमें मैं और काम कर सकूं सर। और बस यही
0: जी
1: ख्वाहिश है कि जितने भी अभी फ्यूचर में और जितने भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं सर, ये तो आपको भी बहुत पहले से अभी भी पता होगा कि बहुत कम है अभी भी एप्लीकेशन जो एक्सेसिबल हैं। बहुत सी चीजें हैं, वेबसाइट हैं, जो अभी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है और हो नहीं रही है। बस सर मैं तो यही चाहते कि जितने भी अभी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर आए, वेबसाइट हो, वो सारी एक्सेसिबल हो, और उसमें मैं कितना कर सकता हूँ सर। बस यही चाहते सर कि ये काम हो जाए, जो भी आए एक्सेसिबल हो गया है।
0: एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है और हमारे देश का कानून भी इस बारे में बात करता है कि एक्सेसिबिलिटी 100% होनी चाहिए जहां पर भी संभव हो। फिजिकल, वर्चुअल, टोटल एक्सेसिबिलिटी की बात करता है और आप जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस एक्सेसिबिलिटी के को आसान बनाते हैं। तो शायद हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी सलाम करते हैं कि वे हमारी जिंदगी को आसान बनाने में लगे हुए हैं और
1: बिल्कुल
0: इस
1: सर,
0: पूरे पूरे हालात को बेहतर बनाने की, अब क्या कहें, एक बेहतर दुनिया हमारे लिए बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं। इस प्रोग्राम में श्रोताओं, हमने प्रकाश के जीवन पर प्रकाश डाला और आशा है कि आपको इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, इस पूरे आज मन की आंखों के शो ने अपने मन के में जाने का मौका दिया होगा। और मन के अंदर जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप भी, चाहे जैसा भी चुनौती आपकी जिंदगी में हो, आप लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, जीत आपकी ही होगी। प्रकाश, आप हमारे शो में आए और आपने हमें समय दिया, हम
1: अरे
0: उसके।
1: सर थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और आपसे बात करने का मौका मिला, थैंक यू सो मच सर। और कुछ नया आपसे सीखने को मिला सर, और आपसे तो सीखने का मौका मिलता ही रहता है सर, तो थैंक यू सो मच सर।
0: जी, थैंक यू प्रकाश, हम आपके आभारी हैं और ऐसे ही श्रोताओं हम लाते रहेंगे किसी न किसी नई शख्सियत को आपके बीच। और आज की शख्सियत ने बताया कि रुके नहीं, लड़ते रहें और इस जद्दोजहद के बीच ही ना हमारा शो आपके लिए लेकर आता है ऐसे ही किसी सितारे को। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 107.8 FM आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन। हियर इज योर आरजे शरद साइनिंग आउट। थैंक यू कृष्णा बहन, मुझे लगता है कि अभी एडिटिंग के बाद अच्छा हो जाएगा।
1: हाँ कुछ अपन पुराने वाले से भी ले सकते हैं, वो बस आपने जो आखिरी वाला बोला था ना ब्लूज का, वो शायद हटा देना, क्योंकि अपन 5 पहले डिस्कस कर चुके हैं।
0: ठीक है,
1: बाकी मैं वो 5 के लिंक आपको भेज दूंगा, जो जिन जिन के, एक तो मैंने आपको भेज दिया लीड शीट का, बाकी वो पहला मीट डाकिया, स्पेनिश जॉइंट, डार्क मैटर और क्राइमिया रिवर, ये 4 के हैं। मैं आपको यूट्यूब के लिंक भेज दूंगा, आप वो MP3 में कर लीजिए कन्वर्ट।
0: जी
1: बाकी और भी आपको करना हो तो मेरे YouTube में और भी वीडियोस हैं, अगर
0: कृष्णा
1: आपको
0: बहन,
1: लगे तो आप देख लीजिएगा।
2: अभी बजे हैं रात के 9। 1 मिनट का समय स्वयं को दे।

0: that cannot be erased from your heart. इसलिए लौट आई हूँ फिर से कार्यक्रम गुलदस्ता में, जो गीत हमारे दिलो दिमाग पर बरसों से हैं, जिसे हम मिटा नहीं सकते, उन्हीं गीतों को नए अनोखे अंदाज में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर से आपका मनपसंद दिल पसंद कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं स्वर्णलता। हमेशा नए अनोखे अंदाज में उड़ती रहती हूँ आपकी खातिर। तो रेडी है ना आज के सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुनते हुए मुस्कुराते हुए। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM, हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: लेजेंड। कुछ अलग, कुछ खास, कुछ अद्भुत सुनने के लिए आपको ट्यून करना होगा रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और मैं हूं स्वर्णलता। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट कार्यक्रम गुलदस्ता। आज गुलदस्ता कार्यक्रम में हम हैं बिल्कुल बेफिक्र मोड में, आप भी बेफिक्र हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पुराने गीतों के नए रूप को देखने के लिए आप सभी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में, डोंट मिस द शो, वन एंड ओनली स्वर्णलता के साथ आप बिताएंगे पूरा एक घंटा। इस एक घंटे के सफर को यादगार करते हैं हम दोनों मिलकर। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
2: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
1: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: आज एक अनोखे अंदाज में सिंगर पेश कर रहे हैं, उसे एक रीइमेजिन्ड तरीका दिया जा रहा है, उसे नव कल्पना का रूप दिया जा रहा है। तो इस नव कल्पना को आप कैसे स्वीकारते हैं? स्वीकारते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आपको किसी भी गीत का ओरिजिनल वर्शन ही पसंद है? क्या ख्याल है आपका? सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।
2: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

उन्होंने गीतों को अगर कोई अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में गाए या उसमें कोई चेंजेस लाए म्यूजिक में, क्या आपको पसंद है? आपको पसंद है ऐसे चेंज्ड वर्शन को सुनना? तो आज के कार्यक्रम में उन लोगों को शामिल होना ही पड़ेगा जो ऐसे स्टाइल को पसंद करते हैं, अपना लेते हैं तुरंत, किसी की क्रिएटिविटी को तुरंत जो अपना लेते हैं वह सहज ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई एक ही वस्तु के साथ लगाव लगाए बैठा रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद वह पीछे अपने आप को पाता है, वह कतार में अपने आप को पीछे पाता है क्योंकि वह आगे बढ़ ही नहीं पाता। हमें कई बार ऐसे चेंजेस को अपनाने पड़ते हैं।

बाल संसार सुनिए हर शनिवार दोपहर 12:30 पर। कल्पना कीजिए एक ऐसा कार्यक्रम जहां बच्चे शिक्षक और माता पिता एक साथ जुड़कर सीखें और खेलें। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बाल संसार की। तो फिर इंतजार किस बात का, हर शनिवार दोपहर 12:30 पर रेडियो मधुबन 107.8 FM पर बाल संसार सुने और अपने परिवार के साथ एक यादगार पल बिताएं। सुनिए, मुस्कुराइए और सीखिए बाल संसार।

बॉलीवुड ओल्ड म्यूजिक को ओल्ड मेलोडीज को सदाबहार गीत भी कहे जाते हैं। अब इन सदाबहार गीतों के जो ओरिजिनल वर्शन है उनका न्यू वर्शन आ चुका है। सभी अपने अपने अंदाज में इसे गाते हैं। ओरिजिनल वर्शन का एक अनोखा अंदाज भी है जो अपने अनोखेपन को दर्शाते हैं इन गीतों के नए वर्शन में। तो आप सब इन्हें सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारा तो इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य रहता है कि कुछ ना कुछ नया आपको दें और उस नएपन को आप दिल से कबूल कर ले। तो बने रहिएगा अंत तक आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह, क्योंकि आपका वादा है हमारा साथ हमेशा निभाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: संगीत प्रेमियों का कहना है कि ओल्ड मेलोडीज का अपना ही एक दौर था, वह दौर कभी वापस आ नहीं सकता। पर हम कहते हैं कि आज की जनरेशन भी ओल्ड मेलोडीज गा रही है, और आज की जो जनरेशन है उसमें कुछ जो म्यूजिक लवर्स हैं, इन पुराने गीतों को एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहे हैं, वह भी सही है। इससे नयापन आ जाता है, और नयापन कौन नहीं चाहता साथियों, है ना? हर चीज में तो नयापन हम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें भी सही। री इमेजिन्ड न्यू वर्शन आज आप सुन रहे हैं इन सदाबहार गीतों के। तो आप बताइएगा आपको ये गीत कैसे लग रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसे भी हमें बता सकते हो, आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक के आधुनिक वर्शन आपके लिए रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता में। तो अभी बैक टू बैक दो गीत हम सुनने वाले हैं।
1: रुक, ओए रुक, ओए रुक, हेलमेट कहाँ है तुम्हारा?
2: सर वो सर सर
1: ओए क्या सर सर करके सरसरा रहा है भाई? आए ओए, तुम्हारे सर के लिए ही बोल रहा हूँ। ओए चेहरे से तो समझदार लगते हो, पढ़े लिखे भी लगते हो, वो इतनी धूप है धूल है वो कम से कम अपने चेहरे का ही ख्याल रख लो, तो ये चमकते हीरे जैसा चेहरा कहीं जीरे जैसा नहीं हो जाए।
2: सर आगे से ध्यान रखूंगा।
1: आगे से तो नहीं, मुझे तो तुम पीछे से निकलने वाले लगते हो, हैं? पर मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं होलदार। सड़क पहले वो सामने की दुकान से लो हेलमेट फिर गाड़ी।
3: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

माय नेम इज लेफ्टिनेंट जनरल दत्तात्रेय शिकटकर, मैं एक सैन्य अधिकारी हूँ, निवृत्त सैन्य अधिकारी। मेरा ये निवेदन है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ में कि माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, हमें मान्य है कि हम इस पूरी पृथ्वी को बगीचा नहीं बना सकते हैं, माना कि इस जहाँ को हम गुलशन न कर सके, बस कांटे ही कुछ कम कर दिए, निकले जिधर से हम, एक कांटा, एक कुरीति, एक कुप्रथा, एक गलत बात अगर यहाँ से निकल जाएगी तो ये माउंट आबू जो है, यहाँ का क्षेत्र है, पूरा राजस्थान है, ये स्वर्ग हो जाएगा। और यही मेरा निवेदन है, यही मेरे ईश्वर से प्रार्थना है।

0: विक्रम गुलदस्ता में आज हम पुराने गीतों के, पुराने दौर के जो सदाबहार गीत हैं, उन गीतों के नए वर्षन हम सुन रहे हैं, जिसको रीमेक वर्षन भी कहा जाता है। और अभी हमने दो गीत बैक टू बैक सुने। फर्स्ट सॉन्ग किशोर कुमार का था ओ मेरे दिल के चैन, और सेकेंड सॉन्ग एक डुएट सॉन्ग रहा इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। अब साथियों, आपने देखा कि दूसरे गीत में इसके शब्द भी बदल दिए गए और उसको अपने तरीके से पेश किया गया, और वह भी बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, खूबसूरत लग रहा था, है ना। तो ऐसे ही गीतों को आज आप सुन रहे हैं जिसमें नवीनता है। बने रहिए और सुनिए अगला गीत।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: प्यार से काम करना और प्यार से काम करवाना, क्योंकि आई बिलीव एट लीस्ट कि अगर काम प्यार से नहीं हो सकता तो डांट कर जबरदस्ती करवाने का उसमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। यू नो योर रिलेशनशिप इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मोर इम्पोर्टेंट इज़ रिलेशनशिप नॉट द वर्क। लेकिन फिर भी अगर काम करवाने के लिए आपको वो असर्टिवनेस का आधार लेना है तो इनर बिल्कुल एंगर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप उसको असर्टिवनेस नहीं कह सकते। से आई एम एंग्री, डोंट से आई एम नॉट एंग्री, आई एम जस्ट बींग असर्टिव, ये चीटिंग है अपने आप से, दूसरे से भी। तो आप पहले तो अंदर बिल्कुल स्टेबल है और फिर आपको जो कुछ कहना है उसको अथॉरिटी से और बहुत डिसिप्लिन एंड असर्टिव। डजेंट हैव टू बी लाउड, यू नो इट डजेंट हैव टू बी लाउड। हम सोचते हैं जोर से बोल दिया तो दैट इज असर्टिव, दैट इज अ ट्रेस ऑफ एंगर। आपका वॉल्यूम बढ़ ही नहीं सकता है जब तक वो एनर्जी अक्यूमुलेट नहीं हुई है अंदर। तो इवन जब हमारा वॉल्यूम इस तरह से जोर से बढ़ जाता है, दैट एनर्जी हैज बीन क्रिएटेड इनसाइड। बहुत आराम से, स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी एवरीवेयर, यू नो थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस। तो अंदर वो स्टेबिलिटी होगी वो बाहर अपने आप आएगी, वी विल नॉट हैव टू डू इट। एंड फिर डिसिप्लिन करने के लिए आपको जो डायरेक्शन देना है उसको आप देते हैं, तो आई थिंक एनर्जी एक्सचेंज विल बी वेरी कम्फर्टेबल बिटवीन द टू पीपल।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

चार दिन की जिंदगी है हंसते गाते चलता चल, चार दिन की जिंदगी है हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए आगे चलता चल, चार दिन की जिंदगी है मुस्कुराते हुए हर लम्हा बिताते हुए आगे बढ़ता चल। फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को जाने की इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम के सारे गीत बहुत पसंद आए होंगे और ऐसे ही गीतों को हम लेकर आएंगे। और जाते जाते आपको यही कहना चाहूंगी कि इमेजिनेशन इज द मदर ऑफ ऑल न्यू क्रिएशन। अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्पना शक्ति की बहुत आवश्यकता है। कंप्लीट एकांत की स्थिति एक आनंददायक स्थिति है, जब कुछ नया अपने आप दौड़े चला आता है। और इस कल्पना शक्ति के लिए एकांत की स्थिति की भी बहुत आवश्यकता है। तो आनंद लेंगे हम बॉलीवुड हिंदी क्लासिक्स का हमेशा, क्योंकि ये सदाबहार गीत ही हमें कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह सदाबहार गीतों के साथ, नए नए गीतों के साथ। अब कौन से गीत पेश करने वाली हूँ जरा देखते हैं। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हर एक शेर से नजरे चुराता रहूं।
1: अभी बजे हैं रात के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम है नई दुनिया नया जमाना। आज की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आरावली की कहानी इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस भाग में हम आरावली के जैव विविधता को समझेंगे, उसके वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। और आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सुनील फुके जी। सर, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस कड़ी में।
1: नमस्कार, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले वन्य जीव कहते हैं हम और वाइल्ड लाइफ भी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वन्य जीव और वाइल्ड लाइफ ये जैव विविधता का ही हिस्सा है या फिर ये दोनों थोड़ा अलग है?
1: वन्य जीव जब हम रेफर करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है, समझ आती है कि जिन्हें हम पालतू नहीं बना सकते
0: जी,
1: तो ऐसी सारी प्रजातियों को हम मानते हैं वाइल्ड
0: जी।
1: और जिनको हम पालतू बना सकते हैं अपने प्रयोजन के लिए, जिनको हम गाइड करके नियंत्रित करके काम में ले सकते हैं, उनको हम कह देते हैं पालतू। तो वन्य जीव यानी कि जिनको हम पालतू नहीं बनाते हैं, नहीं बना सकते हैं दोनों तरह से, और जो नेचर में अपने हिसाब से रहती हैं प्रजातियां, उनको हम वन्य जीव कहते हैं। और उसमें भी हमें ये मानना चाहिए कि उसमें एनिमल और प्लांट दोनों आते हैं, और उसके साथ में ये सब जो एनिमल और प्लांट हैं जिनको हम पालतू नहीं बना सकते हैं
0: जी।
1: वो भी उस जैव विविधता का एक अभिन्न अंग है, एज ए एनिमल पार्ट और एज ए प्लांट पार्ट। तो जैव विविधता एक लार्जर टर्म है और वन्य जीव जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, वो एक टेक्निकल टर्म है उनके रेफरेंस में, जिनको हम पालतू नहीं बना सकते हैं, जिनको हम नियंत्रित कंडीशंस में उगा नहीं सकते हैं, पाल नहीं सकते हैं, उनसे काम नहीं करा सकते हैं, वो सब वन्य जीव कहलाता है।
0: तो वन्य जीव हमारे जैव विविधता में इनका क्या महत्व है वन्य जीवों का?
1: देखिए, विश्व में जो अधिकांश प्रजातियां हैं, जीवों की हो, मतलब जंतुओं की हो या प्लांट्स की हो, मानव ने अभी तक बहुत कम प्रजातियों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है, उनको कंट्रोल कर पाया है और उनके अपने प्रयोजन के लिए उनको काम में ले पाया है। जब हम आदि मानव के टाइम से देखते हैं तो उन्होंने जो है पहले ये जो पशु जिनके दूध से उनका काम चल जाता था तो उनको पालना शुरू किया, और जिनसे उनको बल्क में मांस मिल जाता था भोजन के लिए, उनको उन्होंने पालना शुरू किया था। उसके बाद में फिर उन्होंने जो है उनसे अन्य काम कराने शुरू किए, तो घोड़े आए, बैल आए, खच्चर आए, ये सब जो है उन्होंने अपने काम में लेना उनको शुरू किया। उसके साथ में जो छोटी बिल्लियां थी वो भी उनके पालतू बन सकी, लेकिन बड़ी बिल्लियां थी उनको वो आज तक पालतू नहीं बना सके। ये अलग बात है कि उनको आर्टिफिशियल खाना दे करके या ऐसे करके आप अपने आप पाल करके, टाइगर को, लॉयन को लोग बाग जो पाल लेते हैं, वो पालना नहीं है, क्योंकि उनकी वाइल्ड नेचर, उनका जो गुण है जंगलीपन का, वो अभी तक इंटैक्ट है
0: जी।
1: तो वन्य जीवों का जो नेचर के अंदर जो सर्वाइवल है, जो जीव जंतु है उनमें ज्यादातर वन्य प्रजातियां ही है, यानी वाइल्ड ही है। अभी भी हमारे यहाँ जितने तरह के जो फल फ्रूट पादप प्रजातियां हैं, अनाज वर्ग के जितने जिनमें दाने बनते हैं और जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 10-15 मुख्य अनाज जो हैं विश्व भर में, अभी तक हम उनको ही मुख्य रूप से फसल में कर पाए, उसमें भी चावल, मक्का और गेहूं, ये मैक्सिमम पार्ट बनाता है 3 अनाज विश्व के। लेकिन अगर आप परंपरागत रूप से देखें तो नेचर में आपको कितनी तरह की चीजें अनाज में मिलते हैं। बाजरा कुल के जो मिलेट वर्ग के कहलाते हैं, वो ज्यादातर बरसात के पानी से नेचुरली ही उगते हैं, जबकि गेहूं को आपको 4 बार सिंचाई देनी पड़ती है। तो इसीलिए प्लांट्स में भी जो है वो वाइल्ड वर्ग है, वाइल्ड स्पीशीज है, और जंतुओं में भी वाइल्ड स्पीशीज है, और ये यानी वाइल्ड स्पीशीज जो है वो ही असली नेचर है, क्योंकि बाकी को तो आपने टेम कर लिया है ना, पालतू बना लिया, कंट्रोल कर लिया, उनकी लाइफ साइकिल कंट्रोल कर ली, आप उसमें अपनी मर्जी से उनका हाइब्रिडाइजेशन भी कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल कंडीशन में रख पा रहे हैं, बंधक बना के रख रहे हैं, स्टोर करके रख पा रहे हैं, आपकी मर्जी हो जब उगा पा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखिए, मैं आपको बहुत सरल बताता हूँ, मिलेट्स, बाजरा कुल, जो अभी हम कह रहे हैं अवेयरनेस ऑन मिलेट्स, बाजरा कुल को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, ऐसे चाहे जब नहीं उगा सकते, वो वर्षा काल में वर्षा संचित ही वो अपने आप ही उनका जीवन चक्र होता है। तो ऐसी स्थिति में जो खरीफ की फसलें हैं ज्यादातर आपको वो वर्ग मिलेगा जो रेन वाटर से ही संचित हो जाएगा। इसलिए वन्य जीव जो है अर्थ है उसी को हमें जो है

0: नेचर का डोमिनेंट पार्ट मानना भी चाहिए।
1: जी सर, तो वाइल्ड स्पीसीज के बारे में आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे, जैसे सर ने कहा कि असली नेचर वो है और सिर्फ जीव जंतु नहीं लेकिन पेड़ पौधे भी हैं, आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। एक और सवाल सर के लिए है कि सर अरावली की बात करें अगर, तो अरावली क्षेत्र की जैव विविधता की जो पहल है वो पहले कैसी थी और अब कैसी है और उसका क्या महत्व है?
0: हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिज्ञासा है, जिसको लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि आज जो जैव विविधता के परिवर्तन हम देख रहे हैं, तो हमको कभी भी अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए, इकोलॉजिकल पास्ट और इवोल्यूशनरी पास्ट जो हमारा उद्विकास हुआ है। ये वो अरावली है जिसके फॉर्मेशन के बारे में मैंने पिछले एपिसोड्स में बात करी और उस समय ये भी बताया कि लगभग 2 अरब साल पहले यहाँ पर जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई थी, एक कोशिकीय बहुकोशीय शैवाल बैक्टीरिया जैसे थे, तो लगभग 1.8 बिलियन, लगभग 180 करोड़ वर्ष पहले से लेके 90 करोड़ वर्ष पहले तक यहाँ पर जो स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉसिल जो मैंने पिछले एपिसोड्स में भी बताया वो यहाँ डेवलप हुए थे। तो जीवन की उत्पत्ति की जो प्रारंभिक अवस्थाएं थी पृथ्वी पर, तब से यहाँ पर जो है स्पीशीज, वाइल्ड स्पीशीज कहिए या स्पीशीज कहिए, उनका ओरिजिन अरावली में रहा है, इस लैंडस्केप में रहा है, यहाँ की चट्टानों में उनके फॉसिल आज भी हैं। अब उसके बाद में जो जितना पास्ट हमको मालूम है, यानी जो उनके प्रमाण हैं और पिछले 10, 5, 10, 15 हजार साल, 20 हजार साल का या पहले का, और फिर जो फॉसिल है वो उससे पहले के हैं, लेकिन ये जो रिसेंट पास्ट जिसको हम कहेंगे उसके आधार पर जब हम मानते हैं, तो ये पूरे अरावली लैंडस्केप में जहाँ उत्तर की तरफ ये थोड़ी कम ऊंचाई की माउंटेन्स हुई, उनके सेटलमेंट ज्यादा उत्तर में हुआ, लेकिन मध्य और दक्षिण में ये बड़ी बड़ी लंबी श्रृंखलाओं के रूप में, हाई पीक्स के रूप में, घाटियों के रूप में और ऐसे वैलीज के फॉर्मेशंस बनाती हैं, और इनमें जो मैदानी इलाके थे जहाँ टॉल ग्रासलैंड्स थे और जहाँ चरने वाले जानवर बहुत थे, तो पास्ट में तो यहाँ पर चीता रहा, यहाँ लॉयन बब्बर शेर रहा, यहाँ हाथी रहे, यहाँ गेंडा हाथी रहे, यहाँ बिसन लंबे सींग वाले जंगली भैंसे वो यहाँ रहे। उसके अलावा यहाँ के जब जंगल अपेक्षाकृत ज्यादा घने थे, उत्तर पूर्वी अरावली में, उत्तरी अरावली में भरतपुर, करौली, धौलपुर, इधर का जो इलाका रहा जयपुर, दक्षिणी राजस्थान में इधर उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, दक्षिणी अरावली की तरफ और इर अरावली के पूर्वी डायरेक्शन में जहाँ नदी घाटियां काफी हैं, नमी ज्यादा है, वेस्ट में बाद में डेजर्ट आया, तो इन इलाकों के अंदर तो मृग कुल के, जो हिरण कुल को जिनको हम मानते हैं, हिरण और मृग, डियर्स एंड एंटीलोप, उनमें हॉग डियर थे, बार्किंग डियर थे, माउस डियर थे। माउस डियर जो सबसे छोटा हिरण है, बहुत छोटे आकार का, वो आज भी इनको माना जाता है कि इनका, लेकिन इनका अकरेंस जो है बहुत पहले पाया गया, कई दशक पहले, लेकिन अब जो है केवल अंदाजा लगाया जाता है कि ये अमुक अमुक एरिया में बचे हैं, लेकिन पहले इनका वितरण बहुत व्यापक एरिया में था। उसके अलावा अरावलीज के अंदर जो है, जो इसका शुष्क भाग था उत्तर की तरफ और पश्चिम से लगा, वहां डेजर्ट कैट, जंगल कैट, और जो हमारे अरावलीज में, राजस्थान में सबसे छोटी बिल्ली पाई जाती है, रस्टी स्पॉटेड कैट, आपकी हथेली पर आ जाएगी, रस्टी स्पॉटेड कैट जो है वो आज भी है, आज भी बची हुई है, हालांकि इसका जो आवास है बहुत कुछ नष्ट होने से बहुत कम बची है। पहले जो आपके सिरोही, पाली, जालौर, नागौर, ये अजमेर का इलाका और उत्तर तक का जो इलाका था जहाँ फ्लैट टेरेन थी, माउंटेन जोन से लगी हुई, वहां भेड़िए भरे पड़े थे। आज भी आपके सिरोही, पाली और उधर के एरियाज में भेड़िए वहां पर भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा अरावली से दक्षिण पूर्व की तरफ इधर कोटा, हाड़ौती के जंगलों में इधर भी भेड़िए पाए जाते हैं, जो विंध्यन माउंटेन से जो हमारा कनेक्शन है। इसके अलावा जो है भेड़िए के अलावा यहाँ भालू बहुतायत में थे, जो मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में कन्फाइंड रह गए विशेष रूप से। उसके अलावा जंगली कुत्ते यहाँ झुंड में जो घूमते थे, शिकार करते थे, जंगली कुत्तों की प्रवृत्ति है, वो झुंड के झुंड यहाँ पर उनके वितरित थे, वे खत्म हुए। चौसिंगा हिरण थे यहाँ पर, जिनके सिर पर दो आगे थोड़े बड़े सिंह आते हैं और पीछे दो अपेक्षाकृत छोटे आते हैं, चौसिंगा कहते हैं। एंटीलोप है, मृग कुल का है, छोटा बकरी जैसा। तो ये चौसिंगा हिरण यहाँ के जंगलों में बहुत आयत में थे, लेकिन अब वो बहुत कम एरिया में कन्फाइन हो गए। यहाँ लोमड़ियों की प्रजातियां भी हैं जो पहले डेजर्ट जोन से लगी हुई है, वहां डेजर्ट फॉक्स भी मिलती है। दूसरा जो हमारे जंगलों के अंदर मिलती है वो इंडियन फॉक्स, वो भी मिलती है। यहाँ सांभर जो हिरण कुल के हैं वो सांभर डियर, स्पॉटेड डियर चीतल कहते हैं, बकरी जैसा चिंकारा जो आज भी उत्तरी अरावली से लेकर के दक्षिणी अरावली तक, मैदानी इलाकों से लेकर के घाटियों तक में है, कृष्ण मृग ब्लैक बक। और इसके अलावा आपको बहुत आश्चर्य होगा जानकर के कि यहाँ पेंगोलिन, स्केली आंट ईटर जो चींटियों को खाता है, जिसके
1: जी
0: पूरे शरीर पर कवच का खोल होता है, छोटे छोटे कवच जैसे, वो दीमक और चींटियों के बिल में से दीमक और उनको निकाल के खाता है पेंगोलिन, जो विश्व का सबसे ज्यादा शिकार होने वाला स्तनधारी है, छोटा स्तनधारी सबसे ज्यादा। वो पेंगोलिन तक हमारे अरावली क्षेत्र में वितरित बड़े एरियाज में था, अभी बहुत कम एरिया में रह गया। उड़न गिलहरी हमारे यहाँ दक्षिणी राजस्थान में रह गई। नेवला की कई प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें देखें तो काली पूंछ का नेवला, हर्पिस्ट्रिस स्मिथियाई, वो अरावली के अंदर बहुत कम हो गया। इसके अलावा झाऊ चूहा कहलाता है, छोटा रोडेंट है, उतरने वाला जंतु। तो ये झाऊ चूहा, इसके शरीर पर छोटे छोटे कांटे से होते हैं, उसमें भी पीले रंग का, थोड़ा अपेक्षाकृत लाइट कलर का, और लॉन्ग ईयर्ड जो है हेजहॉग वो डार्क कलर का है, काला झाऊ पीला झाऊ कहलाते हैं। इसके अलावा जो हमारे उत्तरी अरावली से लगे शुष्क क्षेत्र हैं, जहाँ रेतीले इलाके ज्यादा हैं, वहां पर कंठपुच्छ छिपकली यानी पूंछ पर छोटा कांटे कांटे जैसा स्ट्रक्चर है, जिसको लोकल भाषा में हम कहते हैं सांडा, स्पाइनी टेल्ड लिजार्ड, वो बहुत आयत में थी, लेकिन उनके हैबिटेट नष्ट होने से ये खत्म होते जा रहे हैं। आपको श्रोताओं को भी मजा आएगा सुनकर के कि यहाँ चूहों की कई प्रजातियां, लेकिन आप जिनको सबको देख करके एक टर्म में बोलते हैं चूहा, लेकिन उनमें कई आप देखेंगे गांवों में भी आप देखेंगे जहां पर उनकी पिछली टांगे लंबी हैं और आगे के पंजे पांच टांगे छोटी होती हैं, और वो उछल उछल के पिछली टांगों से चलते हैं कंगारू की तरह, और उनको कहते हैं जरबिल। और जो शुष्क क्षेत्र के हैं जरबिल, वो अलग होते हैं, डेजर्ट जरबिल। और जो हमारे जंगलों के और दूसरे जो अर्ध शुष्क और इस तरह के जंगली क्षेत्र हैं, उनके जरबिल अलग हैं, इंडियन जरबिल, और इनको लोकल भाषा में मूस कहते हैं। ये उछल के चलते हैं पिछली टांग वाले, इनकी लंबी पूंछ होती है, उस पर काले बालों का गुच्छा होता है लास्ट में, जरबिल है। इनका नाम मूस है या जरबिल है टेक्निकली। उसके अलावा चूहा, रैट अलग है, माइस छोटे चूहे जो कहलाती हैं, जिनको आप चूहिया कह देते हैं देख करके, लेकिन वो साइज ही वही होती है, उनको कहते हैं माइस, MIC माइस। और फिर होती है छछूंदर, श्रियु। तो इन सबको देख करके जो करते हैं, यानी यहाँ मूस भी हैं, रेट भी हैं, माइस भी हैं, श्रियुस भी हैं, इनकी प्रजातियां भी हैं जो कम हो रही हैं। इसके अलावा छिपकलियों में देखें तो मॉनिटर लिजार्ड, जिसको गोहो कहते हैं, इंडियन मॉनिटर लिजार्ड, गोहो लंबी और छोटी भी होती है, जिसको कहते हैं घोयरा, वो भी यहाँ पर पाई जाती थी। इसके अलावा आपने गिरगिट तो देखा होगा काफी, जो रंग बदलता है ना, जंगलों में और किताबों में भी आपने देखा होगा, लेकिन गिरगिट का ही एक भाई है कैमेलियन, ठीक है, कैमेलियन जिसकी आंखें दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख सकती हैं, जहां जिस बैकग्राउंड में है उस बैकग्राउंड के अनुसार वो अपनी शरीर का पूरा कलर बदल सकता है, उसकी पूंछ पीछे से कुंडलित होती है, उसकी उंगलियां गिरगिट की तरह नहीं होती, जैसे दो दो उंगलियों के सेट होते हैं, कंपोज्ड होती हैं, कैमेलियन। और कैमेलियन को माना जाता है कि वो घनी छाया में या ऐसे घने वृक्षों में और वहां वहां मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ये कैमेलियन जो है शेखावाटी अरावली का, जो नॉर्थ अरावली का अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है, झुंझुनू सीकर चूरू उधर के एरिया में जो है पीलू मिसवाक जिसको कहते हैं, उनके पेड़ों में देखा है, और इवन रेतीले लैंडस्केप में जमीन पर चलता हुआ भी देखा है
1: जी।
0: तो कैमेलियन भी है। फिर यहाँ पर जिनको हम कहते थे सांप की मौसी, स्किंक्स, छोटी छोटी नागर बामनी जिनको हम कह देते सामान्य भाषा में, उनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। लोगों को बड़ा मजा आएगा जान करके कि आपने पानी में तो कछुए देखे हैं काफी, जिनको आप कहते हैं टर्टल, पानी वाले को कहते हैं टर्टल, जो हमारे यहाँ कई वेराइटी है, लेकिन चट्टानी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, हमारे अरावलीज में जिसको हम कहते हैं स्टार टॉर्टोइज, चट्टानी क्षेत्र का कछुआ जो कहलाता टॉर्टोइज और पानी वाला कहलाते हैं टर्टल। टॉर्टोइज हमारे यहाँ बहुत आयत में मिलता था,

0: मानिए कि अजगर पानी के किनारे रह सकता है, पानी में तैर सकता है, लेकिन हमारे अरावली के ड्राई लैंडस्केप में अजगर बहुत मिलते हैं, बहुत आयत में मिलते हैं। इसके अलावा हमारे जो एनिमल, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे इंसेक्ट, वो जो मछलियां हैं, मछलियां विभिन्न प्रकार की आपको जलाशयों में मिलेंगी, लेकिन अरावली में जो बहते झरने हैं, जो स्ट्रीम्स कहलाती हैं, यानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाने वाली इस तरह की जल धाराएं, उन स्ट्रीम्स में, पहाड़ी क्षेत्रों की स्ट्रीम्स में, जल धाराओं में पानी के बहने के अनुसार उस वाटर करंट को रोक, अपने शरीर का उनका आकार ऐसा है कि वो पानी के तल में नीचे चिपक के अपना काम चला लेती हैं। उनकी चेहरे के ठुड्डी, मुंह के नीचे एक डिस्क टाइप होती है जिससे वो सक्शन ऐसा क्रिएट करके धरातल पर चिपकी रह सकती हैं, वाटर करंट का मुकाबला कर सकती हैं, जिनको हम कहते हैं हिल स्ट्रीम फिशेस। विशेष रूप से अनुकूलित हैं गारा जीनस, जिनको कहते हैं गारा मूलिया, गारा गुटाइला। उसके अलावा इन्हीं बहते पानी में अन्य मछलियां भी होती हैं अलग अलग अनुकूलन की, जिनको लोचेस भी कहते हैं, पुंटियस हैं, ऐसी, यानी हिल स्ट्रीम फिश। अरावली की पहाड़ों में बहने वाले झरनों में, सरिताओं में, इस तरह की जल धाराओं में हमारे यहाँ मछलियां भी मिलती हैं, हिल स्ट्रीम फिशेस। इसके अलावा जो इंसेक्ट्स की, तो हजारों लाखों इंसेक्ट्स की वेराइटीज हैं, लेकिन हमारे अरावली की कुछ पिक्यूलरिटी जो है इंसेक्ट्स में, एक जो अभी इस सीजन, ये उसका पीक सीजन है ब्रीडिंग का। जब आप किसी सुनसान जंगल में जाएंगे, किसी घाटी में जाएंगे, इवन आप सिरोही माउंट आबू का जो पहाड़ी इलाका है या उनका जो मैदानी जहां वनस्पति का इलाका है, वहां बिल्कुल सुनसान इलाके में आपको बहुत तेज झिंगुर की बहुत मोटी आवाज सुनाई देंगी, ये सिकाडा बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो सिकाडा हमारे जंगलों का बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। इसके अलावा आप सोचेंगे कि ये सिल्क, रेशम का कीड़ा, वो तो शहतूत पर पलता है, और ऐसे नहीं, सिल्क के मौत जो कीट है उसकी कई वैरायटी हैं, और हमारे यहाँ जो बेर की झाड़ियां हैं उन बेर की झाड़ियों पर भी, और कांटेदार जो बबूल हैं इनकी झाड़ियों पर भी टसर सिल्क का मौत अपना कोकून जो है वो एक डंडी से उस डाल पर जोड़ता है। उसका कोकून हमारे शुष्क परिवेश में पेड़ों की डाल से बांध करके एक डंडी से, और उसका कोकून पलता है, उसके अंदर उसका लार्वा पलता है, उसका प्यूपा बनता है, फिर वो एडल्ट अंदर बनता है मौत, और फिर वो फोड़ के बाहर आता है। तो ये सिल्क नेचुरली हमारे जो इस तरह के प्लांट हैं हमारे अरावली में पाया जाता है। इसके अलावा मकड़ियों की बहुत वैरायटी देखी होंगी आपने, लेकिन एक स्थलीय मकड़ी हमारे यहाँ अरावली के शुष्क क्षेत्रों में, जिसको कहते हैं कैमल स्पाइडर, बहुत बहुत गुस्सेल टाइप की नेचर की मकड़ी है, जो एक छोटी चींटी के भी 50 टुकड़े कर दे महीन, उस तरह की एक झींगुर है जो दौड़ने का अडेप्टेशन रखता है, उड़ने का नहीं रखता, और जिसकी साइज 4-5 इंच तक जाती है। सैंड ड्यून क्रिकेट, जो रेतीले इलाकों पर, ढेरों पर इस तरह से उन पर भाग दौड़ करके बिल बना करके रहता है। इसी तरह पानी में पाए जाने वाला कीट है, जिसको कहते हैं वाटर स्कॉर्पियन। बिच्छू जैसा नहीं है वो, एक कीट जैसा दिखेगा, उसका नाम है वाटर स्कॉर्पियन। और इसके अलावा हमारे अरावली के जंगलों में इतनी बड़ी मकड़ी है, विषय मादा बड़ी होती है, नर उसका बहुत छोटा होता है, कुछ मिलीमीटर का, लेकिन मादा कई सेंटीमीटर बड़ी होती है, और वो बड़े बड़े पेड़ों से पेड़ के बीच में जाला बनाती है, जिसमें वो चिड़ियाओं को, छोटी बैट्स, चमगादड़ों तक को फंसा सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग, जायंट वुड स्पाइडर। ये सब हमारे अरावली की विशेषता है। तो जो पहले था, अब हमारे यहाँ से चीता लुप्त हो गया, महाशीर मछली हमारे पानी में थी फ्रेश वाटर की, वो खत्म हो गए, जल मानुष थे ऑटर्स, वो खत्म हो गए, बार्किंग डियर, माउस डियर, हॉग डियर, ये लगभग खत्म हो गए, गेंडा हाथी पूरा खत्म हो गया, बिसन खत्म हो गया, स्वाम्प डियर लगभग खत्म हो गए, कैरेकल एक बिल्ली कुल की है जो हमारे खाली ये जयपुर, सवाई माधोपुर और इन एरिया में कहीं रिपोर्ट हो रही है, बाकी सेंचुरीज में इसको खाली रिपोर्ट कर रहे हैं, एक अंदेशा, एक अनुमान लगा करके, लेकिन इसके विजुअल ऑब्जर्वेशन प्रमाण नहीं है कि देखी है। सवाई माधोपुर एरिया में कैरेकल अभी भी देखी जा रही है। इसके अलावा हमारे जंगलों का एक बहुत महत्वपूर्ण, जिससे शेर भी डरते हैं, रैटल, पीठ उसकी ऊपर से डार्क होती है, उसका तला नीचे से जो है वो लाइट कलर होता है, और बड़ा गुस्सेल और बड़ा लड़ाकू जो है, छोटा खरगोश से थोड़ा बड़ा, लंबे लंबे नाखून वाला रैटल। इसके अलावा हमारे यहाँ पर, हमारे जंगलों में बिज्जू पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं सिवेट, रात्रिचर, छोटी बिल्ली जैसा मुंह। हमारे यहाँ पर कॉमन पाम सिवेट और टॉडी कैट जिसको

0: हम कहते हैं कॉमन सिवेट, दोनों तरह के बिज्जू हमारे यहाँ पर मिलते हैं। अब जंगली कुत्ते हमारे यहाँ से खत्म हो गए, चौसिंगा हिरण हमारे लगभग खत्म हुए। इस तरह से ये तो एनिमल स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो मैंने आपको एक थोड़ा सिनॉप्सिस दिया, ये मुख्य मुख्य जो चीज थी। अब मैं अरावली के प्लांट पे आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, वही महत्वपूर्ण प्लांट प्रजातियां।
1: एक सवाल था कि ये जो स्पीसीज सर खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, तो क्यों हुए और इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा हमारे अरावली के क्षेत्र पर?
0: हाँ, देखिए मैंने पहले भी ये वार्ता में बताया कि पहला सबसे बड़ा खतरा प्रजातियों के खत्म होने का है उनके आवास नष्ट होना।
1: जी,
0: जहाँ वो जीती हैं, प्रजनन करती हैं, मुख्य रूप से प्रजनन क्षेत्र, प्रजनन सबसे अनुकूलतम स्थितियों में ही किया जाएगा।
1: जी,
0: तो जहाँ पर वो रहती हैं, जहाँ पर वो प्रजनन करती हैं, बच्चों को बड़ा करती हैं, उन आवासों का नष्ट होना, उनका सिकुड़ना, ये सबसे बड़ा कारण है। और ये कारण कैसे जनित हुआ? पहले आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ रही है, उसका दबाव बढ़ रहा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन शौकिया उनका शिकार, उनकी तस्करी, इस पर भी मैं आगे आपको प्रकाश डालूंगा। तो ये कारण जो थे उसमें एनिमल स्पीशीज, क्योंकि उनमें आपस में संकरण, आपस में पॉलिनेशन, आपस में जैसे पौधों में कीट एक फूल से दूसरे फूल पर बैठ के परागण करते हैं, तो उनमें प्रजातियों में भी उप प्रजातियां बनना, उद्विकास की प्रक्रिया ज्यादा सहज चली। लेकिन एनिमल स्पीशीज में वो आपस में बिल्ली कुल श्वान कुल के साथ में ब्रीडिंग नहीं करता नॉर्मली, है ना
1: जी।
0: भेड़िया जो है वो लोमड़ी के साथ में भी कभी, आप बहुत रेयर केस होगा कि कहीं भेड़िया लोमड़ी का संकर बन गया हो। तो एनिमल स्पीशीज में जो है उनका जो ब्रीडिंग है, प्रजनन है, वो उन्हीं में ज्यादातर कन्फाइंड रहता है। अन्य प्रजातियों के साथ में उनका प्रजनन नहीं रहता, वो डिस्टिंक्ट हो जाता है, प्रजातिवार भिन्न भिन्न हो जाता है। तो वो ज्यादा सेंसिटिव है टू चेंजेस, टू डिस्ट्रक्शन, तो वो ज्यादा तेजी से समाप्त तो होती हैं। और वही प्लांट स्पीशीज के बीजों को फैलाना, है ना, उनके जर्म प्लास्ट को इधर से उधर उनके फैलाने में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। तो जब ये जंतु प्रजातियां खत्म होंगी तो प्लांट स्पीशीज पे भी इम्पेक्ट आएगा, जो अरावली की खासियत रही। यहाँ पर बड़े पेड़, छोटे पेड़, मध्यम आकार के पेड़, झाड़ियां, बेलें, लताएं, छोटी हर्ब शाक जिनको कहते हैं, घास, क्रीपर यानी रेंग के अपनी बढ़त करने वाले प्लांट, हर तरह के शैवाल, बैक्टीरिया, सब कुछ यहाँ पर भरपूर पाए जाते थे। उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज आज भी अरावली में कहीं कहीं बच रही हैं और जो जीने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनमें बहुत सारी प्रजातियां हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर खीप की झाड़ी होती है, लेप्टेडिनिया पायरोटेक्निका, खीप की झाड़ी, उसकी फली पहले बड़ी मिलती थी, जो हमारे नदियों के भी जो बीहड़ इलाके हैं, चंबल के मान लीजिए, बनास के मान लीजिए, इनमें भी बेड़च के मान लीजिए, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, यहाँ पर भरपूर इनके बीहड़ इलाकों में जहाँ नदियों की रेत फैलती थी, डिपोजिट होती हर साल, वहां पर ये खीप की झाड़ी वहां भी लगती थी। तो खीप की झाड़ी, जो खीप झाड़ी थी वो बहुत कम हो गई। फोग हमारे यहाँ का जो है, कैलिगोनम पॉलीगोनोइडेस फोग, जिसके फूलों का रायता जो है वो तो अब खाली एक सपना रह गया है। आपको भी सुन के लग रहा होगा ये क्या बला है, लेकिन गर्मियों के अंदर उसका रायता वो है एक नंबर चीज होता था। इसके अलावा जो हमारे अरावली के टॉप रिजेस पर पाया जाता था सालर, हमारे यहाँ छोटी हर्ब में औषधि प्रजातियों में महत्वपूर्ण है सफेद मूसली, काली मूसली, जो शुष्क पहाड़ी क्षेत्र है उनमें मिलने वाला गुग्गल, उसके अलावा जो जलाशय क्षेत्र है उनके किनारे उगने वाला वरना, क्रेटेवा नरवाला, जिसकी बहुत तगड़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा सालम मिश्री, इसके अलावा जो हर्ब में बरसात में ही अपना जीवन चक्र पूरा करता है, और हमारे जो घने जंगलों के इलाके हैं वहां मिलेगा कलिहारी, गुड़मार, खीप बेल, रायण, इंद्रोक, चित्रक, बीजासाल, ओरोजाइलम जिसे टैटू भी कहते हैं, तलवार जैसी जिसकी फली बनती है लंबी चौड़ी सी, उसके अलावा तनस जिसे उजीनिया ओजीएनसिस भी कहते हैं, विदारी कंद्र, वज्रदंती, हल्दू, गमहार जिसे हवन भी कहते हैं, कड़ाया, पाडल, पीलू, हरसिंगार, मरोड़ फली, अश्वगंधा, अतिबला, भूमि आंवला, बहेड़ा, खिरणी, लंबपाण, हरणी, महुआ, चिरौंजी, आखड़, कालमेघ, निर्गुंडी, अनंतमूल, मरोड़फली, मालकांगनी, पुनर्नवा, सर्पगंधा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, मंडुकपर्णी, ये तीनों ब्राह्मी, शंखपुष्पी और मंडुकपर्णी, ये स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी आपको दवाइयां मिलेंगी, ये तीन सोर्स हैं। और आप सोचेंगे अरावली गरम, शुष्क हमारा राजस्थान, हमारे यहाँ जम करके खूब, हमारे यहाँ जो मॉइस्ट इलाके हैं जंगलों में, बरसात के बाद में फॉरेस्ट फ्लोर पर आपको शंखपुष्पी और मंडुकपर्णी खूब दिखेंगी, और बरसात के बाद भी जो नम मॉइस्ट इलाके हैं जंगलों में पानी के किनारे वाले, वहां पर ब्राह्मी आपको अच्छी उगी हुई मिल जाएगी। उसके अलावा फालसा, अडूसा, शतावर, रोहण, एक तंबोलिया, भेड़ सिंगी जिसे एहरिटिया लेविस भी कहते हैं, तंबोलिया, डॉलीकेंड्रॉन फलकाटा जिसे भेड़ सिंगी भी कहते हैं, भेड़ की सिंग की तरह जिसमें ट्विस्टेड फली लगती है लंबी। इसके अलावा बरसात में हमारे यहाँ जम करके जंगली अंगूर भी लगते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं ये कुछ दर्जन जो मैंने आपको बताए हैं, ये तो वो हैं जिनको हम रेगुलर अभी भी देखते रहते हैं। इनमें बहुत सारे दुर्लभ हो गए हैं, बहुत सारों को हम बचाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा एक पादप है केवल जो अपुष्पीय कुल का है, यानी उसमें फूल नहीं आता, जिनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। बाकी ये सब पुष्पीय कुल है जिनमें फूल बनता है, फूल आता है, बीज बनता है, फल बनता है, लेकिन एक प्रजाति है जिनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म, उनमें फूल नहीं बनता। उसकी भी प्रजाति हमारे राजस्थान में अरावलीज में, जिसे कहते हैं हम, जो शुष्क क्षेत्र अरावली से लगा, इफेड्रा फोलिएटा, वो भी हमारे यहाँ पर मिलता है। हमारे यहाँ जो 200 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज वो हाई मेडिसिनल वैल्यू की हैं, जो हमारे अरावलीज में मिलती हैं, और उनमें से लगभग 150 जो हैं वो परंपरागत रूप से औषधियों में काम आती हैं। परंपरागत रूप से हमारे गांव के लोग भी उनका यूज जानते हैं। और राजस्थान की बात, लोग बाग सिर्फ रेत के टीले, ऊंट और खजूर का पेड़ समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ घने जंगल भी इतने हैं, बरसात के बाद नमी इतनी हो जाती है कि हमारे यहाँ पेड़ों पर भी जो मिलने वाले अधिपादप वर्ग के हैं, ऑर्किड्स कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पर जो है कई वेराइटियां हैं जो हमारे अरावली के जंगलों में, मध्य अरावली से दक्षिण अरावली में, विशेष रूप से दक्षिण अरावली में बहुत आयत से पाई जाती है। ये तो एक छोटा सिनॉप्सिस मैंने आपको बताया कि अरावली की जैव विविधता में जो पहले थे जंतु प्रजातियां और सब और जंगल, ये क्या रहा, और वर्तमान में ये जो मैंने इम्पोर्टेंट स्पीशीज आपको इनमें से कुछ बताई।
1: जी सर, यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि इतने सारे नाम आपने बताए तो इसे याद रखना तो मुश्किल है, लेकिन जो बचपन से इनके साथ पले बड़े हैं, जरूर आज अगर ये लुप्त हो रहे हैं तो उन्हें बचाने के लिए कोशिश भी कर रहे होंगे और सोच भी रहे होंगे। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि स्थानीय समुदायों का अरावली क्षेत्र में वन्य और वन्य जीव संरक्षण में उनका क्या योगदान है अभी इस वक्त?
0: बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जानना, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जिनको हम वनवासी कहते हैं या जिनको हम आदिवासी कहते हैं, तो वे जंगल के लिए आज खतरा हम उनको मानते हैं, है ना। उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर हम खतरा मानते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो आसपास के जंगलों से और उनके यहाँ पर जो प्रकृति से बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं उन पर वो निर्भर होते हैं। तो हम एक अर्बन एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं और ज्यादा बड़े सिटीज में, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस सिटीज में रहते हैं, हम उन लोगों को तो बड़े हेय दृष्टि से समझते हैं कि वे जंगलों के दुश्मन है और वो जंगलों पर प्रेशर मार रहे हैं। ऐसा नहीं है। बड़ी मजेदार चीज है कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, यानी वन वाव में रहने वाले, बहुत रेस्पेक्टेबल वर्ड है, ये गाली नहीं है, आदिवासी शब्द एक बहुत रेस्पेक्टेबल वर्ड है, आदर का वर्ड है, कि वो आदि तरीके से यानी प्रकृति के सम्मत तरीके से वहां रहते हैं। उनमें आप देखिए कि शादियों में भी हमारे यहाँ के जो भील आदिवासी हैं, गरासी आदिवासी हैं, वे शादी में भी सालर है, अमलतास है, गोंदल है, इनकी लकड़ियों को लगाते हैं, डालियों को, लेकिन उनका तरीका आप देखिए, नेचर का रेस्पेक्ट होगा तो मिलेगा, वो जानते हैं कि होगा तो मिलेगा, शादी के बाद में उन डालियों को वो वापस से आसपास में रोप देते हैं। तो यानी वो प्लांट को खत्म नहीं होने देते, क्योंकि उनको मालूम है यदि रहेगा, बचेगा तो वो मिलेगा। ये हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जहां पर भी हमारे अभी तो मध्य और दक्षिणी राजस्थान में विशेष रूप से जो बचे हैं उनमें ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जहां पर वो इन प्लांट स्पीशीज को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप और भी देखें तो जो हमारे पाली मारवाड़ के आपके माउंट आबू से लगा इलाका है पाली जिले में जवाई, वहां पर आप देखिए वहां जवाई डैम जो है उसमें 600 से ज्यादा मगरमच्छ हैं, लेकिन उस डैम के बनने के बाद आज तक कोई इंसिडेंट नहीं हुई जहां मगरमच्छ का अटैक रिकॉर्ड हुआ। एक दो इंसिडेंट जिसमें जो है अपनी भेड़ बकरियों के साथ में व्यक्ति डैम में चला गया और मगरमच्छ ने गलती से उसका पैर पकड़ लिया, अन्यथा उस क्षेत्र में गांव में भी तालाबों में बड़े बड़े मगरमच्छ वहां पर रहते हैं, वेलार में, चामुंडेरी में, कोठार में, और वहां पर जो है ये मगरमच्छ कभी आज तक कोई इंसिडेंट नहीं है कि इंसानों पर हमला किया हो। तो मानव मगरमच्छ सह अस्तित्व आप सोचिए, आपको कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ पर है। उसके अलावा मानव तेंदुआ सह अस्तित्व, जवाई के क्षेत्र में वो मगरमच्छों का सह अस्तित्व दब गया क्योंकि तेंदुआ पर्यटन के काम आ रहा है, लेकिन वहां पर तेंदुआ मानव के साथ में बड़े अच्छे तरीके से रह रहा है। केवल वहां ही नहीं, लेकिन हमारे अरावली के जंगलों के क्षेत्रों में बहुत जगह पर लोग बाग लेपर्ड, तेंदुआ जिसको पैंथर कह देते हैं अपभ्रंश में, उसकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। जो हमारे मध्य अरावली से लगे जंगल हैं, उत्तरी राजस्थान के अरावली के क्षेत्र हैं, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व तक के इलाके हैं, दूसरी सेंचुरीज हैं, वहां पर लोग बाग जानते हैं कि तेंदुआ या टाइगर अगर उनकी बकरी या भैंस का शिकार करेगा तो उसके कारण अन्य जो फीमेल्स हैं उनमें जो पैनिक क्रिएट होता है, पता नहीं क्या होता है हार्मोनल उनमें इफेक्ट, कि अगली बार वो मादाओं को जन्म देती हैं, जो पशुपालकों के लिए लाभदायक है कि जितनी मादाएं जन्मेंगी उतना दूध उनका उत्पन्न होगा। इसलिए वो उनको बुरा नहीं मानते कि साहब उनकी तो कहावत है कि हमारे तो ये दूसरा। आप राजस्थान के मध्य अरावली के लगे जो शुष्क क्षेत्रों से हमारे रेबारी समुदाय है जो भेड़ बकरी पालक है, वे तो मतलब उनके इलाकों में यदि लेपर्ड जो है तेंदुआ अगर उनके पशु का शिकार कर ले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं इसका खाना है साहब, कोई इशू नहीं है, खा लेता है तो कोई बात नहीं है, वो कंपनसेशन भी नहीं मांग
1: जी।
0: इसके अलावा भी आपको जो हमारा पूर्वी अरावली से लगा, दक्षिण पूर्वी अरावली से लगे इलाके हैं, नदियां जहां ऑटर्स मिलते थे जल मानुष पहले, आज भी हमारे चित्तौड़ रावत भाटा से लगे जो राजस्थान का पार्ट है जहां विंध्यन माउंटेन्स और ये भी शुरू हो जाती हैं, उधर में ऑटर्स और पहले हमारे जलाशयों में थे, भरे हुए थे सारी झीलों में नदियों में ऑटर्स कई जगह थे जिसको पानी का शेर कहते हैं, और वो इंसानों पर अटैक नहीं करते, उनकी प्रवृत्ति नहीं है, उनके बाल बच्चों के आसपास कोई पहुंचेगा तो अटैक करेंगे, अन्यथा वो नहीं करते थे। तो मानव जल मानुष सह अस्तित्व तो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल चीजें ये चीजें रही हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न तरीके आज के टाइम में, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, कुछ एक तो उदाहरण और मैं आपको बताऊंगा ये स्थानीय समुदाय का रोल। एक चित्तौड़गढ़ में गाँव है नगरी, सिटी से लगा थोड़ा बाहर है 8-10 किलोमीटर पर नगरी गांव, वो ऐतिहासिक गांव है, लेकिन वहां की खासियत यह है कि उस गांव के जो युवा हैं और बच्चे हैं वो उस गांव में स्थानीय प्रजाति नेटिव स्पीशीज को लगाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान मिला कि स्थानीय प्रजातियों से ही उनका अस्तित्व बचेगा
1: जी।
0: इसके अलावा हमारे राजस्थान का जिला है राजसमंद, जहां पर पिपलांतरी एक पंचायत है जहां के सरपंच तो बहुत मशहूर हुए पालीवाल साहब, श्याम सुंदर पालीवाल साहब, जहां बच्ची के जन्म, कन्या के जन्म पर जो है वो 101 पेड़ों का रोपण किया जाता है, शादी पर वृक्षारोपण किया जाता है, पूरे गांव जो है उस प्रथा के कारण फेमस हो गए। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारे उदयपुर शहर से लगा हुआ एक गाँव है अंबेरी, उस अंबेरी से लगा फॉरेस्ट ब्लॉक था और वहां पर भी वन विभाग की वन सुरक्षा प्रबंधन समिति वो सब बनी होती है गांव में औपचारिक रूप से, लेकिन वहां के गांव वालों ने सोचा कि हमारे जंगल जलते हैं हर साल, हमारा ही नुकसान होता है, तो वहां की वन सुरक्षा समिति ने इनिशिएटिव लिया, वन विभाग ने उनको प्रोत्साहित किया, उनके युवाओं को ट्रेनिंग दी, तो उन्होंने अपने जंगल को बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में मेंटेन कर रखा है वन विभाग सहयोग से, और वन सुरक्षा प्रबंधन समिति अंबेरी जो है वो उसके युवा लड़के लड़कियां 25-30 अपने यहाँ पर इको टूरिज्म का संचालन कर रहे हैं, उनके जंगल में पहाड़ इतना पानी पी रहा है कि वहां पर साल भर पानी का सोर्स हो गया, लेपर्ड, हाइना ये सब वहां पे पानी पीने आते हैं, बहुत बटरफ्लाई वहां पर जम करके हैं, बर्ड स्पीशीज वहां जम करके हैं, जंगल भर के हरा भरा हो गया, तो ये उनका डेडिकेशन है, वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं फॉरेस्ट का, दूसरा फायर से प्रिवेंशन कर रहे हैं, आग से जंगल को बचा रहे हैं, और इको टूरिज्म का संचालन कर रहे हैं जिससे उनको आजीविका मिल रही
1: जी।
0: इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ परंपरागत रूप से जैव विविधता के जो संरक्षण के जो जगह हैं, हम जिनको आप शमशान कब्रिस्तानों में जाइए, वहां पर नेचर को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वहां पर पेड़ पौधों को हटा करके जगह नहीं बनाई जाती, ठीक है, यानी कब्र के ऊपर छाया रखना पुण्य का काम होता है। कब्र के साथ में जो है पेड़ लगाए जाते हैं, शमशानों में पेड़ लगाए जाते हैं जिनकी रेस्पेक्ट करी जाती है, वहां छाया रखी जाती है दिवंगतों की जो जमीन है उसके ऊपर, और वहां जो वृक्ष होते हैं उनमें जम करके फल लगते हैं, उन क्षेत्रों के फलों को इंसान कोई क्लेम नहीं करते, नहीं खाते, वहां जम करके खूब चमगादड़ रहती हैं, खूब रेप्टाइल्स रहते हैं, सांप बिच्छू हर तरह के रहते हैं, और वहां लोग जाते हैं और उनको देख के वहां लोग नहीं डरते, ठीक है, क्योंकि वहां उनकी रेस्पेक्ट है नेचर की। और जम करके सीमेट्रीज को आप देखिए जो अंतिम मोक्ष स्थल है, ये हमारा ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं अगर आप समझना चाहें। और इस सब के ऊपर राजस्थान देश में जो दूसरे नंबर पर है, ओरण, सैक्रेड ग्रोव, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज, देवी देवता संत महात्मा फकीर के नाम पर अपने जंगलों को एरियाज को संरक्षित करते हैं, वहां पेड़ों की कटाई प्रतिबंधित होती है, जीव जंतुओं का शिकार प्रतिबंधित होता है, नेचर को डिस्टर्ब करना प्रतिबंधित होता है, स्थानीय समुदाय के नियम कायदे वहां लगते हैं, तो वो ओरण जो है वो हमारे ट्रेडिशनल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एरियाज हैं जो राजस्थान में बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा हमारा देगराय ओरण जो है 10,000 हेक्टेयर का, करणी माता ओरण, ये राजस्थान में ये ओरण भी बहुत भरे पड़े हैं। तो ये सारा जो है हमारे स्थानीय समुदायों का हमारा ट्रेडिशनल वे है नेचर को प्रोटेक्ट करने का, रेस्पेक्ट करने का।
1: जी सर बिल्कुल, तो इस प्रकार से हम नेचर को प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, और हमारे पूर्वज भी करते आ रहे हैं परंपराओं से। लेकिन यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी कि वन्य जीव संरक्षण में और इन सभी चीजों को प्रोटेक्ट करने में चुनौतियां क्या अभी देखने को मिल रहा है?
0: जो देखिए चुनौतियां सबसे बड़ा ये है कि अरावली क्षेत्र में या जंगलों के क्षेत्र में जो है वो आवास नष्ट होना सबसे बड़ी चुनौती है, जो मैंने पिछले वार्ताओं में भी बोला और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने पहले भी बोला आवास नष्ट होना। दूसरी चीज है आवास नष्ट होने का बड़ा कारण क्या है, ये ह्यूमन सेटलमेंट का बढ़ना ये कम है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं ये बड़े कारण हैं। भले ही हमारे यहाँ राजस्थान में जैसे आप विंड पावर प्लांट्स लगाते हैं, सोलर पावर प्लांट हमें चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लेकिन आप साइट का सिलेक्शन सोच करके करिए। हमें रोड नेटवर्क चाहिए, हमें हाईवे चाहिए, हमें एक्सप्रेसवे चाहिए, लेकिन जंगलों को काट के नहीं चाहिए। आप एलिवेटेड रोड निकाल सकते हैं जंगलों के ऊपर से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर से आप एलिवेटेड रोड निकाल सकते हैं, और ताकि वो नीचे जंगल इंटैक्ट रहे। हम क्यों जंगल को काट करके रोड निकालने पर आमादा हैं, रेल निकालने पर, रेल लाइन निकालने पर आमादा होते हैं? टूरिज्म, आज जवाई पाली का एरिया में आपको बार बार जहां मानव तेंदुआ सह अस्तित्व है, मानव मगरमच्छ सह अस्तित्व है, वहां पर रेल लाइन निकाली है, मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूं, वहां पर रेल से कटके मगरमच्छ मरा है मैडम, मगरमच्छ रेल से कटके, क्योंकि वहां मगरमच्छ एक जलाशय से दूसरे जलाशय जो है माइग्रेशन करते हैं। आप सोचिए उनका आवास हम क्या कर रहे हैं, तो जब वो क्रोकोडाइल का हैबिटेट है इस इलाके में, और लोकल माइग्रेशन भी है, ये जब ये प्रोजेक्ट का डीपीआर बन रहा था, जब ये प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाते हैं, उनको सब मालूम पड़ता है, हर तरह के विशेषज्ञ काम में लेते हैं, तो ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा मोड बन रहा है, और इनके साथ में टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सबसे बड़ा डिस्टरबेंस आज क्रिएट हो रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन लोगों को बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को ये सुन करके, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूं कि ये जो अनसस्टेनेबल टूरिज्म है आज राजस्थान की जैव विविधता के लिए सबसे सबसे सबसे बड़ा खतरा बन गया है, जंगलों में लगने वाली आग से भी ज्यादा बड़ा खतरा,
1: राइट।
0: और उसके साथ में तो ये जो इस तरह का है ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए बन चुका है। इसके अलावा जंगलों में लगने वाली आग है, और घुसपैठी और देशज प्रजातियां जो आवास नष्ट होने के बाद विश्व स्तर पर जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा, जो यहाँ की पैदाइश नहीं है, अन्य ज्योग्राफिकल एरिया की प्रजातियाँ हैं, आपकी स्थानीय प्रजातियों को हरा करके अपना विस्तार करती हैं, जिनमें हमारे अरावली के क्षेत्रों में एक घोंगा जायंट अफ्रीकन स्नेल वो आ चुका, तिलापिया मछली खुद हमने इंट्रोड्यूस कर दी। आज आपने भरतपुर में घाना पक्षी विहार नाम सुना, बड़ा फेमस आपने नाम सुना, वहाँ साइबेरियन क्रेन आते थे
1: जी, जी।
0: लेकिन आज हालत क्या हुई कि वहाँ विलायती बबूल प्रोसोफिस जूली फ्लोरा का इतना जंगल बना कि साइबेरियन क्रेन, जिसकी उड़ान में पंखों का विस्तार ज्यादा होता है, वो प्रोसोफिस जूली फ्लोरा के भरे हुए तालाबों पर आ ही नहीं सक रहा। कब का खत्म हो गया वहाँ आना साइबेरियन क्रेन, अब वो धौलपुर इलाके में तालाबशाही जगह पर देखा जा रहा है। इसके अलावा उसी घाना पक्षी विहार के अंदर कैटफिश आ गई वहां पर पानी में, उन्होंने पानी के दूसरी फिशिस को कंपटीशन करके खत्म कर दिया, तो आपकी मछलियों पर निर्भर रहने वाली पक्षी प्रजातियां कैसे आएंगी। ये घुसपैठी प्रजातियां हमारे जंगलों में घुस गई हैं। हमने सीताफल को उसके नाम के कारण रेस्पेक्ट दे करके, और उसका फ्रूट हमें बहुत स्वाद लगता है, हमारे जंगलों में फैलने दिया है, और उसने दक्षिणी राजस्थान के जंगलों को बड़े पैमाने पर खत्म किया है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रजातियां हैं, यानी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इसके अलावा एक बड़ा खतरा है स्मगलिंग और पोचिंग, शिकार, अवैध शिकार और तस्करी, और अंधविश्वास और कुप्रथाएं, ये बड़े बड़े कारण हैं। आप देखिए, जो झुंझुनू सीकर जहां झाऊ चूहा हेजहॉग मिलता है, वो लोग सोचते हैं उसको मार करके और अपने पशु बाड़ों की जो एंट्री है वहां पर गाड़ दें, और उसके ऊपर से आपका पशु निकले तो उसको बीमारियां नहीं लगेंगी, है ना। इसके अलावा जो है कुछ हमारे जनजातियां भी हैं जिनमें ये कुप्रथा है, कथोड़ी जो ट्राइब है, कि जब पत्नी गर्भवती है तो पति उसे बंदर मार के खिलाएगा, नहीं खिलाया तो पति नहीं है, तो यानी उसकी मजबूरी हो जाती है कि बंदर मार के खिलाना है। तो बंदर जंगल के हमारे ऐसे हो गए जहाँ कथोड़ी दिखा, उसकी आवाज सुनाई दी और बंदर भागते दिखते हैं। इसके अलावा जैसे कैमेलियन जो मैंने बताया, गिरगिट जैसा जो रंग बदलता है, इंडियन कैमेलियन, उसके लिए हमारे क्षेत्रों में कई जगह कुप्रथा है कि उसका गर्भवती स्त्री उसका मुंह देख ले तो उसका बच्चा कुरूप पैदा होगा। हमारे यहाँ कुप्रथाएं हैं कि सांप के ऊपर गर्भवती स्त्री की छाया ना पड़े, नहीं तो सांप अंधा हो जाएगा। हमारे यहाँ कुप्रथा है कि सांप को मारने पर नागिन आकर के बदला लेती है, अरे आपने मारा वो फीमेल थी या मेल था आपको ही नहीं पता, और आने वाला उसका स्पाउस था, उसका पति या पत्नी था, ये कैसे आपने मान लिया। लेकिन नहीं, वही प्रथाएं हैं कि नागिन बदला लेगी, उसकी आंखों में फोटो आ जाएगा फलाना डेम का। हमारा अंधविश्वास है कि नाग पंचमी में नाग को दूध पिलाने से वो हमें पुण्य मिलता है, सांप दूध पीता ही नहीं है, हम जबरदस्ती उसके मुंह में नली लगा करके उसके मुंह में दूध भरते हैं, जो उसकी श्वास नली भी बॉडी में लेंथ तक फैली है, गलती से वो आपकी नली उसकी श्वास नली में लग गई, फेफड़ों में चली गई और आपने दूध भर दिया, तो सांप का क्या होगा, मरेगा। ये कई सारी जो हमारी अंधविश्वास है, झाड़ फूंक की प्रथाएं हैं, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर हमारे दिमाग में जो गलत फहमी है, जीव जंतुओं का हमें दुश्मन बना दिया। इसके अलावा तस्करी, आप देखेंगे जो पीलू का हमारा पेड़ है महत्वपूर्ण, जिसको अरबी भाषा में मिसवाक कहते हैं, उसकी जड़ों की दातुन होती है, तो इसके लिए उसकी जड़ों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। गुग्गल, जिसका जो रस निकलता है वो गुग्गल जम करके गोंद जैसा हो जाता है, गुग्गल जिसकी खुशबू अच्छी आती है, इसलिए अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक और इस तरह के परफ्यूम इंडस्ट्री में गुग्गल के लिए गुग्गल खत्म हो गया। चंदन हमारे यहाँ पर तस्करी काटा जाता है भयंकर रूप से, जहां भी चंदन लगेगा, हमारे राजस्थान में चंदन खूब लगता है अरावली में, जम के लगता है, लेकिन उतनी ही तस्करी होती है। कड़ाया, गम कड़ाया, जिसका गोंद कतीरा कहलाता है, गर्मियों में खाते हैं जिसको फुला करके, वो खत्म हो गया। खैर कत्था बनता है पान में, वो कत्था इस खैर से मिलता है, खैर की लकड़ी से प्रोसेस करके बनाते हैं, तो खैर खत्म हो गया। सागवान टिम्बर के लिए खत्म हो गया, टिम्बर के लिए हमारा राज्य पुष्प रोहिड़ा, उसका वृक्ष खत्म हो गया। और उसी तरह हमारे होली में दक्षिणी राजस्थान में सेमल के पेड़ का स्तंभ लगाएंगे वक्त, बीच में पोल बना करके, तो सेमल हर साल बेतहाशा कट कट करके वो खत्म हो रहा। ये सारी चीजें जो हैं इस तरह की, ये स्पीशीज के लिए जो है वो खतरा है, ये सारी चुनौतियां हैं, और इनको लेकर के बहुत सारे एफर्ट जो है वो चल रहे हैं
1: जी। तो जैसे ह्यूमन राइट्स है, वैसे वन्य जीव संरक्षण नीतियां भी है, तो आपको क्या लगता है जो नीति निर्माताएं हैं तो उन्हें कौन से कदम उठाना चाहिए।
0: हाँ देखिए, कुछ तो ये है कि जैसे एनिमल स्पीशीज प्लांट स्पीशीज को बचाने के लिए बहुत सारे प्लांट्स बनते हैं, राजस्थान में बने, प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ आया है ना, लेकिन वो प्रोजेक्ट टाइगर आज उसका रूप प्रोजेक्ट टाइगर ना होकर के टाइगर टूरिज्म रह गया, खाली मन मर्जी का टाइगर टूरिज्म, वो प्रोजेक्ट टाइगर नहीं रहा, बाघ संरक्षण अब नहीं है, लेपर्ड तेंदुआ संरक्षण, हमारे यहाँ पर तेंदुआ मानव जो है संघर्ष भी दक्षिणी राजस्थान में बहुत ज्यादा होता है, दक्षिणी राजस्थान में लोग बाग अब जो है वो ज्यादा सयाने हो गए, तेंदुआ दिखा, लेपर्ड दिखा और बस पिंजरा लगाओ, इसको हटाओ यहाँ से नहीं तो हम इसको मार डालेंगे, ऐसी घटनाएं हुई, वन विभाग ने नहीं लगाया पिंजरा तो लोगों ने तेंदुए को पकड़ा और मार डाला नृशंसता से, वो भी है, लेकिन उनके संरक्षण के लिए कोई प्लान ऐसे इफेक्टिव नहीं बन पाए। चौसिंगा हिरण को बचाने के लिए प्रोजेक्ट बने, ओडन गिलहरी को बचाने के लिए बने, मृग अभयारण्य जो हमारे ताल छापर चूरू में है, उसी तरह से झुंझुनू जिला है जहां मैंने खुद ने मैं पढ़ाता था, वहां मेरे बच्चों के साथ में, मेरे MSc पर्यावरण विज्ञान के बच्चों के साथ में मैंने 7 साल मेहनत करी और वहां पर हमने 1048 हेक्टेयर का जंगल, पीलू का जंगल बचाया और वहां पर अब सैकड़ों में कृष्ण मृग और चिंकारा छोड़े जा रहे हैं। उसी तरह से बायो पार्क बनाए जाते हैं, बायोलॉजिकल पार्क। इसके अलावा राजस्थान में जो औषधि महत्व के प्लांट हैं उनको लेकर के भी वर्कशॉप्स हुई है और फिर वो औषधीय पादप जो अत्यधिक संकट में है उनका इन सीटू कंजर्वेशन, जिनको कहा मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, मेडिसिनल प्लांट डेवलपमेंट एरिया, MPCA, MPDA, यानी जहां पर वो प्राकृतिक आवास में मिलते हैं वहीं उनको बचाना, उनके आवास को बचाना तो उनको बचाना। उसके अलावा वानस्पतिक उद्यान विकसित करना और फिर हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो प्रोटेक्टेड एरिया अभयारण्य है, वन्य जीव अभयारण्य, उनमें जो है अंदर कोर एरिया, टाइगर रिजर्व को छोड़ के बाकी का अभयारण्यों में कोर एरिया नहीं है, यानी वो एरिया जहां पर केवल वन्य जीव रहे, उनकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन को सेफ वातावरण मिले, तो इस तरह के कोर जोन जिनको कहा क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्रांतिक वन्य जीव आवास, वो नहीं है, वो अब बन रहे हैं। मैं खुद चित्तौड़ जिले में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है उसमें क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो निर्धारण करने की कमेटी है उसमें वन्य जीव विशेषज्ञ हूँ। इसके अलावा प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ भी सेंचुरीज, नेशनल पार्क के चारों तरफ भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यानी ये निर्धारित किया जाता है चारों तरफ पट्टी में, पेरीफेरी में, उसको कहते हैं इको सेंसिटिव जोन, जानवर बाहर भी जा सकता है तो इसलिए मानव का वहां संघर्ष कम से कम रहे, कई मानवीय जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो इको सेंसिटिव जोन में न हो। इसके अलावा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में जो म्युनिसिपल लेवल पर भी और पंचायत लेवल पर भी, जिला परिषद लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन का काम है वो भी किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरियाज में जो है जहां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वहां इको डेवलपमेंट कमेटी EDC गांव वालों की मदद से गठित होती है और जहां पर दूसरा फॉरेस्ट एरिया है वहां पर विलेज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे मेजर्स होते हैं जो उठाए जा रहे हैं, बस दुर्भाग्य यह है कि जैसे हमारे यहाँ पर महाशीर खत्म हो गई, हमारे यहाँ ऑटर खत्म हो गए, हमारे यहाँ ये ज्यादातर जो एनिमल जो हैबिटेट हैं वो नष्ट हो रहे हैं, तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स के नाम पर जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर, वो भी आजकल टाइगर टूरिज्म रह गया, तो बाकी का जो है वो ऐसे चल रहा है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। और उसका कारण ये सबसे बड़ा ये है कि हमारे प्रोटेक्टेड एरिया बड़ी बड़ी साइज के भी नहीं है, छोटे छोटे हैं, 500-600 स्क्वायर किलोमीटर कुछ नहीं होता जी। अब ऐसी स्थिति में जो है चारों तरफ जो ह्यूमन हैबिटेट है ना वो बहुत तगड़ा दबाव बनाते हैं, जानवरों का माइग्रेशन ही नहीं हो पाता, बिल्ली कुल के, श्वान कुल के जानवर हैं, दूरी तक माइग्रेशन करते हैं। अभी आपने कुछ दिनों में सुना कि मध्य प्रदेश में चीता ला करके छोड़े गए अफ्रीका से, वहां से एक चीता राजस्थान में आ गया है ना, एक पहले सुना कई पहले के करीबन कई सैकड़ों किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा करके एक तेंदुआ लेपर्ड वो डेजर्ट जोन में पहुंच गया। तो ये बड़े बड़े प्रोटेक्टेड एरिया हमारे यहाँ पर जो है वो नहीं है, हमारे रोड्स के नीचे से अंडरपास बनाने की प्रथा ही नहीं है वन्यजीव क्षेत्रों में, अगर आपने रोड जमीन पर भी निकाला तो उसके नीचे से अंडरपास बना दीजिए, या तो एलिवेटेड रोड निकालिए या अंडरपास दीजिए, लेकिन वो भी नहीं करते, टनल भी नहीं बनाते पहाड़ों में, पहाड़ों को काट के ही सड़क और रेल मार्ग निकालना है। तो ये नीतियां जो है ना, डेवलपमेंट की नीति हो चाहे संरक्षण की नीति हो चाहे मैनेजमेंट की हो, इन सब के अंदर जो है ना आपकी मानसिकता जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, जो उस प्रयोजन को पूरा करे, संरक्षण के प्रयोजन को पूरा करे। टूरिज्म का बात में अभी तो टूरिज्म प्राइमरी हो गया हर जगह का, संरक्षण क्यों करें, टूरिस्ट आएगा, ये गलत है। जब आप वहां रहने वाले परंपरागत लोगों को उस जंगल से हटा रहे हो कि वन्य जीवों का आवास सुरक्षित रहे, जो वर्षों से सदियों से रह रहे हैं वहां पर, उनको आप बाहर निकालते हैं कि ये खाली वन्य जीवों के लिए रहे, तो फिर आप गाड़ियों में भर भर करके शहर के लोगों को वहां क्यों घुसाते हैं, जो केवल डिस्टर्बेंस करते हैं और कुछ नहीं करते।
1: राइट,
0: तो ये जो है ना, मतलब कंजर्वेशन होना चाहिए, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म के लिए आप कंजर्वेशन जो हो रहा है ना वो बड़ी समस्या है। जी
1: जी बिल्कुल, आज तो समय हो गया है लेकिन बातें बहुत है, और अरावली को जानने के लिए तो और भी बहुत सारे एपिसोड्स चाहिए, और साथ ही साथ राजस्थान को पूरा समझने को।
0: अनुमति से मैं एक मिनट में कुछ बात रखना चाहता हूँ यदि।
1: जी सर।
0: मेरा एक बड़ी जो अपील है, मतलब ये मेरा एक लास्ट समरी मान लीजिए मेरे टोटल, उसमें वार्ता तो हम कई एपिसोड बना सकते हैं, लेकिन इतनी सारी हमने जो बात करी ना, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जो है वाइल्ड स्पीशीज को, वाइल्ड नहीं, नेचर में उनका अडेप्टेड स्पीशीज की तरह आप उनको देखिए जो आपके नेचुरल लैंडस्केप्स में लगते हैं, और उनसे नफरत मत करिए। आपके शहरों में, आपके गांव में, आपके घरों के बाहर, आपकी सड़कों के किनारे, और जो आपके सिमेट्रीज हैं, शमशान, कब्रिस्तान, ये भी हैं, जहां पर भी आपके गार्डन हैं, उनमें सौंदर्यात्मक दिखाने वाले, आपको अच्छे दिखने वाले पेड़ों की तरफ लालायित मत होई है। आप नेटिव स्पीशीज को लगाइए, उन पर निर्भर हजारों सैकड़ों जंतु प्रजातियां, कीट पतंगे, सरीसृप, छोटे स्तनधारी, बहुत कुछ आपके आसपास में डेवलप हो जाएंगे। और उसको समझने के लिए मैं स्कूल और परिवार दो प्लेटफॉर्म है जो हमारी अगली पीढ़ी के लिए काम के हैं, वो अपने बच्चों को नेचर में लेके जाएं, उनको उस तरह के प्लांटेशंस करवाएं, दिखाएं और उनसे करवाएं, ताकि वो समझें कि जो यूजफुल स्पीशीज हैं, जो नेटिव स्पीशीज हैं, वो कैसे बचती हैं और उनके हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये जो इकोलॉजी का जो सेंस है, पारिस्थितिकी का जो सेंस है, वो लोगों में आना चाहिए अपने नेचुरल एनवायरमेंट से देखने का। ये मेरा अपील है सभी से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और जैसे राजस्थान के बायोडाइवर्सिटी हो, इकोसिस्टम हो, इन सबको हम जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्ते। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। और आप अपने वन्य जीवों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के स्थानीय प्रजातियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर आपके मन में कुछ और ख्याल चल रहे हैं कि कैसे इन्हें बचाया जाए, या आप कैसे योगदान कर सकते हैं, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं इसी नंबर द्वारा, मैसेज या कॉल कर सकते हैं हमें। नमस्ते।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: हेलो चाय पियो।
2: राम राम काका।
3: अरे राम राम हरिया, राम राम। आ बैठ बैठ बैठ, बहुत दिनों बाद आया इस बार।
2: अरे बहुत दिनों बाद आया काका, कैसे हो काका?
3: अरे एकदम बढ़िया हूँ, तू बता क्या लेगा? समोसा, चाय, कचोरी है?
2: अरे अब तो भूख लगाई काका, अब जल्दी से जो गरम गरम है वो जल्दी से खिला दो।
3: सब कुछ गरम है रे यहाँ तो। छोटू जरा एक गरम समोसा ला जल्दी से,
2: और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी काका।
3: अरे सब मिलेगा, सब मिलेगा यहाँ, तू बैठ तो सही। और क्या हाल चाल है रिया है? अब तू तो बहुत बड़ा पेंटर हो गया है। शहर में तेरे चित्रों की प्रदर्शनी की खूब तारीफ छपी थी अखबार में।
2: अरे नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें मेरा क्या है, मैं तो देश की आजादी के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीरों के चित्र बनाता रहा, और आप ही के कहने पर मैंने शहर में प्रदर्शनी भी लगा दी, तो तारीफ तो आपकी हुई ना काका?
3: अरे नहीं नहीं नहीं रे, तारीफ न मेरी है और न तेरी। असलियत में तो बेटा ये उन शहीदों के बलिदान की प्रशंसा है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई।
2: बिल्कुल ठीक कहा काका, लेकिन काका मैं कुछ ऐसे प्रसंगों के चित्र बनाना चाहता हूँ जो आजादी की लड़ाई के दौरान घटे लेकिन अनजाने रह गए, जिनकी ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई। ऐसे भी तो कई बलिदान रहे होंगे।
3: हाँ हाँ हरिया, ये तो है। स्वतंत्रता के महायज्ञ में जिस जिसने आहुतियां दी उन सब की गाथाएं हम तक कहाँ पहुंच पाई है।
2: तो काका ऐसे ही कुछ प्रसंग बताइए ना जिनके चित्र बनाए जा सके।
3: तो सुन हरिया, आज मैं तुम्हें सन 1857 के संग्राम की एक शौर्य गाथा सुनाता हूँ। एक शहीद है जिसने हरियाणा की धरती पर क्रांति की भूमिका रची।
2: अरे वाह।
3: और बेटा जिस दृश्य से इस कथा को शुरू किया जाना चाहिए वो 19 जनवरी 1858 की काली रात का है। उस रात हरियाणा के हांसी नगर की बस्ती में सन्नाटे के बीच गोरों की फौज ने दो वीर जवानों को फांसी पर लटका दिया था। सुबह हुई तो लोग हैरान थे, दुखी भी थे और नाराज भी।
2: लेकिन काका किन लोगों को लटका दिया गया था फांसी पर?
3: इनमें से एक थे हुकुमचंद जैन, जिन्हें उनके ही घर के सामने फांसी दे दी गई थी, और दूसरा वीर था उनका विश्वसनीय क्रांतिकारी साथी मिर्जा मुनीर बेग।
2: अरे

0: अनुरक्त थे।
1: हुकम चंद जैन की शौर्य गाथा का ये पन्ना आज भी शहीदों के खून से लाल दिखाई देता है, लेकिन इस शौर्य गाथा की शुरुआत हुई थी सन 1816 से, जब हरियाणा के हांसी नगर में दुनी चंद जैन के प्रतिष्ठित कानूनगो परिवार में पुत्र का जन्म हुआ था। इसी बालक का नाम हुकम चंद रखा गया। इस छोटे से नगर में इस बालक की शिक्षा दीक्षा हुई। हुकम चंद की फारसी भाषा और गणित विषय में विशेष रुचि थी। बेटे की शिक्षा समाप्ति के बाद पिता दुनी चंद जैन एक दिन काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे।
2: पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो ये किस्मत के खेल।
3: अरे क्या बात है कानूनगो साहब, इस कदर परेशान क्यों हैं?
2: अरे अपने बेटे को लेकर ही चिंतित हूँ। अब ये जनाब फारसी के विद्वान बनने चले हैं, लेकिन आमदनी के नाम पर एकदम सिफर हैं। सोचता हूँ इनकी कहीं नौकरी लगे तो इनकी शादीवादी करा दूं, फिर ये अपनी घर गृहस्थी संभाले। लेकिन इन जनाब को इन सब बातों की फिक्र कहाँ?
3: अरे लेकिन कानूनगो साहब आपका

0: बेटा तो फारसी का जानकार बन गया है। पूरे शहर में कोई आपके बेटे की बराबरी नहीं कर सकता।
1: तभी तो कह रहा हूँ जनाब, पढ़े फारसी बेचे तेल, और ये जनाब तो तेल भी नहीं बेचते।
0: अरे आप देखिएगा जनाब, एक दिन हुकम चंद आपका नाम रोशन कर देंगे। कहते हैं ना, पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता।
1: चलो भाई, आपके मुंह में घी शक्कर, देखते हैं वो दिन कब आएगा।
0: आएगा आएगा।
2: और फिर एक दिन पिता दूनी चंद जैन का इंतजार खत्म हुआ। दिल्ली के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सेवा में हुकुमचंद जैन को नौकरी मिल गई, और इस तरह हांसी नगर का ये युवक मुगल दरबार में मुलाजिम बन गया। सन 1941 में बादशाह ने हुकुमचंद जैन को हांसी और करनाल के कुछ इलाकों का कानूनगो बना दिया, और अब इन इलाकों की जिम्मेदारी हुकुमचंद को सौंप दी गई।
3: मुबारक हो भाई हुकुमचंद।
4: शुक्रिया शुक्रिया।
3: अरे बादशाह ने तुम्हें तुम्हारे ही शहर का कानून को बना दिया है। अब तो तुम्हारे घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहेगा। आखिर तुम्हारे वालिद भी तो कानून को ही रहे हैं।
4: सच कह रहे हो दोस्त, आज जब पिताजी मुझे अपनी बराबरी में खड़ा देखेंगे ना, तो उनकी खुशी देखते ही बनेगी। मैं उनकी आंखों में वो चमक देखने के लिए बेकरार हूँ।
3: क्या बात है, तुम तो बादशाह बहादुर शाह जफर की तरह शायर बनते जा रहे हो।
4: मेरी इतनी मजाल कहाँ, लेकिन आज बादशाह ने जो भरोसा मुझ में जताया है, उसे जीवन भर निभाने का प्रयास करूंगा। ये भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है।
3: सो तो है।
2: और इस तरह 7 सालों तक मुगल दरबार की सेवा में रहकर हुकमचंद जैन अपने घर हांसी लौट आए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाने में जुट गए। इस बीच अंग्रेजों के कदम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अंग्रेजों ने हरियाणा को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया था। हालांकि अंग्रेजों ने हुकुमचंद को इस इलाके का कानूनगो बनाए रखा, लेकिन स्वाभिमानी हुकुमचंद को ये गुलामी कतई मंजूर न थी।
5: ये गुलामी मुझे बर्दाश्त नहीं। किसी भी कीमत पर मैं गोरों की नौकरी नहीं कर सकता। ये लोग मेरे देश को गुलाम बनाने पर आमादा हैं, तो मुझे भी इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। मुझे हरियाणा के युवकों को जोड़कर विद्रोह किया जा सकता है, बशर्ते कि बादशाह बहादुर शाह जफर इसकी अनुमति दें। और फिर हमें हथियारों और बारूद की भी तो जरूरत होगी। माना कि गोरों ने मुझे मेरे पद से नहीं हटाया, लेकिन मैं खुद इस काम को गोरों के लिए नहीं कर सकता। मुझे कुछ करना होगा, चाहे जान की बाजी ही लगानी पड़े, लेकिन मैं ये गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
2: सन 57 की क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी।
6: ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन उखड़ गया और भारत को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले लिया गया। आजादी के दीवानों ने क्रांति की भूमिका रच दी थी।

0: इस बीच मेरठ, दिल्ली और कालपी के साथ साथ हरियाणा में हांसी नगर के लाला हुकुमचंद भी इस समर में उतर गए। बादशाह बहादुर शाह जफर से उनके संपर्क पहले ही से बने हुए थे। हुकुमचंद ने दिल्ली आकर बादशाह से भेंट की और उन्हें अपनी योजना के बारे में बतलाया। इतना ही नहीं, वे क्रांतिकारी मंडल की उस बैठक में भी शामिल हुए जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई के दूत तात्या टोपे और दूसरे राष्ट्रभक्त भी मौजूद थे।
1: अब मैं तात्या टोपे जी से अनुरोध करूंगा कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें।
2: स्वतंत्रता संग्राम के सहयात्री मेरे भाइयों, हम सब देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए संकल्पबद्ध हैं। निश्चय ही हम में से कोई भी आजादी की इस लड़ाई में अपने प्राणों की चिंता नहीं करेगा। अगर हमारे बलिदान से देश को अंग्रेजों से मुक्ति मिलती है तो हम अभी इसी क्षण अपना बलिदान देने को तैयार है। लेकिन बिना सोचे समझे ये युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। हमें अपने संघर्ष की योजना ठीक से बनानी होगी और इसके लिए हमें एक विश्वसनीय नेतृत्व की आवश्यकता होगी। मेरा प्रस्ताव है कि बादशाह बहादुर शाह जफर को सर्वसम्मति से नवीन भारत का बादशाह स्वीकार किया जाए। उन्हीं के नेतृत्व में हम सब इस संग्राम को आजादी की लड़ाई बना देंगे और निश्चय ही जीत हमारी होगी।
3: हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है।
2: तो फिर ठीक है, हम सब ये प्रस्ताव बादशाह तक पहुंचाएंगे।
4: ग्यारह मई सन 1857 को बहादुर शाह जफर को नवीन भारत का सर्वसम्मति से बादशाह निश्चित किया गया और उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई।
2: हुकुमचंद, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। तुम में जोश भी है और होश भी, इसीलिए मुझे भरोसा है कि तुम हमारी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करोगे। मैं हांसी में विद्रोह का नेतृत्व तुम्हें सौंपना चाहता हूं और मिर्जा मुनीर तुम्हारे साथी होंगे।
5: तात्या जी, आप इस क्रांति के महानायक हैं। आप जो तय करेंगे हम सब वही करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध में मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और हांसी का एक एक युवक आपके इशारे पर जान पर खेल जाएगा। अब अंग्रेजों से मुक्ति पाना ही हमारा लक्ष्य है।
2: बहुत अच्छे हुकुमचंद।
5: स्वतंत्रता की ज्योति को जलाए रखने के लिए अपने खून को तेल बनाकर देह की बाती जलाने का साहस संजोना पड़ता है और हम सब इसके लिए तैयार हैं।
2: इस जज्बे के साथ निश्चय ही जीत हमारी होगी।

0: हांसी पहुंचकर लाला हुकुमचंद जैन ने देशभक्त युवकों को तेजी से संगठित करना शुरू कर दिया। तरुणाई को उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए हुकुमचंद जैन ने अपनी निगाह उस अंग्रेज फौज पर डाली जो हरियाणा से होती हुई दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। उनके आह्वान पर हरियाणा के देशभक्त जवान अंग्रेजी सेना पर बिना सोचे समझे टूट पड़े।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
3: हुकुमचंद जी, हमारे युवक कोरों की सेना से मोर्चा ले रहे हैं। वे बहुत जोश में हैं। जीत हमारी होगी।
4: सिर्फ जोश से काम नहीं चलता मुनीर, हमें शाही सेना से अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। अगर हमें सहायता नहीं मिली तो हथियारों से लैस अंग्रेजों की सेना को हम हरा नहीं पाएंगे। तुमने मदद के लिए संदेश तो भिजवा दिया था ना?
3: संदेश भिजवा दिया गया था, जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही।
4: तो फिर मदद अब तक क्यों नहीं पहुंची यहां? हम हारना नहीं चाहते मुनीर, हम हारना नहीं चाहते।
0: लेकिन हुकुमचंद शाही मदद का इंतजार करते रहे और बीच के स्वार्थी लोगों ने उन तक मदद नहीं पहुंचने दी। असफलता के बाद भी हुकुमचंद का हौसला बुलंद रहा। उन्होंने मिर्जा मुनीर के साथ चर्चा कर बादशाह को एक खत लिखने की योजना बनाई।
4: मिर्जा मुनीर, हम एक मोर्चा हारे हैं, लेकिन पूरी लड़ाई अभी बाकी है। इस बार हम कोई गलती नहीं करना चाहते। सुनो, क्यों ना एक खत बादशाह को लिखा जाए और सीधे उनसे ही आजादी की लड़ाई को जारी रखने के लिए शस्त्रों और सैनिकों की सहायता मांगी जाए।
3: ठीक है, लेकिन इस बार खत आप लिखेंगे और वो भी फार्स।

0: जो अंग्रेजों के षड्यंत्र में शामिल हो गए थे। ये खत बादशाह तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। इस बीच बादशाह बहादुर शाह जफर ने देश के रियासतों के राजाओं को एक खत लिखा।
1: ये मेरी दिली तमन्ना है कि अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर को टुकड़े टुकड़े होते देखूं, चाहे इसके लिए कोई भी तरकीब लगानी पड़े। लेकिन फिरंगियों से आजादी तभी मिल सकती है जब एकजुट होकर आजादी की इस जंग को लड़ा जाए। हम सब तभी फतह हासिल कर सकते हैं जब जंग के मैदान में कोई ऐसा जाबाज हमारी नुमाइंदगी करे जो मुल्क की ताकतों को एक साथ जोड़ सके। मैं भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इस जंग में आजादी के लिए अपनी तलवारों को लेकर आगे आने को तैयार हूं तो मैं खुशी खुशी अपने सारे हकूक किसी भी राजमंडल को सौंप दूंगा, और ऐसा करने में मुझे दिली खुशी मिलेगी।
0: लेकिन बादशाह की इस अपील का अधिकांश राजाओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। वे निकम्मे और कायर हो चुके थे और किसी भी तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो जन आंदोलन छिड़ गया था उसने 31 मई सन 1857 को बिना पूरी तैयारी के देश भर में विद्रोह का रूप ले लिया। इससे अंग्रेज सतर्क हो गए और आजादी का लक्ष्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हाथों से छिटक गया। 20 सितंबर सन 1857 को युद्ध की बाजी अंग्रेजों के हाथ लगी, लेकिन ये सूचना हांसी तक नहीं पहुंची और हुकुमचंद जैन हथियारों की प्रतीक्षा करते हुए अंग्रेजों से लड़ते रहे। उधर बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और साम्राज्यवादी सत्ता ने मुगल वंश के इस आखिरी चिराग को बुझाने का षड्यंत्र पूरा किया।

0: पूरी तरह अधिकार जमा लेने के बाद अंग्रेज अफसरों ने बहादुर शाह जफर की निजी फाइलों को टटोला। कमिश्नर सैंडर्स ने इस चिट्ठी को पढ़कर हुकुमचंद जैन के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया।
1: ये क्या? What's this? Oh, ये तक लेटर है। क्या लेटर है? इसमें बादशाह से हेल्प मांगी गई है। किसने लिखा है लेटर? Who wrote this letter? ये हुकुमचंद जैन का लेटर है। अंग्रेजों ने उसे कानून को बनाया और उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बिटर, वेरी बिटर। ये लेटर हिसार के कमिश्नर कॉटलिन को भेजता हूं। उनसे सिफारिश करूंगा कि इस हुकुमचंद जैन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। ओके।
0: पत्र मिलते ही हिसार से अंग्रेजी सेना का एक दस्ता हांसी जा पहुंचा।
2: आज हम लोगों को

0: अंग्रेजों के दो दुश्मनों के खिलाफ छापे मारने हैं। याद रखो, लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग के घरों में घुसकर तबाही मचा दो। किसी भी कीमत पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उनके साथ कोई और हो तो उसे भी अरेस्ट कर लो। ध्यान रहे, कोई गलती ना हो। काम पूरी सावधानी से होना चाहिए।
1: अंग्रेजी सेना ने लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग के घरों पर छापे मारे। लाला जी और उनका भतीजा फकीरचंद तथा मिर्जा मुनीर बेग तीनों को बंदी बनाकर हिसार ले जाया गया, जहां मुकदमे की औपचारिकता पूरी की गई। 18 जनवरी सन 1858 को हिसार के मजिस्ट्रेट जॉन आकिंसन ने अपना फैसला सुनाया।
2: मुकदमे की कार्रवाई से साफ है कि लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग ने देशद्रोह किया है। इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। To be hanged till death।
3: भारत माता की
4: जय।
3: भारत माता की
4: जय।

और फिर 19 जनवरी 1858 की वो काली रात आई जब लाला हुकुमचंद और मिर्जा मुनीर बेग को लाला जी के मकान के सामने ही फांसी पर लटका दिया गया। इतना ही नहीं, हुकुमचंद जैन का दाह संस्कार करने तक की अनुमति नहीं दी गई। उनके शव को दफनाया गया जबकि मिर्जा मुनीर बेग के शव को जलाकर अंग्रेजी शासन ने अभद्रता का प्रदर्शन किया। लाला हुकुमचंद केवल 40 साल की उम्र में शहीद हो गए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, निर्देशन वीरबाला श्रोत्रिय, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। क्रांति कथाओं को सुनकर आपको भेजना है एक प्रेरक स्लोगन, अब हमें आज्ञा दीजिए। इसी समय फिर मिलेंगे एक और क्रांतिवीर की जीवन गाथा लेकर, कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

आयो जद तू काहीं ले आयो चालो जद काहीं ले चालो आयो जद तू काहीं र ले आयो चालो जद काहीं ले चालो हर कया जीव ने उलझायो माया की नगरी में कया जीव ने उलझायो माया की नगरी में

अर पेट के खातिर रोज कमावे तो भी यो भरवान नहीं आवे, पेट के खातिर रोज कमावे तो भी यो भरवान नहीं आवे। हर डाटो संतोष को लगा ले, अरे डाटो संतोष को लगा ले, माया की नगरी में कहीं आयो रे।

0: गठड़ी में, अरे बांध गठड़ी में हो बीरा, बांध गठड़ी में काही लायो रले चालो बीरा, बांध गठड़ी में काही लायो रले चालो बीरा, बांध गठड़ी में काही लायो रले चालो बीरा, बांध गठड़ी में।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: वो कुछ 70 और 75 के आसपास होंगी, लेकिन जीवन से भरपूर थी। मैं उन्हें आजी कहती थी। उनके चांदी जैसे चमकते बाल, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, उनकी गुनगुनाती खुशियां बिखेरती हंसी मैं कभी भूल ही नहीं पाई। जब भी मैं उनसे मिलती उन्हें गुनगुनाते पाती।
1: सोने जैसा रंग है मेरा, चांदी जैसे बाल।
0: और उनका ये उल्टा गाना सुनकर मैं मुस्कुरा देती तो वो कहती, क्या हुआ जो मेरा रंग गेहुआ और बाल सफेद हैं तो। अरे देख, चांद पर भी तो ऊबड़ खाबड़ गड्ढे हैं। फिर अपने पोपले मुंह से हंसते हुए मुझे ही चढ़ाने लगती। उनकी उस हंसी में कुछ तो था जो मुझे उनकी ओर खींचता था। मैं धीरे धीरे उनके करीब होती चली गई। मैं जितना जितना उनसे मिलती उतने ही उनके जीवन के पन्ने मेरे सामने खुल जाते। उनके जीवन का हर पन्ना एक अलग रंग लिए हुए था। उन रंगों में रंगी मैं आज फिर उनके पास जा बैठी। उनके बारे में सब कुछ जानने का निश्चय कर मैंने धीरे से पूछा, आजी आपकी आंख को क्या हुआ है? क्योंकि उनकी एक आंख हमेशा बंद रहती थी। मेरे पूछे प्रश्न पर उन्होंने अपनी दूसरी आंख सहलाते हुए कहा,
1: कुछ खास नहीं रे, जब मैं बच्ची थी तभी ब्याह दी गई। मेरी सास को मेरी आंखें बहुत पसंद थीं। एक दिन उन्होंने अपने हाथ से बनाया काजल मेरी आंख में डाला और मेरे आगे अंधेरा छा गया। मैं वहीं गिर पड़ी। जब होश आया तो एक झरोखा बंद हो चुका था।
0: मैं उन्हें देखती रही। इतनी बड़ी बात कोई हंसकर कैसे बता सकता है? परंतु उन्होंने बताया था, लेकिन कदाचित अपने जीवन के इस पन्ने में छुपा सच वे बहुत खूबसूरती से अपनी हंसी के पीछे ढक चुकी थी। मैंने फिर पूछा, और आपका ये हाथ? उनका बायां हाथ पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। वो फिर मुस्कुराई, बोली,
1: अरे कुछ नहीं, एक दिन मैं खाने में नमक डालना भूल गई। जब मेरे पति खाना खाने बैठे तब मुझे ध्यान आया। मैं भागती हुई गई और उनकी थाली में नमक रखा, लेकिन जल्दबाजी में डिब्बे का ढक्कन ढीला लग गया और सारा नमक थाली में गिर पड़ा।
0: मैंने पूछा, फिर?
1: अरे फिर क्या, पति ने मेरा हाथ मरोड़ दिया।
0: तो आप किसी डॉक्टर के पास?
1: अरे नहीं रे, मुझ मुई को कौन ले जाता डॉक्टर के पास।
0: मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकायत न थी। मैंने उनसे उनके बच्चों के बारे में पूछा तो बोली,
1: है ना, इसी बगीचे में खेलते सारे मेरे ही तो हैं।
0: और आपके पति?
1: वे तो भगवान के पास खुशी से रह रहे हैं। अब मेरे जैसी एक आंख और एक हाथ वाली के साथ रहने से तो अच्छा ही है। है कि नहीं?
0: कितने दिन हुए आपके पति को गुजरे? मैंने सहानुभूति से पूछा।
1: हुए होंगे यही कुछ 15-16 साल।
0: तो तब से आप अकेली रहती हैं?
1: अकेली? अरे अकेली कैसे, तुम सब तो हो मेरे साथ। अब वैसे भी जिंदगी तो इम्तिहान लेती ही रहती है, तो क्या हमें जीना छोड़ देना चाहिए?
0: फिर थोड़ा गंभीर होते हुए बोली,
1: तुमने चींटियों को गौर से देखा है कभी? वो अपने भार से 50 गुना ज्यादा वजन उठाकर भी नहीं दबती। हम तो फिर भी इंसान हैं, क्यों दुख दर्द के नीचे दबे रहे?
0: इतना कहकर वे अपने जीवन की किताब को समेटते हुए उठ खड़ी हुई। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। कहीं पढ़ी कुछ पंक्तियां याद हो आईं कि कुछ लोग रंगोली की तरह होते हैं, जहां भी जाते हैं अपने रंग छोड़ जाते हैं।
1: आज उन आजी ने भी मेरे मन में अपने अमिट रंग छोड़ दिए थे। दोस्तों, ये बेहद खूबसूरत लघु कथा आप सुन रहे थे जिसका शीर्षक था जीना इसी का नाम है, जिसे लिखा है अनघा जोग लेकर जीने। सच है, जीना इसी का नाम है। आजी उम्र में, शारीरिक उम्र में एक्चुअली हमसे बड़ी होती हुई हमको बहुत बड़ा सबक देती हैं। हम कम उम्र वाले होते हुए, अपरिपक्व होते हुए भी थक जाते हैं, हार जाते हैं परिस्थितियों से, मगर आजी का जो चरित्र अनघा जोग लेकर जिन्हें गढ़ा अपनी लघु कथा के माध्यम से, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मुझे लगता है कि अनघा जोगलेकर जी की कलम को वरदान प्राप्त है कि वो जो भी लिखेंगी वो सिद्ध हो जाएगा, चाहे वो संरक्षक हो, तेरी मेरी कहानी हो, या आज की जो लघु कथा मैंने पढ़ी जीना इसी का नाम है। कमाल की रही तीनों कथाएं। आपको जानकर खुशी होगी कि अनघा जोगलेकर जी ने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। बाकी कैसी लगी आपको जीना इसी का नाम है, आप जरूर अपने फीडबैक, कमेंट शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं हमारे साथ, और शेयर जरूर करें इन लघु कथाओं को, ताकि इनमें छिपे छोटे बड़े संदेश जो हैं वो मानवता के काम आते रहें और संवेदनाओं का प्रवाह बना रहे। मैं अमित वाधवा इस वादे के साथ आपसे इजाजत लेता हूं कि अगले पड़ाव पर एक नई कहानी, लघु कथा लेकर फिर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: चुलबुली चीनी।
1: चीनी की मम्मी ने उनके बगीचे की देखभाल के लिए एक नया माली रखा था। वे बहुत ही गुस्से वाले और घमंडी थे, चीनी को भी फूलों के पास नहीं जाने देते थे।
2: मम्मी, मुझे ये नए माली अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं।
3: क्या करे बेटा, यहाँ पर कोई दूसरा माली भी तो नहीं मिल रहा था। वैसे भी चीनी, इनका स्वभाव थोड़ा सा गर्म है, पर बागवानी करने में इनका जवाब नहीं।
1: एक दिन माली अंकल बगीचे में काम कर रहे थे, उसी वक्त चीनी की सहेली बिट्टू उससे मिलने आई। चीनी उससे अपना बगीचा दिखा रही थी कि तभी माली अंकल गुस्से से बिट्टू से बोले,
4: अरे लड़की, ये क्या कर रही हो, दूर हटो फूल से। अच्छा तो तुम फूल को चुरा रही हो।
2: पर माली अंकल, मैंने तो इन फूलों को हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ इनकी खुशबू ले रही थी।
4: अच्छा तो ठीक है, तुमने जो बिना पूछे फूल की खुशबू ली है उसके लिए पैसे दो।
2: अरे फूलों की खुशबू के क्या पैसे, वैसे भी ये मेरी सहेली का घर है और वह भी तो मेरे साथ है।
4: एक तो चोरी करती हो और ऊपर से बहस करती हो, मैंने इतनी मेहनत से फूल लगाए हैं, चलो पैसे दो चलो।
1: बिट्टू रोने लगती है, उसे रोता देखते चीनी बोलती है,
2: माली अंकल, बिट्टू ने तो फूलों को हाथ भी नहीं लगाया था और आप उसे बेवजह डांट रहे हो। फिर भी अगर आपको फूलों की खुशबू के पैसे चाहिए तो मैं देती हूँ आपको पैसे, मेरी प्यारी सहेली की तरफ से।
1: चीनी अंदर गई और एक डिब्बा ले आई और उसे जोर जोर से हिलाने लगी। उसमें से सिक्कों की खनखने की आवाज आती है।
2: अगर आपको फूलों की खुशबू के पैसे चाहिए तो वो तो ऐसे ही मिलेंगे।
1: माली अंकल चीनी की समझदारी को मान गए और फिर उन्होंने बेवजह बच्चों को डांटना भी छोड़ दिया।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते सभी वर्ग से मिलते हैं, क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है। फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी में जो गतिविधि हो रही है, तो सरकार का जो मंशा है, रेडियो तीन प्रकार का होता है, एक ऑल इंडिया रेडियो, एक कमर्शियल रेडियो और ये आपका रेडियो है, योर रेडियो। तो आपका पास जो विशेषता है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ये दिया है लाइसेंस। तो यहाँ आबूराज से इसका प्रसारण होता है, सिरोही जिला का कवरेज करते हैं और आप इंटरनेट का माध्यम भी सुनते हैं, सुन सकते भी। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम हमेशा की तरफ आज आबूराज जो आबू पर्वत पोलो ग्राउंड में पहुंचे। यहाँ 4 तारीख से 24 तारीख तक स्पोर्ट्स का भिन्न भिन्न स्पोर्ट्स जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, सभी का खो खो सभी चलता है। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ कोच महोदय है, तो उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से। और खासकर हमारा खेलविद जो खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, खेल के बारे में तो जानकारी लेंगे, खेल से क्या फायदा होता है, तो हमारा कोच को स्वागत करते हैं। सर, आपको बच्चों को थोड़ा वार्म अप कराइए, आपका इंट्रोडक्शन, आपका आवाज़ सुनकर बच्चे भी अपने आवाज़ को रोक नहीं पाएंगे। तो आप अपना परिचय दीजिए प्लीज।
1: पहले तो नमस्कार सभी को और ओम शांति। मेरा नाम प्रियदीप सिंह है, मैं जयपुर से हूँ और अभी वर्तमान में इंडियन टीम का भी कोच हूँ, राजस्थान टीम का भी कोच हूँ और मैं राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल में एज ए हैंडबॉल कोच कार्यरत हूँ। और मैं इस कैंप के आपको बताऊं, ये 66वां प्रशिक्षण शिविर है, आवासीय है, जिसमें 21 दिन का लगता है ये। 98, 99, 2000 में एज ए स्टूडेंट यहाँ पे था और अब एज ए कोच पिछले 12 सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ माउंट आबू में। तो यहाँ आने का जो कैंप लगाने का पर्पस था सरकार का, वो सीधा सीधा ये था कि इस टाइम पे नीचे भीषण गर्मी रहती है और एक माउंट आबू ऐसा है जिसको अजी इस ट्रेनिंग को हम बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग। इसमें जैसे ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिलता है प्लेयर को और एक फार्टलेग होती है ट्रेनिंग, जो ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ और तो उसमें मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती, तो उस इम्प्रूवमेंट के लिए वो चीज़ नीचे अवेलेबल नहीं है और इस गर्मी में वो वर्कआउट वहाँ नहीं हो सकता जो यहाँ हो सकता है। तो 21 दिन का पर्पस ये है, मेनली कंडीशनिंग इनके इम्प्रूव करना। ऑल ओवर राजस्थान से बच्चे आते हैं और इस शिविर से मैं आपको बताऊँ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े रहे हैं, बिशन सिंह बेदी जैसे बड़े नामी क्रिकेटर भी यहाँ आते रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो अभी जैसे ये बच्चे आए हुए हैं तो आज 24 तारीख को ये ख़त्म होगा, तो लगभग हमारे को यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए 15-16 दिन हो गए हैं।
2: तो यहाँ देखिए कि एज अ खिलाड़ी यहाँ पे आने के बाद में और आज वापस जब हम आते हैं एज अ कोच और इनको देखते हैं, तो आज हमें भी लगता है कि हम कंपेयर करते हैं तो उस सुविधाओं में जो इतना इम्प्रूवमेंट आया है। आज पोलो ग्राउंड में कैंप लगता है और आज 66वां कैंप भी यहाँ लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 66 साल से माउंट आबू ने इस कैंप को संयोजित कर रखा है
3: जी जी।
2: और अब ये बच्चे आते हैं तो इनका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, इनको नॉलेज मिलती है। और ये भी जैसे कोई चित्तौड़ से है, कोई अजमेर से है, कोई टोंक से है, कोई बाड़मेर से है, तो ये बच्चे यहाँ से 21 दिन सीख के जाते हैं। तो एक खेल का विकास होता है हर क्षेत्र में जाके, ये बताते हैं कि हमने वहाँ गए थे कैंप में, तो कैंप का भी, खेल का भी और माउंट आबू का भी, ये सबका नाम एक वहाँ पे सब जगह पूरे राजस्थान पूरे प्रदेश में ये करेंगे और ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट होता है इनका, मेंटल डेवलपमेंट होता है या सारे मोटर एबिलिटी फैक्टर्स पे काम होता है, तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट आता है एज ए प्लेयर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और खेल क्या है, मैंने गेम में कितना आवश्यकता है भलीभांति मालूम होना चाहिए और एज ए कोच अपने विस्तार रूप में बता रहे पोलो ग्राउंड का महिमा और आबूराज बा आबू पर्वत का महिमा भी, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो यहाँ पर आते तो बहुत कुछ मिलता है शारीरिक मानसिक और सभी क्षेत्र में, आध्यात्मिकता भी मिलता है यहाँ पर, क्योंकि ये एक आबू तीर्थ तपोभूमि है, आबू तीर्थ कहते हैं, आबूराज हो गया, तो बच्चों को भी एक नवीनता भी मिलता है और उनको एक फुर्तीला, जैसे समतल एरिया में और पहाड़ी इलाके में अंतर होता है, प्लेन एरिया में सभी कुछ कर लेते हैं, एक हाई लेवल में करना है मुश्किल होता है, तभी उनको कहीं पर भी जाएंगे वो एक मैथ जैसे ये मैथ जैसे काम कर पाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए और हमें खुशी है इस तरह कार्यक्रम को सजाने के लिए वार्म अप करा दिए बच्चों और बच्चों से हम सुनेंगे अल्प विराम के बाद। सर, और जाते जाते हमारा जो लिसनर सुन रहे हैं तो उनको क्या आपका वार्ता में क्या मैसेज होगा, खासकर शरीर और मानसिक बीमारी के लिए?
1: देखिये, सबसे पहले तो मैं हैंडबॉल खेल का बताऊँ तो ये एक टीम गेम है और एक ओलंपिक गेम है, जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, सैफ गेम्स में, एशियन चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में
2: और आज हमारे इंडिया का स्तर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना बहुत बड़ी बात है एक यूरोपीय डोमिनेटिंग खेल में, तो हम कम्पीट करते हैं अच्छा। और हैंडबॉल खेल से देखिए टीम गेम में तो एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब यह जैसे ढूंढाड़ मेवाड़ मारवाड़ ऐसे करके 5-6 चीजों में बटा हुआ है राजस्थान, सब अलग अलग जगह से आते हैं, उनसे मिलना होता है इन बच्चों का आपस में, उनसे एडजस्ट करना होता है
1: जी।
2: तो इसके बहुत फायदे हैं। अब जैसे ये साथ जाते हैं, इनको साथ रहना है, साथ खाना है, साथ असेंबल 21 दिन रहना अनजान शख्स के साथ, और फिर एक अच्छे दोस्त की तरह जिंदगी भर उसको याद रखना, वो बहुत बड़ी बात होती है कैंप की। और मैं लिसनर्स को यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खेलों में डालें आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आने वाला टाइम एक भारत को एक मजबूत, जो सबसे मजबूती का शुरू से रहा है वो एक युवा रहा है, और खेल से अच्छा जिसमें बूढ़ा भी जवान हो जाता है वो खेल है, बाकी ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं है। तो मैं बोलूंगा इससे मानसिक विकास है, और अब तो नेम फेम पैसा सब कुछ है, नौकरी है अच्छी, तो आप कोई नहीं बता सकता कि लास्ट ईयर आईएएस का टॉपर कौन था, पर मैं पूछूंगा सबसे ज्यादा रन आईपीएल में किसने बनाया, तो अभी कोई भी बता देगा वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। तो ये स्पोर्ट्स का एक पावर है
1: जी जी,
2: जिसको जो नहीं खेलता है वो भी याद रखता है, जो खेलता है वो तो याद रखता ही है, बाकी बच्चे आपको बताएंगे इन्होंने क्या अचीवमेंट किया है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुन्दर भाव से अपना भावना को व्यक्त किया और राजस्थान नाम जैसे और खासकर राजस्थान में भी आबूराज राजस्थान राज पहले आता और आबू राज बाद में राज भी आता
1: है, सबसे ऊपर है ना ये
0: राज है और राजा
1: मुकुट है, राजस्थान का मुकुट है,
0: इसलिए राजस्थान को सभी लोग ध्यान देता है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय 40 देश का लोग यहाँ पर आते हैं आध्यात्मिकता को लेकर, क्योंकि मानसिक बीमारी जो होता है इसका मेन कारण सोच, आपका सोच ठीक होगा तो अच्छा बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे बच्चों से रूबरू होने के लिए और हमारा कार्यक्रम को सुंदर में हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाने के लिए। स्पोर्ट्स जो होता है ना आज तो स्पोर्ट्स में कितना व्यूअर देखते हैं, स्पोर्ट्स के लिए कोई भी स्पोर्ट्स हो सभी उसमें लगे रहते, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें खुशी है, बच्चों का साथ साथ भी आज बच्चे बन के याददाश्त दिला दिए। हम बचपन में भी इसे खेलते थे, खेल का बारे में बताए तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ आ रहे का स्टूडेंट है। हेलो, नाम बताइए।
2: मेरा नाम विनय सिंह है, मैं चूरू से।
1: चूरू के बारे में कुछ बताए, क्या विशेषता चूरू का?
2: चूरू में गर्मी एक तो बहुत ज्यादा है इस टाइम,
1: विशेषता है। और दूसरा
2: कहते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत गर्मी में करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें माउंट आबू में आने का मौका मिला। हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे यहाँ पर इंडिया लेवल के कोच हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
1: खेल तो नाम सुनते हैं तो क्या मानसिकता में आता है?
2: खेल हमारे मतलब कि पहले हमने ये खेल चालू किया अपना मनोरंजन के लिए, और अब ये खेल हमें तो टाइम हो जाता है ग्राउंड का, तो हमारे घर पर रहने का ही मन नहीं है।
1: सही, खेल जो करते हैं उसमें खेल में शारीरिक स्वास्थ्य का साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, कोई डिप्रेशन नहीं होगा, खेल करा जाएंगे तो पूरा हल्का हो जाता है, नहीं तो भारी भारी है कि नहीं। और मनोरंजन होता है और एक ग्रुप मिल जाता है, एक तो सिंगल अकेला भी खेलते कोई कोई, और अब समूह रूप में ग्रुप में खेलते, तो ग्रुप में खेलने क्या मजा है। आप बता, अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम नितिन सैनी है, मैं जयपुर से हूँ।
1: अरे वाह, जयपुर हमारा कैपिटल है। तो ग्रुप में क्या सीखने को मिलता है?
3: ग्रुप में एक तो सभी भाइयों से मिलकर रहने का मिलता है, इंडिविजुअल में खुद का खुद करना पड़ता है, ग्रुप में टीम मेंबर के साथ लेके चलना पड़ता है,
1: सबका संस्कार भी मिलाना पड़ता है ना।
3: हाँ, सबका
1: कोई उठता
3: कॉम्बिनेशन होना चाहिए,
1: कोई सो जाता भाई उनको जगाना पड़ता है, क्योंकि उठने तुम्हारा चलते मेरा भी नींद आ जाएगा, इसलिए भाई जगो जगो ऐसे ना करते ना। तो समूह में रहने से सबका संस्कार मिलकर चलना पड़ता है। हम एक जब हम 10 बजे सो जाते, कोई बोला हम 12 बजे सोते हैं तो डिस्टर्ब होगा ना, भाई लाइट लगाएगा, तो उसमें दोनों को मिलकर चलना पड़ता है ना, साथ देना पड़ता है। घर में तो अलग, यहाँ पर तो बराबर चलना पड़ेगा। और यहाँ क्या सीख लेकर जाएंगे?
3: यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, हम गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने यहाँ रहे तो हमारे को अलग अलग जगह के लड़के मिले, उनसे हम अच्छी उनसे अच्छी यादें लेके जाएंगे यहाँ से।
1: चलिए आप बताइए, आप अपना परिचय दीजिए।
4: मेरा नाम ओम प्रकाश अय्यर, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ। चित्तौड़गढ़ भारत का गौरव है, और मैं छोटा था मतलब 5-7 साल हो गए गेम स्टार्ट किए, पहले बिल्कुल स्फूर्ति नहीं थी, धीरे धीरे मेहनत की तो अभी स्फूर्ति आई है, और इसीलिए अब यहाँ मौका मिला है।
1: एक पॉइंट बताओ, स्पोर्ट्स खेलने से कौन सा विकास हुआ आपका?
4: स्फूर्ति,
1: खुद की
4: स्फूर्ति आई है,
1: पूरा
4: पूरी बॉडी एनर्जी आ गई है, मतलब पहले
1: आलस नहीं आ रहा,
4: आलस नहीं है,
1: पूरा फुर्ती है। खेल खेलने से फुर्ती मिलता है, फुर्ती से क्या फायदा होता है?
4: फुर्ती से अपना शरीर काम अच्छा करता है, अपना कोई किसी भी काम में अच्छा मन लगता है, स्पोर्ट्स भी है तो अच्छे से खेल पाते हैं अपन।
1: तो आगे के लिए क्या लक्ष्य रखा है?
4: इंडिया टीम के लिए खेलना है
1: हैंडबॉल में खासकर क्या ज्यादा से ज्यादा कठिन आपको चैलेंज
4: मतलब लास्ट अपने पूरी टीम एक जैसी है दोनों, और लास्ट मतलब 10 सेकंड है या 5 सेकंड है स्कोर लेवल है, उस टाइम अपना पूरा 100% लगा के जीतना फुल मायने रखना है
1: ये चैलेंज। मनोरंजन और संगठन में बल होना चाहिए, संगठन में विशेषता होना चाहिए, सब संगठन रूप में करते हैं ना, संगठन टीम वर्क के लिए क्या करना चाहिए, टीम वर्क में क्या होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए
3: टीम वर्क? जैसे कि हम सभी हैंडबॉल खेलते हैं तो वैसे हमारा ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है,
5: बॉडी का माइंड का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, और ये हमारे आगे भी फ्यूचर में बहुत काम आता है। जैसे कि आगे कई लोग जिसके होते हैं मतलब जिनके मतलब 50-60 की उम्र होती है, वो मतलब उनके घुटनों में चलने में दिक्कत होती है और कमर में दर्द होने लग जाता है। जैसे मतलब कोई खिलाड़ी होता है वो मतलब शुरू से मतलब अपने फिटनेस पे वर्क करता है, तो उस

0: श्रोता मित्र सुन रहे बच्चों का जो आवाज और उनका दिल का बात, हाइट छोटा था लेकिन जो खेलकूद करने वाले उसका जो ग्रोथ है वो हाइट बढ़ा और क्या फायदा हुई
1: और
0: शारीरिक में फुटला, जैसे एक भाई बताया फुर्ती मिलता है, एनर्जी मिलता है, कुछ करने के लिए इच्छा होती है ना, और लचीलापन होता है शरीर का, शरीर थोड़ा टाइट नहीं होता है, टाइट होता है,
1: टाइट तो नहीं होता, मतलब लचीला हो जाता है कि स्पोर्ट्स खेलते हैं तो मतलब पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट नाम बताए और कहाँ से, क्योंकि हमारा श्रोता सुन रहा है तो गुलदस्ता बन रहा है, राजस्थान का गुलदस्ता, कोई चूरू से है, कोई जयपुर से है, कोई अबरूड से भी आए हैं कुछ।
2: मेरा नाम नितेश सही है और मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ।
0: क्या कहना चाहेंगे हमारा श्रोता में जो प्लेयर को जो खेल कूद में रुचि रखते हैं उनके लिए क्या मैसेज?
2: नहीं बढ़िया मेहनत करो,
0: बढ़िया मेहनत करो, बस मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत का बिना कुछ तो मिलता नहीं, मेहनत मेहनत मेहनत, जब तक गोल नहीं पहुंचेगा, जब तक अपना लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तब तक मेहनत करना है ना, और क्या कहना चाहेंगे?
2: खुद पे फोकस करो, मेहनत करो, बढ़िया
0: बढ़िया बना, खेल कूद जो कहेगा तो उसको स्पोर्ट्समैन पता चल जाता है ना, उनका बॉडी पूरा फिट रहता है। चलिए
3: जी, मेरा नाम दुष्यंत वेरवा है, मैं भिलवाड़ा से हूँ।
0: ओह वेरी गुड,
3: मैं यहाँ पर मतलब कैंप लगा रहा हूँ, मेरे को तीसरा साल है कंटिन्यू।
0: क्या बात,
3: थर्ड ईयर है यहाँ पर, और सेम वही मतलब हर बार रहता है वैसा वैसे ही टेम्परेचर, वातावरण वैसी, ट्रेनिंग हर साल
0: तो वैसी। कुछ आपको फेवर करता है यहाँ पर, जो तीन साल आप तीन बार किए हैं यहाँ पर, तो क्या सीख लेकर जाते हैं हर साल, क्यों आते हैं?
3: हर साल इसी नई उमंग से आते हैं कि नए दोस्त मिलेंगे, कोसाब नए ड्रिल्स कराएंगे, नए वर्कआउट कराएंगे,
0: इसका मतलब ये ट्रेनिंग जैसे ना प्रशिक्षण जैसे ये चल रहा है, प्रशिक्षण जैसे। अच्छा, जब मौका मिलेगा तो वहाँ पर जाते, कभी गए पूरा स्पोर्ट्समैन लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो चाहे ब्लॉक लेवल पे हो चाहे जिला लेवल पे, कभी गए?
3: हाँ मैं नेशनल लेवल पर गया हूँ 4 times और
0: हैंडबॉल को लेकर,
3: हाँ हैंडबॉल को
0: विजेता,
3: 3 silver है और 1 gold है।
0: ताली बजा भाई, इतना मेहनत की, फिर आप एक बार नाम बताइए।
3: दुष्यंत बेरवा, भिलवाड़ा से।
0: भिलवाड़ा हमारा राजस्थान के गौरव है, तो ऐसे हमारा आबूरोड का बच्चे भी करते, जैसे तिरंदाजी में हम उनको लिया है इंटरव्यू में, तो सभी जगह से आए तो हमें खुशी है इस तरह कार्यक्रम को सजाने के लिए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, खासकर स्पोर्ट्स स्पेशल में आज स्पोर्ट्समैन से हम बात कर रहे हैं।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक देना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो, आप अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम अजय सराधना, मैं जयपुर से हूँ।
1: सब जयपुर का तो पूरा दोस्त मिलकर सब जयपुर का तो आज बहुत गुलदस्ता मिल गया ना, फूल बहुत सारा फूल आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज का, सभी का सुन रहे थे, आप क्या कहना चाहिए जो बच्चे कोई नहीं बोल पाए, आप वो बात बताइए। जो बच्चे सभी बोले अपना अपना, किसको फुर्ति मिला है, किसका पूरा शरीर का जो किसका हाइट बढ़ा है और किसका मम्मी पापा है उनको बहुत प्रेरणा देता, आप इस स्पोर्ट्स से क्या फायदा गेन किए वो बताए। स्पोर्ट्स से आपको क्या मिला, मैं संगठन में आपको क्या फायदा हुआ, संगठन में एक दूसरे का परिचय हुआ ना, पहले परिचय था सभी का, नाम सबका नाम अभी पता है, नाम सबका पता नहीं होगा, बताओ देखी। वन
2: नितेश,
1: नितेश हाथ उठा, वेरी गुड नितेश।
2: सौरभ,
1: सौरभ वेरी गुड।
2: विक्रम,
1: विक्रम हाँ।
2: मोहित,
1: मोहित।
2: ओम प्रकाश,
1: ओम प्रकाश।
2: अभिमन्यु,
1: अभिमन्यु। वाह।
2: नितिन,
1: नितिन जी।
2: एबू
1: भाई, नाम बताओ।
2: दुसंत विशाल।
1: देखा मैंने 15 दिन में 15 डेज में बहुत कुछ दोस्त मिल गया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव से। ऐसे दोस्त संगठन में एकता होता है, यूनिटी, यूनिट होता है कि नहीं, तो यूनिटी जहाँ भी यूनिट होगा ना वहाँ पर सक्सेस, यूनिट मीन्स सक्सेस, यूनिट मतलब सक्सेस। जो एक काम नहीं करेंगे सब मिलकर करेंगे तो हो जाएगा, तो उसी को लेकर यूनिट संगठन सबसे दिव्य गुण संगठन में एकता, ये गुण है, एकता में रहना सब चीज संभव। हेलो, आप एकता का नाम सुन रहे थे, एकता का ऊपर में ऐसे एकता जैसे ता आया, एकता ता, विशेषता नम्रता, ये सब गुण जब रहेगा ना खेल में हम आगे जाएंगे, है ना, विशेषता होना चाहिए। तो आप अपना परिचय देंगे भाई जी।
3: मेरा नाम मोहित गुजर है, मैं जयपुर से हूँ।
1: जयपुर का तो अब नाम रोशन हो रहा है, होना भी चाहिए जयपुर ऐसे पिंक सिटी। और क्या क्या जयपुर में,
3: जयपुर में वैसे तो घूमने के लिए बहुत जगह है, जैसे हवा महल, जल महल, आमेर का किला है।
1: ये तो राजस्थान जो सुन रहे, राजस्थान सुन, लेकिन जो उड़ीसा, बंगाल, बिहार वो लोग भी सुने, तो कभी मौका मिले तो जयपुर आएंगे पिंक सिटी को देखने के लिए, बहुत सारा राजा का माहौल भी है। तो क्या कहना चाहेंगे, स्पोर्ट्स जो खेल नाम सुनते हैं, खेल से मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक, सामाजिक सब डेवलप होता है कि नहीं, और एक मनोरंजन भी हो जाता है दोस्त यारी से। तो क्या कहना चाहेंगे,
3: जैसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे स्पोर्ट्स से शारीरिक, मानसिक और जैसे आपने बताया सारा विकास होता है, और मेरा हुआ भी है शरीर के अंदर सारा डेवलपमेंट और
1: हुआ है। बहुत अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे की मैसेज,
3: टीम गेम है, सभी के लिए खेलना चाहिए,
1: सभी के लिए एक एकता में शक्ति। देखिए हमारे भाई जी बोल रहे एकता में शक्ति है ना, शक्ति मतलब पावर। एक मान लीजिए जैसे माला होता है, एक दाना निकल जाएगा तो सब पूरा क्या होगा, खत्म, उसका माला का नाम नहीं, माला बोलेंगे नहीं, माला कब होता है, सभी जैसे सभी अपने माला में जुड़े हैं, सबका आवाज संगठन में, तो एक मोती जैसे काम किए। तो हम हमेशा टीम वर्क लेकर करना है। अभी खेल में तो टीम वर्क होता है, कोई कोई गेम है सिंगल भी खेलते हैं, ऐसे कौन सा गेम जो सिंगल खेलते
4: हैं,
1: बॉक्सिंग हो गया, आर्चरी, ये सब सिंगल होता है, लेकिन आपका संगठन एक मतलब ग्रुप में, इतना इंडोर गेम है और आउटडोर गेम है, तो आप लोग सब आउटडोर गेम में भाई जो खेलते हैं,
4: इंडोर आउटडोर
1: दोनों, इंडोर भी खेलते हैं
5: बाहर देश में, इसको विदेश में से इंडोर खेलते हैं और ये भारत में इसको आउटडोर खेलते हैं, हैंडबॉल
1: बहुत अच्छा,
4: इंडिया में भी इंडोर खेलते हैं कई जगह
1: ज्यादातर, तो जिसको हमें भी पता नहीं था लेकिन पता मिल गया, देखो आपसे मिलने से हमको भी सीखने को मिला, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद देते हैं एक बार, सभी का हो गया। अरे हमारे ये भाई छुपा दोस्त जैसे, बता बता भाई जी।
6: मेरा नाम सौरभ जांगिड़े, मैं भी जयपुर से हूँ।
1: जयपुर से, वेरी गुड। और आपका अच्छा दोस्त इसमें जो 15 दिन से रुके, तो अच्छा दोस्ती किसके साथ हुई, दोस्ती खाने पीने में, घूमने में, बातचीत करने में, रास्ता में, जो भी
6: सबसे हुई दोस्ती, जो सब
1: वाह, ताली बजा भाई, सब मेरा अच्छे दोस्त है, सभी अच्छे। देखो एक ही दोस्त इसका नाम नहीं लिया, इसको कहते एकता, टीम, सबका बिना नहीं हो पाएगा ना, ये बल हमेशा लेना, कोई भी काम भी जाएंगे परिवार भी एकता से काम करना, मम्मी पापा भाई बहन सब मिलकर काम करेंगे तो अच्छा हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट बोले, नाम बताइए।
7: मेरा नाम विक्रम गुजर है, मैं टोंक से हूँ और मैं जयपुर प्रैक्टिस करता हूँ।
1: क्या आपका पसंद है, खेल ना नौकरी, क्या पसंद, सर्विस करना ना स्पोर्ट्समैन, क्या बनना चाहेंगे,
7: आर्मी में लगना,
1: आर्मी में, वाह मतलब नौकरी करना चाहेंगे। वेरी गुड, शाबाश। कोई तो बोला भाई हम करियर बनाएंगे इससे। तो सभी को धन्यवाद, नाम का साथ एक एक नाम लेते हुए सबको धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम को सुंदर में सजाए, वेल्दी हेल्दी करा दिए सभी को। नाम का साथ फिर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद,
8: धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
1: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
8: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
1: सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। वेरी गुड। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ जानकारी लेंगे बच्चों से, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। खास कल पोलो ग्राउंड स्थित जो खेल प्रशिक्षण चल रहा था उसमें इनका जो भागीदारी और अनुभव आज आपके पास रखे, सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: सभी लोग ये बताइए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का कौन सा हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से अगर कोई भी वित्तीय धोखाधड़ी हो जाती है तो उसकी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं?
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि आज बारी बारी सभी खेल का अनुभव और जो अनुभव उनका पास है वो दे रहे हैं और जो पोलो ग्राउंड में हुई थी उस प्रोग्राम आज उसको आगे बढ़ाते हुए जो हैंडबॉल चल रहा है उसका कवरेज आपके पास हम रख रहे हैं बारी बारी और हमारा कोच को भी धन्यवाद देते हैं और सभी स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट किए हैं तो उन सभी को धन्यवाद देते हैं और एक स्टूडेंट जो प्रशिक्षित स्टूडेंट हैं पोलो ग्राउंड में जो जून 4 तारीख से जून 24 तारीख से जो हुई उसका कवरेज आपके पास रख रहे तो एक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो आपको स्वागत करते हैं, अपना परिचय देंगे प्लीज।
2: मेरा नाम नितिन सैनी है, मैं जयपुर से हूँ, मैं गोल्ड नेशनल प्लेयर हूँ, मेडलिस्ट हूँ नेशनल में।
1: अरे वाह, इस तक पहुँचने के लिए आप क्या क्या मेहनत किए थे?
2: सर हमारे कोचेज बहुत ही अच्छे कोचेज थे, इंटरनेशनल कोचेज थे, हमारे सर प्रवीरदीप सिंह जी और हमारे मनीष राठौर, दोनों ही बहुत अच्छे कोच, उन्होंने हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया, जो चीज हमें बाहर सीखने को नहीं मिलती वो यहाँ सीखने को मिली हमारे दोनों कोचेज के द्वारा से।
1: अच्छा, तो खासकर राजस्थान से बहुत सारे बच्चे आए थे तो आपका जो हैंडबॉल में कौन सा जिला से आए थे आपको कुछ याद है?
2: जी सर,
1: जैसे
2: हमारे चूरू से बच्चे थे, चित्तौड़गढ़ से थे, सीकर से थे, जयपुर से थे, भीलवाड़ा से थे
1: जी,
2: नागौर से थे, ऐसे बीकानेर ऐसे जगह से बच्चे थे,
1: लगभग पूरा राजस्थान का पूरा मैंने प्लेयर आए थे ना, सिलेक्टेड प्लेयर।
2: हाँ सर, पूरे राजस्थान के पूरे प्लेयर थे।
1: और कभी आपको मौका मिलेगा तो फिर राजस्थान को मैंने माउंट आबू जो कि आबूराज को पसंद करेंगे?
2: जी सर बिल्कुल।
1: क्या खासियत है आबूराज
2: की? हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गर्मी है, आबूराज में हम रहे तो वहाँ पे हमें बहुत अच्छा ठंड का माहौल देखने को मिला, हमें वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिली, हमें रनिंग कराते थे, हमें पहाड़ों में रनिंग करने का मौका मिला, अच्छा अच्छे व्यू देखने के मौके मिले।
1: तो जो भी श्रोता हमारा सुन रहे लिसनर्स तो उनको भी कभी मौका मिलेगा तो इस तरह गेम यहाँ सिलेक्शन करेंगे तो आबूराज को जो माउंट आबू को तो उनको भी फायदा मिलेगा, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ पर जो भूमि माने देवभूमि है तो ये भी एक कहीं ना कहीं सपोर्टिंग करता है। और जो रनिंग मैंने सुबह सुबह देख रहा था सभी बच्चे रनिंग में पूरा मैंने पहाड़ी इलाके में कैसे रनिंग करते वो भी सीखने को मिलता है ना?
2: जी सर, हमें बहुत अच्छा सीखने को मिला वहाँ रनिंग करने में भी, बहुत अच्छी अच्छी जगह रनिंग कराई हमें, जैसे गौमुख में गए थे, हमें बहुत मजा आया गौमुख से, गौमुख में मजा
1: गौमुख तक पहुँच गए थे। अरे
2: हम गौमुख पे रनिंग करते हुए लेके गए थे हमें पोलो ग्राउंड से, और हम मून पॉइंट अरबुदा माता सभी जगह पे हमें रनिंग करते हुए लेके गए और हमें बहुत अच्छा मजा भी आया वहाँ पे रनिंग करने में।
1: तो खासकर जो हैंडबॉल है तो इसमें कितने बच्चे रहते हैं दोनों साइड में?
2: दोनों साइड में 14 प्लेयर रहते हैं सर,
1: सात सात ऐसे सेवन
2: सेवन प्लेयर रहते हैं।
1: अच्छा, कोई बैकअप भी रहता कुछ, मान लीजिए कि इसको थोड़ा चोट आया कि कोई

0: मैंने बैकअप में रहते हैं कोई बच्चे।
1: सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं, टोटल प्लेयर 16 रहते हैं वन टीम में, और
0: ओके
1: सब्स्टिट्यूट प्लेयर रहते हैं 8 प्लेयर।
0: ओके ओके। और उसके लिए खास क्या ध्यान देना पड़ता है एक एक प्लेयर को?
1: प्लेयर को सर सबसे ज्यादा तो अपनी इंजरी का ध्यान देना पड़ता है, डाइट का ध्यान देना पड़ता है कि अपने को अपनी कैसे अच्छा है, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करता है, अपना बेस्ट देता है, इंजरी ना हो जाए, डाइट अच्छी लेता है,
0: और
1: कोचेज की बात में जैसे कोच बताते हैं वैसा करता है, डिसिप्लिन में रहता है।
0: इंस्ट्रक्शन जो आता है उसी हिसाब से सबको चलना पड़ता है। एक अनुशासन में चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि कोच तो हमारा कप्तान है, तो कोच का जो दिशा निर्देश मिलता है उस तरफ फॉलो करता है। डाइट हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एनवायरनमेंट को भी साफ सफाई रखना, और खुद भी साफ सफाई रखना, और मन और बुद्धि को मेडिटेट करके एकाग्र फोकस
1: और
0: करके आप।
1: हमारे कोच पीरियड दीप सिंह हमें इस चीज के लिए अलग से क्लास दिए थे हमें, कि
0: अच्छा क्या बात।
1: वातावरण को कैसे कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे क्या रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, बड़ों का आदर करना है, ये चीज हमें अलग से क्लास दी थी एक दिन।
0: नहीं, उससे क्या है ना, शक्ति मिलता है, और कुछ कमाना अच्छा जब करते हैं बा करने के लिए सोचते, तो हमारा पॉजिटिव थिंकिंग जो सकारात्मक सोच हमें टीम को बल देता है, सबका प्रति सुभावना रहता है, शुद्ध भावना रहता है, और कल्याणकारी भावना जब रहता है टीम के लिए, तो जरूर वो टीम मैंने एक इंडिविजुअल नहीं, ये गेम तो जो हैंडबॉल है तो एक मैंने समूह रूप में करना पड़ता है, मैंने जो गेम है सिंगल नहीं है, एक टीम है, तो टीम के लिए सुभावना और उनका कल्याणकारी भावना रखेंगे तो जरूर टीम को आगे बल मिलेगा और टीम जरूर सक्सेस होगा। इस तरह आपको कोच से मिलता है। और खासकर आपका जो गांव है, कौन सा गांव?
1: सर मैं जयपुर से हूँ।
0: प्रॉपर जयपुर शहर से है?
1: हाँ जी सर,
0: अच्छा, जयपुर को तो सभी जानते हैं, है ना, सबका
1: जी
0: जय
1: सर,
0: होना वाला है, और पिंक सिटी से प्रसिद्ध है जयपुर में। ऐसे
1: जी
0: खास जो कोई विजिटिंग करने के लिए जाएंगे, क्या क्या प्लेस है
1: क्या सर,
0: जयपुर में पर्यटन स्थल?
1: जयपुर में घूमने की जगह?
0: हाँ, जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा?
1: जयपुर में सर आपको बहुत चीजें देखने के लिए मिलेंगी। हवा महल हमारे, जल महल है हमारे, जंतर मंतर है हमारे, आमेर के किले हैं हमारे,
0: अरे वाह,
1: और हमारे जैसे हमारे बहुत खूबसूरत स्टेडियम भी है जयपुर का स्टेडियम, जहाँ
0: ओ
1: हम लोग
0: स्टेडियम भी,
1: प्रैक्टिस
0: क्या
1: करते हैं,
0: बात है।
1: जहाँ जहाँ इंटरनेशनल मैचेज भी होते थे पहले। यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी जगह भी है यहाँ पे, जैसे हमारे एक लेक भी है सांबर लेक, जयपुर
0: जी, तो
1: में पड़ती है लेक
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसलिए सभी
1: के
0: पर्यटक
1: पास में।
0: को इस माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जरूर एक बार जयपुर जाकर अपना जो विजिटिंग प्लेस है, जो साइट सीन है, तो जरूर देखें। और ऐसे तो पिंक सिटी का नाम से प्रसिद्ध है, और जयपुर बहुत अच्छा प्लेस है, जो राजस्थान का मैंने हार्ट है। और हमारा जो भाई जी अपना बात को रख रही है, भी कम बात नहीं, और अचानक भी आए, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं, फिर भी अपना बात को रख पा रहे रेडियो मधुबन कार्यक्रम में। ऐसे उमंग उत्साह मिलता रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। और खासकर आपका जो जीवन में लक्ष्य रखा है, क्या लक्ष्य रखा है, बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
1: मुझे इंडिया की तरफ से मेडल लाना है।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, आपको इन एडवांस बधाई हो। और इंडिया भारत माता के लिए कुछ करने के लिए चाहते हो, मेडल लेकर आना है, और बास्केटबॉल ही आपका फेवरेट है ना, इस गेम को ही ज्यादा पसंद करते हैं,
1: हैंडबॉल,
0: हैंडबॉल को, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल को नहीं, सिर्फ हैंडबॉल क्यों?
1: गेम तो सब सारे गेम अच्छे हैं सर, पर
0: जी,
1: सर खुद का गेम हमारा हैंडबॉल है।
0: हैंडबॉल है, तो इसका प्रेरणा स्रोत कहाँ से आप लिए हैंडबॉल को, मैंने कौन आपको प्रभावित किया बा आकर्षण करने के लिए, बा इस गेम को आने के लिए कौन प्रेरणा दिया बा आपको सजेस्ट किया?
1: सर मेरे चाचा रविंद्र सैनी है, जो ऐसा ही है हैंडबॉल इंडियन प्लेयर है, वो भी उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और वो भी हमारे कोच प्रियदीप सिंह के अंडर खेले हुए हैं।
0: ओके, वेरी गुड, उनको भी धन्यवाद देते हैं इसको आगे रखने के लिए, आपको भी प्रेरणा दी, क्योंकि देखो जो घर के कोई भी सदस्य रहता है तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, और कुछ गाइडलाइन भी मिल जाता है, मैंने सपोर्टिंग जिसको कहते हैं, है ना, तो परिवार हो चाहे कोई भी आपका दोस्त इस तरफ फील्ड में है, तो आपको सहयोग मिल जाता है, जिसका चलते आप भी आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसे। और रेडियो मधुबन में आज अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है?
1: मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जैसे हमने माँ को सीखा है वो आपको मैं पूरे विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें बहुत ही अच्छी लेवल की कोचिंग दी गई है वहाँ पे माउंट आबू में, हमारे दोनों ही कोच बहुत ही अच्छा हौसला देते रहे हमें, बहुत टाइम टाइम पे बताते रहे, अच्छी अच्छी चीजें सिखाए हमें, इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग मिली माउंट आबू में।
0: आज
1: अब रात में
0: आप तो कोचिंग कोचर से कोचिंग ले रहे हैं, कभी आपको मौका मिलेगा तो आप कोच बन सकते हैं ना बच्चों को भी
1: नहीं
0: सिखा सकते हैं ना।
1: सर, जैसे हम उनके लेवल जितने किसी को नहीं सिखा पाएंगे, किसी को जितना उन लोगों ने हमें सिखाया होता हम किसी को नहीं बता पाएंगे। हाँ
0: अच्छा, ऐसे उनके पास खास, उनके पास बहुत अनुभव है माने एक्सपीरियंस।
1: बहुत एक्सपीरियंस है सर उनके पास, वो खुद
0: ओके
1: हमारे हैंड बॉल, जैसे हमारे प्रिय सर हैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, बहुत बार इंटरनेशनल खेला है उन्होंने, और वो बहुत इंटरनेशनल कोचेज भी हैं, दोनों हमारे कोच हैं जो इंटरनेशनल कोचेज है।
0: इससे पता चलता है बड़ों को रेस्पेक्ट देते हैं, और जैसे जितना भी हो तो उनका हम पद का धूली जैसे है उनसे बराबर नहीं कर पाएंगे, बड़ों को सम्मान देते हैं। और हमारा कोच तो कोच होते हैं तो उनका बराबरी नहीं है, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो हम भी कभी भी माने चांस मिलेगा तो बड़े होने के बाद तो आप भी कोचर बन सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन उससे आगे हो जा सकते हैं नहीं तो पीछे जा सकते हैं। उनका बराबर तो नहीं हो पाएगा लेकिन लक्ष्य रखेंगे तो कोच तो बन सकते हैं। और वो प्लेयर अच्छा अपना भारत के लिए नाम रोशन करने के लिए कुछ मेडल लेकर आने के लिए जो लक्ष्य रखा है जरूर आप कामयाब होंगे। और एक टीम वर्क जो होता है तो आप ऐसे सिंगल सभी का सहयोग से खेल होता है, तो जो हैंडबॉल में खासकर क्या विशेष ध्यान देना पड़ता है?
1: सर जैसे हमारे तो पहले तो ये है कि सारी टीम को एक साथ लेके चलना पड़ता है, जैसे हमारे जो खेलता है उसको अच्छे से टीम चला के चलना पड़ता है, हमें बोल के खेलना पड़ता है हम करेंगे हम जीतेंगे, एकता में शक्ति है, हम ये सोच के चलते एकता में शक्ति है, हमारी टीम को कोई नहीं छोड़ सकता।
0: जी बहुत अच्छा। और अभी कौन सा क्लास में पढ़ाई चल रहा है?
1: जी सर अभी मैं 12th क्लास में हूँ
0: ट्वेल्थ, तो आफ्टर ट्वेल्थ क्या करेंगे?
1: सर, अभी तो जैसे मैं अभी हैंडबॉल को कंटिन्यू करते हुए 12th क्लास को कर रहा हूँ अभी।
0: हाँ उस तरफ भी कॉलेज भी करेंगे, नहीं तो कोई भी अच्छा यदि कोई भी इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऐसे
1: जी सर
0: जैसे कोई डॉक्टर इंजीनियरिंग लाइन जाते हैं ना, पढ़ाई का साथ साथ ये तो खेल तो साइड है, कोई कोई पूरा खेल में ही पूरा जीवन दे देते हैं और कोई कोई साइड बाय साइड रखते हैं। तो ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई करेंगे तो खेल को साथ तो रखना ही है।
1: जी सर खेल साथ में रखेंगे।
0: बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा आपका जो व्यू, और इसका श्रेय किसको देना चाहिए, धन्यवाद किसको देना चाहते हैं आप जो इतना तक पहुंचे?
1: ये सर मैं धन्यवाद हम मेरे चाचा रविंद्र सैनी को और मेरे कोच दिलीप सिंह दोनों को देना चाहता हूँ।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर अपने कार्यक्रम को सजाया, और आपका जो बड़े प्रेरणा का स्रोत दोनों को आप धन्यवाद देना चाहते हैं, और उनका बदलता आज यहाँ तक पहुँचे कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका बदल आशीर्वाद से और गाइडेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत तो अच्छा लगा। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब पीछे मुड़कर देखा, पास्ट को जब भी देखते हैं, तो ना चाहते हुए भी वो सारी बातें हमें याद आ जाती हैं, या फिर हम जीवन में जब चल रहे होते हैं, कभी भी अचानक अनजाने ही पास्ट की बातें ट्रिगर हो जाती हैं, और फिर जहाँ हम खड़े हैं वो पास्ट ही हमारा प्रेजेंट बनने लगता है। अगर पिछली कड़ी आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैसे हमारा पूरा गुजरा हुआ कल आज भी, तभी हम कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स, क्योंकि मैंने ही उसे अपना प्रेजेंट बना लिया, तो फिर वही तो आगे सामने आएगा। हमने एक मुद्दे पर बात करनी चाही थी, और वो था जब किसी लव्ड वन की, किसी करीबी की, जो अपनी देह छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते जीवन में, या फिर कहीं कोई ऐसा अपना होता है जो छूट जाता है, कहीं और चला जाता है। तो ऐसे दो एक्सपीरियंस हैं जो कि जिनसे पार पा पाना, या जो वो बार बार अनजाने ही आते हैं, उन्हें कैसे हैंडल करना है, और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पास्ट की हम बात कर रहे थे तो कई अनुभव तो छोटे छोटे होते हैं जिसको करके कि हम हैं, और खुद ही अपने आप को हील करना, ये हमने समझा, ना हम किसी और को बदलेंगे ना सिचुएशन बदलेगी, और वो गुजर गया, ख़त्म हुआ। लेकिन कुछ सिचुएशंस, जैसे कि कोई हमारा बहुत करीबी और उसकी डेथ हुई, वो आज भी उतना ही बड़ा घाव है, और हमने किसी तरह से अपने आप को कवर अप किया है। मतलब इतने लोग इतना समझाते हैं, इतनी बातें करते हैं, कवर अप कर लेते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी भी जी रहे हैं, सबके साथ भी जी रहे हैं, काम पर भी है, लेकिन वो खाव तो भरता नहीं है।
1: डेफिनेटली आई थिंक जीवन में हमें बहुत सारे, जैसे हम शुरू से देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देखने, लेकिन ये जो एक परिस्थिति होती है, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ क्लोज फ्रेंड, ये शायद जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम पेपर होता है, जिसमें तो हमने कहा कि दर्द तो नेचुरल ही है, वी नेवर एवर थॉट के कोई और ऑप्शन भी है। यस, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जीवन में वो सिचुएशन है जिसको पार करने के लिए बहुत ताकत चाहिए, लेकिन इसमें भी अगर हमें राइट नॉलेज है, विजडम है, और फिर साथ साथ पावर भी है, तो इसको भी हम क्रॉस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम देखते कि उसमें भी अगर हम देखें कि जब हमारा बच्चा, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेकिन उसमें भी अगर किसी के बच्चे की डेथ हुई है, यंग अनटाइमली डेथ, तो शायद उसको पेरेंट्स के लिए फेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता, और वो अपने आप को ये कह ही देते कि बाकी पूरी जीवन तो दर्द में ही बीतनी है, यहाँ तक कि वो दर्द इतना ओवरपावर कर जाता कि कहते हमें जीना ही नहीं है, हमारे जीने का कोई पर्पस नहीं है। उनको अब जो प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स हैं वो कोई नहीं दिखाई देते, उनका कुछ नहीं लग रहा, बस वो एक उसमें ही इतने दर्द में चले गए हैं कि कहते आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, आई लॉस्ट माय पर्पस ऑफ लिविंग। ऐसे समय में भी हम अपना ध्यान कैसे रखें, बिकॉज हमारा पूरा जो बात है वो यही कि अपना ध्यान कैसे रखना, क्योंकि अब तो वो जिसका हम ध्यान रख रहे थे
0: वो भी नहीं रहा,
1: वो नहीं है, तो वो दर्द में अब मुझे अपना ध्यान कैसे रखना,
0: अब मैं ध्यान अपना रखना ही नहीं चाहती। यू नो, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, इट लाइक आई डोंट वांट टू लिव, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, यू नो, एंड उसके बावजूद भी मैं करती हूँ, उठता हूँ, काम करती हूँ और चीज़ें करती हूँ।
1: राजयोग में जो सबसे फंडामेंटल बात जो हमें समझ में आती कि मैं कौन हूँ, ये एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है जो हमारे सारा पर्स्पेक्टिव चेंज कर देती, कि ये शरीर है, नाम है, परिवार है, रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन सब के लिए हमने कहा मेरा, यू नो, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है, ये मेरे रिश्ते हैं। शरीर के लिए भी हमने कहा मेरी आंखें, मेरा कान, मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत दर्द हो रहा है, तो ये सब कुछ मेरा मेरा कहने वाला, वो मैं कौन? तो वो हमें समझ में आता कि वो एनर्जी है जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते, चैतन्यता जिसको कहते, द लिविंग, द बीइंग पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंटिटीज, वन इज द बॉडी, द ह्यूमन, जो ह्यूमस वर्ड से निकलता मिट्टी, एंड बीइंग इज एनर्जी, कॉन्शियसनेस। तो ये जो बॉडी है ये मेरी है, और मैं कौन? वो शक्ति। जब हमें समझ में आता कि आई एम एनर्जी, देन आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. So it is eternal. जब ये समझ में आता तो देन आई अंडरस्टैंड कि मैं वो चैतन्य शक्ति जिसको स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम आत्मा कहते सोल कहते स्पिरिट कहते मैं इटर्नल हूँ. तो डेथ किसकी होती है क्योंकि पूरा जीवन हम मृत्यु के भय में जीते हैं. लेकिन जब मुझे समझ में आता कि मैं तो इटर्नल हूँ आज दिन तक भी हम सुनते आए आत्मा अजर अमर अविनाशी है जो जल नहीं सकता जो मर नहीं सकता जिसका विनाश नहीं हो सकता. आई एम इटर्नल एंड सो इज एवरी सोल. सो एवरी सोल इज इटर्नल. तो मृत्यु का कॉन्सेप्ट क्या है व्हाट इज डेथ इज व्हेन आई द सोल लीव वन कॉस्ट्यूम वन सेट ऑफ रिलेशनशिप्स वन पर्टिकुलर सीन एंड देन आई हैव टू शिफ्ट. तो अब हम अगर इसको देखें कि डेथ मीन्स के वो आत्मा एक क्योंकि वी आर सीइंग डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर वो आत्मा जो कल तक मेरे साथ थी उसका मेरे साथ एक जिसको हम कहें कार्मिक अकाउंट था. हम कहाँ आते हैं बर्थ और डेथ कैसे डिसाइड होता है. कई लोग बोलते कौन डिसाइड करेगा कहाँ जन्म हुआ और कब तक उस शरीर में रहना और फिर कब वहाँ से चलना है. इट इज़ बेस्ड ऑन माई कार्मिक कनेक्शंस. हम जिस परिवार में हमारा जन्म होता जिन लोगों के हम कनेक्शन में आते इट इज़ बिकॉज उन आत्माओं के साथ मुझ आत्मा का कार्मिक कनेक्शन है जिसको हम कहें एनर्जी के लेन देन है. दिस इज़ बेस्ड ऑन माई पास्ट कार्मिक कनेक्शंस. तो जिन आत्माओं के साथ हम आज हैं हम पहले भी उनके साथ कभी थे. जब हम उनके साथ पहले थे हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंट क्रिएट हुआ था. अब हम फिर उनको मिलते फिर हमारा एक अकाउंट है. लेकिन जैसे ही अब मेरा ये अकाउंट जो था वो सेटल हो जाता आई हैव टू लीव. आई कैन नॉट स्टे वन मिनट मोर आफ्टर दैट. तो जब हमें ये समझ में आता वो आत्मा मेरे कॉन्टैक्ट में आई फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर सेटलिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट उसके बाद द सोल कैन नॉट बी इन माई कॉन्टैक्ट एनी मोर क्योंकि उसका वो अकाउंट फिनिश हो गया एंड इट हैज़ टू गो समवेयर एल्स जहाँ उनका एक
0: नया अकाउंट
1: है. वो सोल अपनी जर्नी पे है. यू नो इट्स लाइक एक ट्रेन में हम जा रहे हैं हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं. ऐसा नहीं होगा कि सब लोग एक ही स्टेशन से चढ़ें और सब लोग एक ही स्टेशन पे उतरें. हर एक की जर्नी अलग अलग है. तो हर एक का बोर्डिंग पॉइंट वो भी अलग अलग है. हर एक का उतरने का स्थान वो भी अलग अलग है क्योंकि हर एक अपनी अपनी यात्रा पर है.
0: But I didn't want to finish this account. See?
1: No, it's not about I wanting to finish this account. I'm not talking about my account. It's about the other soul's account. अगर आपका अकाउंट मेरे साथ चार दिन का है तो उसके बाद आपने पांचवें दिन दूसरी जगह जाना ही जाना है क्योंकि पांचवें दिन आपका कनेक्शन दूसरी जगह. लेट्स से आप हफ्ते में तीन दिन हमारे साथ शूट करते हैं लेकिन चौथे दिन आपको कहीं और शूट पे जाना है. आपकी वो कमिटमेंट है. अब मैं को तीन दिन आपके साथ बहुत अच्छा लगा मैं सोचूं चौथे दिन भी आप यहीं आ जाएं तो मेरे चाहने से आप यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपका कमिटमेंट अब चौथे दिन कहीं और है. अब मैं जो यहाँ पीछे बैठी आप तो चले गए कहीं और. अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ कि आपका कमिटमेंट आपका अकाउंट कोई और है या मैं दर्द में रहूं कि वो क्यों नहीं है वो क्यों नहीं है.
0: हाँ,
1: आज
0: सबसे मेरे साथ बड़ी बात ये भी फिर ये भी रहता है कि तो इसका मतलब उनको जब वो चले गए हम याद ही नहीं रहते. यू नो बिकॉज कमिटमेंट पूरा हुआ
1: हम उनको याद नहीं रहते. ये उनके लिए अच्छा है ना. चलो अगर हम एक पल के लिए देखें आई मेट वन मदर जिनका 21 साल का बेटा ने एक्सीडेंट में डेथ हुई. तो वो बहुत अच्छा पास्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. बेटा दूसरे देश में था तो कहा हमारा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि यहाँ अगर मैं अपसेट होती उसको वहाँ पता चलता या उसके साथ कुछ होता तो मुझे यहाँ इतना जैसे हमारा यू नो वो बॉन्डिंग था. तो कहते हम तुरंत फ़ोन करते एक दूसरे को सब ठीक है कुछ हुआ है. एंड शी सेड इनवेरिएबली वी वर राइट कि दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुआ था. तो इतना हमारा कनेक्शन. अब वो बच्चा वो आत्मा कहीं और चली गई है. ये मदर बहुत रोती है रोज़ रोती है इतना. तो आई जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग. आई सेड कल तक आपका और उस आत्मा का इतना कनेक्शन था ना कि आपकी एक थॉट उधर तक पहुंचती, उसकी एक थॉट आप तक पहुंचती. अब वो आत्मा का कॉस्ट्यूम चेंज हो गया है. सी व्हाट वी से, इट्स ओवर, इट्स डेथ, इट्स फिनिश्ड. नो, इट्स जस्ट द सोल हैज चेंज्ड अनदर कॉस्ट्यूम. लेकिन क्या वो कनेक्शन फिनिश हो गया होगा? क्या वो एनर्जी एक्सचेंज फिनिश हो गया होगा? अगर आप आज कहीं और भी चले गए, क्या आपको भूल गए? आपको याद नहीं आएगी? आएगी. अब क्या होगा? लेकिन पहले वो दूसरे देश में था, उसको अगर याद आता या उसको कैच होता, ही कुड कॉल. एक मिनट के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्रिएट द सीन इन फ्रंट ऑफ यू कि वो आत्मा अब एक दूसरे शरीर में है, प्रॉबेबली इन द वूम्ब ऑफ द मदर और अ वेरी लिटिल बेबी, जस्ट कैन नॉट कॉल यू बैक.
0: But will he remember? It's not the remembrance.
1: It is not remembrance. शुरू शुरू में तो remembrance है. एक आत्मा जब उस शरीर में है, आप देखो एक बच्चे को शुरू में सारा पास्ट याद होता है.
0: It's like कभी रोता है,
1: कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है. क्या? क्योंकि नेचर है ना, जैसे हमें पास्ट भूलता जाता है, तो नेचर बहुत सुंदर ऐसे बनी हुई है प्रकृति कि जैसे जैसे बच्चा बोलने की स्टेज पर आता, दो तीन चार साल, तीन साल तो हो जाते, तब तक उसको पास्ट भूल जाता क्योंकि प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन लेयर उसके ऊपर सारी कोड होते जाते. तो कई बच्चे ऐसे मिलते हैं ना जिनको पास्ट याद होता, तो वो किस एज में होते हैं? वो 19, 20, 25 की एज में नहीं होता कभी भी.
0: 5, 6, 7.
1: क्यों? क्योंकि मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग थी कि वो जो बात दो तीन साल तक भूल जानी चाहिए थी, वो 4, 5, 6 साल तक भी याद है और वो उसका वर्णन फिर करना शुरू करते. लेकिन जब वो आत्मा माँ के गर्भ में है, वो तो अभी अभी आई है, या वो एक एकदम छोटा बच्चा, वो तो अभी उसको सब याद है, सारा कुछ याद है, और वो पास्ट को याद करके ही रोता और हंसता है. बच्चा कभी भी प्रेजेंट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है. हम हॉस्पिटल में बच्चे को क्रेडल में देखते, हम उसके साथ प्यार से बात करें, हमें लगता है वो हमें देख कर डजेंट इवन नो मी, डजेंट इवन रिकग्नाइज मी. वो कुछ और याद करके हंसता और रोता है. अब यहाँ वो माँ है, यहाँ वो आत्मा है. अब उसको बच्चा नहीं कहेंगे, अब वो आत्मा है. यहाँ अगर पहले आपका एक एक दर्द वो ऐसे कैच करता था, अब नहीं करेगा. अब करेगा या नहीं करेगा? अभी भी करेगा. यहाँ आप इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं. किसको याद करके रो रहे हैं? उसको याद करके रो रहे हैं. लॉ ऑफ एनर्जी
0: किस बॉडी में था? किसी और कॉस्ट्यूम में था.
1: पर कॉस्ट्यूम को नहीं हम याद करते ना. एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के बीच नहीं, वो आत्मा और आत्मा के बीच है. दैट्स व्हाट वी सेड इज रिलेशनशिप. अब जब हम रो रहे हैं, हम पेन की एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं. एनर्जी ट्रैवल करने वाली है. कहाँ ट्रैवल करेगी?
0: उसी पे जाएगी,
1: उस आत्मा के प्रति जिसके लिए वो क्रिएट की गई है. सो यस, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. यस, हम नहीं इस, हम कहते हैं हम इस दर्द से नहीं निकल सकते. लेकिन अगर हम अपने आप को प्यार से और लॉजिकली समझाएंगे कि जब वो आत्मा यहाँ थे, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाता उसको दर्द ना होने देती, मैं कुछ भी कर जाती उसको अपने दर्द से दूर करने के लिए. और आज मैं ही बैठकर क्या भेज रही हूँ? मैं दर्द भेजते जा रही हूँ, भेजते, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे पता नहीं चल रहा, तो मेरे ऊपर उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा. इफ़ आई हैव द रियलाइजेशन दैट ऑल दिस पेन दैट आई एम क्रिएटिंग इज गोइंग टू दैट सोल, I will start taking care of myself. अपने लिए नहीं ध्यान रखना चाहते ना, ठीक है, वी से मुझे नहीं ध्यान रखना अपना. I don't want to be free of pain. अपने लिए नहीं, उनके लिए सही.
0: जिसके लिए हम जीवन भर वैसे ही करते आए हैं,
1: जिनके लिए, जो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट थे, उनको इतना दर्द पहुंच रहा है. अच्छा, बच्चा अगर थोड़ा बड़ा होता जाता, वो हमें याद नहीं रख, वो याद नहीं करता, भूल जाता है. लेकिन एनर्जी जो हम भेज रहे हैं, वो एनर्जी वो फिर भी रिसीव करता है. एनर्जी ऐसी चीज है, आप जिसके प्रति क्रिएट करो, इट इज ट्रैवलिंग टू दैट पर्सन.
0: तो मतलब इसका मतलब वो जो सोल जिसने जहाँ जन्म लिया, जो भी है, उस तक वो वाइब्रेशंस तो पहुँच रहे हैं.
1: ऑलवेज, ऑलवेज, ऑफ कोर्स. सी, इट्स लाइक दिस, आप मेरे लिए जो भी एनर्जी क्रिएट करोगे,
0: तो देन अननोइंगली
1: आई एम सेंडिंग सो मच पेन.
0: यस, और वो पेन में चला जाता होगा बच्चा, मतलब वो जहाँ पे भी होगा.
1: सी हाउ इट हैपेंस, क्योंकि हमारे अंदर आज इतनी ताकत नहीं है कि हम अपने आप की प्रोटेक्शन कर सके. हमने यही देखा ना, आपने दर्द भेजा तो मेरे भी दर्द में चली जाते हो. अनलेस आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ कि आपकी एनर्जी औरों की एनर्जी मुझ पर इन्फ्लुएंस नहीं करे. लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर नॉट डूइंग दैट वर्क. तो मोस्ट ऑफ अस आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर एनर्जी इज बीइंग सेंट टू अस. तो जब हम उन सब लोगों की एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते जो हमारे आसपास है, अगर कोई कहीं और भी है, लेकिन वो जो एनर्जी भेज रहे हैं उसका भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता
0: है। और उस बच्चे को तो ये पता भी नहीं चलेगा ना, बिकॉज वो सामने हो तब हमें समझ में आता है कि इसकी एनर्जी ये आ रही है, वो उसका ये आ रहा है, लेकिन वो तो द चाइल्ड वोंट बी इवन नोइंग कि वो कहां से आ रही है।
1: दैट्स बिकॉज़ वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ पेन। तो एज अ पेरेंट, एज अ हस्बैंड वाइफ, जो भी हम हैं यहाँ पर, हमें मालूम है, हम अपने आप को तो ये कह देते कि हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है, हम रहना नहीं चाहते खुश। यू नो, पीपल से आई डोंट वांट टू बी हैप्पी। इट्स नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी। यस, यू डोंट वांट टू बी हैप्पी, बट हैप्पी इज नॉट एक्साइटमेंट। इट्स अबाउट बीइंग स्टेबल, इट्स अबाउट बीइंग पेन फ्री, दैट्स ऑल। क्योंकि अब आप जितनी बार दर्द क्रिएट करेंगे, अपने को तो देंगे ही, उनको भी भेजेंगे। देखो, अगर बच्चा कहीं और है, देखो नॉर्मल में कैसे होता, अगर बच्चा कहीं और है और वो हमें फोन करता दूसरे शहर से, कहता सब कुछ ठीक है घर पे, तो हम क्या कहते? हाँ हाँ,
0: सब ठीक है,
1: सब ठीक है। यहाँ पर हो सकता 10 प्रॉब्लम हो आज, हम बच्चे को कभी नहीं बताते, या जो भी हस्बैंड वाइफ पे गए हो, हम बताते नहीं। व्हाट इज द इंटेंशन? दूसरा जहाँ है वहाँ वो सेट हो जाए। अगर हम यहाँ की बात उसको बताते रहेंगे सारा, वो वहाँ सेट कैसे होगा? सिमिलरली आत्मा दूसरी जगह है, हमारा प्योर इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो वहाँ पर सेट हो जाए। हम रोज पता है क्या मैसेज भेजते हैं?
0: हम सेट नहीं होने दे, बिकॉज हमारा, इट मीन्स वी आर एक्चुअली बीइंग लिटिल सेल्फिश। I don't want to say that, but
1: because we're thinking only about ourselves, yes, no? Yeah. We're not thinking about them. Why we were not able to think about them? Because we thought they are gone.
0: Haan.
1: You know, जहाँ हमने कहा they are gone, तो फिर हमें यही नहीं था कि वो अभी हैं। हमने कहा वो तो चले गए।
0: वो मेरी ज़िंदगी से तो पर चले गए ना, ये बड़ा दुख है।
1: लेकिन
0: वो कहीं तो है
1: ना। सिमिलरली अगर बच्चा दूसरे शहर में, वो यहाँ नहीं
0: है, how should I accept it, you know? Like, ये मैं मान ही नहीं पाती हूँ, बिकॉज ये इतने कन्फ्यूजन्स, और डेथ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता, इसको लेके इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, या इतना सब कुछ है, तो ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ कि वो है?
1: जब हमें ये समझ में

0: सी राइट एंड रॉन्ग अगेन, जितना हम उसको यहाँ खींचने, देखो एक तो है हम असंभव करने की कोशिश, या तो हमारे कुछ भी करने से अगर वो वापस इस कॉस्ट्यूम में आ सकते, गो एंड डू व्हाट एवर यू वांट, वो तो होने नहीं वाला है. लेकिन अगर हम बार बार यहाँ कनेक्ट करना मेरे से, यू नो बहुत सारे आजकल टेक्निक्स फॉलो कर, क्या क्या, कम्युनिकेट विद हिम, आई कैन कनेक्ट विद हिम, जब वो यहाँ आ नहीं सकते हमें उनको क्या करने देना है. जितने बच्चे हैं जिनको अपना पास्ट बर्थ याद आ जाता है, यू नो हाउ अनकम्फर्टेबल दे बिकम, वो यहाँ है 5 साल के, याद उनको आ गया कुछ पास्ट का, ये उनका प्रेजेंट है, प्रेजेंट को वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट और पास्ट के बीच में खींचते जाते, एंड दैट इज़ वाई इट्स लॉ ऑफ नेचर कि हमें वो पास्ट बर्थ भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं भूलता वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चलता है. तो इसी तरह वो आत्मा दूसरी जगह चली गई, लेट इट सेटल. अगर हम उसको इस तरह से अलग अलग तरह से खींचने की कोशिश करें,
1: सेटलमेंट नहीं होगा,
0: नहीं होगा ना. इट इज़ लाइक सपोज बच्चा दूसरे शहर में है और हम उसको फ़ोन करके बोलें वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा, हम ऐसा बोलेंगे कभी? हम कहेंगे नहीं, सब ठीक है, आप वहीं रहो. सिमिलरली आत्मा कहीं और चले गए हैं दूसरी जगह, हम थॉट्स क्या क्रिएट करते, क्यों छोड़ के चले गए, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती, मुझे जीना ही नहीं है,
1: कुछ भी करके लौट आओ, यू नो लाइक इट्स.
0: नाउ सी, नाउ इमेजिन दैट सोल देयर गेटिंग ऑल दीज थॉट्स, दीज ऑल वाइब्रेशंस, हाउ मच पेन. वो आ भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते, रिसीव करते जाते, रिसीव करते जाते इतना दर्द. तो अपने लिए नहीं, उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो गए हैं, लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आर सेल्फ. एंड ऑल्सो जो हमारे साथ अभी हैं परिवार में, ये भी एक बहुत बड़ी जो बात हो जाती, एक घर में 2-3-4 लोग हैं, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, अच्छा हस्बैंड वाइफ हैं, एक नहीं है, वी कैन नॉट डू एनी थिंग, लेकिन जो है
1: इरिटेशन होने लग जाती है, आई जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप से हो रही होती है,
0: मेरे अंदर सिर्फ दर्द है ना, रिश्ते में क्या दूंगी मैं दूसरे को. हम ये नहीं वैल्यू करते कि ठीक है वो आज मेरा मेंबर मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये 1-2 लोग, दिस इज हाउ द पास्ट
1: एक्चुअली एज इंपॉर्टेंट एज दैट चाइल्ड,
0: एज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, इक्वली इंपॉर्टेंट. वाज इट दैट दैट पर्सन वाज इंपॉर्टेंट, द रेस्ट वर नॉट इंपॉर्टेंट, बट माय फोकस गोज ऑल टुवर्ड्स दैट वन हु इज नॉट देयर, एंड इन द प्रोसेस आई निग्लेक्ट एवरीवन हु इज देयर. बहुत घरों में ये देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप वो दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. जो बच्चा है आज वो निग्लेक्टेड फील कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स क्या हैं, पूरी तरह से दर्द में चले गए हैं. तो उस बच्चे को जो उनके साथ हैं, उसके पास कौन सी एनर्जी है देने की? घर का पूरा वायुमंडल कैसा हो गया है? दर्द में. वी हैव टू स्टॉप एंड आस्क आवरसेल्फ, टिल व्हेन विल वी लेट दिस पास्ट influence my present. I cannot do anything about it except for accepting the situation.
1: What to do then? Okay, one realization hits. I just hope a lot of people watching, because this is something actually one can empathize with, you know. Samajh mein aata hai, dard bhi genuine tha. Aur ab ye realization, jab facts saamne aate hain, ki ye hai, ab aap agar apne aap par kaam karne ke liye tayar hain, to kya karein?
0: Hame ye pata hai ki याद तो आती है, यू नो हम कहें भूल जाएं उसको तो वो नहीं होता, लेकिन एक है प्यार से याद, दूसरा है दर्द से याद. नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही याद आती तो याद इज़ फॉलोड बाय दर्द. कई बार लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी मेमोरीज थी, हमने बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताया, तो वो समय को याद करके हमें अच्छा लगता है. लेकिन एक्चुअली क्या होता, जैसे ही वो अच्छे वाले सीन्स हमें याद आते, हमें उन क्षण बहुत अच्छा लगता, एंड नेक्स्ट क्षण हम दर्द में चले जाते कि अब वो सीन्स नहीं है,
1: क्योंकि अब वो नहीं है, यू नो, वो पूरा वो रोना,
0: वो एक्चुअली वो अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट यू क्रिएटेड हैप्पीनेस और यू क्रिएटेड लव, यू स्टिल क्रिएटेड पेन. तो ये हमें याद रखना होगा कि ये दर्द जो हम बार बार जस्टिफाइड कहकर क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर तो इम्पैक्ट डाल ही रहा है, मेरे साथ अब जो आत्माएं हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट
1: तो कोशिश क्या करें कि वो जो पुरानी गुड मेमोरीज हैं
0: उसको जब भी याद करें, नहीं उनको जब भी याद करें, याद तो आती है, याद जब भी करें, वी कॉन्शियसली सिट एंड सेंड वाइब्रेशंस ऑफ लव कि यस आई अंडरस्टैंड योर समवेयर एल्स, आई विश दैट यू सेटल देयर, एंड आई सेंड यू वाइब्रेशंस ऑफ लव, वाइब्रेशंस हम नहीं कहते एक मिनट

0: उन आत्मा को शांति का दान भेजे, उस आत्मा की शांति के लिए नहीं हवन करते हैं, क्या करते हैं उस आत्मा की शांति के लिए, लेकिन उस आत्मा को शांति ये सिर्फ करने से नहीं मिलेगी, वो आत्मा को शांति कब मिलेगी,
1: जब हम
0: शांत रहेंगे। हम अगेन सी हाउ वी हैव बिकम, हम शांति भेजने के लिए भी करते हैं, वी आर डूइंग थिंग्स, कुछ भी करने से शांत, अगर मैं रो रो कर हवन कर रही हूँ, हवन नहीं पहुँचेगा उधर, वो तो फिजिकल है, क्या पहुँचेगा,
1: मेरा
0: दर्द पहुँचेगा। तो उस आत्मा की शांति के लिए हमें क्या करना होगा, हमें शांत रहना पड़ेगा। दैट्स द ओनली वे, एंड दैट्स वाई वी हैव टू एक्सेप्ट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। एंड जब भी याद आए, वाइब्रेशंस ऑफ लव, पीस एंड पावर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: एंड एक्चुअली हम जितना पीस, पावर और इस लव की वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो हमसे ही होकर गुजरेंगे। तो दिस एक्चुअली वी कैन ट्राई इट आउट।
0: एक्चुअली सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दर्द क्यों क्रिएट करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ मुझे नहीं, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आत्मा का मेरे साथ इतना ही समय का पाठ था, अब उनका पाठ कहीं और है, और जितना हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेजेंगे, वो उस पाठ में बहुत अच्छा अपना जीवन अपने परिवार के साथ, अपने नए शरीर में, अपने नए रोल में बहुत अच्छा बिताएंगे। एंड एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पेरेंट, हमारी शुभ भावना हमेशा क्या होगी कि वो बच्चा जहाँ भी है वो वहाँ पर बहुत सेटल्ड।
1: आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वे टू लुक एट इट। कोई बात, कोई सवाल मन में है, आप ज़रूर हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे को हमने अपने साथ लिया है। सिस्टर शिवानी, ये जो प्रोसेस है, ये बिना साइलेंस में बैठे हम नहीं अनुभव भी कर पाएंगे, तो हम चाहेंगे कि अगर आज कुछ शेयर करें।
0: सबसे पहले अपने आप को देखें, इस शरीर का मालिक, इस शरीर को भी चलाने वाली शक्ति, दैट प्योर कॉन्शियंट बीइंग शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग। My peace is my creation. It is not dependent on those who are with me, and it is not dependent on those who have left. I can create it right here in the present moment. And as I create it, it flows out from me. Shanti ke vibrations. मुझ आत्मा से निकल बाहर चारों तरफ फैल रहे हैं, और ये उन आत्माओं तक पहुंच रहे हैं जो आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन संबंध तो है, आत्मा का आत्मा के साथ संबंध, और ये संबंध स्नेह, शांति और शक्ति का है। I send out vibrations of peace and love to that soul. Om Shanti.
1: Om Shanti. Thank you so much. बहुत कुछ हम अभी तक अपने दर्द के लिए करते आए हैं, आज ये प्रयास भी करके देखें और फिर देखें कि कैसा हम महसूस करते हैं। आपसे अभी विदा लेते हैं। अवेकनिंग में आगे भी बहुत सी बातें होती रहेंगी। ओम शांति।

0: पूरी आटा साटा।
1: राम राम भाई, राम राम। तबीयत
0: राम राम कंचन, राम राम। और भाई तबीयत ठीक है?
1: पानी तो सब ठीक है, पर मारे तो काई है भाई। मन में पंख लाग गया जब मैं सुनी कि राजस्थान हाई कोर्ट रोक लगा देनी है आटा साटा पे। तो
0: हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई थू।
1: हाँ,
0: आटा साटा उम्र
1: उम्र
0: भर
1: भर का
0: घाटा,
1: घाटा।
0: यह प्रथा है गणी ही बुरी। तो बिल्कुल यह बुरी प्रथा है और बहुत अच्छो की दो। तो पहले तो घावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु और स्वागत करा। हाँ, आप सुन रहे रेडियो मधुबन,
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो।
1: मुस्कुराता रहो।
0: तो अने कार्यक्रम में श्रोता बंधुओं ने आज आपा यो ही केवा छावा आज आटा साटा री बात करा है, क्योंकि आटा साटा पे आपा देख रहे हैं राजस्थान रा मायने घणो टाइम हो गयो, या रस्म चालिया ने या परंपरा चालिया ने।
1: हाँ, आटा साटा एक प्रकार से राजस्थान के अंदर एक परंपरा ही मान लो,
0: हाँ, जिन्हें आपा
1: है
0: कुप्रथा भी कह
1: वो
0: सका।
1: प्रथा है। परंपरा
0: हाँ
1: का ही परंपरा तो अच्छी होया करे, पर
0: हाँ
1: है ना, कहिए कुप्रथा है। और
0: बिल्कुल।
1: आटा साटा में एक ही परिवार बर्बाद नहीं हुआ, एक साथ एक की कमी ने दो परिवार ने भोगनो पड़े।
0: वो सही बात है। देखो आपा राजस्थान की बात करा, अभी मैं विशेष करण गांवरी बाता की बात करा आपा, ठीक है? तो गांवारा महीने ज्यादा प्रथा है, या शहरा में तो फिर भी अत्रो कोई ध्यान नहीं देवे, आटा साटा बहुत कम होवे, लेकिन गांवरा महीने तो बस यो ही है कि आटा साटा में ही ब्याह करनो, भले तो बड़ा भाई की छोरी का एवजे काका की करानी, या अगर सगा भाई बहन वे तो भाई बहन की।
1: बिल्कुल सही बात है। मतलब ज्ञान मान ले कि कई बार तो संबंध ही हुआ है आटा साटा के बिना,
0: हाँ, कतरा का छोरा कुआ जावे। हाँ,
1: कुंवारा रह जावे, क्योंकि भाई बैठे का ही है भी, परिवार में लड़की नहीं है मान ले, है और तो कही है उन ही है
0: सही बात
1: यार।
0: है।
1: और कई बार या को बहुत ज्ञान मान ले दुखद स्थिति सो
0: अरे
1: परिवार ने
0: दुखद
1: गुजरनो
0: स्थिति
1: पड़े।
0: घना परिवार में वेवे, और कटे कटे देखो लोग अच्छा भी होवे, कोई डिमांड कोनी होवे,
1: हाँ
0: कोई डिमांड कोनी हो। मैं अपना आबूरा पास में एक गांव में गया हा, तो
1: हाँ
0: बटे बात की दी महिलाओं, तो वे क्यों बेन जी हमारा गांव में भले लाख बुराई देखो, पर माँ के दहेज री प्रथा अटे कोनी। माँ के जो देवे खुशी खुशी ले लेवे, कोई कई डिमांड कोनी करे कि भाई यो नहीं दीदो वो नहीं दीदो, माँ को मान नहीं राख्यो, माँ को सम्मान नहीं राख्यो, वो कई बात कोनी। तो मैं बहुत बढ़िया, देखो ईगो बढ़कर और कई छावे, जो पूरा गांव री लेडीज बाता कर रही कि माँ का अटे दहेज कोनी मांगे।
1: अच्छा, आपने आबू रोड की माई
0: हाँ,
1: नहीं
0: आबू रोड का माई नहीं, अपना एक गांव है, नाम नहीं बतावा पर पास में ही है। तो मने अच्छो लाग्यो कि देखो यह भी एक अच्छी बात है, पूरा गांव खाली एक
1: बहुत
0: समाज
1: अच्छी।
0: नहीं, हर समाज की
1: हाँ
0: महिला कह रही कि माँ के अटे कहीं भी नहीं, माँ परण ना आया माने कहीं भी नहीं दी दो।
1: ओ
0: हाँ ठीक है, 5 जोड़ी कपड़ा दीदा जो लेना
1: हाँ,
0: गया।
1: जो माता पिता की एक मन
0: हाँ
1: से इच्छा हुआ बस
0: हाँ
1: खाली
0: मासू जो
1: मात्र।
0: इच्छा ही दे दी दो, पर अटिनो यूनी क्यों योनी लाइन वो नहीं लाई। मैं क्यों बहुत बढ़िया और शिक्षित है, यूं नहीं है
1: हाँ
0: कि हाँ अनपढ़ गांव है, शिक्षित है। तो यह बात देखो, हर गांव की विशेषता तो कहीं कहीं होया ही करे।
1: वो बिल्कुल सही बात है कि देख जियान मन खासुई तो गांव बने,
0: हाँ बिल्कुल।
1: मन
0: हाँ
1: खासी गांव बने, जान हर मनक की अलग अलग विशेषता हुए, यानी हर गांव की भी अलग महक हुए, खुशबू हुए, विशेषता हुए।
0: बिल्कुल, पर वणी गांव रही विशेषता यह है कि हर जोड़ा आटा साटा में
1: ओ
0: अच्छाई है तो बुराई भी है।
1: हाँ,
0: और
1: देखो भाई अठे मान ले मारो छोरो है तो बठे सु मैं लाऊं तो मने देणो भी पड़सी,
0: देनो भी
1: ये
0: पड़सी
1: वास्ते ना लेणो
0: न
1: ना
0: देनो।
1: देणो, यानी दहेज प्रथा के मामले में तो आटा साटा को और रोल है।
0: हाँ यो रोल है, तो ठीक है, खुशी खुशी कर रहे हैं जदी तो कोई तकलीफ नहीं, पर
1: बस
0: यू है कि कटे मान लो नी बनी बटे
1: हाँ
0: घनी मुश्किल हो जावे। वणी घावरे में बात बताऊं, वणी घावरी बेटी सामने वाला के दे रखी और सामने वाला की बेटी अटे राख रखी, ठीक है? अणी गांव में सामने वाला की बेटी ने हाथा में रखे, तीन टावर भी हो गया, हाथा में रखे अच्छी रखे, कोई
1: अच्छा
0: शिकायत
1: अच्छा
0: नहीं, कोई सब आप आपका हिसाब उरे वह। पर यहाँ की बेटी जाने सामने वाला के दीदी वे गणी में न हैरान करे, सारो तो काम करावे, काम करे बावजूद भी पति मारपीट करे
1: ओ
0: और सास गाली गलौज करे,
1: बताओ तो कौन रहे?
0: हाँ तो वाह के वह अबे मारे नी रहनो और घनी बार मार काड़ियो कई पति दारू पीवे।
1: ओ हो
0: और शराब भी तो एक बहुत खराब आदत है ना।
1: खराब आदत है और वहां में तो कोई विवेक तो रहे नहीं,
0: विवेक शक्ति खत्म हो जावे।
1: खत्म हो जावे
0: और बड़ी टाइम पे वो कतरो मार रहे हो भी नहीं ठाको नहीं होवे।
1: हां बड़ी बात तो आ है।
0: तो एक बार तो फ्रैक्चर कर दी, दो हाथ की हड्डी तोड़ दी थी।
1: ओहो
0: तो बेचारा माँ बाप लेन आया क्योंकि अब कर ही कौन काम,
1: कौन काम करे।
0: तो बाचा रानी गांव में लेन आया, लेन आया बिना हाउ की दी, दो महीना तीन महीना राखी मैं जॉइंट वे सब की दो। पाचा वो जमाई तो आयो ही है कि भाई मारी गलती होगी और अबे मैं शराब नहीं पीऊ, अबे भेज दो। माँ बाप देखियो चलो सुधरवा को एक मौको देवो, ले गया बाची भेजी। तीन टाबर पढ़ाई बिगड़ी वाकी क्योंकि तीन टाबर ने भी सास क्यों मेरे को नहीं राखू। तो दो तीन महीना अटे रहा, पाचा टाबर वटे गया ठीक है, वटे 15 एक दिन तो हौरिया और पाचा वो तो शराब पीवा की आदत तो कदी छूटे गई
1: छूटके
0: और पाची मार पीट के दी और अतरी मार पीट के दी वहा हाथ की जो हड्डी पहली फ्रैक्चर भी वहा पाची वेगी।
1: ओहो
0: पाचा माँ बाप के अबे को नहीं भेजा,
1: सही बात।
0: वहां भी क्यों अबे मैं हावरा में
1: अबे मैं नहीं जाऊं।
0: तो सासू माँ के वह थू नहीं रहे तो थारे तीन ही छोरा छोरी ने ले जा। तो तीन ही छोरा छोरी ने लेन पियर आएगी ठीक है, अबे वाकी बेटी अनी गांव में कई तकलीफ को नहीं और वाभी कतरो ही समझायो कि भाई हौ राखो था के कई तकलीफ है,
1: कई तकलीफ है
0: फिर भी नहीं समझा। और अबे वे के वे के मारो घर टूटियो तो चल थू आ जा पाची, बेटी ने के वे थू आ
1: यानी सोचक भी वे परेशान हुए।
0: हाँ अरे भाई था तो मार रहे पर इन्हें तो आराम हो खाता में राख
1: रहा, खाता में राख रहा
0: या केवे
1: मतलब जबरदस्ती अपनी बेटी को भी घर बिगाड़े।
0: हाँ या केवे मैं नहीं आऊ, मैंने कई भी तकलीफ को नहीं अटे
1: बोलो,
0: मैं नहीं आऊ मारो घर को नहीं तोड़ू। तो माँ बाप आन बेटी का लारे अटे मार पीट के दे पिताजी और उन्हें खींचन ले गया, कथा ना आनो ही पड़ी तन शर्म नहीं आई रही तारी भाभी अटे आ गई तो तू अटे क्यों बेटी सके। अरे मन का के देखो विवेक शक्ति खत्म हो जावे जो देखो था तो पराई बेटी ने दुख दे रहा और यह जो ताकि बेटी अनी घर में है बिना हाथा में राख रहा तो वो थाने फर्क नजर नहीं आ रही हो,
1: यानी एक घर बर्बाद हुआ कि लारे लारे जबरदस्ती दूसरो घर भी बर्बाद कर।
0: हाँ तो वे जबरदस्ती लेन गया, अब लेन छाई तो टाबर की पास में रहे, टाबर ने भी लेन गए अब वहां के बेंची मारे रेणो को नहीं, मारे तो मारा हावरा में रेणो क्योंकि मारे तो आदमी भी समझदार है और मारा हाउजी भी माँ की ज्ञान रखे, मारो घर में क्यों तोड़ू
1: क्यों तोड़ू।
0: पर
1: तो माँ बाप की बुरी,
0: हाँ
1: माँ बाप और भाइया की बुरी।
0: हाँ भाइया की बुरी तो वो भाई की के वक्त थू परी की तो थारा ही हाथ पग तोड़ दे थारा हराम परी के तो
1: बोलो।
0: अरे भाई तू दारू पीन थार लुगाई ने मार रहे है बेन का उपरे दादागिरी बता दो ही घर तोड़ रहे। आप तो जाता रहे वहां घावरा महीने आज भी कई वाको तोड़ने
1: फैसला नहीं हुआ।
0: हाँ फैसलो कोई हुआ और वाह वाह का घर है और वाह वाह का घर है और वह बेचारी रोवे है हमारे हार रहे जानो हमारे छोरा छोरी की जिंदगी बगड़ जाए और वह तो मजदूरी कर रही, वह तो भाई हो चली दो जानो को नहीं, दो बार हड्डियां तोड़ दी थी कौन जावे।
1: सही बात है
0: सुधरे को नहीं
1: और पढ़ी लिखी है नहीं की आप ही फैसलो ले ले।
0: देख कंचन एक दौर एडो हो की बेटा नहीं पढ़ाता भी कम हा और पढ़ती नहीं पढ़ती शादी करा देता कि भाई मांडो करो और भेजो बेटी ना हावरे। तो अबे वे बेटिया मंज धार में आ जावे यदि एड़ी स्थिति खड़ी हो
1: बस बस
0: ना अटीने जा सके ना अटीने जा सके
1: सोच सका।
0: अगर साल दो साल में एड़ो हादसो हो जावे तो चलो पाछे दूसरी जगह पे ही ब्याह को हो जाए। अबे तीन टावर ने लेन एक माँ की इच्छा नहीं होवे एक वाकटी जावे
1: बेचारी पहले तो समझौतो करती रही हुई।
0: हाँ हाँ पहली खूब समझौतो की तो अभी सुधरी अभी सुधरी माँ बाप भी कोशिश करे भाई तो थोड़े एडजस्ट हुए
1: एडजस्ट
0: पर बच्चा यदि पानी सिर ऊपर परो जावे तो डिसीजन लेनो ही पड़े। अब आके 17 साल हो गया तीन टाबर ये थोड़ा मोटा हुआ लाग गया काले यहाँ के ऊपर कई असर भी
1: कई असर
0: आदमी उधर नहीं रहो आदमी नहीं उधर रहो पर सासू ने छावे मैं तो हो रखू।
1: हाँ कम से कम एक तरफ हो सारो रहे।
0: हाँ अगर वह प्रेम उठती तो भी वह अटकती
1: तो भी वो अटकती और देखो भाई के कई बार कई हो जावे कि आदमी सोचे या नहीं कि भाई यहाँ सास से मारो काम थोड़ी चालनो है।
0: हाँ
1: यानी बुद्धि जागे।
0: हाँ
1: है ना
0: पर फिर भी देखो तीन टाबर ने लेन अगर अपना घर में रेवा तो किकोक तो प्रेम छावी है अब वही दुधकारन वही दुधकारन चीज ही नहीं देवे घर में कई बनाओ कई खाओ।
1: सही बात है
0: तो अब मजदूरी का काम कर रही मजदूरी कारण तीन ही टाबर ने पाल रही और मस्त है बाकी बहन जी मुँह मेहनत तो नहीं घबराऊ मेहनत ही कितनी ठेठ हुई लोग आके खेता में काम करूँ और जो मजदूरी मिले वे को मारे टाबर को मैं चलाऊ थोड़ा के माँ और भाई भी पूरा करे क्योंकि भाई को भी घर टूट गयो।
1: हाँ,
0: तो माँ और भाई भी थोड़ा पूरो करे कि भाई मारी बहन टाबर है तो कहीं नहीं याने कटे भेजा।
1: यहाँ की विकट स्थिति हो जावे यानी आटा साटा में
0: हाँ
1: भी
0: आटा साटा में टूटे बटे जबरदस्त टूटे
1: जबरदस्त
0: और जटे समझदारी चल रहे बटे समझदारियों भी चल
1: हाँ
0: रहे
1: कि भी मैं परेशान करूँ तो देखो मारी बहन ने भी परेशान कर
0: हाँ
1: सी।
0: यो समझ जावे जदी तो बात ही खत्म हो जावे पर नशो एडी चीज है कि सब विवेक शक्ति खत्म कर
1: खत्म
0: देवे।
1: हो जावेगा।
0: चल भाई कंचन एक आछो गीत सुना दा वेका बाद पाचा आप लौट नावा हाँ यार जो कार्यक्रम गावरी बाता में सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो
0: रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: काट पड़ गयो छोरियारो छोरा फिरे कमारा।

0: वाह भाई, बहुत चोखो गीत लाग्यो है।
1: हाँ बहुत बढ़िया गीत है यो, यहाँ पर सुनावा।
0: वही मैं सोच रही भाई, कतरो गंभीर विषय हुआ गयो। आटा साटा में काई काई यूज है, आटा साटा का कतरे हानि समाज
1: अरे
0: में
1: गणी
0: बोलियो
1: हानि होवे
0: है
1: अपना श्रोता बंधु रो पाछो स्वागत करा, नहीं तो कई दो ही सहेला बात करे माने भूल जावे। तो
0: ना।
1: गावरी बाता कार्यक्रम में आप सगला जना रो खूब खूब स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो मधुबन,
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो।
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन आपा बात कर रहे हैं कि देखो वो घर टूट्यो है, और कटे कटे समझदार लोग भी है,
0: हाँ।
1: कटे कटे समझदार है। वो एक जगह पे मैं देखो मनीष गांव में घना एग्जाम्पल है, क्योंकि आपको गांव ही एड़ो आटा साटा में ही है।
0: देख भाई, कही है कि पूरे गांव में जनरली एक ही समाज के लोग रहे हैं, और एक ही समाज विशेष के अंदर ज्ञान की प्रथा हुए है। ज्ञान राजस्थान के अंदर देखो, मैं देखी हूं कि भी पुरोहित लोगा में ज्ञान की प्रथा है, यानी कुमार लोगा में। तो मान लो पूरे सगड़ो गांव ही ये समाज पे है, केंद्रित है, तो भी पूरे गांव में ही ज्ञान की प्रथा है।
1: बिल्कुल। और कटे कटे तो देख ले केड़ा केड़ा समाज में तो आटा साटा वगैरह मांडो ही नहीं होवे, ब्याह भी नहीं होवे।
0: ब्याह भी नहीं हुआ।
1: बात चाली विका पहले आपके है छोरी है देवाने, यही
0: हाँ,
1: बात चाली।
0: यानी लेन और देन दोनों चीजा।
1: हाँ, भले आप बेन की छोरी दो, भले भाई की छोरी दो,
0: अच्छा,
1: आप की भी साटा में दो,
0: ओहो
1: हाँ, पर अगर छोरी लानी है हामे वाला की तो आपके पाचे देनी।
0: भाई, यहां तो एक महिला ने वस्तु मान लिया भी
1: हाँ वस्तु ही मान ली दे और
0: है,
1: गई। हाँ कतरी
0: बोलो।
1: बार तो अच्छी आपने जो योग्यता वाली छोरिया में ना जो ही गलत जगह पे पड़ी जावे।
0: बहुत गलत बात भाई।
1: अबे आटा साटा में देख लागी भाई, मारे तो घर में बहू आनी छई जाए, मारी छोरी ने मुंह सामने दे दू और हामे वाला की छोरी लियो, तो कतरी बार लड़को योग्य नहीं वे वे
0: योग्य नहीं हो
1: सामने,
0: पछे
1: और
0: भी।
1: छोरी तो भी अपने बहू छारी अनि वास्ते अपनी छोरी ने खड्डा में दे दीता। अब आनू किस बात सुनो थे ने कंचन, बहुत ताजा ताजा बात ही है। एक समाज है, नाम नहीं ले वहां पर एक समाज में देखियो, पहली बेटा के शादी कराई, ठीक है, तो वह छोरी पियर गी, भाई पियर तो भेजे ही है शादी का
0: हाँ
1: बाद मांडो
0: हाँ
1: लांगवा,
0: सही
1: पियर
0: है।
1: गी विका बाद वा आई को नहीं कि मैं तो नहीं आऊं, कई कारण है, अबे था को नहीं, कोई कहे वा छोरी के कई लारे चालू है जो भी है,
0: हाँ, खैर
1: पर वा
0: वो
1: नहीं आई। ठीक है, अबे माँ बाप देखो कि अबे आपने एक बार को तो भाई वो एक दाग तो लाग गयो ना तो छोरो पनियोड़ो है, अबे आपने छोरी कौन दी, तो वहां के एक छोरा छोटी छोरी है, तो वे अबे करनी तो आटा साटा में ही करनी था कि आपने बिंदनी आ जावे, ठीक है, तो आटा साटा में देख ली। तो अब आटा साटा में वाके छोरी बढ़िया आ रही, पड्योड़ी होशियार समझदार, और ये जो टे दे रहा वो टे छोरो प्राइवेट नौकरी करे 15-1 हजार एक दुकान पे बैठे, और छोरी या के एडी होशियार पड्योड़ी रूपाली और मतलब हर चीज
0: हर
1: होशियार,
0: चीज में योग्य
1: फिर भी वाके बिंदनी छारी अणी वास्ते वे सामने कहीं नहीं देख रहा, नहीं तो
0: बताओ।
1: घर है नहीं वर है। भाई देखो के तो वर देखा
0: सही
1: आजकल
0: बात
1: है,
0: है,
1: तो कई छोरो ही देखे।
0: छोरा ही देखा है। वो जमाने तक गया कि आपा घर और वर की दोनों की एक
1: हाँ,
0: बात देख लेता,
1: नहीं
0: चला
1: देखा
0: लेता।
1: वो तो कई के वर माती घर था है, गुजराती में कहावत है, तो छोरो होशियार भी तो तुझे घर कर दी,
0: दूसरा घर बनाया।
1: पर न तो छोरो होशियार है न घर दमदार है, पर वहां के स्वार्थ है कि माँ के बिंदनी छावे, अबे माँ के ठपको लाग्यो तो माने छोरी कौन दी
0: छोरी कुण दी।
1: स्वतंत्र कह रहा तो, और अबे वहां को वाणु जुलाई में ब्याह है, तो माने समझाया कि देखो था कि छोरी एडी होशियार है तो मल जाए, और था भी थोड़ा कहीं गरीब घर की ले आ जाओ
0: हाँ,
1: छोरी
0: सो तो
1: मिल
0: है
1: जाए।
0: ही
1: हाँ
0: बिल्कुल।
1: पर क्या, नहीं नहीं भली गरीब की पर माने कौन दी, मणि समाज में थोड़े छोरिया की कमी भी गणी है, तो अच्छा अच्छा छोरा ही बनी समाज में कुंवारा बैठा, तो वे
0: अच्छा,
1: का
0: कौन
1: माने कौन दे, देखो फलानो
0: दे।
1: कुंवारो टिकड़ो कुंवारो माने कौन दे, माँ के तो ठपको लाग गयो, पर मैं क्यों था का स्वार्थ की वजह छोरी को थोड़ो तो बचो।
0: सही बात, आपने पेट जाई छोरी।
1: हाँ अणी वजह भी लोग बाग आटा साटा करवा लाग गया।
0: हाँ
1: आपा
0: देखो तो
1: सोचा
0: भाई।
1: आटो साटो बंद हो गयो, गवर्नमेंट भी बंद कर रही है, हाँ वहां की डिमांड कई कोनी, क्योंकि डिमांड कई करे जाकी छोरी मतलब बिंदनी भागी और बाकी आटा साटा में कर रहा, अच्छी पार्टी है अच्छो पैसो है, सामने परिस्थिति अतरी नहीं है।
0: और एक ही परिवार को उदाहरण थोड़ी ना है, ज्ञान का
1: हाँ
0: कतरा परिवार है, ज्ञान की समस्या से जूझ रहा है, जो आटा साटा में गलती एक जना की हुआ है और कई परिवार ने खराब करते हुए।
1: बिल्कुल,
0: मान ले
1: या
0: वो
1: की
0: लड़की दूसरे
1: कोई
0: तीसरे परिवार की लाता, मान लो भैया अपनी नणंद की या की भी बेटी के ब्याह पड़ना तो एक नहीं दो नहीं बल्कि और भी कई परिवार खराब होता
1: हाँ वो
0: है।
1: तो है, पर आटा साटा में ऐसा नहीं है
0: हाँ
1: कि आटा साटा में यूं नहीं होते कि भली बेन की छोरी काले बनियो नहीं बनियो, तो काले बेन को भी जिंदगी भर को वो भी उलानो रही
0: उड़ानो
1: ना।
0: रह गयो।
1: हाँ कि भाई तू मारी छोरी ने फसाई, पर कई पतो फिर भी अत्रु मोह वे आटा साटा में तैयार हो जावे। ठीक है करो, लेकिन आमने सामने देखो तो खरी कि अपनी छोरी के अनुसार योग्य छोरो है कि नहीं है।
0: और वो बात कही है थोड़ी शिथिल होनी चाहिए कि भाई अगर इच्छा है तो वो खो और किने बाध्य नहीं कर सका पा।
1: बाध्य नहीं कर सका। और देखो छोरिया में सहन शक्ति की ताकत देखो, कतर के माँ बाप के सामने कदी नहीं बोले कि भाई मारे आटो साटो नहीं करनो, आज जबकि आज का युग में तो छोरिया खुद पसंद करवा लागी।
0: खुद पसंद करवा लागी। लेकिन देख भाई अठा मैं थोड़ी सी एक बात यान भी कहूं कि ये जो प्रथा है वो भी समाज में आटा साटा की जट है। नारी शक्ति अति जागरूक होनी, चुपचाप से हर बात ने एक्सेप्ट कर ले,
1: नहीं
0: स्वीकार कर
1: पर
0: ले।
1: जटे आटा साटे बटे तो आटा साटा का है ही नहीं, प्रथा ही नहीं है, फिर भी अबे वेवा लाग गई क्योंकि छोरिया की कमी हो, छोरिया मिल नहीं रही। हाँ छोरिया नहीं मिल रही अनि वास्ते आटा साटा कर रहा के पहली तीजो तगड़े की कोशिश की थी, पर तीजा तगड़ा में सेट नहीं हो, तीजा तगड़े में यू है तीन पार्टी खड़ी वे वह। ठीक है मारी छोरी थारा आटे, थारी छोरी दूसरा का आटे, बाकी छोरी मारा आटे
0: ओ
1: तीजो तगड़े शान। अब तीजा तगड़े में वाके सेट नहीं हुआ तो बच्चे आटा साटा मिस कर रहा, आटा साटा में कर रहा, पर लड़की को त्याग देखो कबा विकब। माँ बाप को घर मांडवा का वास्ते, भाई का मांडवा का वास्ते खुद त्याग कर काढ़ियो, के सामने वाले कैस नहीं देखियो। बाकी छोरिया भाई जो होशियार है, एक्टिव है, पढ़ोड़ी है और काम कर रही, पार्लर को कोर्स की दो सको है तो पार्लर को काम कर रही, फिर भी नखरा नहीं किता। एड़ा छोरा कलारे में क्या पड़ो,
0: मैं क्या जाऊं।
1: क्योंकि कलारे सेट ही नहीं वे घना ही अड़ोस पड़ोस घना ही कह रहा करे ये कई कि दो है, कई छोरो ही नहीं देखो दो छोरी का लिए, फिर भी देखो छोरी को त्याग देखो, त्याग
0: नारी तो देखो हर जगह त्यागी करे।
1: ही करे। बिल्कुल बेटा तो ये तो आज का समय की बात है, आज बहुत कम हो रहा है, पर बाकी जनी समाज में आटा साटा कोई रिवाज है भी, मैं तो त्याग ही त्याग है।
0: मैं तो त्याग ही त्याग है। खैर तू और मैं सरकार को हाई कोर्ट को ज्ञान के निर्णय में बहुत खुश हैं
1: हाँ
0: कि
1: आपा
0: भी
1: तो खुश है ना भाई, का अच्छा है
0: हाँ?
1: बहुत बढ़िया है। अरे मैं तो कहूँ छोरा ने एड़ी शिक्षा और संस्कार दो, एड़ो होशियार करो कि आपके हमें चालन सगाई आवे,
0: सही बात है।
1: काबिल बढ़ाओ ना।
0: हाँ आटा साटा ज्ञान की बात ही नहीं हुए।
1: हाँ
0: वो तो कही है वास्तव में महिला को एक दमन है,
1: दमनी है,
0: शोषण है
1: हाँ
0: कि भी
1: शोषण ही है।
0: बिना तो इच्छा हो वीक खूंटे पे बांध देवा
1: हाँ
0: है।
1: अरे कंचन पहले यूस कहता, अरे छोरिया तो घाई है, घाय ने जटे बांधे वटी बंधी रही,
0: गठे
1: खूटा
0: बंदी
1: पे
0: रहे।
1: बांधो वटी बंधी
0: सही
1: रही।
0: बात है, गाय को नाम दे दो ताकि
1: हाँ
0: चुपचाप है वो
1: हाँ
0: स्वीकार कर ले कि मैंने गाय बताई, मैं सीधी
1: बिल्कुल
0: हूं।
1: हाँ। तो सरकार को बहुत अच्छा
0: निर्णय है।
1: निर्णय है कि यह प्रथा खत्म हो रही है, तो बहुत बढ़िया, आपा
0: बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: अणि निर्णयो राजिया। और चलो भाई कंचन टाइम भी हो गया जावा को। तो आवजे भाई, राम राम।
0: राम राम।
1: लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए।

0: बन गए जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है, आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम लोग ने कल सुना था कि सफलता की चाहत क्यों है, तो इस विषय पर काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और आशा करूंगा आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद हम लोग आज जो विषय है हमारा वो है कि मैं ही सफलता हूँ। ये एक थोड़ा सा यूनिक विषय है जो आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो आशा करूंगा आपको कल और उसके पहले वाले एपिसोड्स भी अच्छे लग रहे हैं। सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस प्रोग्राम में हम अलग अलग विषय को लेकर बातें कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ फिर से राजेश जी उपस्थित हैं और वो मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी ध्यान से सुने और आप अगर चिंतन करते हैं, मनन करना चाहते हैं, आप अगर टेंशन फ्री होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आप शांति प्रेम के साथ जीना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये जो एपिसोड है ये बहुत ही काम का होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। राजेश जी हैं, राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, मजे में। जी,
0: और मैं चाहूंगा कि आज जो आपने विषय चुना है मैं ही सफलता हूँ, ये विषय क्यों चुना और इसके पीछे का रीजन क्या है बताइए।
1: मैं ही सफलता हूँ
0: जी,
1: लोग तो सफल होना चाहते हैं लेकिन ये विषय मैं ही सफलता हूँ, इसको थोड़ा स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी,
1: मैं ही सफलता हूँ मतलब कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो सफल है।
0: हाँ।
1: और अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, मैं ही सफलता हूँ माना बिना किसी शर्त के, बिना किसी आधार के मैं जीवन में सफल हूँ। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि सफलता जो है मेरा वो बर्थ राइट है। लेकिन इसको हम कैसे समझें, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात की,
0: बिल्कुल,
1: कि एक व्यक्ति जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है और अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाता तो उदास हो जाता है, या डॉक्टर बनना चाहता है, या जो भी उसने प्रोफेशन चूज किया है उसी प्रोफेशन में अगर वो नहीं जाता तो सारी उम्र उसके मन में हमेशा ये रहता था, मैं तो ये बनना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो ये कर नहीं पाया। और बहुत सालों तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कई बार कहते हैं कि टाइम इज़ द ग्रेट हीलर, लेकिन जब तक वो टाइम उनको हील करता है वो उनके जीवन के वो क्षण, वो महत्वपूर्ण क्षण वो अपने खो देते हैं। क्योंकि उनको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अपने प्रोफेशन में आनंद नहीं आता, क्योंकि अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर जो उनका ड्रीम था दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं। तो हमने जाना पिछले प्रोफेशंस में कि एक्चुअली अगर वो इंजीनियर या अपने प्रोफेशन में चला जाता तो उसको क्या मिलता। अल्टीमेट उसको चाहिए खुशी, आनंद, प्यार, शांति, लेकिन ये दूसरे प्रोफेशंस में जाकर भी पाई जा सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो हमें ये था कि ये प्रोफेशन मिलेगा तो ही हमें ये गुण मिलेंगे, लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं। ये ऐसा क्यों नहीं है इसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि मुझे याद है जब मैं विदेश में यूएस में पढ़ा रहा था, तो एक मेरी स्टूडेंट थी, मैंने उनको पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहती हो। तो उसका एक बहुत अच्छा उत्तर था कि मैं जिंदगी में जो भी बनूँ, वॉट एवर आई बिकम इन माई लाइफ, चाहे मैं फोटोग्राफर बनूं, चाहे मैं मॉल में मैनेजर बनूं, या मैं मॉल में काम करूं, या मैं कारपेंटर बनूं, जो भी मैं जिंदगी में बनूं, लेकिन मैं हमेशा जीवन में खुश रहना चाहती हूं। तो अल्टीमेट एम हमारा ये है, हम प्रोफेशन के पीछे ना दौड़ें, उसके कारण अपने जीवन को खराब ना करें, दुखी ना हो जाएं, सुसाइड की तरफ ना जाएं, दूसरों को देख कर उदास ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मुझे लगता है कि आपने जो एग्जांपल स्कूल स्टूडेंट का बताया आपने कि मैं अपने जीवन में कुछ भी बनूं लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि स्वाभिमान है, एक आस्था है जहां पर हमें इस लक्ष्य को लेकर चलना है। क्योंकि हम लोग अगर किसी स्टेटस को लेकर चलते हैं तो वो तो टेम्प्रेरी रहता है और उसके आगे पीछे इर्द गिर्द जो है बहुत सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो है हर बार मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा है कि कुछ भी बनूं मैं, लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूँ। ये बहुत ही अच्छा जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस जिसको कह सकते हैं, स्वाभिमान की बात कह सकते हैं, ये आपके लिए स्वभाव कह सकते हैं, इस तरह का स्वभाव जो है आपको खुश रखेगा हमेशा। तो आइए आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आज हम लोग मैं ही सफलता हूँ इस विषय को लेकर बात कर रहे हैं, राजेश जी भी हमें बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके बताया। और इंडिया में फिलोसफिकली ये सारी बातें जो है, बच्चों को माता पिता हो या अपने दोस्त हो, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करे, तो बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बन जाती है हमारे साथ में। माता पिता सोचते हैं कि हाँ मेरा लड़का डॉक्टर ही बनना चाहिए, है ना, और दोस्त भी कहते हैं अरे तू स्पेशलाइजेशन कर लेना डॉक्टर के साथ साथ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं जिसके वजह से, और फिर वो अचानक अगर वो कहीं सेट नहीं हो पाए तो उसको लगता है कि मैं अब मेरा जी के जीवन जीवन जी के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी जो गलत धारणाओं की वजह से भी, गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से भी चीज़ें जो है हमसे मुश्किल कर देती हैं हमारा जीना। तो आइए, मैं चाहूँगा कि इंडियन फिलॉसफी में और जो हमारे भारत के विद्यार्थी हैं, तो उनको कैसे आप बताएंगे कि जीवन में सफलता मैं ही हूँ।
1: इसका अपोजिट देखें कि हमें खुशी ही चाहिए, आनंद ही चाहिए, प्यार ही चाहिए, शांति ही चाहिए। हम जब कॉलेजेस में गए, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, स्टूडेंट्स को गेम खिलाई एक, उनको बोला कि आप ये पेन पास करो अपने दोस्त को, पहले बोला खुशी से पास करो, फिर बोला गुस्से से पास करो। ऐसे चार स्टूडेंट्स को एक एक करके बोला पास करो,
0: जी, जी,
1: फिर बोला अभी शांति से पास करो, फिर बोला ईर्ष्या से पास करो। फिर उनसे सवाल पूछा कि आपको वैल्यूज अच्छी लगती हैं या एंटी वैल्यूज अच्छी लगती है, तो उन्होंने बोला हमें वैल्यूज अच्छी लगती हैं। तो उनको पूछा गया आपको ईर्ष्या, दुख, अशांति, क्रोध अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा लगता। तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपको खुशी, शांति, आनंद, प्रेम ही क्यों अच्छा लगता है, दुख, ईर्ष्या, क्रोध, अशांति, उदासी क्यों नहीं अच्छी लगती। तो उनके पास इसका कोई भी उत्तर नहीं था। तो इसका उत्तर कहाँ है? इसका उत्तर ये है क्योंकि ये हमारे मानवीय मूल्य हैं और हम इन मानवीय मूल्यों के साथ ही पैदा हुए हैं। मानव मानव कहलाता है क्योंकि मानवीय मूल्यों के साथ उसका जन्म हुआ है, ये हमारा बर्थ राइट है। हमें कोई प्यार करना सिखाता नहीं, एक माँ नेचुरली अपने बच्चे को प्यार करती है। हमें ये चीज़ें नेचुरली अच्छी लगती हैं बिकॉज वी आर बॉर्न विद दीज वैल्यूज, हम इन मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। उदाहरण के साथ समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर, साइंटिस्ट ने बताया कि बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक सेल से बना होता है जिनको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं तो पता लगता है कि हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स का बना होता है। कई तरह के सेल्स होते हैं, जैसे मसल सेल है, नर्व सेल है, कई तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को बनाते हैं, लेकिन इन सेल्स को भी कौन बनाता है? इन सेल्स को कहते हैं एक विशेष तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे मिलकर के हमारे शरीर के सेलों को बनाते हैं। और हमें जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन भोजन में भी हम क्या खाते हैं? आप गेहूँ लेते हो, आप फल लेते हो ना, आप सब्जियां खाते हो, उनमें भी क्या होता? उनमें भी वही कंपोनेंट्स हैं जो आपके शरीर में हैं। और हर एक सेल में जितना प्रोटीन है उतना ही आपके भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, हर एक सेल में जितना कार्बोहाइड्रेट है उतना ही आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो सारे दिन में जो हम भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं तो 70% जो है वो वाटर होना चाहिए। तो जो हम बाहर से लेते हैं उसी का हमारा शरीर बना हुआ होता है, बचपन से ही हमारा शरीर उसी का बना है, इसीलिए बाहर से हमें वो चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, हम बाहर से मांगते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, प्रोफेशन के थ्रू एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों के व्यवहार से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम इन्हीं गुणों के साथ ही पैदा हुए हैं, ये मेरे निज गुण हैं, इनको हम कहते हैं हमारे अनादि अविनाशी गुण, दीज आर द इनेट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इन वैल्यूज के बिना हम मानव नहीं कहला सकते और मानव जिंदा नहीं रह सकता। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर, माँ अपने बच्चे को रोज भोजन कराती है और बड़े प्यार से खिलाती। मान लीजिए किस दिन बच्चा स्कूल में लेट हो गया और लड़की लेट हो गई और माँ को शक हो गया इसने कुछ गलत काम किया होगा, तो बेटी तो रुक गई थी स्कूल में टीचर से बात करने, क्योंकि कल उसका एग्जाम था और टीचर से वो डिस्कस कर रही थी कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उनसे समझना है, लेकिन वो लेट होगी। लेकिन माँ ने जाते ही गुस्सा कर दिया, खाना तो खिलाया, भोजन तो वही खिलाया, लेकिन आज गुस्से में खिलाया तो पेट तो आपका भर गया लेकिन मन नहीं भरा।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्यों? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त भले हमें कुछ ना दें लेकिन प्यार तो दें, कम से कम प्यार से बात तो करें। जैसे कई बार हम अपने किसी दोस्त से धन मांगने जाते हैं तो कहते हैं भले वो धन नहीं देता लेकिन मेरी रिस्पेक्ट तो करता, इज्जत तो करता, मेरे से प्यार से बात तो करता। इसीलिए जब कोई गलती करता है तो कहते भले मेरे को समझाते लेकिन मेरे को प्यार से बताते ताकि मैं उसको परिवर्तन कर पाता। तो इन मानवीय मूल्यों के साथ ही हमारा जन्म हुआ है। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम उसको समझें कैसे, उसको अनुभव कैसे करें, रियलाइज कैसे करें, क्योंकि सफलता मेरा आधार है, क्योंकि सफलता माना ही प्यार, शांति, आनंद, प्रेम। लेकिन वो हमें अनुभव क्यों नहीं होता, हमें वो रियलाइज क्यों नहीं होता? उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमें उसकी टेक्निक नहीं पता, विधि नहीं पता, तरीका नहीं पता है। लेकिन इसके बारे में हम अगले सेशन में, एपिसोड में आपसे जरूर बात करेंगे।
0: चलिए राजीव जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि क्या तरीका है, कैसे हम उस चीज को समझ पाएंगे। आगे हम लोग जरूर बात करेंगे। आपके मन में एक छोटा सा सवाल जरूर होगा कि कैसे ये संभव है। बिल्कुल संभव है, बस उसके लिए जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी जो हमने डिस्कशन किया सफलता मैं ही हूं, इस पर थोड़ा सा आप चिंतन करके देखिए। जो एग्जांपल राजेश जी ने दिया है उस पर बात करके देखिए, अपने आप से बात कीजिए, क्योंकि ये पूरा जो टॉक शो हमारा चलता है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा, जिस प्रोग्राम का नाम ही हमने ऐसा रखा है, ताकि आप जो है सेल्फ एनालाइज करें, सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचें, और जो हमारा मेन मकसद है हमारे जीवन में खुशी, शांति, प्रेम, वो पाए। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें मंथन करके आपको बताया जा रहा है, और आपका भी चिंतन मंथन चले, यही हमारी शुभकामना है। तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या कोट करना चाहेंगे राजेश जी?
1: मैसेज हमारा ये रहेगा कि दुनिया में बहुत तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं। दो तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, एक वो होती हैं जिनको बोलते हैं मोनोटोनस पर्सनैलिटीज। मोनो माना उनको एक ही चीज़ पसंद होती है, एक ही तरह का भोजन रोज खाएंगे, एक ही तरह की दिनचर्या उनकी होती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे, कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, वो टेबल पर रोज उसी सीट पर जा करके बैठेंगे और इधर से उधर कोई भी चीज़ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर वक्त परिवर्तन होते रहते हैं, उनको हर दिन कोई ना कोई वैरायटी चाहिए, अलग अलग जगह पे बैठेंगे, वैरायटी काम करेंगे। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जो बाय बर्थ होती हैं। लेकिन ये जो हमने कहा अनुभव
0: जी,
1: कि मैं ही खुशी हूँ, शांति हूँ, प्यार हूँ, कल हमने कहा था कि मैं खुशी का सितारा हूँ, अपने को देखें। लेकिन कई हमारे जो दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, हमारे जो भाई बहन हैं या हमारे जो चाहने वाले श्रोतागण हैं, शायद उनको कई बार मोनोटोनस लगे कि हर बार हमने क्या यही विचार रखना है था। तो उनको हम और भी तीन चार विचार दे देते हैं आज कि जो आपको लगे रोज परिवर्तन कर लीजिए। जैसे रोज आप सब्जी नहीं खाते हैं, फल रोज अलग तरह से खाते हैं, रोज वही नहीं खाते, तो कईयों को तो पसंद होता है, कईयों को नहीं होता। तो उनको हम तीन विचार और देंगे, उसके साथ जोड़ दीजिए कि मैं खुशी का सितारा हूँ, पहले दिन ये ले लीजिए, या एक ही दिन में आप चारों टाइम, सुबह का टाइम, फिर दोपहर का टाइम, फिर शाम का टाइम, फिर रात का टाइम, अलग अलग संकल्प ले सकते हैं। मैं शांति का सितारा हूँ, मैं आनंद का सितारा हूँ, मैं एक शक्तिशाली सितारा हूँ। ये आप लगातार चार दिन कर सकते हैं, या जैसे आपको अच्छा लगे सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो जब आप ये लगातार इस पर विचार करेंगे, ये संकल्प अपने आप को देंगे, ये थॉट्स अपने मन में जनरेट करेंगे स्वयं के स्वयं ही, तो आपको अपने अंदर ही इन गुणों का अनुभव होना शुरू हो जाएगा और सफलता मेरा अधिकार है, शायद ये भी आपको समझना धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आज का जो हमारा विषय था खास, मैं ही सफलता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विद्यार्थी मित्रों के जहन में ये बात ज़रूर आ गई होंगी कि हमें कुछ भी करें लेकिन मेरे जीवन में खुशी हो, शांति हो। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। आप भले पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा करें पढ़ाई और अच्छा मार्क्स भी आप ले आए और अच्छे स्टेटस पे भी बने रहें, लेकिन साथ में अल्टीमेटली आपको चाहिए क्या, उस पर ज़रूर आप चिंतन करें कि मुझे जो है अपने जीवन में क्या चाहिए। तो सुख शांति चाहिए, ये मेन आपका लक्ष्य होना चाहिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रास्ते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें,

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

ओम शांति। आज 28 जून 2026 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2010 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं। एक देश अर्थात हमारा ओरिजिनल देश परमधाम, बाबा कहते कितना प्यारा है, और उसी देश से सर्व बच्चों से बाप दादा मिलने आए हैं। आज बाप दादा क्या देख रहे हैं, तो बच्चों के स्वरूपों को, उसमें भी विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में पंचमुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो कौन से 5 स्वरूप है? पहला, सभी का ज्योति बिंदु स्वरूप अर्थात अनादि स्वरूप, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा, आदि स्वरूप यानी देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप, और चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, और 5वां रूप फरिश्ता रूप। बाबा कहते ये 5ों ही रूप कितने प्यारे हैं। बाबा कहते हैं ये 5ों ही स्वरूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। आज बाप दादा बच्चों को मन की ये एक्सरसाइज सिखाते हैं, कैसे एक एक स्वरूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। क्यों ये एक्सरसाइज सिखाते हैं? क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। मन कमजोर हो गया है इसलिए बच्चों को अपने तरफ खींच लेता है। तो मन को एकरस बनाने की एक्सरसाइज बाप दादा सिखा रहे हैं। बाबा कहते जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, ऐसे यह एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का भी अनुभव करो। जैसे जैसे एक एक स्वरूप सामने आता जाएगा तो एक एक रूप की विशेषता भी अनुभव होगी। यह 5 मिनट के ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। बाबा कहते हर घंटे में 5 मिनट निकालो, 5 मिनट ये एक एक रूप का अनुभव करो, उसकी विशेषता का अनुभव करो, और फिर 5 मिनट के बाद अपने अपने कार्य में लग जाओ। बार बार ये एक्सरसाइज करो तो उसे फायदा क्या होगा? तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव, ये भी एक प्रकार का मन मना भव है। और यही मंत्र मन के अनुभव से माया जीत बनने में यंत्र बन जाएगा। जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। ये भी बाबा ने बताया है कि आगे चल करके ऐसा अभ्यास होना चाहिए, जब कहो मन स्टॉप तो फुल स्टॉप लग जाए। इसलिए ये अभ्यास हमें बार बार करने से अंतिम समय सेकंड में स्टॉप लगाना होगा वो लग जाएगा। जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए, ऐसा अभ्यास हो जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए। हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने, जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा
वह जगत जीत अवश्य बनेगा। तो मन जीते जगत जीत। फिर बाबा कहते हैं, बाबा का प्यार बच्चों से है और बच्चों का भी प्यार किससे है? बाबा से। जितना बच्चों का बाप से प्यार है, उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। लेकिन साथ साथ बाबा कहते, आधा कल्प माया को भी अपना बनाया है ना, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, जो दिल से। इसलिए बाबा कहते हैं, जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग उसको मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो हजार बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। कितना बाबा उदार दिल। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो हजार बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। बाप दादा बच्चों की एक बात देख करके दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराते हैं। कौन सी बात को देखकर दिल में मुस्कुराते हैं? ये सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। जब बाबा ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार नहीं है, लेकिन दूसरा है क्या चीज? संस्कार। तो बाबा कहे, दूसरा कोई संसार है ही नहीं, लेकिन दूसरा है संस्कार। तो जब बाबा ही मेरा संसार है, तो दूसरा संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि समझते हैं बच्चे संस्कार विघ्न रूप बनता है। तो जो समझते कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, तो उसके लिए तो संस्कार शब्द को मिटाना होगा, पुराने संस्कार शब्द को मिटाना होगा। ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा, खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे नहीं। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है उसको समाप्त करना ही है। बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का काम है क्या? बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वह करना ही है, अर्थात संस्कार को मिटाना ही है। तो बाबा कहे, उसकी भी एक डेट फिक्स करो। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। बच्चे को देखेंगे कि जैसे ही संस्कार को मिटाने का दृढ़ पुरुषार्थ करेंगे तो पेपर तो आएंगे, और पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना, शक्ति तो भरेंगे ना बाबा। फिर गीत भी गाएंगे, वाह बच्चे वाह। बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जब सर्वशक्तिमान है तो संकल्प को पूरा करना यह भी शक्ति है ना। सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हैं। जो पहली बार आए हैं बच्चे, उनको भी बाबा हिम्मत भरते हुए कहते हैं, सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट जा सकते हैं। फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देने आगे बढ़ाने चाहते हैं, सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। और अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो बाबा भी खुश होते हैं, वह बच्चे वह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, हजार कदम बाप की मदद का, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। इसलिए बाबा बहुत बहुत दिल की दुआएं अमृत वेला देते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, हर घंटे पांच स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी
बाप जैसे बनाओ। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं। एक देशी अर्थात हम सभी अपने एक ही देश मूल वतन निर्वाण धाम के निवासी, जो हमारा ओरिजिनल देश है, वहां से बाबा भी हम बच्चों से मिलने आए हैं। जो ओरिजिनल सबका देश है, जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। बच्चों को भी खुशी है, बाप को भी खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष पांच रूपों को देख रहे हैं। इसलिए पंचमुखी ब्रह्मा का भी गायन है। पांच स्वरूपों को बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते इसीलिए भक्ति में पंचमुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने पांच रूपों को जानते हो ना। पहला, सभी का ज्योति बिंदु रूप आ गया आपके सामने। परमधाम में हमारा स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहे ये स्वरूप सामने आया, कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा, देवता रूप, वह रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तो पहला स्वरूप अनादि स्वरूप, दूसरा स्वरूप आदि स्वरूप, देव स्वरूप, तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप, और चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वह भी कितना महान है। ब्राह्मण स्वरूप भी कितना महान है। और पांचवा रूप फरिश्ता रूप। ये पांच ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। मन जब कमजोर होता है तो मन और तरफ भागता है। और बाबा कहे आत्मा को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं। सारे दिन में इन पांच रूपों की एक्सरसाइज करो। बार बार ये पांच स्वरूप मन के अंदर चक्र के रूप में घुमाते रहो और अनुभव करो। खाली सोचना नहीं है, लेकिन एक एक का अनुभव भी साथ में करना है। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योति बिंदु कहने से ही वह चमकता रूप सामने आ गया। जैसे ज्योति बिंदु रूप कहा तो वह चमकता रूप सामने आ गया। ऐसे ही पांच ही रूप सामने लाओ। पांचों ही रूप वन बाय वन सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो हर घंटे में। बाबा कहते हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर 5 सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। मन के अंदर भी ताकत आएगी, एक रस रहेगा, हिलता डुलता नहीं रहेगा। मिसाल बाबा देते हैं, जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है,
ऐसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगी। एक सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ, समझते हो सहज है ना? बाबा कहते समझते हो सहज है ना, यह कि मुश्किल लगता है, मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है और हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता, पांचों ही स्वरूप हमारा अपना स्वरूप है, तो बाबा कहते अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा, अनादि स्वरूप की विशेषता, सतोगुण स्वरूप, देवता स्वरूप की विशेषता, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण। तो एक एक रूप की विशेषता भी अपनी अपनी है, उसका भी अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन मन दूसरे तरफ चला जाता है। जितना समय जहां मन लगाने चाहते हैं उतना समय के बजाय व्यर्थ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता, तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। बाबा की यही चाहना है कि हर बच्चा 5 सेकंड या 5 मिनट इसी एक्सरसाइज के अनुभव करे। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना? बाबा कहते हैं जब मन उस पांचों रूप में 1 by 1 चलता जाएगा तो अच्छा होता है ना। फिर अपने काम में लग जाओ, हर घंटे 5 मिनट बस एक एक स्वरूप का अनुभव कर लो और फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है, कार्य के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। ये 5 मिनट की ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ, चाहे 5 सेकंड लगाओ चाहे 5 मिनट लगाओ। लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है? कितना बाबा सहज कर देते हैं बच्चों के लिए कि हर घंटे बस 5 सेकंड करो, 5 मिनट करो, क्या इतना टाइम भी नहीं मिलता है? है कोई हाथ उठाओ जिसके पास इतना टाइम भी नहीं मिलता है, जिसको 5 मिनट भी नहीं है? कोई नहीं है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। बाबा कहे कोई नहीं है। है कोई? फिर भी बाबा कंफर्म करते हैं कोई, सब निकाल सकते हैं। तो बार बार यह एक्सरसाइज करो तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भव। बाबा कहे

बनने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार एक सेकंड में स्टॉप लगाना होगा, एक सेकंड में फुल स्टॉप लगाना होगा। तो ये एक्सरसाइज करने से मन मना भव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। ये कहते हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व को परिवर्तन करना है तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है, जो जिस समय जो संकल्प करने चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो, जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करते हो, बाबा कहते हैं शरीर की और कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना, हाथ को कहते हैं ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना, ऐसे मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो, मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए यह मन की एक्सरसाइज बताई, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, सशक्त करने के लिए, ताकि मन बार बार हिले नहीं, लेकिन जैसे ही ऑर्डर किया तो मन उसी एक्सरसाइज के अंदर चला जाए। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है, इसीलिए आने वाले समय के पहले यह अभ्यास जहां चाहे वहां मन सहज टिक जाए, ऐसा अभ्यास हो जो जहां चाहे मन सहज ही टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका यह अभ्यास होगा वह जगत जीत अवश्य बनेगा, जिसका बाबा कहे अभ्यास होगा वो जगत जीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से परिवार से प्यार तो सबका है, जितना बच्चों का बाप से प्यार है उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता है, क्या कहता है, मेरा बाबा, और बाप भी कहता मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया, हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है, तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना। माया को भी अपना बनाया है तो बाबा कहते माया का भी उतना ही प्यार है, तो वह बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है, हर एक बात में बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो हजार बार बाप बंधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। कौन सी बात है बच्चों की,
जिसको देख करके

बाबा मुस्कुराता है, जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं, सभी बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाप ही हमारा संसार है। कहते हो, जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरी बात है संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं, संसार नहीं है लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है? पूछते बाबा बच्चों से, बाबा संस्कार शब्द मिटाना चाहता है, क्या मिट सकता है? पूछते बाबा, मिट सकता है। जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, हमारे संस्कार हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बन सकता है। ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं हम दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा। आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है, ये पुराने संस्कार को खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे या नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। हिम्मत संस्कारों को समाप्त करने की? है हिम्मत? बाबा पूछते हैं, है हिम्मत? पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो, जो संकल्प किया है वह हो रहा है? जो भी पुरुषार्थ के लिए संकल्प किया वह हो रहा है? जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है क्या? बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वो करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो, कब से करना है। जो बाबा ने कहा वो करना ही है, तो कब से करना है? बाबा कहते वो डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है शिवरात्रि, तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। ये पुराने संस्कार कब खत्म करने हैं? अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हो ना। कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया? बाबा कहते डेट फिक्स किया। कर सकते हैं तो किया? डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले किया फिक्स? जो डेट फिक्स की ना, वो बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। बाबा कहते पेपर को पास करने के लिए बहादुरी तो देंगे ना, बाबा भी शक्ति तो भरेंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह, सेरेमनी मनाएंगे। जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसकी सेरेमनी मनाएंगे, क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा, उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना, हरेक के साथ संपर्क में तो आएंगे ना। तो जो करेंगे वो सभी देख करके वेरीफाई करेंगे। संस्कार किसी न किसी के